नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको नजात बख्शी, और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ऐ परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़, और बेहतरीन वारिस तो तू ही है, बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया, और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रगबत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। और वो खातून जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मेरी इबादत करो। मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबको हमारी तरफ पलटना है। फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो उसके काम की नाकदरी ना होगी, और उसे हम लिख रहे हैं।

लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और नसारा और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, इन सब के दरमियान अल्लाह कयामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सरबसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह जलील खार कर दे, उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सजा का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीजा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी गई और उन्हें खुदाए सुतूदा सिफात का रास्ता दिखाया गया। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, उसे हम दर्दनाक अदाब का मजा चखाएंगे।

إنك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

इस लफ्ज़ के अंदर एक टर्निंग है, एक रास्ता छोड़ना और दूसरे रास्ता का रुख करना। समझने के लिए हम गोया इसे इस तरह कह सकते हैं कि जैसे कोई मुसाफिर एक ऐसी शाहराह पर चल रहा हो जिस पर पूरा काफिला चला जा रहा है, अचानक उसे मालूम हो कि काफिले की सिमत गलत है। अब उसका इम्तिहान ये है कि क्या वो सिमत बदलने की हिम्मत रखता है या नहीं। कितनी तेजी से चलना ये मसला नहीं है। हनीफियत में यही माना बहुत नुमाया है कि हुजूम के भाव से निकलकर तौहीद की तरफ रुख करना। और इसीलिए हनीफियत कोई नया मजहब नहीं जो इस्लाम के बराबर एक अलग दीन हो। कुरानी इस्तेमाल में मिल्लत इब्राहिम की हनीफियत वही खालिस तौहीदी रास्ता है जिसकी दावत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम देते रहे और जिसकी तकमील आखिरी शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जाने की एक रिवायत मुस्तद अहमद में मनकूल है, अय्युल अदियान अहब्बु इलल्लाह قال الحنيفيه السمحه, यानी अल्लाह के नजदीक कौन सा दीन ज्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसान सहल और कुशादा हनीफियत। तो السمحه यहां हनीफिया के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये बड़ी खूबसूरती पैदा करता है। गोया मिल्लत इब्राहिम का रास्ता इसके मिजाज में भी एक एतदाल वसअत और फितरत के साथ मुनासिबत है। न ऐसा गुलू के इंसान दीन के नाम पर अपने लिए वो बोझ घड़ ले जो अल्लाह ने रखा ही नहीं, और न ऐसी बेपरवाही के दीन की हुदूद ही तहलील कर दी जाए। यानी हनीफियत की तस्वीर अगर एक मीज़ान की सूरत में बनाएं तो एक पलड़े में तौहीद की गैर मुतजलजल एक सुई है और दूसरे में समाहत फितरी तवाजुन और इत्तेदाल। अलबत्ता यहाँ एक लफ्जी इश्तिबाह भी साफ कर लें, वो ये कि हनीफियत और फ़िक्ह का मारूफ हनफी मजहब एक चीज़ नहीं। फिक्ही मजहब हनफी की नस्बत इमाम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रहमतुल्लाह की तरफ है जिनका इंतकाल 150 हिजरी में हुआ, जबकि कुरान की हनीफियत उससे कहीं पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के हवाले से है, यानी शिर्क से हटकर तौहीद की तरफ यकसू होने के माने में है ये हनीफियत। सामने कलाम अब चले हम जरा सीन बदल लेते हैं, बेइज्जत से पहले के अरब में पहुंचते हैं। मक्का और जजीरा अरब का माशरा है, बुत मौजूद हैं, कबाइली रिवायात मौजूद हैं, मजहबी रसूम अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या इस पूरे माहौल में हर इंसान अपने ज़माने के मजहबी मंजरनामे से मुतमइन था। तारीखी मसादिर हमें कुछ ऐसे नाम देते हैं जिन्हें बाद की तहरीरों में हुनफा से जोड़ा गया। हाँ, ये बात तो सही है कि इन तमाम शख्सियात के बारे में रिवायात एक दर्जे की मजबूत और मुत्तफ़क़ आले नहीं हैं। बाज़ खबरें कदीम सीरत व अदब की किताबों में हैं, बाज के बारे में अहले तारीख का इख्तिलाफ है। इसीलिए हम इन सब को एक ही दर्जे की कतई तारीखी हकीकत बनाकर नहीं सुनाएंगे, बल्कि यूं कहेंगे कि तारीखी पर्दे पर चंद किरदार नमूदार होते हैं और हर किरदार हमें बेसत से पहले अरब की फिक्री बेचैनी की एक झलक दिखाता है। सबसे पहले एक नाम आता है कुस बिन साद अल यादी। अब मंजर अपने जहन में बनाइए कि लोग जमा हैं, बाजार का माहौल है, जिंदगी अपनी पूरी हरकत के साथ जारी है, खरीदो फरोख्त, काफिले, गुफ्तगु, कबाइली शान और इस हजूम के दरमियान एक खतीब खड़ा होता है। अब इस कुस बिन सायदा से मंसूब एक मशहूर खुतबे के अल्फाज यूं बयान किए जाते हैं, अय्युहन्नास इस्मऊ ववउ फइज़ा उईतुम फंतफउ इन्नहु मन आशा मात वमन मात फात वकुल मा हुवा आतिन आत। यानी ये लोगो सुनो समझो और जब समझ जाओ तो उस समझ से फायदा उठाओ, जो जिंदा है उसे मरना है, जो मर गया वो गुजर गया और जो आने वाला है वो आकर रहेगा। तसव्वुर कीजिए सामने कराम, बाजार में सब लोग शायद जिंदगी की चीजें खरीद रहे हैं और ये शख्स उनके सामने जिंदगी के अंजाम की बात कर रहा है। मजीद इस बंदे से ऐसे कलिमात भी मनकूल हैं जिनमें वो गोया इंसान को इर्द गिर्द फैली कायनात पढ़ने की दावत देता है, जिनमें आसमान, जमीन, रात, सितारे और समंदर की तरफ इशारा है। मजीद उससे ये जुमला भी मनकूल है कि अल्लाह का एक दीन है जो उसे तुम्हारे मौजूदा दीन से ज्यादा महबूब है। इसी रिवायत के सिलसिले में उसकी तरफ खालिस तौहीद के ऐसे अल्फाज भी मनसूब किए गए जिनमें वो एक अल्लाह को माबूद मानने, उसके लिए औलाद व वालिद की नफी और उसी की तरफ वापसी का जिक्र करता है। अब मकसद हमारा यहाँ कुस के हवाले से अफसानवी अजमत तामीर करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस मंजर को देखना है कि बेसत से पहले अरब के मजहबी माहौल के अंदर भी ऐसे सवालात उठ रहे थे।

0: कि इब्राहिम का दीन है तो इब्राहिम का रब कहाँ है। यहीं से एक आदमी की तलाश शुरू होती है। चले हम आज उस शख्स को फॉलो करते हैं, ज़ैद इब्न आमर इब्न नुफैल को, जो मक्के से निकल चुके हैं, और हम उनके साथ साथ मुसाफिर के पीछे चलते हुए देखेंगे कि वो अपने इस हकीकत का सुराग कैसे लगाते हैं। शाम का सफर है, उस वक्त ना आज की तरह कोई सर्च इंजन, ना चंद लम्हों में दुनिया भर की किताबें सामने, न किसी सवाल का जवाब एक क्लिक पर। हकीकत तलाश करनी है तो उसे काफी दूर जाना पड़ता है, काफी तगो दो करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, अहले मजाहिब के पास बैठना, और फिर हर जवाब के अपने अंदर रख कर देखना पड़ता है कि क्या यही वो चीज है जिसे मैं तलाश कर रहा था। सही बुखारी में ज़ैद इब्न आमिर की इस तलाश का नहायत माना खेज वाक़िया आता है कि वो शाम पहुंचे और एक यहूदी आलिम से उसके दीन के बारे में पूछा। गोया ज़ैद कहते हैं कि मुमकिन है मैं तुम्हारा दीन इख्तियार कर लूं, पहले मुझे बताओ तुम्हारा रास्ता क्या है। यहूदी आलिम ने जवाब दिया कि अगर तुम हमारे दीन में आओगे तो अल्लाह के गजब में से अपने हिस्से के बगैर नहीं रहोगे। अब जरा ज़ैद के जवाब पर तवज्जो दीजिए, ये किसी मुनाजरे के लिए निकले हुए शख्स का जवाब नहीं, एक खौफ ज़दा तालिबे हक का जवाब है। मा अफिरु इल्ला मिन गदबिल्लाह, मैं तो निकला ही अल्लाह के गजब से बचने के लिए हूँ। गोया वो कह रहे हूँ मैंने मक्का इसलिए नहीं छोड़ा कि एक नाम से निकल कर दूसरे नाम में दाखिल हो जाऊं, मेरी तलाश तो यह कि अल्लाह मुझसे राजी किस रास्ते पर होगा। फिर वो पूछते हैं क्या तुम मुझे किसी और रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकते हो। जवाब मिलता है मेरे इल्म में तो बस ये है कि बस तुम हनीफ हो जाओ। ज़ैद रुक जाते हैं, हनीफ, हनीफ क्या है। आलिम जवाब देता है कि इब्राहिम का दीन, वो ना यहूदी थे ना नसरानी, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। समझ कराम, अगर ज़ैद सिर्फ अपनी पसंद का जवाब ढूंढ रहे होते तो शायद पहले जवाब पर ही रुक जाते, लेकिन तलाश अभी जारी है। वो एक नसरानी आलिम से भी मिलते हैं और तकरीबन वही सवाल रखते हैं, मैं तुम्हारे दीन के बारे में जानना चाहता हूँ। वहां से भी एक तंबीह मिलती है कि हमारे दीन में दाखिल हुए तो अल्लाह की लानत में से हिस्सा पाओगे। ज़ैद फिर वही बात कहते हैं, पर मैं तो अल्लाह की लानत और उसके गजब ही से बच रहा हूँ, मैं उसे अपने ऊपर कैसे उठा सकता हूँ, क्या कोई और रास्ता है। अब हैरत अंगेज तौर पर जवाब फिर उसी सिमत इशारा करता है कि हनीफ बन जाओ। हनीफ कौन? इब्राहिम के दिन पर जो न यहूदी थे न नसरानी और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करते थे। जरा इस मंजर को तस्वर कीजिए कि एक तरफ यहूदी आलिम, दूसरी तरफ नसरानी आलिम, और दरमियान में एक मक्की मुसाफिर। दोनों मजहबी रास्तों से गुफ्तगू के बाद एक नाम बार बार उसके सामने आ रहा है, इब्राहिम। एक ऐसा इब्राहिम जो बाद में कायम होने वाली मजहबी नस्बतों से पहले गुजर चुका है और जिसकी असल पहचान एक अल्लाह की इबादत है। ज़ैद वहां से निकलते हैं, खुली जगह में पहुंचते हैं, शायद सफर के गर्द अभी लिबास पर है, शायद सवालात अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुए, मगर अब कम अज कम सिमत वाज़ेह हो गई है। वो हाथ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नी अला दीन इब्राहिम, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैं इब्राहिम के दीन पर हूँ। समझिए करम, जरा इस जुमले की कैफियत को महसूस कीजिए। उस वक्त ना उसके गिर्द कोई जमात है, न किसी नए मजहबी ग्रोह में दाखिल होने की तकरीब, एक आदमी है, खुला आसमान और एक अल्लाह है जिसे वो गवाह बना रहा है। तो यही है दरअसल निगाह बदलने की हकीकत। ज़ैद उसी मक्का में वापस आते हैं, वही काबा है, वही कुरैश है, वही रस्में, लेकिन अब वो उस माहौल का हिस्सा होते हुए भी उसकी मजहबी रविश में घुल नहीं पाते।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
0: अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा से सही बुखारी में मनकूल है कि उन्होंने ज़ैद इब्न आमर को काबा से पुश्त लगाए हुए देखा और वो कुरैश से कह रहे थे, या माशर कुरैश, वल्लाहि मा मिनकुम अला दीन इब्राहीम गैरी, ए कुरैश के लोगों, अल्लाह की कसम तुम में मेरे सिवा कोई इब्राहिम के दीन पर नहीं। सामने कराम, ये जुमला उस जमाने में जरा मक्के के पस मंजर में समझने की कोशिश करें कि सामने अपने लोग हैं, अपना कबीला मुआशरा, और एक आदमी उसे काबे के साए में कह रहा है कि तुम जिसे इब्राहिम का रास्ता समझ रहे हो, मैं उसे इब्राहिम का रास्ता नहीं समझता। और फिर यही हनीफियत का अकीदा ज़ैद को एक दूसरे इंसानी मंजरनामे तक ले जाता है। जाहिली अरब के बास कबाइल में बेटियों को कत्ल करने की संग दिलाना रस्म पाई जाती थी। कुरान ने

को ऐसे सवाल के साथ क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है। وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उसी रिवायत में आता है कि ज़ैद इब्न आमर ऐसी बच्चियों को बचाते थे। जरा मंजर देखिए सामने कराम, एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करने का इरादा कर रहा है, ज़ैद सामने आते हैं। वो कोई तवील फलसफियाना तकरीर नहीं करते बल्कि कहते हैं कि उसे कत्ल न करो, उसके अखराजात मैं उठाऊंगा। और बच्ची को अपने पास ले लेते, उसकी परवरिश करते, वो बड़ी हो जाती। फिर बाप से कहते कि अगर चाहो तो अब उसे तुम्हारे हवाले कर दूं, और अगर चाहो तो उसके अखराजात बदस्तूर मैं उठाता रहूं। सामने कराम, एक मरतबा फिर हनीफियत क्या है? शायद इसका सही जवाब हमें मिल चुका है किताब के सफ़े से उतर कर, एक जिंदा बच्ची की सूरत में। अगर अकीदा है कि माबूद एक है तो फिर इंसान की जान भी कबीले की बेरहम रस्म की मिल्कियत नहीं रहती। ज़ैद इब्न आमर के बारे में ये रिवायत भी मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबअथु यौमल क़ियामति उम्मतन वहदहु, यानी वो क़ियामत के दिन एक उम्मत के मानिंद तन्हा उठाए जाएंगे। इस रिवायत के असानिद और दर्जा सेहत पर अहले हदीस ने गुफ्तगू की है। वैसे मजीद दीगर रिवायात के साथ मुआजना के बाद ये बात तो बिल्कुल समझ में आ जाती है कि ज़ैद इब्न आमर एक ऐसा शख्स जो नबूवत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले अपने माहौल की बुतपरस्ती से अलग होकर मिल्लत इब्राहिम तलाश कर रहा था। वैसे ज़ैद के इस दास्तान से ये बात वाज़ह हो जाती है कि बाद के मजहबी गुरुओं ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अपनी शनाख्त के अंदर रखने की कोशिश की थी वो दरअसल गलत फहमी है। कुरान ने फरमाया, मा कान इब्राहिम यहूदियन वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी, बल्कि हनीफ मुस्लिम थे और मुशरिकों में से नहीं थे। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद की मजहबी शनाख्तों से पहले गुजर चुके थे और इसीलिए कुरान उन्हें बाद की नस्बतों में बंद करने के बजाय उनकी बुनियादी शनाख्त सामने रखता है, हनीफम मुस्लिमन, बातिल से रुख मोड़कर अल्लाह की तरफ यकसो अपने रब के सामने सर तस्लीम खम किए हुए। और इसीलिए जब हिदायत के बारे में कहा गया, वकालू कूनू हूदन व नसारा तहतदू, तो कुरान ने जवाब दिया, कुल बिल मिल्लत इब्राहिम हनीफा व मा कान मिनल मुशरिकीन। गोया सवाल ये नहीं कि इब्राहिम को अपने कैंप में कैसे लाएं, इब्राहिम को अपनी जमात में कैसे शरीक करें, बात ये नहीं। कुरान सवाल ही पलट देता है कि यहूदी और नसारा की बात मत कहो, ये सोचो कि तुम खुद इब्राहिम के तौहीदी रास्ते के कितने करीब हो। और फिर सामने कराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुन नबीयीन हैं, उनको भी इसी मिल्लत की पैरवी का हुक्म किया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है जिसमें अल्लाह फरमाता है, थुम्मा वहीना इलैका अन तबिअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि आप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें जो यकसू थे और मुशरिकों में से न थे। तो दरअसल कुरान उसे रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीदी तसलसल के अंदर रखता है। यानी हनीफियत कोई सिर्फ तारीखी उनवान नहीं जिसे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। सामने कराम, अब चले हनीफियत और फितरत के दरमियान का जो ताल्लुक है उस सवाल पर आगे बढ़ते हैं। कुरान सूरह रूम में फरमाता है, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। तो यहाँ कुरान हनीफियत और फितरत को एक ही मंजर में ले आता है। गोया इंसान की तख्लीक में एक ऐसी बुनियादी इस्तेदाद रखी गई है जो उसे अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे होने के काबिल बनाती है। तो फितरत का मतलब ये नहीं कि हर इंसान बगैर वही तालीम और नबूवत के दीन की हर तफसील खुद ब खुद जानता है, बात ऐसी नहीं। अगर ऐसा होता तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की बहसत की जरूरत ही न रहती। बल्कि फितरत इंसान के अंदर हक को कबूल करने की एक बुनियादी आमादगी है जिसे माहौल, ख्वाहिश, गलत तालीम और दूसरे असरात ढांप सकते हैं। सही मुस्लिम में मनकूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक हदीस कुदसी है, इन्नी खलक्तु इबादी हुनफा कुल्लुहुम وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने बंदों को हुनफा पैदा किया, फिर शयातीन उनके पास आए और उन्हें उनके दीन से फेर लिए गए। उन पर वो चीज़ें हराम की जिन्हें मैंने हलाल किया था, और उन्हें हुक्म दिया कि मेरे साथ ऐसी चीज़ों को शरीक करें जिन पर मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। तो सामने कराम, यह बात बिल्कुल वाज़ह है कि इंसान की असल सिमत एक तरफ है, फिर जिंदगी में आवाजें आती हैं, ख्वाहिश, माहौल, आबाई रिवायत, शायद शयातीन की आवाज़।
और कभी आवाजें इतनी

हाँ जी, सबाहल नूर, सबाहल खैर, सबाहल फुल, सबाहल वर्द, सबाहल यास्मीन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद करता हूं कि सुबह बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही ताजा ताजा शुरू हुई होगी। भाई आज की सुबह में कुछ अलग ही वैसे बात है, है? हर हफ्ते थर्सडे को ही ये सुबह इतनी खूबसूरत क्यों होती है? खैर सभी को बताए बात, तो आज वीक का आखिरी वर्किंग डे है। बहुत लोगों की ड्यूटी भी होती है, उनके हवाले से भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा कह के ही जाऊंगा, फिक्र मत कीजिए। तो भाई आज ना कोई सुस्ती चलेगी, ना कोई आलस चलेगी है, और ना ही चेहरे पर कोई संडे वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आज के दिन तो सोचिए मत। संडे बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दिनों बाद आएगा। तो आज तो आंखों में भाई चमक होनी चाहिए और चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और वो भी एकदम दिल की जो आवाज़ होती है ना, वो यौमुल खमीस भाई, यौमुल खमीस, क्या बात है, आ गया थर्सडे। मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है, आप लोगों को भी इतनी खुशी हो रही है। तो भाई जो ऑफिस जा रहे हैं और वो आज अपने बॉस को भी जरा सा मुस्कुराकर देख लीजिएगा, हो सकता है कि वो भी आज के दिन खुश हो और कोई बात मान ले। और कहीं ना कहीं भाई जो लोग काम करेंगे, ड्यूटी पर रहेंगे इन वीकेंड वाले दिनों में, उनको भी सलाम है भाई। वो शेर और शेरनियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से भाई दुनिया का जो ये पहिया है ना, वो चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी बराबर चल रही है। तो भाई बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सरवर मिर्ज़ा आ गया है आपके साथ, आपके ये जो 3 घंटे हैं 6 से 9 के, आपकी सुबह को और भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला खूबसूरत बनाने के लिए बिस्मिल्लाह से करिए शुरुआत। और आगे आगे बहुत कुछ है हमारे पास, तो भाई वॉल्यूम जो है आज फुल कर लेनी है। गाने बहुत ही शानदार चलने वाले हैं एकदम वीकेंड के हिसाब किताब से, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज काम जो है वो तो करना ही है, मगर बहुत खुशी खुशी है ना। वैसे तो हर दिन ही यार ऐसा करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप। 666-22107 पे आप मैसेज कर सकते हैं।

0: आप मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे 443-443-77 इज द नंबर। ये तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, तो जल्दी से कुछ जो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस हैं उनको शेयर कर लेते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह ताला अस्कार भी सुनेंगे हम और अच्छी शुरुआत करेंगे आज के दिन की भी, खासम खास शुरुआत जैसे कि हम लोग करते हैं। तो भाई कहाँ से है शुरू, यहाँ है पहला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, सबाल खैर कहते हैं, हैप्पी वीकेंड भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है हमारे साथ, अंसारी साहब हैं भाई। ये वाले मैसेजेस अभी शेयर इसलिए कर रहा हूँ, फिर वो बहुत लेट हो जाते हैं यार हम जब बाद में शुरू करते हैं मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम सर और ब्रदर, गुड मॉर्निंग, एनर्जी के पे तेर शायरी है, ले नहीं सकता बस जिस चीज का नाम बताया ने। और कह रहे हैं कि सुनते ही, अच्छा ठीक है यार आसिफ आलम भाई, मैंने अगर ये बात कह दी ना तो मेरा मजाक ज्यादा बन जाएगा, बता रहा हूँ मैं, आप तो मजाक कर ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, कल एफएम के पोस्ट में मैंने आपकी रील देखा ट्रैफिक के हवाले से, बहुत पसंद आई, ना जाने कब ये कुछ लोग रूल फॉलो करेंगे, हैं ना जाने कब ये कुछ लोग। राइट आसिफ भाई, आसिफ ने जो बात बताई है वो वही है ट्रैफिक के हवाले से ही, कि हम लोग सब रूल फॉलो करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। कहते हैं हैप्पी वीकेंड, आज तो इतनी खुशी लिखते हैं आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कहते हैं हाँ जी गुड मॉर्निंग, जसविंदर सिंह काला इंडिया से, ओ शाहजी आप क्या छुट्टी गए हुए हैं, अच्छा चलिए साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं या आप यहीं पे हैं और सिर्फ बता रहे हैं कि आप इंडिया से। आपको यार कैसे नहीं पहचानेंगे हम जसविंदर सिंह साहब। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड, बहुत बहुत शुक्रिया, विश भी ऐसी हिशाम भाई कर रहे हैं एकदम आते के सलाह ले, हैप्पी वीकेंड भाई, अल्लाह हाफिज, जा रहा हूँ अब छुट्टी छुट्टी छुट्टी इंजॉय करूँगा। कहते हैं सलामुअलैकुम सरूर भाई, वाकरा तो मी सईद, अच्छा वाकरा टू मी सईद अब्दुल जब्बार, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉयिंग वीकेंड वाइब्स, अच्छा जा रहे हैं, मैंने कहा शायद जब्बार भाई कह रहे हैं, भैया जब्बार है भैया जब्बार क्या मैं समझा कुछ ट्रैफिक की अपडेट देना चाह रहे हैं। इस वक्त जा रहे हैं वाकरा से मी सईद और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम, सरवर भाई हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड मेरा भाई रिद्वान, हैप्पी वीकेंड, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, फरीद फ्रॉम खोबर सऊदी अरबिया, क्या बात है यार मेरा भाई फरीद, फरीद भाई यस फरीद ही नाम है यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माशाल्लाह से बहरीन से और सऊदी से माशाल्लाह से लोग जुड़े रहते हैं सुबह सुफा एफएम 107 के साथ। भाई मोहब्बत है आप लोगों की, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं आपकी तारीफ में भी क्या लफ्ज़ बोलूँ, मेरे पास वो है ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है भाई, क्या बयान करूँ, बस ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत का कोई बदल नहीं है भाई, कोई बदल नहीं है, इसको रिप्लेस हम कैसे करें, किस चीज़ से करें, मतलब बस ऐसे ही है, बस आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है वही सबसे बड़ी चीज़ भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओ यस जसविंदर सिंह कह रहे हैं मैं पंजाब में ही हूँ इंडिया में, ओ शाहजी क्या हालचाल है हमारे पंजाब के, शाहजी मुझे ज़रा एक वीडियो बना के भेजिएगा आप जहाँ पे हैं, मुझे लगता है गांव में ही होंगे अपने, तो इस वक्त सुबह सुबह की जो एक शॉर्ट वीडियो है ना प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जसविंदर सिंह काला साहब आप मुझे भेजें और सभी परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछिएगा और सभी से कहिएगा कि हमारे लिए भी दुआ करें और इंशाल्लाह जब आप आएँ वापस खैरियत से आएँ एक तो और हमसे मुलाकात भी कीजिएगा। तो भाई ये कुछ मैसेजेस हैं, चलिए एक आध और मैसेज वो शामिल करके फिर इंशाल्लाह बढ़ते हैं अस्कार की जानिब। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सरवर भाई, अबू अहमद सूक वाकिफ, क्या बात है माशाल्लाह से शॉप खुल चुकी है सुबह ही सुबह, फजर के बाद सीधे बरकतों के लिए, इंशाल्लाह ताला खैर आफियत का मामला होगा सभी काम करने वालों के लिए, अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे और हम सबको खुशियां दिखाए यही हमारी दुआ है। तो भाई आइए अब करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और बढ़ते हैं अस्कार की जानिब इंशाल्लाह ताला, बाकायदा आगाज करके अल्लाह ताला के नाम लेकर और दुआएं करके सुबह जो है वो शुरू करेंगे तो फिर और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। तो अस्कार के बाद आपसे मुलाकात होती है।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं।

0: को खुशी में बदल दे और आपको दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जज़ाकअल्लाह खैरन तला भाई ने हमारे साथ इस वक्त सुबह का जो माहौल है उसको और भी ज़्यादा पुरकशिश बना दिया है और सुकून वाला बना दिया है। और सरवर मिर्ज़ा हाज़िर ख़िदमत।
2: आप सुन रहे

0: హలో, గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఖతర్ భాయ్. యోమల్ ఖమీస్ తజ్జే కా దిన్, ఖతమ్ ఖాస్ దిన్ ఆర్ వీక్ ఎండ్ జో హై వో ఆ గయా హై. హమారీ యే జో పూరే హఫ్తే కా టైమ్ గుజరా హై, ఉమ్మీద్ కర్తా హూం కి బహుత్ అచ్చా గుజరా హోగా సబ్కా. ఇస్మే భాయ్ క్యాల్కులేట్ కర్ లీజియే కి క్యా కుచ్ పరేషానియా హుయీ హై జిన్కా హమే సామనా కర్నా పడా హై. తో అగలే హఫ్తే ఇన్షాల్లా తాలా హమ్ ఉన్ తమామ్ చీజోం కా పహలే సే ఖ్యాల్ రఖేంగే ఔర్ ఐసీ కోయీ భీ చీజ్ హమ్ నహీ छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, भले ही वो ऑफिस हो, भले ही वो घर हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो, कोई भी ऐसी चीज हो. सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पहले खुद पहल करके दूसरों को माफ भी करें, दरगुजर करें, दूसरों की गलतियों को माफ करिए तो आपकी भी गलतियां माफ करी जाएंगी भाई, क्यों नहीं. तो जनाब आइए बता देता हूँ कि प्रोग्राम में क्या कुछ है. असकार तो हमने सुनी लिए हैं और कुछ खासम खास दिन है तो उनके हवाले से भी बताता चलता हूँ और उसी के हिसाब से फिर आज हमारा इंशाल्लाह ताला मौजू भी रहने वाला है. ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है आज. भाई भाई भाई भाई, हाथ से कपड़े किस किस ने धोए भाई, अभी भी धो रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल में हम सभी शामिल हैं. हाँ, जेन जी मुझे तो नहीं लगता कि शायद धो रहे होंगे, बट मुझे मैंने तो भाई खूब हाथ से कपड़े धोए, ऐसी बात नहीं है. और मुझे लगता है मेरे साथ हमारे दोस्त भी कुछ इत्तेफाक करेंगे. तो हाथ से धोने, कपड़े धोने, कपड़ों की बात हो रही है भाई, कपड़ों की बात हो रही है, एक दूसरे को धोने की नहीं हो रही. हाथ धोने की अहमियत और कपड़े धोने की अहमियत दोनों ही हैं आज. एक तो हैंड वॉशिंग भी है और कपड़े भी वॉशिंग का है, तो दोनों ही चीज़ें हैं. हैंड वॉशिंग सबसे पहले भाई, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हमें, है ना. बच्चों को तो शुरू से ही समझा के रखिए, क्योंकि यार जितनी भी ज़्यादा परेशानियां हैं ना, वो हाथ से ही जो जम्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये हम सब जानते ही हैं. तो उनको ये समझाएं, और अगर मुझे बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं तो हैंड वॉश करना है सभी को, याद रखें ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी आज खासम खास, ठीक है. तो जनाब हाथ धोने की अहमियत के हवाले से भी आज दिन है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है. इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन भी है, तो जो ही देही इलाकों की ख्वातीन हैं उनके किरदार और उनकी खिदमात को सराहने का दिन भी है आज. वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी है आज, इसी के हवाले से आज हम बात भी करने वाले हैं. बिल्कुल, आज तलबा और तालीम की अहमियत को उजागर करने का दिन है, तमाम स्टूडेंट्स को सराहने का दिन है. वो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, खैर उनके हवाले से भी बात करेंगे. इंटरनेशनल क्रेडिट यूनियन डे भी है आज. क्रेडिट यूनियंस और कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उनकी अहमियत को हाईलाइट करने का दिन है. और भाई बहुत ही खासम खास एक और दिन, कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतलब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे भी है आज. तो जितने भी इख्तलाफात हैं उनको अमन में और समझदारी से हल करने की अहमियत का दिन है आज. और माशाल्लाह से ये हम सभी जानते हैं कि हमारा कतर इसमें कितना पेश रहता है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला हमारे कतर को खुश रखे, आबाद रखे, जिंदा दिल रखे, और कतर के हवाले से तमाम परेशानियाँ जो हैं लोगों की, वो आराम में तब्दील हो जाए, सुकून में तब्दील हो जाए, और दुनिया में हमारे कतर का बहुत बहुत नाम हो. आमीन या रब्बुल आलमीन. तो भाई इसी के हवाले से आज बात कर लेते हैं. जब ऐसा खासम खास दिन है, इन सारे खास दिनों के साथ तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, तो मैंने सोचा कि पूछ लो भाई उस्तादों से शागिर्दों का क्या ताल्लुक रहा है. और मतलब दोनों ही शागिर्द दोनों ही आ रहे हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं. तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई कॉलेज भी याद आ जाएगा आपको आज, पुरानी बातें करके पुराने दोस्त भी याद आ जाएंगे और पुराने मार्क्स भी याद आ जाएंगे. मैं बता दूं जो छुपाते फिरते थे, खैर रिश्तेदारों से ज़्यादा छुपाए जाते थे, ऐसा लगता था भाई उन्हीं को सबसे ज़्यादा फिक्र है. तो इसमें दो चार लोग हैं, नंबर वन है जो टॉपर है, नंबर टू है जो बैक बेंचर है, मतलब जिसमें सरवर मिर्ज़ा भी शामिल है, जिसका क्लासरूम में फेवरेट सब्जेक्ट भाई टीचर से छुपना ही होता था. चलिए बहरहाल इसके ऊपर और भी बात करेंगे. यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो पहले कॉलर यहाँ हमारे साथ, इनसे करते हैं बातचीत. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.
0: हेलो, हेलो, हेलो.

0: सबहल नूर, सबहल नूर, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत वगैरह? निकल पड़े हैं ड्यूटी के लिए?
1: जी हम तो मुसाफिर हैं, निकल पड़े।
0: अरे होए होए, अपनी मर्जी से कहां, अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, है नसीम भाई? ये रुख गाड़ी का जिधर का है उधर के हम हैं। क्या यार नसीम भाई, ये बताइए कि
1: हम तो हाथ धोकर पीछे पड़े थे तुम्हारे।
0: अच्छा अच्छा, तो आज वैसे भी आज हाथ धोने का दिन भी है।
1: हम तो हाथ धोकर पीछे पड़े थे तुम्हारे, तुम ही हो के हाथ छुपाए फिरते।
0: आए हाय हाय हाय हाय, अच्छा है अच्छा है अच्छा है यार, बहुत अच्छा। हम तो हाथ धो के पीछे पड़े थे तुम्हारे, तुम ही हो जो हाथ छुपाए फिरते हो। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये इस्तेमाल करा जाएगा आज, छोड़ूंगा इसको दो तीन जगह जाके छोड़ूंगा। तो नसीम भाई आज भाई खासम खास दिन है, आज तलबा के हवाले से बातचीत हो रही है, तो मदरसों के हवाले से भी, उस्तादों के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, कितने अच्छे शागिर्द थे आप ये बताइए, और आपके उस्ताद कितने अच्छे थे, कुछ मतलब ऐसी यादें आज हम शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट टीचर्स की, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान की, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए फिर बता दीजिए एक बार यार, कोई बात नहीं।
1: मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे।
0: आपके उस्ताद बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह सभी के उस्ताद अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला सभी उस्ताद इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे होंगे, आई रिमेम्बर ओवैस भाई वगैरह एंड ऑल, दो चार टीचर भी हमें सुनते हैं जी।
1: कभी कभी मायूसी के हालत में भी वो हिम्मत हौसला अफजाई करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ो, ऐसा करो, ऐसा कच्चे।
0: क्या बात है यार,
1: क्या उन्हीं का ही देन कि थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुक पढ़ाऊ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे, वो हयात हैं अभी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। और अब ये मैं याद दिला दूं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम शागिर्दों को, कि भाई जब ऐसे कहना चाहिए लाइफ के हिसाब किताब हमारे अच्छे हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, और हम लाइफ के उस मोड़ पे आ जाते हैं, तो हमें माँ बाप और जो भी बड़े हैं उनको पूछने के साथ साथ अपने उस्तादों का भी ख्याल करना चाहिए, कम से कम उनको पूछना चाहिए, उनसे जाके मिलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उनका भी ख्याल करें और उनको पूछें भी, इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है यार, और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं नसीम भाई?
1: नहीं बस इतना ही,
0: आपने सब भुला दिया। क्यों भाई, मैंने क्या भुलवा दिया नसीम भाई? चलिए भारत, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप आए हमारे साथ और कनेक्ट हुए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए इंशाअल्लाह ताला। अभी गेम वगैरह में भी अगर तशरीफ लाएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़े से टाइम बाद। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच नसीम भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई कतर जग जाइए सभी लोग, और आज अपने अपने उस्ताद, और मैं तो कहूंगा भाई उस्ताद भी हमारे साथ कनेक्ट हों अगर वक्त मिलता है, जैसे कि हमारे साथ दो चार कुछ टीचर्स माशाल्लाह हैं जो कनेक्ट होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो आज खासम खास दिन है। आप बच्चों के हवाले से हमें कुछ बता सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: मेरा नाम रियाज है।
0: रोज आवाज बदली हुई है, रियाज रियाज करके आते हैं हमारे साथ, कैसे है रियाज भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। ठीक है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र
2: है। मैंने आपको बोला था ना कि हम उठते नहीं है, हमें उठाया जाता है, तो फिर इसलिए आवाज करी थी। कभी एक दीवार पकड़ के, कभी दूसरा दीवार पकड़ के, कभी दरवाजा,
0: कभी इधर चोट खा के, कभी उधर चोट खा के, इधर टकराया खुली, उधर टकराया खुली। भाई मेरी भी हालत कुछ ऐसी रहती है, फजर से पहले पहले तो ऐसी ही रहती है यार, ऐसी ही रहती है भाई।
2: ये हाँ, नींद पूरी नहीं हो रही है हमारी।
0: नहीं ये खास लोगों के साथ ऐसा होता है भाई, देखिए जो खास लोग होते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है, आप में खास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हम ठोकरे और चोटे खाते फिर रहे, तो ये ऐसी तारीफ कर सकते हैं ना अपनी, अब क्या करें, खामी है तो उसको आदमी छुपाएगा ही। रियाज भाई
2: हमारे हमारे नसीब में यही तारीफ बची है, करिए करिए। और तो कुछ
0: अल्लाह ताला खैर अफियत का मामला करे। तो आज रईस भाई, मौजू आपने सुन लिया आज?
2: रियाज भाई,
0: हाँ रियाज भाई, यार ठीक है यार, थोड़ा सा इधर अलिफ और जेर जबर में क्यों डांट रहे हो यार रियाज भाई?
2: वो

0: तो आप जो नाम ले रहे हैं रईस, वो हम नहीं है ना,
1: वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। तो भाई रियाज भाई, आप किस तरीके के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे, बैंक बेंचर थे, पीछे जाके बैक बेंच पे बैठते थे, या सिर्फ मतलब हाजिरी के लिए ही जाते थे, अटेंडेंस पूरी करने के लिए ही जाते थे, और एग्जाम से पहले
0: भी? नहीं, सरोर भाई, मैं तो टॉपर था।
1: जी हाँ।
0: और मैंने तकरीबन कंटिन्यूस 7-8 ग्रेड तक फर्स्ट पोजीशन किसी को दी नहीं है।
1: अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कहो यार, मैं मतलब खुश हो जाऊंगा यार।
0: नहीं, सच,
1: अरे मैं खुश हो जाऊंगा
0: सच में। आज हाथ धोने का दिन है, उस पे भी एक दो बातें मैं करूंगा।
1: अच्छा, जरूर करिए, जरूर करिए। पहले तो
0: पहले जो मतलब टॉपर, उस टाइम तक जो मैं टॉपर था, तो फिर भी सही था, टॉप 5-6 में मतलब ऊपर नीचे होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचर से भी अच्छे होते हैं, टीचर का तो मुकाम ही अलग है, लेकिन मेरा फेवरेट टीचर जो था वो उर्दू टीचर था, और वो आज भी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे कभी कभी मैसेज या फेसबुक पे होता है, तो वो मैं मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टीचर मैं नहीं बोलता, क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका जो होता था ना, वो हमारे दिमाग में घुसता था।
1: वाह।
0: मतलब वो बात पहुंचाने के लिए उसका एक अलग अंदाज था, तो कुछ याद रह जाती है हमेशा के लिए। तो टीचर माशाल्लाह से मुझे भी अच्छी मिले, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट बेंच और पोजीशन ये मैं हमेशा।
1: यार मतलब किधर है भाई, किधर है? ताली वाले, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खास हम खास, ये लीजिए साहब, ताली तो बनती है, ताली तो बनती है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये तो आपने आज क्या बात इरफान वाला कर दिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या
0: क्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या शेर सुनाया।
1: नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के यार, और मुझे खैर उम्मीद भी है ऐसी ही कि माशाल्लाह तमाम हमारे जो
0: आपके आपके शो की खासियत यही है कि पिछले 2-3 दिन से हम अपने माजी में जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी यादें, मतलब याद
1: अच्छी
0: करें ताकि खुश हो जाए।
1: बिल्कुल सही है, यही हम मेरी कोशिश भी रहती है, और आज में तो हम सभी जी रहे हैं, कल की फिक्र करना और कल जो हो गया है उसको याद करके आज को बेहतर बनाना, इसकी कोशिश हम सब करनी चाहिए। रियाज भाई, तो हाथ धोने के हवाले से भी कुछ आप कह रहे थे, हाथ तो आप धो बैठे हैं खैर काफी चीजों से।
0: नहीं, वो मुझे एक बात याद आ गई, मैं एक दिन किसी ने मुझे दावत दी थी, तो मैं उस दिन हाथ धो लिया था, अभी तक वो हाथ धोता नहीं, दावत आ गई।
1: वाह, रियाज साहब क्या शेर सुनाया आपने, मजा आ गया। मुकर्रर
0: आपका शो, आपका शो मतलब माशाल्लाह पूरा कतर हर कोई सुनता है, तो अगर वो दावत वाला कहीं सुन रहा है तो उससे मेरी इल्तिजा है कि मेरे हाथ मतलब फिर सूख जाते हैं, फिर मैं धो देता हूँ, तो थोड़ा दावत दे।
1: अरे दावत के लिए हाथ धोने की, दावत से आप हाथ धो बैठे हैं ऑलरेडी, अब क्या मिलेगी दावत, अब तो आप हाथ धो बैठे। आपको मालूम है ना, मुहावरा भी है, एक सेइंग भी है कि मां हाँ हाथ हाथ धो तो वो दावत से हाथ धो बैठे हैं आप ऑलरेडी, अब वो निकल चुकी है,
0: तो फिर भी मुश्किल नहीं है, मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा।
1: अच्छा था यार ये अच्छा था भाई। टॉपर रियाज साहब, आज आपका एक दूसरा रूप जो मैंने सुना है उसके बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन जानिए आप माशाल्लाह से टॉपर रहे और अच्छे बच्चे रहे, और ऐसा नहीं है जो टॉपर नहीं है, मेरे जैसे जो पीछे वाली सीट पे बैठते हैं जाके वो अच्छे नहीं होते, मैं भी बहुत अच्छा हूँ आपको बता दूं, और तमाम वो लोग जो
0: नहीं,
1: क्या मतलब है,
0: सुबह
1: खुश रखे और कामयाब करे आपको भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू
0: सर, शुक्रिया,
1: वाहियाकुम वाहियाकुम भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Right then, सुबह हो रही है और सुबह खूबसूरत होती जा रही है कतर, तमाम जो लिसनर्स हैं हमारे साथ उनको मैं बता दूं आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज खासम खास दिन भी है, उसी के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे अच्छे दिन हैं, मगर जो एक

0: मजे के है, वो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है, है कपड़े धोने का दिन भी है, तो हाथ भी साफ करने का दिन है, और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी है आज जो हम मना रहे हैं, और उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए कि आप कितने अच्छे टॉपर थे या कितने अच्छे बैक सीट से टॉपर थे, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। मदरसे की भी कहानियां आप सुना सकते हैं, अपने किस्से कहानियां, हंसी मजाक, आज जुमेरात भी है भाई, यौमुल खमीस, इसको खूबसूरत भी बनाते चले जाएंगे। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, नंबर है हमारा 4434377, और आप मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 666-22-107। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, स्वागत नहीं करोगे हमारा?
0: सवाल नूर, सवाल खैर, स्वैग से करेंगे सर, आपका स्वागत। क्या बात कर दी, अभी गाना भी चलाऊंगा देखिए आपके लिए थोड़ी सी देर में। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मेरे प्यारे सरवर भाई, सरवर भाई से आवाज सुन के तो सरवर
0: ले आओ भाई, चाय ले आओ, दो चाय लाओ भाई।
1: शुक्र है कि चाय मिल गई, बिरयानी का नहीं पूछा आपने।
0: जावेद भाई कैसे हैं और कैसी हुई सुबह आज की? इंशाल्लाह खैर होगी सब, उम्मीद करता हूँ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, आवाज अभी भी थोड़ी उद्दत नारायण वाली है मेरी।
0: इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह।
1: हाँ इंशाल्लाह ताला। और मैंने आपको अपने एक दो चार तस्वीरें
0: मैंने देखी और मुझे बड़ी जलन भी हुई, हसद भी हुई, चिड़न भी हुई। हाँ खुश मैं हुआ, मगर ये जो मैंने दूसरी चीजें बताई ये मुझे ज्यादा हुई कि मैं क्यों नहीं था वहां और मैं कब जाऊंगा वहां इंशाल्लाह ताला। तो देखिए मुझे ऐसा भी हुआ, बट आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ भाई, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। और उसमें पता चलता है कि आपने कितना अच्छा वक्त गुजारा माशाल्लाह से फैमिली के साथ।
1: अल्लाह पाक हम दुआ करते हैं कि ऐसा मौका हो, ऐसी सोच आए कि हम एक दूसरे की जगह पे जाएं, एरिया में जाएं, मिलके घूमें।
0: वाह वाह,
1: दुआ करते हैं।
0: वाह वाह वाह, बाकी अल्लाह ताला। आज ये भी खास दिन है एक्चुअली, आज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे भी है, इख्तलाफात को अमन और समझदारी से हल करने का अहमियत को उजागर करने का दिन भी है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कतर तो इसमें पेश रहता है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल अल्लाह ताला, जैसे कि आपने भी दुआ करी कि ऐसे हालात हो जाएं कि हम सब एक दूसरे की जगहों पे, बहुत बहुत प्यारी बात कही यार, बहुत प्यारी बात कही भाई, वाकई मजा आ गया साहब, एक दूसरे की जगहों पे जा सकें, मिल सकें, देख सकें, घूम सकें, उन जगहों को सराह सकें जिनकी हम हमेशा उम्मीद और ख्वाहिश करते हैं, इंशाल्लाह आमीन। बहुत अच्छी बात और बड़ी अच्छी दुआ दे दी आपने तो यार, ये वाह वाह वाह वाह। और सर,
1: और उसके हवाले से दूसरे जो माशाल्लाह मौजू, अभी मैंने रेडियो ऑन किया और कल परसों से हमारे पास एक टॉपिक चल रहा था उस्ताद मोहतरम के हवाले से।
0: ओके,
1: इतना खूबसूरत मौजू है ये। और रही बात के हम क्लास में, खैर पीछे ही बैठा करते थे लेकिन बड़े नालायक स्टूडेंट थे हम। तो डेफिनेटली अगर अपने आप को लायक कहेंगे तो फिर 50 मैसेज आएंगे मुझे भी। लो
0: यार, नहीं मैं, मुझे ये हंसी खुशी क्यों हुई आप बताइए, एक आदमी क्यों खुश हो सकता है, अपने भाई की बात सुन के खुश हो सकता है ना, कि ये भी मेरे जैसा कोयला कोयले से कहे तू कितना काला। अल्लाह ताला खुश रखे भाई आपको। नहीं वाकई ये, जब भी देखिए बहाने हमें ढूंढने चाहिए एक दूसरे को खुश करने के, एक दूसरे को सराहने के, बताने के एक दूसरे के बारे में, तो बहरहाल ये खासम खास दिन जब भी होते हैं तो हमें उन लोगों को सराहना चाहिए, बात तो हकीकत है। सही
1: भाई, मुस्कुराहट भी सदका जारिया के जमरे में आती है।
0: सही, बिल्कुल सही,
1: वरना रुलाने के लिए तो पूरा जमाना बैठा हुआ है, हंसाने वाला कोई
0: क्या होता बात है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया।
1: तो रही छोटी सी बात यह है कि बड़ा अच्छा मौजू, अब हमारे एक उस्ताद मोहतरम मेरे साथ, मेरे कोलीग इजाज साहब बैठे हुए हैं, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे।
0: इजाज साहब,
1: तो मैं उनको भी सलाम पेश करें, मेरे साथ ही बैठे।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़ भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दुआओं में हमें भी याद रखिए भाई।
1: तो सर वो बात ये हो कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम की जो 76 एज,
0: भाई माजरत के साथ, क्या आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड की इजाजत देंगे, मुझे इशारा हुआ है, एक जरूरी 30 सेकंड बस मुझे ब्रेक लेना, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं गुजारिश करूंगा। ऑल राइट, तो बस एक 30 सेकंड के लिए मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है।
2: किरायेदार नहीं मालिक बनिए, इज़दान रियल एस्टेट अपने बेहतरीन रिहायशी कम्प्लेक्सेस में आपको दे रहा है अपना घर लेने का मौका। फर्निश्ड अपार्टमेंट और विलास, फौरी कब्जे और मिल्कियती कागजात के साथ قیمتیں 8,25,000 ریال سے شروع تعداد محدود ہے اس لیے ابھی رابطہ کیجیے 4040-3060
0: بالکل صحیح بھائی آپ نے سنا اس وقت کہ کس طریقے سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کچھ اس وقت ہمارے ساتھ جاری پروگرام اور میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں جی بھائی السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اجازت دی
1: سر میں میری کیا ہمت ہے میری کیا مجال ہے
0: نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ محبت ہے آپ کی جی تو آپ کے ساتھ اس وقت اعجاز صاحب موجود ہیں آپ کے دوست ہیں کلیگ ہیں
1: میرے سینئر بھی ہیں میرے کولیگ بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے ہمدم بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں
0: واہ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور آپ لوگوں کی محبت ایسی قائم دائم رہے تو آپ اپنے استاد کا کوئی ایک قصہ غالباً بتانے والے تھے
1: قصہ نہیں میں مطلب ہے کہ ہمارے نا استاد میں میری جب واپسی ہوئی نا تو ہم نے جب 86 میں چھوٹی سی بات کروں گا 86 میں جب ہم نے کالج چھوڑا
0: جی
1: تو ڈیفینیٹلی 40 سال پہلے جب استادوں کو بھی ہم نے الوداع کہا تو ان کے ساتھ ہم رابطے میں آج تک ہیں
0: ماشاءاللہ
1: استاد روحانی باپ ہے استاد روحانی باپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں میرے تمام جو دوست جو یہاں پر ہیں یا وہ پاکستان میں ان کی طبیعت ایک دم بڑی ناساز ہوئی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے کل ہے سب دعا کریں ان کے لیے
0: اچھا کل ہی ہے اوکے اوکے اوکے
1: ہاں اور ان کے لیے جو آپ کو پتا ہے کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس کتنے ایکسپینسیو ہیں ہمارے ملکوں میں بہت ایکسپینسیو
0: بالکل صحیح
1: تو انہوں نے جب استاد محترم نے کہا کہ یار اس طرح ہے تو تمام دوستوں نے ود ان ون ڈے جتنی بھی وہ خرچہ ان کا اٹھایا اور ماشاءاللہ ان کو بھیجا کل
0: واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی
1: آج صبح آج صبح جب میں نے اپنا موبائل واٹس ایپ کھولا اور اتنی اجاز بھائی سے یہی ذکر کرا تھا اتنی انہوں نے دعائیں دی ہیں ہمیں
0: واہ
1: وہ دعائیں نہیں وہ ہم نے کمائی کی
0: وہی کمائی ہے وہی کمائی ہے وہی کمائی ہے اور یہ چیز درشاتی ہے کہ واقعی آپ کتنے اچھے اسٹوڈنٹ اور شاگرد رہے ہیں بھائی واہ واہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی بنائے ہم سب کے دلوں میں اتنی گنجائش پیدا کرے اور انہی طریقے کی چیزوں سے ہم ایک دوسرے کو سکھائیں بھی اور سیکھیں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے
1: اور میرے ایک اور استاد محترم میں ان کا نام بھی لینا چاہتا ہوں بڑے مہذب اور بڑے اچھے ہاں مطلب تھوڑا اگر ڈائٹ کریں تو بڑے پیارے ہو سکتے ہیں ان کا نام ہے سرور مرزا
0: میں تو بھائی بہت سکون سے بیٹھا ہوا سن رہا تھا میں نے کہا یار یہ ڈائٹ کے حال
1: ہے
0: استاد کی ڈائٹ سے کیا مطلب ہے یار چلیے صاحب بہت بڑھیا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ
1: تھینک
0: یو سو مچ اللہ حافظ صباح النور صباح الخیر صباح الفل اینڈ ٹوڈے از یوم الخمیس تھرسڈے ہے بھائی ویکینڈ کی وائبز جو ہیں ان کو اور بھی زیادہ ہائی کرنے کے لیے سرور مرزا حاضر خدمت ہے آپ کے ساتھ نمبر ہمارے وہی ہیں خیالات ہمارے وہی ہیں تھاٹ ہمارے وہی ہیں بس بات چیت مختلف ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رکھے تو کیا بولتی پبلک ایک اور کال چلیے لیتے ہیں یار بالکل ابھی اپنے پاس تو ماشاء اللہ دن بڑا ہوا ہے پورا ہیلو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سرور بھائی کیسے ہو اس بات
0: ارے استاد میں بالکل ٹھیک ہوں سر میں تو آپ کو سر ہی کہوں گا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں کیونکہ سر آج آپ کے اسٹوڈنٹس کا دن ہے خاصم خاص دن ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا آج ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے اور اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اویس بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آج یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اس وقت آپ اسکول کی طرف ہی نکل رہے ہوں گے اور میرے خیال میں پہنچ بھی گئے ہیں ابھی راستے میں ہی ہیں
1: تھوڑا سا لیٹ
0: چلیے نہیں تو آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے استادوں کو آج کوئی مسئلہ ہی نہیں کرنا چاہیے آج تو اسٹوڈنٹس کو خوب چھوٹ دینی چاہیے آرام سے بیٹھو میں دیر میں آؤں گا تو سر کیا کہنا چاہتے ہیں آج خاص اور خاص دن کے حوالے سے
1: بات اسکالرلی ہو جائے گی لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ہر میں خود شاگرد مطلب ایک مطلب ہم کہتے ہیں مڈ اچیور تھا اور ایک ایک پوائنٹ جو سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے ٹیچرس کے لیے بچوں کے لیے کہ ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں ویگوتسکی ایک اسکالر تھے انہوں نے ایک سرکل آف कंट्रोल की थियरी दी थी कि तीन सर्कल होते हैं.
0: ओके,
1: तो हम सबको एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, टीचर्स, एनी कैपेसिटी वी आर इन, तो ये तीन सर्कल पता होना चाहिए ऑफ कंट्रोल. एक इनर सर्कल होता है जिसमें वो कहता है कि आप हर चीज आपके कंट्रोल में जो है वो इनर सर्कल में आती है.
0: ऑलराइट.
1: फिर है सेकंड सर्कल, उसमें इंसान जो है उसको असिस्टेंस चाहिए होती है, मेंटोरशिप चाहिए होती है और लोगों से मतलब हेल्प चाहिए होती है.
0: Okay.
1: और एक आउटर सर्कल है. तीसरा आखिरी सर्कल जो है वो दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल. जैसे सुनामी आ गया है, बारिश आ गई, या मोहल्ले वाले आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. तो ये तीन कंट्रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है उस. तो ये इसकी बुनियाद पर जो है ना सारी बातें, जैसे उस दिन फेलियर और उसकी, तो ये तीन सर्कल अगर हम समझ लें एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी.
0: वाह,
1: तो बस ये मैंने बात करनी थी.
0: अरे अरे अरे अरे नहीं, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही भाई. जो इनर सर्कल है वो, फिर जो सेकंड क्या है, आउटर सर्कल, दोनों ही हुए मेरे साथ. अच्छा, सेकंड इनर सर्कल, सेकंड सर्कल एंड देन आउटर सर्कल. ओके ओके.
1: इनर सर्कल ये है कि फ्रीडम है आपके पास हर चीज,
0: राइट,
1: जो आपके, और वो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी है.
0: सही,
1: जिसमें आपके सही. पास इख्तियार है, पॉजिटिव इख्तियार
0: है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
1: और सेकंड सर्कल ये है कि जैसे आप हमारे उस्ताद हैं सरवर मिर्जा साहब, आप हमें असिस्ट करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए. और आखिरी जो सर्कल है वो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. कुछ भी हो रहा है, जैसे सक्सेस और फेलियर है, आप फेल हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यूर गिविंग योर 100%, ठीक है, तो उसमें वो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल.
0: बिल्कुल,
1: आपका कंट्रोल ये टू थिंग्स.
0: सर कमाल कर दिया सर, आपके लिए खासम खास गीता. तालियां सर. माशाल्लाह, टीचर्स तो पढ़ते ही रहते हैं सर, वो मुझे पता है. और ये जर्नी आपकी कंटिन्यू रहे, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे और इससे तमाम दुनिया जो है वो फायदा उठा सके, मेरी दुआ है आज कासम खास दिन. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जहमत करी कि हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला. आज अगर आप नहीं जुड़ते तो अधूरा रहता ये टॉपिक और ये दिन भी लेट. बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई, ख्याल रखिए अपना. थैंक यू सो मच. अहलन वसहलन. क्या बात है यार, क्या बात है. वेकअप करते हुए यहाँ पर सब एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें करते हुए, अच्छे अच्छे नोट्स एक दूसरे तक पहुंचाते हुए. और देखा आपने किस तरीके से कि उवैस सर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये तीन सर्कल अगर आप अपनी जिंदगी में रख लेंगे और इनको जहन में रखेंगे, इनर सर्कल एंड क्या था दूसरा, देखो इतना अच्छा स्टूडेंट हूं मैं, मतलब वो बीच वाला जो था वो, और आउटर सर्कल. क्या बात है यार, क्या बात है सर, क्या बात है. इरफान आज मुझे सुबह से याद आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत फरमाए. तो भाई क्या कहते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए. आप लोग की कॉल भी है, मैसेजेस भी हैं, छोटा सा चुन्नू सा एक ब्रेक लेते हैं. किधर गया ये, बस ब्रेक में लेके और वापस आया. आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, कहीं भी मत जाइए. आज थर्सडे है भाई, खासम खास दिन है, तो इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने वाले हम लोग. सुनते रहिए FM 107.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
4: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है. ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है. तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है. आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे. अब हम हिदायत की दुआ की तरफ रुख करते हैं. वो हिदायत जो इंसान के दिल को संवार दे, जबान को पाक कर दे, किरदार को रोशन करे, घर को सुकून दे और रिश्तों में मोहब्बत भर दे. अल्लाह जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता. यानी असल रहनुमाई किताबों, अकलों या तजुर्बे से मुकम्मल नहीं होती, असल हिदायत तो अल्लाह की अता है, जिसे अल्लाह रास्ता दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बंदा हमेशा अल्लाह का मोहताज है, उसे हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें अपने हाल पर न छोड़ना। अब या अल्लाह, हम इस बात की गवाही तो देते हैं कि जिसे तू हिदायत दे वही सच्चा हिदायत याफ्ता है, और जिसे तू छोड़ दे उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। जे अल्लाह, अब तो हमें अपनी हिदायत की तरफ चला दे, सही फैसला, सही नीयत, सही रास्ता, सही अंजाम तक

0: आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिला और आज तक उसमें आप कामयाब हैं। हमने देखा किस तरीके से कुछ एक उवैस साहब जो टीचर हैं वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हम इस्तेमाल कर सकते हैं भले ही हम किसी भी एज पे चले जाएं, डजेंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद आप लोगों की कॉल भी लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, मैसेज पे भी फोकस किया करें। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है सर, मैं बिल्कुल करता हूं और कोशिश रहती है कि तमाम मैसेजेस मैं कॉल रोक तक के आप लोगों के मैसेज लेता हूं। सर कॉल से काम नहीं चलेगा, हमारा भी हक है। नौशाद अहमद कासमी। अरे नौशाद भाई बिल्कुल आपका पूरा हक है और देखिए आपका मैसेज शेयर किया। सबहल नूर, सबहल खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सरवर अंकल, हाउ आर यू? माय एग्जाम वेंट वेल, टुडे इज माय इंग्लिश एग्जाम एंड हैप्पी वीकेंड। अलीना, अलीना इंशाल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, मेरी दुआ है हमेशा के लिए। और तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लाने वाली हैं, आप अभी से ही जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ पहले से। और इंशाल्लाह आगे भी जो आपकी तालीम होगी, आगे भी जो आप पढ़ाई करेंगी उसमें भी आप कामयाब होती चली जाएंगी इंशाल्लाह, ये मेरी दुआ भी है। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अम्मा अब्बा को बहुत सुकून पहुंचाना है जिस तरह से अम्मा अब्बा अभी आपका ख्याल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके आपने उनका ख्याल करना है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया हमें मैसेज करने के लिए। तौफीक भाई हमारे साथ, सरूर भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक अलवकरा से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौफीक भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। 1 in 5 पीपल डोंट वॉश देयर हैंड्स, डोंट मेक इट वियर्ड, वॉश योर हैंड्स। अच्छा क्या बात है यार। मामा आसिम हमारे साथ, अब मामा मामा जम रहे हैं, मामा फोटो में क्या जम रहे हैं मामा। मामा कहाँ से? अपन हैदराबाद से मामा, तेलंगाना से अपन। आई एम आसिम कहते हैं, बड़ी अच्छी फोटो लगाई हुई, बड़ी लंबी लंबी जुल्फे हैं आसिम भाई की। और बड़ा अच्छा मैसेज भी भाई, ये भी याद दिलाते रहे हम, इस वक्त बच्चे शायद हमारे साथ कनेक्ट होते रहते हैं। तो भाई आज हाथ धोने का खासम खास दिन है, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है। बच्चों हाथ धोना है हर बार, हर वक्त, कोई भी काम करके, ठीक है? कोई भी काम करके हाथ जरूर धोना है, खाने से पहले धोना है, खाने के बाद धोना है, वॉशरूम में जाने से पहले धो लेना है और वॉशरूम से निकलने से पहले भी हाथ धोना है, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी है जब आप खेल के आते हैं, जब भी आपने हाथ धोना है, ओके? और भी जब जब आपको याद रहे हाथ ज़रूर साफ़ करा करें, ठीक है? अब उसमें सताना मत शुरू कर दिएगा अम्मा अब्बा को, पता चला हाथ धोने के बहाने से वो बनाते हैं ना हाथ धो के बलून्स बनते हैं, बलून्स वो साबुन से जो है बच्चे बैलून बना बना के उड़ाते हैं यार। मैंने खुद देखा भाई, मेरे घर में ऐसे ही चल रहा है, आधे से ज्यादा हैंड वॉश जो है वो खत्म हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता दो दिन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अरे अल्लाह सबर दे मुझे, हेलो कहते हैं। और हिंदुस्तान का एच जो है वो बना हुआ है इनके फ़ोटो में और उसके अंदर जो रंगत है हमारे तिरंगे की है। तो बहरहाल ये चीज़ देख के मैं खुश हो गया। कौन साहब हैं ये नहीं बताया, नाम भी नहीं है, या हेलो लिखते हैं। कबीर भाई नहीं है, कबीर भाई को मैंने सुला दिया लंबा, कबीर भाई सोता है अभी, मैं बोलता है, मैं सरवर हूँ भाई, मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाई, मेरा नाम सरवर मिर्ज़ा है और मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। कबीर को आप याद करें, मेरे साथ जुड़ें, वो जुड़े हुए ही हैं हमसे हर वक्त, हम भी याद करते हैं उनको। माई 5 year डॉटर वॉन्ट्स टू टॉक ऑन द टॉपिक प्लीज़। ओके वाई नॉट, अब बात ऐसी हो गई कि बच्ची को स्कूल जाना, तो भाई सारी कॉलें हटा के पहले हम करेंगे इनसे बात। अरे भाई एक सेकंड बस, ये वाली कॉल लगा लेने दीजिए। ओके ओके, हम यहाँ पर खुर्रम भाई की जो बेटी हैं उनसे कनेक्ट होने 5 years। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इज इट खुर्रम भाई?
1: जी सरवर भाई कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका मैसेज देखा तो मुझसे रुका नहीं गया। और क्या नाम है जो साहिबा हमसे बात करनी चाहती हैं, बड़ी साहिबा जो है?
1: मेरी बेटी का नाम ज़ैनब है, बट वो उसको मैं जस्ट अभी अभी ड्रॉप करके आया
0: हूं। ओह नो यार, आई मिस्ड इट, सॉरी मैन,
1: थोड़ा सा लेट हो गए।
0: ओह यस, ओ हो हो यार, ये तो हाय हाय हाय। चलिए भारी आप हमारे
1: यही कहेंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
0: हाँ नहीं यार, बहाने तो हमारे पास रहेंगे बात करने के, बट इतना प्यारा नाम है, उतनी ही प्यारी ज़ैनब होगी भी इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला उसकी नसीब अच्छे करे, उसको खुश रखे। ज़ैनब को बता ज़रूर दीजिएगा ताकि आज उसका वीकेंड जो है वो ख़राब ना हो कि सर्वर ने कॉल किया था। और इंशाल्लाह ताला कल तो नहीं कहने वाला था, अभी खुद फंस जाता है कह के कल बात

0: संडे में कोशिश करिएगा कि हम उससे कनेक्ट कर सके इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि बच्ची का दिल
1: दिल
0: हम right.
1: आपका जो एक आज
0: बहुत सारी है, आज ग्लोबल हैंड वॉश डे भी है, आज कपड़े धोने का दिन भी है, आज इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन भी है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, इंटरनेशनल क्रेडिट यूनियन डे है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे है, तो आज इख्तलाफात भी कम करने का दिन है, खत्म करने का दिन है, कम नहीं खत्म करने का दिन है भाई खुर्रम भाई। तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी
1: हाँ जी, मैं अपना एक छोटा सा कमेंट इसमें डालना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: जैसे अभी एक टीचर साहब से बात हो रही थी, उस्ताद मोहतरम से, उन्होंने बड़ी एक अच्छी वैल्यू एडिशन की प्रोग्राम में।
0: सही।
1: तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की एक बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ की नहीं।
0: जी जी।
1: उसमें ये था कि मैं जॉब करता था और मेरे जैसे जो दूसरे मेरे कोलीग्स थे वो थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड में थे कि कंपनी हमें हमारे राइटफुल पेमेंट्स नहीं दे रही, बाकी कंपैरेटिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मुकाबले हमारी सैलरीज कम है, रिम्यूनरेशन कम है, तो वो थोड़ा सा ऑफ मूड में रहते थे अक्सर। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे आके कहा था कि भाई देखो, अगर कंपनी आपको लगता है कि आपका अच्छी पेमेंट्स नहीं दे रही और आप इससे ज्यादा वर्थ हैं बट आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो इस चीज को लेके अपनी एफर्ट्स को कम मत कर देना।
0: वाह।
1: क्योंकि जब आप इसको बेस बना के आप स्लो डाउन हो जाएंगे और ये एक लंबे अरसे तक इस मोड में रहेंगे तो अपने आप को आप जैसे कैमोफ्लाज कर दोगे, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करोगे।
0: बिल्कुल, आप वाह खुर्रम भाई, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने।
1: नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जिस वक्त, क्योंकि जिंदगी में मौके मिलते हैं,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
1: तो जब आपको नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा उस वक्त फिर आप अपने प्रीवियस मोड से बाहर ही नहीं आ सकोगे।
0: अच्छा, इसमें मैं आपको रोकूंगा बीच में और ऐड कर दूं कि आपने जो बात बताई ना कि अल्लाह ताला आपको मौके देता है, तो ये जो मौका इस वक्त है आपके पास, ये भी टेस्ट हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह आपको हर वक्त ही देख रहे होते हैं और देखते हैं कि वाकई आप अपना जो आउटपुट है वो 100% दे रहे हैं, जो भी अल्लाह ने आपको दिया उसमें आप खुश हैं, तो उसी हिसाब से फिर इंशाल्लाह ताला बरकत और आगे भी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है। बहुत अच्छी बात शेयर करी खुर्रम भाई आपने यार। तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़ैनब बाजी को हमारी तरफ से जरूर पूछिएगा और इंशाल्लाह संडे में कोशिश करेंगे कि हम उनसे कनेक्ट हो सके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो भाई एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक यहाँ पर यूं गया और यूं वापस आया, आपकी कॉल आते ही उठाता हूँ, जो जनाब अभी मुझे कॉल कर रहे हैं, दोनों ही लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, बस यूं गया और यूं वापस आया। सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 Time Check.
1: टाइम चेक 7:05 और इस वक्त सुन रहे हैं आप
0: सुन रहे हैं

वर्दा आपके साथ और आपको जगाता हुआ इस वक्त। आज वीकेंड और उसी के हिसाब से आज खासम खास दिन भी, उस पर हम कर रहे हैं बातचीत। यहाँ पर एक मैसेज और उसके बाद हम कॉल की जानिब बन रहे हैं। एग्जामिनेशन

0: Games for Children have started since yesterday in all government schools. Two of my children, Ahmed or Faiza, are taking their exams. So may Allah grant success to my children and all the other children. And may Allah reward all the teachers with the best rewards. Bilkul theek hai, ameen ya rabbul alameen. Abu Ahmed, yaar thodi bahut dua hame bhi de dete to kaam chal jata hamara bhi. Yahan par ek caller hamare saath bahut der se intezar kar rahe hain. Hello, assalam alaikum. सबाह अल नूर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ मेरे भाई, कौन है हमारे साथ?
1: पहचाना साहब, डेली सुबह फोन करने वाला, खैर भोजन
0: आसिफ भाई, आसिफ भाई
1: इल्ले
0: एक तो आसिफ, अरे कुलडूस नहीं सर बिल्कुल यार, मैं
1: फोन आता एक हमारे एक दूर के साथी है, उनसे भी ऐसी गुफ्तगू में होते होते थे, ऐसा था हम लोग की बातचीत हुई, ऐसा मैं बात करता हूँ ये बोल के, तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे को ऐसा फोन आता है, वो ये होता है, क्या बात कर रहा भाई? हाँ वो ये बोल के बोला, माना खामोश दिल पे पत्थर रख लिया, मतलब चलो भाई सहने वालों को।
0: अरे नहीं नहीं नहीं भाई, ऐसी बात कौन थे? अच्छा वो बताइए जिनका जिनका जिक्र किया, नाम तो बताइए।
1: मेरे ख्याल से खलील, खलील को फोन कर रहे थे, पाकिस्तानी है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, खलील भाई को भी सलाम और आपको भी सलाम। ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो जब मौका मिलता है और जब जो कोई कहता है कोशिश पूरी होती है। एक्चुअली होता ये है कि हमारी जो टेलीफोन है ना, इसमें दो लाइन है और दोनों लाइन पे माशाल्लाह से।
1: अच्छा, दो लाइन ऐसे है। हाँ
0: आपकी
1: लाइन है जो मतलब जिसको करने की है वो लाइन अलग है, जिसको नहीं करने की वो लाइन अलग है।
0: नहीं ऐसा नहीं है, दोनों लाइन है हमारे पास। एक हम कॉल रिसीव एक ही लाइन से कर सकते हैं, बट हमें दिख जाता है ताकि हम जल्दी जल्दी अगर कोई कॉलर हमारे साथ है तो और हम उनसे तेज बात करें ताकि दूसरा कॉलर भी वेटिंग में है, हमें ये दिख जाए, इसलिए वो चीज है पहली बात। और जब दोनों पे आप लोग की मोहब्बतें इतनी होती है माशाल्लाह, दोनों पे ही वो फुल रहती है ज्यादातर, तो दोनों पे फुल रहती है, तो फिर
1: कुछ कमी दिख रही भाई हमारे पास,
0: हम आउट। अरे नहीं नहीं यार, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने प्यार से मोहब्बत से सुन नहीं रहे आप मेरी बात, मेरी बात सुनिए पहले। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो दोनों लाइन बिजी होती हैं तो हम आउटगोइंग नहीं कर सकते, ये है मामला, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ही वो लाइन फारिग होती है तो हम कॉल मिला लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिए आपका भाई आपको करेगा जरूर कॉल, ऐसी बात नहीं है, जब भी लाइन फारिग दिखी तो जरूर कनेक्ट कर।
1: रेडियो सुन सकते थे, फिर लोग हमारे पास गाड़ी चेंज हो गई, मेरे है ट्रैफिक कार्ड पर उतना सही नहीं है समझो टेप।
0: अरे तो फिर अब
1: हम नहीं सुन रहे, खाली डायरेक्ट कॉल कर मैं। अरे फैरिफ, अब ऐसा हुआ कि काफी टाइम के बाद जल्दी नहीं लगा आपका कॉल मेरे को, मैं जब से कॉल लगा रहा हूँ रिसीव नहीं हो रहा था।
0: हाँ वो इसलिए क्योंकि जब हम मैसेज पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त कॉल कनेक्ट नहीं करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि पैसे लगते रहें और कॉल कनेक्टेड रहे। ये अगर परेशानी है कि आप गाड़ी में हमें नहीं सुन पा रहे हैं तो उसका एक बहुत आसान सा रास्ता है, वो भी मैं बता देता हूँ। हमारा
1: बता दो ना सर।
0: अरे सर बिल्कुल हाजिर खिदमत आप लोगों के लिए हर वक्त, वेब एड्रेस है हमारा, ओके उस पर जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सुनने में परेशानी वाली बात लग रही होगी, बिल्कुल नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है, गूगल पे जाना है, उसमें लिखना है उर्दू रेडियो, ठीक है? उर्दू रेडियो जैसे ही आप लिखेंगे सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां सामने प्ले का बटन आ रहा है, ये हमारे स्टेशन की FM 107 की वेबसाइट है, इसके अंदर आपको तमाम मालूमात जो प्लेटफॉर्म जो FM 107 की है वो आपको पता चल जाती है, कौन सा RJ किस वक्त कौन सा प्रोग्राम कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम किस वक्त जा रहा है,
1: नाम आता है उनका, आपका भी नाम आता
0: है, सबके सबके नाम से आते हैं। एंड आपको
1: कबीर भाई उनका,
0: जी जी जी बिल्कुल आता है, सबका नाम आता है और आप सबको देख सकते हैं वहां पर, सारे प्रोग्राम देख सकते हैं आप, और जो पुराने प्रोग्राम आपके मिस हो गए हैं वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। हर प्रोग्राम के नीचे आपको कुछ लिंक्स दिखेंगे, तो अगर आप उसको कनेक्ट कर क्लिक करेंगे तो आपको वो पुराने प्रोग्राम्स जो हैं वो भी पता चल जाते हैं। तो ये सब आपके आपके लिए ही है, आपकी खिदमत में हाजिर है हर वक्त, तो आप हमेशा मोबाइल के जरिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। अब ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ लोग कनाडा से भी कनेक्ट होते हैं, गल्फ से तो होते ही माशाल्लाह, बहरीन से, ओमान से, सऊदी अरब से, अल्लाह का शुक्र है दुबई से तक लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: हमारे सर भाई

0: जब आप हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं रमजान तक जाऊंगा बोल के हूँ, वहां से आपसे इंडिया जाने वाला हूँ मुल्क, तो आप वहां से कैसा कनेक्ट करना आपसे?
1: सेम सेम, ये मोबाइल आपका तो आपके साथ ही होगा ना, आपने कुछ भी नहीं करना, जब आप वहाँ वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो आप हमसे भी कनेक्ट हो जाए।
0: कंट्री कोड वगैरह
1: कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, वो तो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन सर्विस है। और इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप भी है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, QMC Now करके, QMC Now, हाँ QMC Now, ये आप जब डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको तमाम इदारे कतर मीडिया कॉरपोरेशन के दिखते हैं, जो भी रेडियो सर्विसेज हैं, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, सारी की सारी, और अरबिक, ओके, उसमें आपको उर्दू का कॉलम भी दिखता है, आप उर्दू में क्लिक करते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक मोबाइल ऐप अलग है, मगर इससे भी ज़्यादा आसान, इसलिए मैंने आपको बताया, कभी मोबाइल में जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, ऐप नहीं डाउनलोड कर पा रहे, जबकि ज़रूर कीजिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। बट उसके अलावा आप हमसे ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं 24/7, 24 घंटे सातों दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कनेक्ट होने के लिए, और अच्छा हुआ कि आपसे बात हुई, ताकि जो भी मालूमात मैंने दी है वो तमाम लोग जिनको नहीं पता है उन तक भी पहुंच गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।
0: अच्छा, और सरोवर भाई, अब वहाँ पर आप तो रेडियो सुनने के लिए वो वेबसाइट छोड़ के सर वहाँ के FM का कुछ नंबर,
1: मैं समझा नहीं, फिर बताइए।
0: मैं रहूँ जैसे अपने अपने इंडिया में है, तो इंडिया तो छोड़ो, हमारे मैं हैदराबाद का हूँ ना, हैदराबाद में तो ज्यादा तौर पे 92.7 ऐसा चलता वहाँ पर, तो आपका क्या नंबर है इंडिया में ये चैनल सुनने के लिए?
1: नहीं नहीं नहीं, हमें इंडिया में आप किसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट के जरिए से हमसे कनेक्ट,
0: इंटरनेट होगा वो समझ गया,
1: हाँ नहीं, वैसे आप किसी फ्रीक्वेंसी के जरिए आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आई डोंट थिंक सो,
0: ऐसा पूछ रहा
1: हूं। जी जी जी, वो मुमकिन ही नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गेम होगा इंशाल्लाह, गेम होगा 8 बजे के बाद इंशाल्लाह, 8:15-8:30 से रखेंगे, जरूर आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है।
0: अच्छा, ये गेम कब तक चलेगा ये बोलो, आखिरी टाइमिंग क्या टाइमिंग रहेगी?
1: 9:50 तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग न्यूज भी होती है ना, तो उनके लिए मुझे जरा जगह छोड़ देनी होती है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए, बड़े ही प्यारे हैं आप, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, ओके, अल्लाह हाफिज़।
0: नाम बोल देना नाम बोल देना
1: सैयद भाई,
0: नहीं
1: है?
0: मेरा नाम
1: है,
0: मेरा नाम बोलो
1: यार, एक बार आप बोलिए फिर मैं रिपीट करूंगा, कुरलुस।
0: अरे वो तो बोलते हैं जाने से पहले, मेरा असली नाम, रियल नाम बोलो
1: यार, वो तो मुझे याद ही नहीं रहता ना।
0: ड्यूटी की तरह आपको फोन कर रहा हूँ, ड्यूटी की तरह।
1: अरे मेरा भाई, एजाज भाई,
0: आप ही देख लिए सुबह में कंपल्सरी, आप नोटिस कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे होंगे, मेरे से कोई गुज्जे नहीं होंगे कॉल करने वाले, मैं डेली फोन करता हूँ मैं।
1: एजाज भाई, एजाज भाई,
0: ये बोल दिया कि आप तो ये बोले कि कल, हाँ भाई आज तो मैं तो मेरे को नाम तो सिखा के छोड़ोगे बोल के, तो बोले कल
1: तो वो तो वही वाला था ना जो आपका तखल्लुस है,
0: नहीं वो नहीं, वो तो छोड़ दो, मैं मेरा रियल नाम बोलूंगा।
1: अच्छा, एजाज नाम है ना शायद, अगर मैं फर्म है,
0: आप अम्मा को चैलेंज देते, चलो आपको चैलेंज ये है, मेरा नाम बोलो, तो मैं आपको कबीर कबीर बोल रहा था मैं।
1: हाँ तो वो तो आपने, मैंने भी करेक्ट किया था आपको कल, मुझे याद है, मगर फिर भी बता दें, चलिए एक बार और बता दिए, लास्ट
0: नाम अहमद है,
1: अहमद, चलिए अब नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है अहमद भाई,
0: ये नाम बोलो, निक नेम बोलो,
1: आपका निक नेम वो आपने बताया नहीं मुझे यार अहमद भाई,
0: फिर बताऊंगा। अच्छा, कार्लोस जोस लोस वाटसन,
1: अच्छा ये तेरा भाई, चार्लोस दोस लोस निकलोस निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, तो ये थे अहमद भाई हमारे साथ, और बड़ी प्यारी बातें इनकी, और अच्छा भी रहा कि हम इनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि आपको पता चल जाए हमारे से कनेक्ट होने का क्या मामला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ? अदर भाई
2: जी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सरवर भाई पहचान लिया
1: यार, बड़ा मुश्किल होता है यार, अपन हैदराबाद से माशाल्लाह इतनी मोहब्बत, हैदराबादियों का अपन से इतनी मोहब्बत, सबका बोलने का तरीका सो सेम, बात करने

0: सेम, उसके बावजूद भी मेरा टेस्ट लेते हैं कि पहचानो पहचानो कौन बोल रहा है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ?
1: आप डेली गेम देते, चैलेंज हमको करते, तो भाई कभी कभी हमारे को भी मौका आता, कभी ना कभी बाजी पलटना पड़ता कभी ना कभी।
0: अज्जू भाई, अज्जू भाई आज तो वीकेंड है, क्या खासा
1: वीकेंड है, मगर मैं माजरा चारों कल आपसे बात करते करते एकदम कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, सो दैट्स व्हाई आपको मैं कॉल बैक।
0: अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो आपकी मोहब्बत है और कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, बात करते करते कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाती है।
1: अच्छी बात अच्छी हो रही थी, मतलब आपसे मतलब अच्छी दिल तहे दिल से बात हो रही थी, एकदम अचानक बॉस का कॉल आ गया तो मैं डिस्कनेक्ट कर दिया।
0: अरे सरवर मिर्ज़ा आपसे तहे दिल से ही बात करेगा, और अगली बार बॉस का कॉल आ जाए तो मुझे आप कनेक्ट कर दीजिएगा साथ में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पे मैं, आप देखिए क्या रंग खिलाता हमारा। स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे भी है, वॉशिंग डे भी है आज, तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के हवाले से तलबा और तालीम की अहमियत को उजागर करने के हवाले से क्या कहते हैं आप बता सकते हैं मुझे अपने उस्ताद की कोई याद, अपनी कोई बात, कितने अच्छे स्टूडेंट थे आप और कितना आपने कहना चाहिए हंगामी माहौल जो है बना के रखा अपने स्कूल में।
1: अब शॉर्टकट में बोल देता हूँ आपको, लंबी बात नहीं करता मैं।
0: ओके,
1: स्टूडेंट के हद तक जो है ना, और रही बात हमारे सर के हद तक, जैसे हमारे एक सर थे जहांगीर सर बोल के, वो मैक्स सर थे।
0: ओके,
1: वो ऐसा बोलते थे सरवर भाई, भाई अगर तू आके पढ़ नको पढ़ मुश्किल नहीं है भाई, तो खाली डेली स्कूल को आओ बोलते थे।
0: अच्छा, क्या वजह थी उसके पीछे?
1: उसके वजह पीछे ये थी, पूरे क्लास में 75 स्ट्रेंथ था हमारा, ए सेक्शन बी सेक्शन मिला के।
0: ओके,
1: 75 में से ऑलमोस्ट 26 पूरे जाना बच्चे पूरे मुसलमान थे, बाकी के गैर कौम के थे।
0: ओके,
1: तो वो गैर कौम के बच्चे उन लोगों को बहुत तंग करते थे सर को।
0: Oh, okay, I understand.
1: और वो क्लास में आप मैं, तबरेज और जिलानी, नवीद, ये लोग तीनों चारों लोग जो है ना, यानी वो पूरे जितने भी गैर कौम के थे उन लोगों पे भारी पड़ते थे ना चारों वाले।
0: अल्लाह ताला, भाई मैं समझ गया कहने का मतलब, और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, वाकई ये हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, और खैर किसी भी तबके से हो बच्चा, बट टीचर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, टीचर के खिलाफ कुछ कह भी देते हैं, और यहाँ तक कि और भी चीज़ें हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखते आए हैं। मैं कहना भी गवारा नहीं हो रहा, मतलब मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, दीनी मामले से भी, दुनियावी मामले से भी इसका हमें गुनाह भी मिलेगा, और यकीन जानिए कि इस एक्ट को देखकर कोई भी आपसे पूरी दुनिया में खुश होने वाला नहीं है, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात शेयर करी अज्जू भाई, बहुत अच्छा लगा।
1: शेयर करें, कम्युनिटी नहीं करें, आप सुने नहीं हमारी।
0: जी जी जी जी जी,
1: तो वो मैक सर को जो है ना इतना मतलब ऐसा, मतलब उसमें थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स थे सरवर भाई, ताकि बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, सर जैसे कुछ होमवर्क दे के देने के बाद आके जब चेक करने के लिए बोलते थे तो वो लोग नोट्स इनकम्प्लीट रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, सर को नजर में रख लेते थे, उनको नजर में रख लिया अगर उन्होंने जो ना पूरे बच्चों के सामने अगर उनकी इंसल्ट करे तो वो लोग क्या करते थे, इनको नजर में रख लेके जो ना स्कूल के बाहर आने के बाद
0: परेशान,
1: स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, परेशान नहीं करते थे, वार्निंग देते थे ये लोग उन सर को। हाँ, तो वही टाइम पे हम लोग एक दिन डिसाइड किए, मैं बोला खैर सर कोई भी रहें दो, मैं बोला गैर कौम के रहें दो या अपने रहें दो कोई भी रहें दो, बट उन्होंने एक सर है, ही इज वन ऑफ द लेक्चरर, बट उन्होंने अपने को सिखा रहे, अपने को सीखना है, पर इन्होंने मुसीबत में अपन कई को नहीं वो करना बोल के, यकीन मानिए हम लोग चारों मिलके ऑलमोस्ट 30 जनों के ऊपर भारी पड़े थे हमारा, जब से ये सर एक ही बोलते, और जब से उन लगा वो रास्ता ही छोड़ दिए सर को बता, मतलब ऐसा टॉर्चर करना, खाली मिसबिहेव करना, ऐसा जो ना पूरा रास्ता ही छोड़ दिया, सर एक ही बोलते भाई तू आके पढ़ ना, को पढ़ मुश्किल नहीं, लेकिन तुम लगा चारों डेली आ रहे, जिस दिन मैं नहीं आ रहा उस दिन बोल तुम बोल के बोलते थे, तो वैसा था स्कूल।
0: आपने कहीं ना कहीं एक लव्य का जो फर्ज है वो अदा किया, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
1: वेकेशन गया,
0: मुलाकात हुई थी उनसे,
1: वेकेशन गया तो लास्ट सर से मुलाकात तो दिल से गले लगा लिया।
0: वाह वाह वाह, ये है देखिए कमाई, ये है कमाई, ये है कमाई और यही है खुशी की बात। वाकई बहुत बहुत अच्छे भाई अज्जू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपकी, और इसी तरह हमारे साथ कनेक्ट होते रहिए और खुश रहिए, दुआओं से मुझे भी नवाजते रहिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: खिदमत करना सर्वर वे आपकी कुछ खिदमत के लायक है तो बताइए।
0: अरे सर बस दुआएं करिए, दुआएं करिए और इसी तरीके से हमारा दिन अच्छा बनाते रहिए, इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ मिलकर दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट देन, यार शिकायत नहीं होने दूंगा मैं, मैसेजेस लूंगा और उसके बाद आपकी कॉल भी लेता हूं, अभी लेता हूं सर। 445 इन द लास्ट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरवर, भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फहद हमारे साथ। ओके ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कमालुद्दीन है हमारे साथ, कैसे कमाल भाई? आज क्या क्या शॉट है भाई, तुमको सुनने को दिल करता है रे बाबा। आय हाय हाय असल भाई, क्या शायरी हो रही है। ओके यहाँ पर खूब सारे दिल भेजे मुझे, जासिम भाई ने दिल भेजे मुझे, जासिम अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई और इन दिल को आप संभाल के रखिए। सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम, मौजू तो बहुत प्यारा है लेकिन चल रहे हो मियाँ, हैं चल रहे हो मियाँ, वो चल रहे हो मियाँ हूँ वसीम रजा खान। सरवर भाई आपकी बातों से बड़ा मजा आता है, हमारा भी उस्ताद से बहुत ही अच्छा ताल्लुक रहा है माशाल्लाह, और ये अच्छी बात है वसीम रजा खान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरीके से हमने उस्ताद से आप ताल्लुक में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह क्या लिखा है तौफीक भाई? अच्छा जैन कहना चाहते हैं, मैंने कहा यार कुछ और लिख रहे हैं। तौफीक भाई गुड मॉर्निंग भाई, हैप्पी वीकेंड भाई। सिर्फ हैट नहीं धो, अच्छा हाथ, यार हैट लिखा है, हाथ नहीं धोना नहाना भी है, आगे सर्दियां हैं। बिलाल भाई कोई दिन आए ऐसा तो मैं बताऊं किससे कारिया लोगों के। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सर, सबर लिखा है, सबर की दुआ, अच्छा मैं समझ मेरा नाम कह रहे हैं, सबर की दुआ अच्छी मांगी आपने सरवर साहब। माजिद हुसैन यहाँ पर, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे भाई। मूर फरत यहाँ पर, कबीर भाई आपको भी याद करते हैं यार, दिन आपकी बातें होती हैं, हर दिन आपकी बातें होती हैं। कबीर भाई को मेरा सलाम कहिएगा अगर आपकी बात हो। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, आई वाज अ गुड स्टूडेंट टिल फोर्थ स्टैंडर्ड, उसके बाद बैक बेंचर हो गया। मुझ पा रहे यार, हमारे स्कूल का भी हमारे स्कूल का अभी भी रीयूनियन होता है इंक्लूडिंग टीचर्स। वेरी गुड वेरी गुड। समीरा अजीज है यहाँ पर, अच्छा हो गई लगाना था भाई, मैंने हो गया लगा दिया, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी समीरा, और बहुत ही अच्छी बात है। और बैक बेंचर हो गई आप तो पीछे के लोग सुधर गए होंगे, मैं ये समझता हूँ जो उस बेंच में बैठे हुए थे। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अयाज बलोच, हैप्पी वीकेंड, आज मैं घर पर खाना बना रहा हूँ, श्रिम्प 7:30, क्या बात है 7:30 बजे श्रिम्प बना रहे हैं भैया, तो मैं क्या करूँ आ जाऊँ। मैं आकर बेंच में बैठा था, 0 नंबर था, उर्दू का टीचर था 3rd क्लास में सर तनवीर, हानिया स्कूल ड्रॉप दिया, सरवन भाई मैसेज देख लो। अयाज बलोच मेरा भाई, रमेश यादव गुड मॉर्निंग, रमेश भाई क्या हो क्या रहा है लाइफ में यार, वे आर यू, कैसा है मेरा जर्द सितारा सरवर जान, क्या बात है यार अरमान मलिक। चलो भाई अब इनको नहीं सताऊंगा, इनकी कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद एक गाना, पहला गाना नहीं बजा अभी तक प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू।
0: अहलन वसहलन जी,
2: खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पराचा साहब है हमारे साथ
2: जी?
0: अच्छा मैं शायद मैंने नाम गलत बताया आपका, मैं बताऊंगा ही नहीं अब क्या बोला था।
2: आपने जो है सबसे पहले मेरा नाम लिया था, कॉल उठाते ही आपने सबसे पहले मेरा नाम लिया था।
0: अभी
2: मतलब मेरी नहीं, सबसे पहली कॉल उठाते ही सबसे पहला मेरा नाम लिया था।
0: अच्छा सर मैं माजरा चाहता हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
2: आसिफ अंसारी।
0: आसिफ भाई ओके। अभी क्या हो रहा है आसिफ भाई, मैं आपको बताऊँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला और इजाफा करे, तकरीबन 10 से 11 आसिफ भाई हमारे साथ कनेक्टेड हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कैसे हैं आसिफ भाई और कैसी हुई सुबह?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर मिर्जा का जो है सुबह सुबह उठ के गाड़ी ऑन करो, सीधे 107 लगाओ, उसके बाद सरवर मिर्जा एनर्जी में आते हुए एक्टिव होते हुए, फिर सुबह कैसी होगी ये बताओ आप।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे आसिफ भाई, और इसी तरीके से
2: एनर्जी ड्रिंक का काम कर देते हो।
0: अच्छा था आसिफ भाई। आसिफ भाई आज खासम खास दिन में खान में मौजूद तो सुनी लिया होगा आपने, तो क्या कहना चाहते हो उसके हवाले से?
2: अरे मैं क्या बताऊं, मैं जो है ज्यादातर तो मैंने टाइम क्लास के बाहर ही गुजारा है। ठीक है,
0: अच्छा।
2: दूसरी चीज क्या है, कोई ऐसा टीचर नहीं था जिसने ये मेरी अच्छे से फिटनेस नहीं करी हो।
0: वाह वाह वाह, कितनी मिलती जुलती लग रही है आपकी बातें, मैं अपने आप को देख रहा हूँ आईने में।
2: कोई ऐसा टीचर नहीं बचा रहे सर। अच्छा। जिसने जो है अच्छे से फिटनेस।
0: तो मैं आपको बताऊं आसिफ भाई, मजाक से हटके ये जो बात आप बता रहे हैं ना, आपको बहुत याद करते होंगे वो टीचर आज भी, क्योंकि ऐसे ही बच्चे याद भी रह जाते हैं, या तो टॉप कर रहे हो या फिर अपने हाथों से टीचर उनकी खिदमत कर रहे हो एक्चुअली।
2: लेकिन हाँ एक चीज सीखने को उस टाइम तो जो उम्र थी उस टाइम पे तो इतना नहीं समझ में आया, लेकिन अब वो चीजें याद आती हैं कि टीचर क्या होते हैं।
0: सही,
2: ठीक है, टीचर क्या होते हैं उस वक्त में वो चीजें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि एक अलग दौर होता है भाई।
0: सही,
2: ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनकी एक, कभी कभी क्या होता है, मेरे एक ट्यूशन की टीचर थी, तो वो क्या बोलती थी, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो वो जो है उनका फोकस क्या रहता था, इंग्लिश में ज्यादा।
0: ओके,
2: कि आने वाला टाइम यही है भाई, 95 में कौन इतना इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे इंडिया के अंदर, अब तो सारे स्कूलों में कंपलसरी हो गया है।
0: सही बात है, तो उस्ताद जो है तो, वो दूर की जो है वो सोच के ही हम लोगों के लिए रास्ते खोलते हैं, ये एक बहुत वाज़े बात है। अल्लाह ताला सभी उस्तादों को अच्छा,
2: वालदेन के बाद जो है उस्ताद को इसलिए
0: दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वालदेन का दर्जा दिया गया
2: है, सारी चीजें
0: हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए साहब,
2: मेरे को बहुत चीजें उन्होंने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आता है,
0: कुछ ना कुछ काम जरूर आता है। सही बात,
2: हम वो स्टूडेंट्स में से रहे हैं जो गंदा पानी में होता है, कभी ना कभी काम आता है। पीने के नहीं तो आग बुझाने के काम में तो आता है।
0: अल्लाह ताला खुश रखे भाई। आसिफ भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड, और अगर फुर्सत मिले तो गेम भी खेलने के लिए तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। क्या कहते हैं भाई, अब जरा यौमुल खमीस को यौमुल खमीस बनाया जाए। थोड़ा सा यार ऐसे गाने से माहौल बदले। बात हो रही है बच्चों के हवाले से, और गए सर भाई गाने से सुना रहे हो। भाई घूमने फिरने का दिन है, इतना तो बनता ही है। उदित नारायण अलका याग्निक गोविंदा यहाँ रमीना से कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं।

हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक, हेलन बस सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी को। FM 107 पे इस वक्त वेक अप सुन रहे हैं आप और सरवर मिर्ज़ा आपके साथ, जहां पर आपको जगाने की कोशिश कर ही रहा हूं भाई मैं, और इससे ज्यादा अच्छी कोशिश और क्या ही होगी। और यहां पर एक अपडेट, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस और आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे हम। तो ये जानिए भाई कि अशगाल ने इसगवा और अल सुमैद इलाके में रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के दूसरे पैकेज का आगाज कर दिया है।

0: इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 418 मिलियन कतरी रियाल होगी। अशगाल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तकरीबन 771 प्लॉट्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें स्कूल्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, मसाजिद हैं और दूसरी सर्विसेज या दूसरी सर्विस फैसिलिटीज भी शामिल हैं। इसका मकसद इलाके की बढ़ती हुई आबादी और अर्बन डेवलपमेंट की जरूरियात को पूरा करना है। प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 23 किलोमीटर रोड्स, 30 किलोमीटर पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिंग पाथ्स, 589 स्ट्रीट लाइट्स और 2730 पार्किंग स्पेसेस बनाई जाएंगी। इसमें ट्रैफिक फ्लो और रोड सेफ्टी में बेहतरी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स में रेन वाटर ड्रेनेज नेटवर्क, TSE इरिगेशन नेटवर्क्स और ड्रेनेज सिस्टम्स की तामीर भी शामिल है। साथ ही ग्रीन स्पेस को बढ़ाने और माहौल को बेहतर बनाने पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है। अजगाल ने बताया कि प्रोजेक्ट को 3 फेसेस में तकसीम किया जाएगा या किया गया है, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान रहने वालों और रोड यूजर्स को कम से कम परेशानी हो और ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार रहे। तो भैया कहीं भी जाने से पहले या किसी का भी रुख करने से पहले यहाँ पर हमारे साथ कोई कनेक्ट हो रहा है बाहर से, तो आइए उनसे कर लेते हैं बात और जानेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सऊदी से फरीद भाई या राणा भाई में से कोई है?
1: तरुण भाई गुड मॉर्निंग।
0: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। कौन है हमारे साथ?
1: कैसे हैं तरुण भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे रखे, खिलते खिलाते मुस्कुराते।
0: जज़ाकअल्लाह खैरन। अरे नाम तो बताइए, राणा भाई हैं या फरीद भाई हैं?
1: राणा भाई बोल रहा हूँ सऊदी से।
0: ओके ओके ओके, वेलकम राणा साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका जो है ना मेमोरी बहुत
0: आमीन सर, जज़ाकअल्लाह खैरन और लाइक वाइज यही दुआ आपके लिए भी। कैसा है माहौल और क्या मौसम के क्या हाल हैं उस तरफ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बारिश वगैरह हो रही है आपकी तरफ?
1: जी नहीं सरोवर भाई, यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है। आपको पता है सलवा में तो पूरा डेजर्ट है
0: एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से कराना वगैरह में बारिश हुई और दोहा में अभी तक नहीं हुई है, जिसकी हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम जगहों को अपनी रहमत से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला तमाम जगहों को अपनी रहमत से नवाजे।
1: आपको और आपकी टीम को सबको सलाम बोलिएगा हमारी तरफ।
0: जरूर सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जरूर जरूर जरूर। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी राणा साहब।
1: जी अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं, हम तो हमेशा ही जो है ना तो क्या कहते हैं ना, ऑलवेज एक्टिव।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह आपको सेहतियाब रखे, तंदुरुस्त रखे और इंशाल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। राणा भाई आज खासम खास दिन है जिनके हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। आपने अभी तक प्रोग्राम सुना, कनेक्ट हो पाए थे आप?
1: नहीं सर, मैं अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तलबा और तालीम की अहमियत को उजागर करने का दिन है, तो कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों के हवाले से, जब आप खुद बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उसके हवाले से, उस्तादों के हवाले से या कुछ नई चीज के हवाले से, बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
1: भाई ये तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना,
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जैसे भाई पहले बता रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ में
0: जी
1: हम लोग जब पढ़ते थे ना
0: जी,
1: हम लोगों का चार दोस्तों का एक ग्रुप होता था।
0: अच्छा,
1: तो ऐसे जैसे भाई बता रहे थे कि टीचर को तंग करते थे लड़के बना बना ये वो,
0: जी जी,
1: तो सेम लाइक हमारे साथ भी ऐसा होता था।
0: अच्छा,
1: जब हम लोग मतलब होते थे ना,
0: तो मतलब आप भी उन चंद शरीफ स्टूडेंट्स में थे जिनका इस्तेमाल टीचर्स किया करते थे अपने आप को शील्ड अपने आप को शील्ड के पीछे रखा जाता था, टीचर्स आपको एज अ शील्ड इस्तेमाल करते थे, तो आप भी उनमें से ही ये कहना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और टीचर ही नहीं, क्लास अच्छा। में जो भी थोड़ा कमजोर बच्चा होता था या मतलब जो डरता था दूसरों से,
0: और तेरी मेरे जैसा,
1: वो हमेशा जो है ना हमारे साथ आगे बैठता था, हमारे साथ खाता पीता था।
0: अच्छा,
1: तो हमारे साथ साथ ही रहता था। तो जब
0: बहुत कर रहे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं भाई आज मेरे साथ, बहुत कर रहे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं।

0: Yang studio dediğine bu bıçarı diye ne mesela aapko pata hai class mein ladke classmate hote hain to wo bolte hain main tujhe kya naam hai usko recess mein ya ke chutti time
1: dekh lunga dekh lunga
0: marunga ye karunga wo dekh lunga to wo phir kya karte the ke jidhar jidhar hum jaate the hamare saath saath rehte the
1: oh
0: आपकी दुआ से अल्लाह के फजल से हमने नहीं बदतमीजी नहीं की।
1: मैं यहाँ पे रुकूंगा आपको, वो आपके साथ साथ ही रहते थे और जैसे आपने बताया कि मेरी दुआ से और अल्लाह के फजल से आपने कभी खर्चा करने की आपको परेशानी नहीं हुई होगी लाला भाई, मुझे ऐसा लगता है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं यहाँ पे सरोज भाई यहाँ पे आप रहोगे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, आप खर्चा करते थे एक्चुअली।
0: उस वक्त क्या होता था, हम चार दोस्त होते थे, हमें ज्यादा से ज्यादा कितने मिलते होते थे, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे ही।
1: सही।
0: तो हम लोग क्या करते थे, दो रुपए डाल के ना, तो एक लड़के को देते थे जमा करके, उसको बोलते थे जा वहां से ना वो ऑरेंज लेके आ, किन्नो लेके आ, बाल्टी लेके आ, तो आधा थैला भर के लेके आता था। यानी आप सोचिए कि चार छः आठ आठ आठ रुपए में आधा थैला माल्टो का लेके आता था। तो हम लोग क्या करते थे, फिर चारों साइडों में बैठ के दरमियान में उसको ढेर कर लेते थे, तो सब मिलके दबा के खाते थे। जो हमारे साथ रेलेवेंट है उसको भी बोलते थे कि भाई आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। इस वजह से भी कुछ थोड़ा हमारा इंप्रेशन था वहाँ पे।
1: अच्छा, दोस्ती अच्छी हो गई थी खिलाने पिलाने की वजह से भी।
0: जी अल्लाह का शुक्र है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना, फिर अगर कोई हमें मना करता था ना कि भाई मैं और नहीं दूंगा, तो हम उसको बोलते थे अच्छा ठीक है भाई ना दे। रात को जाते थे 2-3 थैले भर के लेके आते थे।
1: अच्छा, उनको खिलाने के लिए जिन्होंने नहीं दिया।
0: जी।
1: मैं समझ गया, ये मैं समझ गया थैले कहाँ से भरे जा रहे थे, उसके बाद वो बताने की जरूरत नहीं है।
0: जी जी जी जी जी, बागात में थे, जो बागात वाला मना करता था ना।
1: मैं समझ
0: गया, ठीक है भाई ना दे
1: माँ दे, रात में जाके और भर के लाते थे फिर। चलिए साहब, बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई राणा साहब, आप कनेक्ट हुए हमारे साथ। और जी, और भी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज बताइए।
0: एक छोटी सी अर्ज है।
1: जी जी जी,
0: बस स्टूडेंट को एक पैगाम है।
1: बिल्कुल
0: भाई,
1: बिल्कुल।
0: देखो उस्ताद, टीचर, प्रिंसिपल जो भी है
1: जी,
0: वो हमारे रूहानी माँ बाप का दर्जा रखते हैं।
1: बिल्कुल सही बात।
0: कभी उनको गाली गलौज, कभी उनको बुरा मत बोले। अगर उस्ताद कभी आपको थोड़ा बहुत पीट भी देता है तो उसको दिल भी मत लो।
1: बिल्कुल सही बात। जैसे हम वालदेन की बात कोई दिल पे थोड़ी लेते हैं, जब हमारी मरम्मत घर पे होती है तो वो हम अपने दिलों पे थोड़ी रहते हैं। और प्लस इसके अंदर मैं ये भी ऐड करता चलूं कि नाम भी रखना अच्छी बात नहीं है, जो कि एक बहुत जनरल और नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है आज की दुनिया में कि हम नाम भी रखते हैं अजीब अजीब से उस्तादों के। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमें तौफीक अता फरमाए। जी,
0: उसका रीजन, उसके रीजन क्या है जी? उसकी रीजन ये है कि हम लोग आज की पैदावार जो है ना, वो है, वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, पीने पेप्सी दे खाने बर्गर बल्ले नहीं पराठे दे रही।
1: वाह, सही सही।
0: आज की जनरेशन जो है ना, वो पेप्सी और बर्गर की पैदावार है। क्योंकि इन लोगों को अच्छे बुरे की तमीज भूल गई है, ये लोग अपना क्या कहते हैं ना वो खो बैठे हैं। मगर मेरा पैगाम यही है, कभी भी किसी टीचर को, प्रिंसिपल को, लेक्चरर को, कभी भी किसी को बुरा मत बोलिए।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो आपको थोड़ा सा डांटते हैं या मारते भी हैं,
1: सही,
0: तो आप ये सोचिए कि ये मेरी भलाई के लिए।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: माँ बाप भी तो हमें डांट लेते हैं ना।
1: बिल्कुल, मेरा भी कहना
0: है, खामोशी से बर्दाश्त करते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसी उनकी भी बात समझें कि कोई ना कोई उसके पीछे वजह जरूर है, जो वो समझा रहे हैं या सख्ती कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। बस इतना समझ लें कि हमें शायद आज ये बात समझ में नहीं आ रही है, मगर हमें सुन लेना है इनकी बात। जैसे हम अब्बा की बात भी बहुत कम समझ में आती है आजकल बच्चों को, या हमें भी ऐसी होता था हमारे टाइम पर भी, समझ में देर में आती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको तौफीक दे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर जो है मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा करे, कायम करे।

0: इंशाल्लाह सेहत याब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना भाई, थैंक यू सो मच।
1: आमीन आमीन, आप भी दुआ में याद रखिएगा।
0: जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर आफियत हम मामला करे हम सबके साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑलराइट देन, यहाँ पर हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, अभी आप लोग की कॉल रिसीव भी करता हूँ, मैसेज वालों को शिकायत ना हो तो इसलिए मैसेज भी पढ़ता चलूँ भाई। ओके, ताहिर जमील साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, मोहब्बत नवाजिश, आपको बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तारिक जमील जैसे अहम हस्ती के साथ हमारा तस्बीह कर देते हैं यार, सच में दिल भर आता है। अल्लाह आपकी कही हुई अल्फाज इस हयात में हकीकत बना दे। कहते हैं दुआ में आमीन ज़रूर कहो, बट उस वक्त कहो जब हुई। अल्लाह वाले आप के नाम पर दुआ करें, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। भाई अल्लाह ताला आपकी भी दुआओं को कबूल फरमाए। शेख इरफान अल कासमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें मैसेज करने के लिए। अब यहाँ पर एक कॉल ले लेता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग के मैसेजेस भी शेयर करूँगा। हेलो सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व
0: बरकातुहू। अहलेन अहलेन, कैफल हाल?
2: मरहबा
0: सैयद खादिम हुसैन साहब। भाई आपको इंतजार तो नहीं कराया मैंने, शिकायत हो जाती है।
2: दरअसल बात ये कि आज मैं थोड़ा सा सुबह से बिजी था।
0: अच्छा,
2: तो बाद में मैंने बोला इंशाल्लाह मैं जाके लास्ट 8 बजे से थोड़ा पहले कॉल करूंगा जो ड्यूटी स्टार्ट होने से।
0: तो ये बताइए सुबह सुबह किस चीज में बिजी हो गए? नाश्ता अच्छा करने गए हुए थे, मतलब अच्छा तो करते ही होंगे आप?
2: नमाज के नहीं हूँ और नमाज पढ़ के जब आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बस वो नहीं बताना चाहिए बाहर हाल वो।
0: अच्छा,
2: करना
0: इबादत, उसके बाद इबादत में
2: जी बस
0: इबादत में,
2: फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी होती है, नाश्ता करके फिर आराम आराम से ड्यूटी के लिए उधर से निकल।
0: अल्लाह ताला खुश रखे, सेहतियाब रखे और आपका हाजमा भी दुरुस्त रखे खादिम साहब, और ड्यूटी भी इंशाल्लाह ताला अच्छी रखे। तो सुबह तो आपने बता दिया आपकी बहुत अच्छी हुई, और आज हम बात जिस मौजू पे कर रहे हैं वो सुना आपने अभी तक? क्योंकि आज खास दिन है।
2: बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना।
0: तो हाथ धो लिए आपने नाश्ते के बाद?
2: हाथ, मैं आपसे ये बात याद रखो कि हम छोटे थे बाबा कहा करते थे कि जब भी अगर आपके हाथ साफ भी है तो फिर भी खाने से पहले, बैठने से पहले हाथ धोने चाहिए।
0: एक बात,
2: दूसरी बात, जब भी खाना खा के हम लोग ऐसे बैठे रहते तो अम्मी जान बहुत गुस्सा करती थी कि उठो जाओ हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो।
0: सुन्नत तरीका भी है और जरूरी भी।
2: और दो वजह हो सकती है कि एक बार मैं अपनी बात करूं, एक बार हाथ धोए नहीं थे और मैं ऐसे लेट गया था। आप यकीन करिए वो छोटा चूहा नहीं होता, एक छोटा सा,
0: ओए होए होए होए होए,
2: वो आके मेरे ये उंगली पे ऐसे बिल्कुल ऐसे वो काट रहा था।
0: भाई बताओ कितना बड़ा एग्जाम्पल मिल गया यार, मजाक करते करते आज आज एक्चुअली ग्लोबल हैंड,
2: ये झूठ नहीं है, सच है।
0: सुनो खादिम भाई, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है हाथ धोने का, और इससे ही मुतालिक मतलब हाथ धोने की अहमियत और सेहत की हिफाजत के लिए जो भी अवेयरनेस
2: जरूरी है
0: उसके हिसाब से देना। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, देखिए उसको, क्योंकि आपके हाथ में खुशबू आई होगी खाने की और खाना शायद लगा भी रह गया होगा छोटे बच्चों में।
2: खाना लगा हुआ था और मैं ऐसे लेट गया और इतने में वो लाइट बंद करके वो चूहा आया के मेरे ये इतना। फिर उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं रहा कि मैं हाथ नहीं धोया।
0: नहीं तो आपको तो यार चूहे ने इतना अच्छा सबक सिखा दिया कि अब वाकई आप कभी बिना हाथ धोए बिना हाथ धोए नहीं सोएंगे। वाह वाह वाह।
2: इवन एक बार हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं थी और मैंने पेप्सी नहीं है, पेप्सी से हाथ धोया था, लेकिन खाने के बाद मैंने हाथ
0: तो और अच्छे साफ हो गए होंगे अगर आपने किसी ड्रिंक से हाथ धोए ऐसी जिसके अंदर सोडा था, ये तो अलग बात है। अच्छा खादिम भाई, आज एक और खासम खास दिन है, आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी है, तलबा और तालीम की अहमियत को उजागर करने का दिन भी है, तो उसके हवाले से क्या? आप खुद तो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे मुझे मालूम है, हमेशा आप क्लास के बाहर ही खड़े नहीं होते थे, आप आगे आगे बेंच में बैठते थे मुझे मालूम है, तो उसके हवाले से क्या?
2: कभी भी ऐसा दिन नहीं आया, अगर मैं बीमार भी था तो मुझे जबरदस्ती भेजते थे स्कूल, एक बात ये थी, सही है उसकी। और दूसरी बात की कि मैं कभी क्लास में शरारत नहीं करता था, मैंने कभी टीचर्स को तंग नहीं किया था, टीचर्स मेरे साथ इतना प्यार करते थे कि मैं ये बात कहूं, मैं दुबई गया था, दुबई से वापस जब भी मुल्क छुट्टी से गया तो हमारे एक टीचर साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, अभी हयात नहीं है, वो बाजार

0: में से कड़े थे कुछ सामान लेके, तो मैं ऐसे गले मिला, ऐसे गले मिला, तो वो मुझे बोलते हैं कि बेटा छोड़ दो ताकि मैं आपको देखूं कि कौन
1: है।
0: तो मैं ऐसे गले मिले मिले मिले बहुत टाइम, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए ऐसे बिल्कुल गले लगाया था,
1: आंखों में आंसू आ गए होंगे नहीं खादिम भाई?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब भी छोड़ दे उसके हाथ से वो एक थैला लिया, फिर जब उसने मुझे देखा खुदा की कसम फिर दोबारा गले मिलके वो मुझे ऐसा ऐसा मिला, फिर उनके आंखों में आंसू आज भी मुझे याद है। और वो कहते हैं हमारे बाबा हमेशा हमें कह करते थे कि वो टीचर आपका पूछते हैं
1: मतलब थोड़ा रूहानी बातें हो गई, मगर मैंने कहा कि वो जो थैला आपने उनके हाथ से लिया था वो लौटा दिया था उनके जाते जाते, कहीं इसीलिए तो याद नहीं कर रहे थे।
0: मैं कहता हूँ मैंने उनको बस स्टॉप तक छोड़ के, मैं बस स्टॉप तक छोड़ के आया उसके साथ पैदल चलते चलते
1: ओके
0: हाँ, और उनको वो थैला उधर पकड़ा दिया।
1: अच्छा, थैला वापस
0: सर आपका बहुत शुक्रिया। जी जी जी जी, हम उनमें से नहीं है, आप क्यों मुझे ऐसे समझते हो? अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर इधर काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे मैं कहता हूँ हद दर्जे प्यार करते हैं।
1: वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हैं भी इसी लायक और इसी काबिल।
0: 8 साल में जितने भी मेरे साथ रहे, अगर एक दिन के लिए भी आया तो वो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना हद दर्जे प्यार करते हैं। ये स्टूडेंट्स वो होते हैं प्यार करने वाले और प्यार देने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, वाकई बच्चे तो होते ही अच्छे और सच्चे, मगर ये नसीब की बात है जब आप बीइंग अ टीचर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, मेंटर, आपसे आपके बच्चे जब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इसकी भाई कहते हैं ना लज्जत ही अलग है, बात ही अलग है। बहुत ही बढ़िया यार खादिम भाई।
0: चाहे मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का वो प्रोफेसर टीचर कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत अल्लाह ने दी है कि मैं अपने आप को एक प्रोफेसर समझता हूँ।
1: माशाल्लाह
0: तकब्बुर में ना है,
1: माशाल्लाह
0: तकब्बुर में ना है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत इतना प्यार लोगों ने दिया।
1: वाह वाह वाह, नहीं
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, पिछले दिनों बात हुई थी क्योंकि कुछ और मौजूद था, मगर उस सिलसिले से भी बात हुई थी, और मैं तमाम लोगों को बता दूं क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हमें वाकई अल्लाह ताला तकब्बुर से दूर रखे। बट मैं तमाम लिसनर्स को बता दूं, सैयद खादिम हुसैन साहब की जो बेटी है माशाल्लाह से, वो इतना बड़ा काम अंजाम दे रही है अपने शहर में। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने आप बता दें तमाम लिसनर ताकि सुन लें और उससे हमें सीख मिले। खादिम भाई मैं ये चाहता हूँ।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि वो गांव में हम लोग रहते हैं, देहात में, और देहात में हम लोग ऐसे हैं ना कि वो कहते हैं कि मिडिल क्लास, या बिल्कुल हम बिल्कुल लोअर क्लास वाले लोग हैं, ऐसे नहीं कि हम अमीर लोग हैं, लेकिन
1: फिर भी अमीरों से भी अमीर है यार खादिम भाई, आप बताइए। जी जी जी,
0: मेरी बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह गांव की जितनी भी बच्चियां हैं उनको पढ़ाती हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे उनको पढ़ाती है, और जो बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनको सिलाई कढ़ाई सिखाती है, सिलाई कढ़ाई। और मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का कोर्स 1 महीने में कंप्लीट किया हुआ है और डिप्लोमा लिया हुआ है इसने सिलाई कढ़ाई में। दूसरी बात एक और बताऊं, मैं ये भूल गया था उस दिन, कि मेरी बेटी ने आल पाकिस्तान वुमन यूनिवर्सिटी उसमें कशीदाकारी में टॉप पोजीशन।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खादिम भाई की बेटी और तमाम बेटियों के लिए यहाँ मेरी तरफ से ये तालियां।
0: बहुत शुक्रिया,
1: मुझे इतनी खुशी हुई ये सुन के कि खादिम भाई की बेटी जो है माशाल्लाह बाकायदा पकड़ पकड़ के दूसरी बच्चियों को वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: स्कूल को प्राइमरी अल्लाह ताला खुश रखे, घर को प्राइमरी स्कूल बनाया।
1: वाह वाह वाह भाई, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आपके घर को बरकतों से रहमतों से नवाजे अल्लाह ताला, और ये सिलसिला आगे चले और इससे बहुत लोग फैजियाब हों। आपका दिल अमीरों से अमीर है खादिम भाई, और आपके घर वालों का भी अल्लाह ताला खुश रखे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, वक्त देने का, इतने अच्छे प्रोग्राम में हमें शिरकत कर।
1: अरे अरे अरे अरे अरे, अहलन व सहलन, अपना ख्याल रखिए आपका। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। क्या प्यारी प्यारी बातें हैं और क्या खूबसूरत बातें हैं, आज का खास खास दिन और भी खास हो गया जब लोगों ने अपनी अपनी इतनी प्यारी प्यारी बातें करी हैं भाई। क्या यार, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको इस जुबान में रखे। छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक यहाँ पर, आप लोग के मैसेजेस और कॉल भी, थोड़ा सा इंतजार, मैं यूं गया और यूं आप जाया, सुनते रहिए FM 107।

0: आईवा जरा वाइब्स को चेंज करते हुए, कैसे हैं कतर और कैसी हो रही है आपकी सुबह। जिन जिन ने अभी मुझे कनेक्ट किया है तो बता दूं कि सरवर मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर बहुत देर से हमारे साथ एक कॉलर चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए उनका करते हैं इस्तकबाल और उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अहलन व सहलन जमाल भाई, कैसे हैं?
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपके साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर,
0: अल्लाह ताला खुश रखे भाई। और
1: आपसे आपसे ये छोटी सी गुजारिश है, अर्ज है कि ये बता दें कि आपकी तबीयत नासाज तो नहीं है ना?
0: नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है।
1: कलियों की तरह खिल के, कलियों की तरह खिल के गुजरती रहे हयात, गम आपके करीब ना आए खुदा करे। हेलो हेलो
0: जी, मेरी अभी अभी मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ जी
0: जी जी जी जमाल भाई, जी जी जी, सॉरी वो कुछ भारत जी कुछ शेर अर्ज कर रहे थे आप, दोबारा एक बार मुकर्रर इरशाद।
1: मतलब मुकर्रर ये मैंने कहा कि कलियों के, कलियों की तरह खिल के गुजरती रहे हयात, हम आपके करीब ना आए खुदा करे।
0: आए हाय हाय हाय, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरीके से खुश रखे। कैसी चल रही है आपकी मॉर्निंग और कहाँ है अभी जमाल भाई?
1: मेरी सुबह आज है ना
0: जी,
1: आपको कॉल करते करते लुसैल से हम रसला खान के गेट पे पहुंच चुके हैं।
0: माजरत भाई,
1: लेकिन मसला ये है ना,
0: माजरत
1: मसला ये है कि मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ
0: जी
1: कि किसी ने, हमारे एक उस्ताद ने बल्कि ये कहा था कि बेटा जानते हो असली आशिक किसको कहते हैं?
0: हाय हाय हाय जमाल भाई, किसको कहते हैं? जमाल
1: गली वाले, नहीं नहीं, गली वाले किसी महबूब को चक्कर लगाते हुए एक दिन पकड़े और उसकी दबा के पिटाई करें, गधे पे बिठा के चारों तरफ घुमाए और फिर दूसरे दिन फिर उसी हालत में नजर आए।
0: समझ
1: लेना बेटा,
0: अरे अरे अरे अरे, क्या क्या मिसाल दे दी आपने, ये यार क्या बात कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जरा करम कर मेरे हाल पर। सुनिए आपके लिए
1: जी जी जी,
0: मैं उस मिसाल को छुपाना चाह रहा हूँ उस चेहरे से कि जरा करम कर मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर। जरा करम कर मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर, तेरी ये इनायतें मुख्तसर, मेरा दर्द दिल और बढ़ा ना दे। जमाल भाई,
1: आज का मौजू ऐसा था कि दिल में कुछ शगुफे ऐसे खिल गए थे कि आज तो लाजिम भाई को कॉल करनी है।
0: अरे नहीं, बहुत अच्छा किया आपने और मैं वाकई जानना भी चाहता हूँ। वाकई जी,
1: टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। किसी ने कहा था कि ये मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं।
0: क्या ये पैगाम है? तो, ये शेर नहीं है, ये पैगाम है यार जमाल भाई, ये पैगाम है।
1: जी मेरे भाई,
0: वाह वाह।
1: तो वो मदरसे की जिंदगी है ना, जो आपने एक क्या कहते हैं, बिल्कुल मख्फी सा दर्द जिसे आपने कुरेदने की कोशिश की है,
0: है ना, हो जाए फिर इसी के हवाले से कुछ ना कुछ।
1: एक छोटी छोटी दो बातें याद है
0: बिल्कुल
1: मुझे अपने पढ़ाई के जमाने की। हम लोग एक हॉस्टल में थे, तो ये था कि उस हॉस्टल में एडमिशन के वक्त ही 200 रुपए जर जमानत के तौर पर लिए जाते थे।
0: ओके, ओके,
1: कि ये जब आपके साल मुकम्मल खत्म हो जाएगा, हाँ साल जब मुकम्मल खत्म
0: हो जाएगा तो
1: जाने लगेंगे यहाँ से,
0: तो ये
1: आपको वापिस हो
0: जाएगा।
1: तो हमारा साल जब खत्म हो गया तो हमारी सारी, अब जानते हैं बचपने की उम्र बड़ी खतरनाक होती है, हमारी आस और उम्मीद और प्लान सब कुछ सेट था
0: कि जब ये 200 मिलेंगे तो क्या करूंगा।
1: हाँ, फिर कैसे कैसे हमारा घर का जो रास्ता है ना वो कैसे तय होगा, वो सारा कुछ है ना, हमने अपना सेट कर रखा हुआ था, एक मुकम्मल ग्रुप था। तो जब हम लोगों ने, जब हम लोग उसके लिए गए तो जो वहाँ के क्लर्क थे
0: जी,
1: उनका इंतजार करते करते है ना मगरिब का वक्त हो गया, वो बेचारे नहीं आए। और जब मगरिब के बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि कल इंशाल्लाह देखा जाएगा। सारी उम्मीदों पर उस दिन के लिए तो पानी फिर गया, कहा जागी कि चलो इंशाल्लाह कल सुबह फिर होनी है। तो हम मुझे मुझे खास करके बड़ा गुस्सा आया था कि यार ये कौन सी बात है, किसी चीज को सीरियस ना लिया जाए, लेते वक्त तो उस पर सख्ती और देते वक्त फिर इस तरह से मामला। तो हम लोगों ने ना एक उस्ताद से शिकायत की, तो उस्ताद ने कहा कि भाई ये सारा मामला तो कलर का है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कलर जिस रूम में रहते थे उसके बगल में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था, दीवार में ही लगाया हुआ।
0: ओके ओके।
1: तो मैं जरा किताब उताबों को मतलब थोड़ा पढ़ा करता था उस जमाने में भी, पढ़ाई के अलावा भी। तो वहां जाके एक शेर लिखा मैंने चार मिसरे का, बड़े बड़े।
0: वाह इरशाद इरशाद।
1: खुदा करे कि मुकद्दर से वो रात मिले कि खा के मुर्ग मुसल्लम पुलाव सो जाऊं।
0: भाई क्या बात है, क्या बात है।
1: आगे सुनिए,
0: खुदा करे,
1: खुदा करे कि मुकद्दर से ऐसी रात मिले कि खा के मुर्ग मुसल्लम सो जाऊं।
0: क्या मिसरा है भाई।
1: हराम खोरी की ख्वाहिश उभारती है मुझे किसी मदरसे का मैं भी कलर को जाऊं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। भाई ये मैं आप सबको इस बात को वाजे कर दूं कि हम सिर्फ उन्हीं साहब के लिए ये शेर यहाँ पर पढ़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बाकी दूसरे जो भी क्लर्क हजरात हैं और एडमिन के लोग हैं हमारा उनकी तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं है। जवाल भाई और मैं ये बात क्लियर करते चले, ये सिर्फ खुसूसी शेर उन्हीं के लिए था तो उनके लिए कहा गया था। अच्छा चेहरा भाई, अच्छा चेहरा। वाह
1: उस्ताद क्या होता है, मैं अपने तमाम भाइयों को छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि उस्ताद क्या होता है हमारी नजर में
0: जी,
1: और हमें उनकी इज्जत कैसे करनी चाहिए
0: जी।
1: हमारे एक और आगे दो तीन क्लास जाने के बाद में एक प्रिंसिपल थे, तो उनके दोनों बेटे पढ़ते थे वहीं। तो हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते थे इत्तफाक से, क्रिकेट फील्ड में हमारे और उनके बेटे का नाम अरशद था, उनसे मेरी लड़ाई हो गई क्रिकेट के मसले को लेकर, किसी और मसले को लेकर। अच्छा तो वो अच्छी खासी लड़ाई हुई और उसके बाद सदर साहब को जाहिर है प्रिंसिपल साहब को पता लगना ही था। सुबह को हॉस्टल में वो जगाने के लिए आए और फजर की नमाज के लिए इतना मोटा डंडा लेके आए वो कि खूब अच्छी तरीके से सबकी तोड़ाई हुई।
0: ओके।
1: आगे आने वाले जुमेरात में मैंने उनके खिलाफ इस बात के लिए तकरीर दी थी जुमेरात को।
0: अच्छा।
1: अंजुमन में 3-4 साल के बाद मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद, अल्लाह तो बचा नहीं, लगभग 5-6 साल के गुजर जाने के बाद पढ़ाई खत्म हुई, तो वो हमको रमजान के दिन में मुंबई में हमारी उनकी मुलाकात हुई एक जगह। मैं उनको बड़े एहतराम के साथ लेके आया अपने रूम पर, जितने गंदे कपड़े थे उनके सब धोया और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब आपको यहाँ से जो आगे का प्लान है वहां से मुकम्मल कीजिए, मेरा जो अपना दिन भर का काम है मैं करके आऊंगा शाम को रूम में, आपको बनाऊंगा खिलाऊंगा सारी चीजें करूंगा। और उसके बाद फिर वो जब 2-4 दिन के बाद जाने लगे तो मुझसे जो भी तौफीक हो सका कपड़े वगैरह हर चीज, मेरे उस्ताद थे भाई, और उस्ताद का नजरिया दिल में दिमाग में ये था कि वो मजाजी बाप होता है, वो हकीकी भले ना सही लेकिन मजाजी बाप होता है, हमारी जिंदगियों को संवारने का वो जरिया है वो, कि जिसके जिसका कर्ज हम जिंदगी भर उतार नहीं सकते कभी भी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: अच्छा उस्तादों के मुंह से यह सुना गया था कि अगर बेटा कभी उस्ताद और माँ बाप दुआ दे दे तो जिंदगी संवर जाएगी, ये सोच लेना। तो वो आगे चल के मतलब दिमाग में था, जब थोड़े क्लास में बड़े हुए तो वो नजरिया था हमारे दिमाग। तो कोशिश हमा वक्त यह होती थी कि जहां भी मौका मिले यार तो उस्ताद से कुछ तो दुआ हासिल करना चाहिए हमें, है ना। तो उनको जब मैं आखिरी दिन, उनका जब आखिरी दिन था हमारे पास, वहां से जब वो स्टेशन जाने लगे तो मैं स्टेशन लेके गया उन्हें, और स्टेशन पे जब मैं उन्हें ट्रेन में बिठाया मैंने उनको, और खिड़की के रास्ते पे खड़े होकर सलाम कलाम और ये कि मतलब अपनी तरफ से, मैं तो उस्ताद से मैं बच्चा था, मैं कह नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा एहतियात से यहाँ जाइएगा और फलाना सारी चीजें। तो वो आंख पूर्णम आंखों के साथ उन्होंने जो मुझे दुआएं दी थी, और उन्होंने जाते जाते जो बात कही थी कि बेटा मैं अपने अगर मेरा कोई सगा बेटा हो तो शायद ऐसा ही करता।
0: वाह वाह वाह वाह, ये यहीं से कामयाबी की सीढ़ी आपने
1: जो है ना, जिंदगी में हमेशा कामयाबी दे अल्लाह तुम्हें,
0: ये बात
1: ये सारी चीजें सुनकर मेरा दिल ऐसा भराया था।
0: वाह वाह
1: तरुण भाई,
0: वाह यही थी वो, यही वो पहली सीढ़ी थी आपकी कामयाबी की जो आपने कदम रखा है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे भाई।
1: सच बता रहा हूँ, वहाँ से मैं उस खुशी से कि जिस दिन का इंतजार था पढ़ाई के जमाने में न मिला, उतनी देर के बाद उन्हीं उस्तादों के जरिए से उनके मुँह से जो मुझे आज मिला है,
0: वाह वाह,
1: तो मैं खुशी से रोते हुए अपने घर तक गया। जहाँ मैं रहता था जिस रूम में, और मैंने कहा कि शायद अल्लाह उस्ताद है तो उनकी दुआ कबूल कर ले। और फिर ये है कि उनसे फिर बाद में भी रब्ता रखा मैंने।
0: अभी हयात हैं?
1: अब तो शायद अभी वो बाहयात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे।
0: आमीन।
1: मैं यही कहूंगा कि दोस्त मतलब हमारे तमाम भाइयों को, खास करके जो अभी दौरान तालीम है, जो तालिबे इल्मी की हैसियत से मतलब जो तालिबे इल्म सुनते होंगे वो, और जो मतलब पढ़ भी चुके होंगे, सभी लोगों के लिए कहूंगा कि भाई उस्ताद हमारी जिंदगी को संवारने का बहुत सबसे बड़ा जरिया वही होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो उसका एहतराम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए।
0: सही सही सही।
1: हमारे दिल के अंदर है ना एहतराम भी उनका।
0: इसकी हम सबको कोशिश क्या, हमें तो इसकी ख्याल ही करना चाहिए। बिल्कुल सही भाई। तो जमाल भाई एक तीन दो दो मिनट और आपसे लूंगा मैं, गेम खेलेंगे हमारे साथ? बहुत आसान है। अरे आप माशाल्लाह जबरदस्त भाई, आप तो काफी इंटेलिजेंट हैं। तीन सवाल हैं मेरे, उसके आसान आसान से उसके जवाब देने हैं बस आपको 30 सेकंड के अंदर, ठीक है? कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं,
1: कोशिश करेंगे, चाहे हो या ना हो,
0: चलिए ठीक है। तो पहला सवाल, सूरज किस तरफ से निकलता है?
1: दुनिया जानती है पूरब से निकलता
0: है। चलिए, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं?
1: 11।
0: ओके, तीसरा सवाल असली, अब इसके लिए 30 सेकंड है आपके। एक आदमी मई में पैदा हुआ फिर भी उसकी जो सालगिरह है वो जून में होती है, कैसे, क्यों?
1: मतलब थोड़ा सा पहले जरा था आप हलवा खा लो, फिर उसके बाद तलखी का एहसास करो। वाह मेरे भाई।
0: एक आदमी मई में पैदा हुआ फिर भी उसकी जो सालगिरह है, बर्थडे है, जून में होती है, बताइए क्यों या कैसे हो सकती है?
1: वो पता नहीं 10 दिन आगे पीछे होते हैं शायद, इस वजह से चलने की वैसा भी तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं वैसे भी तो पॉसिबल नहीं है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम पूरा हुआ।
1: जवाब तो बता दीजिए।
0: मैं जवाब मैं बताऊंगा, अभी जरा सता तो लूं तीन चार और भाइयों को, उसके बाद अभी से बता दिया फिर नया सवाल लाना पड़ेगा मुझे, इसलिए जरा रुक रुक के अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता जरूर दूंगा इंशाल्लाह ताला।
1: एक ही सवाल से कुछ देर तक काम चलाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में पूछा था कि आज तबीयत साथ तो है।
0: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ जरा सा लोग जोर लगाएं जहन पे, जरा सुबह सुबह जहनी वर्जिश भी कर लें तो इंशाल्लाह आराम होगा।
1: हमें तो पता है ना कि आप लोग हमारे हर चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन बस ये है कि हम ही लोगों को मौका नहीं देते हैं। अरे उसमें कोताही हमारी नहीं होती है, कोताही भी आप ही लोगों की जानिब से है कि वो जो हमें मुस्ताद की तरह से संवारते हैं उनकी अगर खिदमत हम करना भी चाहे तो
0: नहीं,
1: ये बेचारे हमें वक्त नहीं देते हैं, ये आप लोग वक्त नहीं देते हैं, इस बात का शिकवा और गिला भी है।
0: अरे नहीं भाई, हम तो कोशिश पूरी रहती है। देखिए जमाल भाई बात तो ही जाती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, सभी को बारी बारी, और क्योंकि उसमें मैसेजेस भी होते हैं, हमारी जो जरूरी चीज है हमें न्यूज शेयर करना, मैसेज शेयर करना,
1: ये चाह रहे हैं कि आपकी मेहमान नवाजी करे, है ना? बाकी ये तो जो क्या कहते हैं सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो जरिया।
0: अच्छा उस तरफ इशारा है? नहीं नहीं, वो मैं इंशाल्लाह ताला अब अच्छी सी दावत तैयार करी है, मैं आता
1: सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: अल्लाह ताला खुश रखे आपको।
1: किसी ने कहा था ना कि खुला रहता है
0: आप शेर उधर से लेके आते हैं, इधर मेरे शेर निकलने लगते हैं, फिर मैं बहुत दबाता हूँ अपने आप को। खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, बड़ी अच्छी बातें, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत वक्त ले लिया।
0: नहीं नहीं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Alright then, अब शुरू हो चुका है तीन का दम, आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ कॉलर, और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल आ रहा है, इस पे कॉल मत कीजिए, मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करूंगा, फिलहाल एक चैंपियन, उनसे पहले गेम खेलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तो आपका पूरा 20 मिनट पर आधा घंटा ले ले तो मैं तो जमाल भाई को बोलो तो जने भी लाइन में ठहरे हुए भाई। ये ऐसा हो गया जहाँ से ठहरे वहां से लाइन शुरू हो गई, वैसी लाइन में ठहरना पड़ा।
0: आज माशाल्लाह से आप तीसरे या चौथे हैं फ्रॉम हैदराबाद। सैयद भाई है ना हमारे साथ? अगर मैं
2: वो पूरा खानदान का ही नाम ले लो पूरा
0: जवील भाई,
2: जवील भाई, जामिल भाई, पूरा सरवर भाई, कबीर भाई, वेद भाई, सबका नाम ले लो खलास।
0: माय गॉड, यार माशाल्लाह से हमारे भाइयों की आवाज इतनी मिलती जुलती है कि फर्क करना मुश्किल है, यकीन जानिए फर्क करना मुश्किल है।
2: थोड़ी आपको 7:30 के शो में, 7 बजे के शो में बात कराई मैं आपसे
0: है
2: आपसे 7:30 के, और मैं स्कूल के बारे में आप पूछे।
0: अच्छा अभी सुबह तो फिर तो अज्जू भाई है, फिर तो अज्जू भाई है, माई बहन फिर तो अज्जू भाई, फिर तो अज्जू भाई है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, इतनी मिलती जुलती आवाज, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे एक दिन सब एक साथ कॉल करें और मैं सबको गवाही दूं, देखो इनमें फर्क करो कैसे कर सकते हो, बिल्कुल मिलती जुलती आवाजें। जी अज्जू भाई तो गेम खेल लें
2: उसके साथ ऐसा भी बोलो पूरे हैदराबाद यहाँ मिलो ताकि सरवर भाई की खिदमत कर सके।
0: हाँ नहीं ना वो तो एक साथ मिलेंगे। अरे सुनो तो सही अदर भाई, एक दिन मिलोगे तो एक ही साथ हो जाएगी ना, एक एक करके मिलिए ताकि ये सिलसिला जो है
2: लंबा जने भी मिले ना, तो 10 जने मिले तो 10 जने की फरमाइश से आपकी और 10 दिन तक आपकी।
0: अरे अरे अरे अरे मेरा भाई कैसा अज्जू भाई जैसा। अज्जू भाई जल्दी से गेम खेल लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडी?
2: हम हमारे तरफ आया तो जल्दी गेम खेलते, दूसरों की तरफ तो 15-15 मिनट बात करते।
0: आपसे बात तो हो गई यार, दोबारा बात हो रही है, देखिए मोहब्बत आप भाई से।
2: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे भाई लोग को भी मौका देंगे।
0: चलिए ठीक है, तो फिर वही 3 सवाल, अभी शायद आपने एक सवाल सुन भी लिया होगा, जवाब लेके आए उसका साथ में।
2: सूरज सूरज पश्चिम से निकलता है या कहाँ से निकलता नहीं मालूम, सूरज कहाँ से निकलता देखेंगे। आपकी हंसी वो थोड़ी प्यारी है सर, आपकी हंसी से नहीं हंसने वाला भी हंसता।
0: अरे भाई अल्लाह ताला कुछ रखे। ओके, इंसान के कितने पैर होते हैं?
2: तो
0: पक्की बात है, ठीक है। ओके, आंखों से हम देखते हैं या सुनते हैं?
2: देखते हैं।
0: पक्की बात है,
2: यकीनन।
0: ओके,
2: सुन नहीं सकता, उन्हें महसूस भी कर सकता हूँ।
0: चलिए, एक टेबल पे 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, 3 बुझ गई, बताइए कितनी बची?
2: 10 मोमबत्तियां है, 3 बुझ गई।
0: हाँ,
2: तो उसको बुझाई थी, चालू होने देना था।
0: नहीं मतलब वो बुझ गई यार, अब ये क्या बात होती है, 3 बुझ गई, बताइए आप कितनी बची?
2: 10 मोमबत्तियां है, 3 बुझ गए।
0: हाँ,
2: आ तो अगर वो पूरे मिल्ट हो गए, अगर बुझ गए तो समझो कुछ भी नहीं बचे,
0: 3 बुझ गई मैं कह रहा हूँ।
2: 3 हाँ, 3 बुझ गए तो बाकी के 7 रहेंगे,
0: बाकी के 7 बचेंगे
2: जी।
0: पक्की बात है, फिर सोच लीजिए,
2: लगा दीजिए आप, नसीब की बात है, 7 करोड़ रहने वाले, 7 रुपए रहने वाले।
0: और ये आपका जवाब गलत है, 7 पैसे। आपको मिले भाई 7 पैसे और वो भी कॉल के दौरान जो है खर्च हो गए, तो अब कुछ भी नहीं बचा अज्जू भाई, एंड ऑफ द कॉल।
2: ऐसे 7 पैसे ने ऐसे सदा सर्वर भाई पे कुर्बान।
0: अरे मेरा भाई कैसा अज्जू भाई जैसा, अज्जू भाई में पैसा ही पैसा। खुश रहिए और बहुत शुक्रिया, आप इतना वक्त निकालते हैं, 2-2 बार कॉल की आपने और आप मुस्तकिल लगे रहे कॉल करने के लिए। ये मोहब्बत है आप, आई नो अज्जू भाई, मैं सराहता हूँ इस बात को और आपकी मोहब्बत सर आंखों पर भाई, बहुत शुक्रिया।
2: अल्लाह आपको खुश रखे, हैप्पी वीकेंड,
0: आई मीन हैप्पी वीकेंड टू यू टू सर, थैंक यू सो मच। All right then, तो यहाँ पर अभी लेता हूँ भाई कॉल, कुछ मैसेजेस शामिल कर लूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूसुफ भाई हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू वेक अप दिल से देसी। यूसुफ खान थर्सडे मॉर्निंग सबको विश कर रहे हैं, वीकेंड सबको विश कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पेरेंट्स यही सिखाएं कि हमेशा खाने से पहले बाद साफ हाथ धोने चाहिए, मतलब धो लेने चाहिए हाथ खाने से पहले, खाने के बाद, और अभी तक करते हैं, मतलब यूसुफ भाई इस बात को फॉलो कर रहे हैं और यही हम अपने बच्चों को सिखाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है और हम सबको सिखाना भी चाहिए। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भाई, और यहाँ पर दिल, लव यू भाई, उस पर डबल दिल, मेरा भाई हाशिम रजा, तीन दिल थे आपके पास, तीनों आपने मुझे दे दिए यार, अब आपके पास क्या ही बचा। यहाँ पर वॉइस नोट है भाई, नहीं सुन पाऊंगा, वेरी सॉरी यासर खान साहब, अगर टेक्स्ट कर देंगे तो मैं ज़रूर इसको शामिल कर लूँगा। यहाँ पर हमारे साथ भाई हैं, दुआ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी पेन दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू अल्लाह, और दुआओं के साथ इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। नाम नहीं है यहाँ पर, रमेश भाई ज़रूर इंशाल्लाह ताला वक्त मिलते ही। और कहते हैं सैयद हुसैन, कहते हैं 10 बजी मोमबत्तियों के हवाले से बात कर रहे हैं, 10 कैसे बचेंगे भाई। एमबीबी यहाँ पर हमारे साथ, मुबीन बुखारी बगदादी साहब जुड़ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सरवर जी, आपको और तमाम लिसनर को गुड मॉर्निंग खतर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं लाइन बिजी है बॉस, भाई उठा लो कॉल, अभी उठाइए, अगर आप ही हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई तो हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
1: इतनी खुशी।
0: अच्छा कितनी भाई, कितनी
1: खुशी।
0: ओह माय गॉड, वेलकम टू द शो। खुश इसलिए हो रहे हैं कि शायद कॉल उठ गई है, मुझे ऐसा लगता है। कौन हमारे साथ, ये तो बताइए आसिफ भाई।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी खुशी।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं
2: भाई? मैं तो बोला आज लगता सरवर भाई जमाल भाई से आज सुबह से लेकर शाम तक ही बात करेंगे।
0: जमाल भाई किसी और के लिए कहते हैं, आप जवाय भाई के लिए कहते हैं, अब आपके लिए कुछ और कोई कहेगा, बात तो पूरी करनी पड़ेगी यार आसिफ भाई, आप ऐसे कैसे छोड़ दूं बीच में यार किसी को। अच्छी बात
2: भाई,
0: नहीं
2: बात
0: है
2: ना? तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है भाई। चलो गेम खेलते भाई,
0: गेम खेलते, जल्दी जल्दी गेम खेलते, सही वक्त पे आप तशरीफ ले आए और आपके लिए खास हम खास जवाब यहाँ पर निकाल कर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किसका आपके लिए क्या सवाल रखूं मैं।
2: मतलब हारते हुए जीतना चाहते हो तुम
0: यार? एक सवाल है, मगर मुझे लगता है कि क्योंकि माशाल्लाह से आप रेगुलर कनेक्ट रहते हैं तो ऐसा ना हो आपको इसका जवाब मालूम। अच्छा मुझे बता देना ठीक है, वो गधे वाला सवाल का जवाब मालूम है आपको?
2: I know.
0: आपको मालूम है वो 3 गधों वाला?
2: जी मालूम है भाई।
0: अच्छा देखो यार, ये मोहब्बत है कि सच्ची बात बता दी भाई ने, तो यार आपको तो सारे ही सवाल जवाब मेरे पता होंगे क्योंकि ये दूसरे प्रोग्राम में हम गेम खेला करते थे। नहीं
2: जी भाई, ये बिल्कुल वो दौर वाले में, दौर वाले में।
0: तो यार ये तो आपको तो सभी, मैं तो आप तो वैसे ही चैंपियन है, चलिए फिर भी कुछ ना कुछ तो निकाल के लाता हूँ आपके लिए, रेडी?
2: कहीं ना कहीं तो अटकूंगा भाई, कहीं ना कहीं तो अटकूंगा,
0: मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं यार आजू भाई, आपको लगता है मैं छोड़ दूंगा?
2: नहीं मुझे मालूम है भाई, सरवर भाई नाम है तुम्हारा, शरीफुद्दौला।
0: चाय पीते हैं या खाते हैं
2: भाई? हम तो चाय पीते हैं।
0: आप चाय पीते हैं। मछली पानी में रहती है या जमीन पर?
2: ऑफ कोर्स पानी में।
0: ओके तीसरा सवाल यहाँ पर आपके लिए 7 करोड़ का, अगर डॉक्टर कहे 3 गोलियां लो, हर आधे घंटे बाद एक खा लो, तो सब कितनी देर में खत्म हो जाएंगी? अरे यार इतनी देर में तो, अगर डॉक्टर कहे 3 गोलियां लो और हर आधे घंटे बाद एक खा लो, तो सब कितनी देर में खत्म हो जाएंगी?
2: आधे घंटे में।
0: आधे घंटे में कैसे हो जाएंगी यार, हर आधे घंटे पे एक खा लो,
2: हर आधे घंटे में एक खा लो, अगर डॉक्टर कहे 3 गोली। आ तो भाई,
0: आज भाई तो डॉक्टर को ही गोली खिलाने वाले। टर टर टर टर टर। क्या कहते आसिफ भाई, फंसा लिया
2: भाई, वाकई में फंसा लिया भाई तुमने तो आज मुझे।
0: ओ मुझे कितना सुकून, मुझे अब बताओ कितनी खुशी है, कितनी खुशी मुझे हो रही है इस वक्त। नहीं नहीं हारे आप कभी नहीं है यार, आप तो बाजीगर हैं यार आसिफ भाई, हारा हुआ तो कभी नहीं बोलते अपने आपको, आज बस ये है कि जवाब नहीं दे पाए। अल्लाह ताला संडे में जरूर जवाब आपको मिलेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सर। थैंक यू आसिफ भाई, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड बाय, हैप्पी वीकेंड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक। Yeah. जरूरी है भाई, जरूरी। वीकेंड पे ऐसे वाइब्स आना तो बहुत जरूरी है। एंजॉय कीजिए सोनी दे नखरे।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो वेलकम बैक हेलो वसेलन खुश आमदीद स्वागतम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी भाइयों को। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, यहां पर एक लिसनर हमारे साथ बल्कि चैंपियन हमारे साथ कनेक्टेड है, इनसे करते हैं बात और जानते हैं इनका हाल। हेलो सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
0: हेलो वसेलन कौन है हमारे साथ?
1: जी मेरा नाम रियाज है।
0: वाह क्या शेर सुनाया आपने भाई, वाह मुकर्रर इरशाद। अरे नहीं नहीं साहब, टाइम ही टाइम है आपके लिए, तो चलिए आइए हो जाए आपके साथ भी गेम। अभी कर देता हूँ आपका गेम, मतलब आपके साथ
1: नहीं, ये और मतलब गेम का है ना, तो इसलिए।
0: अरे सर एहलन व सहलन रियाज साहब क्या बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया
1: आपके।
0: अरे आप चैंपियन हमेशा से चैंपियन है, आप जवाब दे पाए ना दे पाए ये बात अलग है, मगर चैंपियन तो आप है रियाज साहब। चलिए साहब शुरू करते हैं, फिर रेडी है?
1: जी मैं तो रेडी।
0: घोड़े के कितने पैर होते हैं?
1: चार।
0: चार पैर होते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है?
1: इस्लामाबाद।
0: वाह कौन सी ऐसी चीज
1: जी जी
0: तीसरा सवाल आपके लिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसको काटते भी हैं, पीसते भी है और बांटते भी हैं लेकिन खाते नहीं हैं? हाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं लेकिन खाते नहीं हैं?
1: खाते नहीं है,
0: खाते नहीं है भाई, काटेंगे भी पीसेंगे भी और उसको हम बांटेंगे भी, रियाज भाई को भी देंगे बांटेंगे भी, मगर सर पर मिजा खाएगा नहीं। टक टक
1: जो टक जिस जो सवालों के जवाब
0: अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला संडे में कोशिश करेंगे के आप सवाल पूछें और आप उसका जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रियाज भाई,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच एलन वसैलन। ऑलराइट दोस्तों, बुजुर्गों, ख्वातीनों हजरात, और यहाँ पर अब वक्त हुआ जाता है तो कुछ मैसेजेस यहाँ पर, मुझे लगता नहीं है मैं कॉल ले पाऊंगा क्या, मैं देखता हूँ बस ये कुछ मैसेजेस मैं शामिल कर लूँ। कहते हैं सरवर भाई, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, फ़ोन कॉल पे हैदराबादी टोन को ज़्यादा टाइम देते तो वॉइस सुन के मज़ा आता बोलते भाई। आसिफ भाई नहीं, हाँ अंसारी भाई अच्छा मैं इतनी ज़्यादा बदल की कोशिश करता हूँ कि एक्सेंट पकड़ लूँ कि कभी कभार बॉम्बे वालों से मैं हैदराबादी को मिला देता हूँ तो एक नई निकलती है, फिर मेरे पास से एक नई बोली जो है वो सामने आती है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, क्या गाने बना जाती है, आज आपने वीकेंड बना दिया मेरा, क्या बात है फिरोज भाई का वीकेंड बन गया। यार मैंने कोशिश करी आज कुछ ज़रा सा अलग रहे मामला, तो उसी हिसाब से हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। यार खादिम भाई ये ज़रूरी था, मतलब ये जाते जाते मेरा वीकेंड जो है टेंशन में डाल देना मुझे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करी हमने, मगर बड़ा अच्छा शेर है, बहुत ही अच्छा शेर है साहब, मज़ा आ गया सुन के। मुझे लगता नहीं कि मैं कॉल ले पाऊंगा, मगर फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि जल्द से जल्द इनसे बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर की मेहरबान, आते आते जल्दी से खेल लेते रईस भाई, टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं, ठीक है? ओके
1: चलो ठीक है,
0: चलिए ठीक
1: है, गुफ्तगू तो हमारे जमाल भाई माशाल्लाह कर गए।
0: ओके ओके तो पहला सवाल आपकी तरफ आता हुआ, जमीन पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं?
1: जमीन पर चलने वाली गाड़ी को
0: हाँ क्या कहते हैं?
1: गाड़ी जमीन पर चलने वाली को गाड़ी
0: कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाथी के कितने पैर होते हैं?
1: हाथी के तो मेरे ख्याल से दो चार पैर होते हैं,
0: बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी आपने सवाल सुना ही होगा, उसी का जवाब दे दिए, वो कौन सी चीज है जिसको हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं लेकिन खाते नहीं है?
1: अरे भैया अभी हम आपको जवाब दिए थे कि मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं नहीं यार करेक्ट मेरे पास जवाब था, देखो अभी जहन में नहीं आ रहा है मेरे भाई।
0: आना भी नहीं चाहिए मैं तो कहूंगा, बस 15 सेकंड और मत आने दिए, 15 सेकंड और मत आने दिए बस।
1: ओके मेरे भाई, हंस को मुस्कुराते रहे ऐसे यार। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है रहे, तो माशाल्लाह सुन के बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई।
0: अरे भाई रईस भाई, ये तो आपकी मोहब्बत है, इसी तरीके से तशरीफ लाते रहे और सवाल के जवाब मत दीजिए ताकि मैं भी खुश होता रहूं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी रहने दे पेंडिंग, अभी कुछ दिन तक घुमाते रहे लोगों को, घुमाते रहे।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए भाई। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई इसी के साथ अब वक्त हुआ कि मैं आपसे ले लूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीकेंड को बहुत अच्छा बनाइए, अपनी अपनी थकान को जो है उतारिए, दूसरों को माफ़ कीजिए, और इतनी सारी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। बस यही कहूँगा जाते जाते कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा कर पत्थर पी गया, और अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारा घरों, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह संडे में आपसे मुलाकात होगी। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: बड़ी तकरीबात और अहम इज्तिमाआत में सलामती को यकीनी बनाना एक हमा जिहत जिम्मेदारी है, जिसके लिए मुतालिका इदारों के दरमियान मुअस्सर राब्ता और बाहमी तावुन, बड़ी तादाद में मौजूद लोगों की मुअस्सर निगरानी, मुमकिना खतरात पर मुसलसल नजर और जरूरत के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल बुनियादी अहमियत रखता है। इसी हवाले से मिलीपुल कतर 2026 की नुमाइश एक ऐसा बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म फराहम करती है, जहां बड़ी तकरीबात और अहम तंसीबात की सलामती से मुतालिक जदीद हिफाजती हल और खुसूसी आलात पेश किए जाएंगे, जबकि माहिरीन को मुख्तलिफ तजुर्बात से आगाह होने और उन जदीद टेक्नोलॉजीज को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा, जो बदलते हुए हालात में सिक्योरिटी और हिफाजत के तकाजों को मुअस्सर अंदाज में पूरा करने में मदद देती हैं। मिलीपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मिलीपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
3: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। विदारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए, ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत हाल भी चेक करना चाहिए, ताकि नामुनासिब हालत में डाइविंग को अवॉइड किया जा सके। विदारत दाखला ने वाजे तौर पर कहा है कि जब आप

0: अकेले हों तो डाइविंग मत कीजिए, और खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग मत कीजिए जो तवज्जो या होश पर असर डाल सकती हो। ये भी याद रखिए कि समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच कर लेना लाजमी है ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया बियॉय लगाएं, ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हदूद से दूर रहना जरूरी है, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: बिजनेस हेडलाइंस में आज इतना ही. आप सुन रहे हैं FM 107. अब आप स्पोर्ट्स हेडलाइंस समाप्त फरमाइए.
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन.
0: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आप सभी का इस्तकबाल है. आज के टॉप हेडलाइंस में आई होप कि नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने बुध के रोज चौथे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच में इंडिया को 24 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दिया और अब सीरीज का फैसला कुन मुकाबला बाकी है. तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में श्रीलंका ने मेजबान पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी. पाकिस्तान पहले ही सीरीज अपने नाम कर लिया था. दुनिया की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी आरिना साबालेंका की मुश्किलात का सिलसिला जारी रहा. बेलारूस की साबालेंका को वुहान ओपन के दूसरे राउंड में अमेरिका की गैर सीडेड एन ली ने 3-6, 6-4, 7-6 सेट से शिकस्त दे दी. इस हार के साथ ही 4 मरतबा ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहने वाली साबालेंका का खिताबी इंतजार मजीद बढ़ गया है. उन्होंने आखिरी मरतबा मार्च में इंडियन वेल्स और मायामी के खिताब जीत कर सनशाइन डबल मुकम्मल किया था. कतर स्टार्स लीग सेकेंड डिवीजन के चौथे राउंड में अलमाखिया ने बुध के रोज सऊद बिन अब्दुलरहमान स्टेडियम में अल शमाल फ्यूचर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी. कतर मेंस जनरल बास्केटबॉल लीग 2026-2027 के सीजन के दूसरे राउंड में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे. अल गराफा स्पोर्ट्स क्लब में हॉल में अल अहली का मुकाबला कतर स्पोर्ट्स क्लब से होगा जबकि अल वकरा की टीम अल गराफा से सामना करेगी. कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन फ्रेंच फुटबॉल का पेरिस सेंट जर्मेन के टाउन से 30 अक्टूबर को लसेल इंटरनेशनल सर्किट में वी रन दोहा रेस का इनेकाद करेगी. इस इवेंट में तकरीबन 2000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है. रेस में 3 मुख्तलिफ डिस्टेंसेस रखे गए हैं जिनमें बच्चों के लिए 1 किलोमीटर जबकि बालिग अफराद के लिए 5 और 10 किलोमीटर की रेसेस शामिल हैं. इस इवेंट में फैमिली नौजवानों इनफरादी रनर्स और कॉर्पोरेट टीम्स की शिरकत मुतवक्के हैं.

वो सबसे बड़ी कामयाबियां, आई मीन जो लोग अक्सर सोचते होंगे अरे जॉर्ज बेस्ट है तो व्हाई देयर इज नो सक्सेस, वो नहीं मिल सके। बेस्ट को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी नहीं मिला। और यहां पर मारूफ ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले भी कहते हैं कि ही हैज मिस्ड द जीनियस इन अ वर्ल्ड कप, द बेस्ट जीनियस फुटबॉलर हु हैज नेवर प्लेड अ फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज नन अदर देन जॉर्ज बेस्ट। शायद इसी वजह से उनका इंटरनेशनल करियर उनकी क्लब फुटबॉल की लेगेसी के मुकाबले में हमेशा कम नुमाया रहा। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट जॉर्ज बेस्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, नोबडी टॉक्स अबाउट कि उनका अपने मुल्क के साथ यानी नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ उनका परफॉर्मेंस, यानी क्या क्या मैचेस वो खेले, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि भाई छोड़िए आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बिकॉज जॉर्ज बेस्ट वॉज नोन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जॉर्ज बेस्ट ने 1984 में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनका नाम फुटबॉल की तारीख से कभी रिटायर नहीं हुआ। 25 नवंबर 2005 को सिर्फ 59 साल की उम्र में जॉर्ज बेस्ट दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी फुटबॉलिंग लेगेसी आज भी जिंदा है। जॉर्ज बेस्ट ने हमें ये बताया कि फुटबॉल सिर्फ रिजल्ट का नाम नहीं, फुटबॉल एक फन है, एक जज्बा है और कभी कभी एक आर्ट भी है। और जॉर्ज बेस्ट इस आर्ट के सबसे खूबसूरत आर्टिस्ट में से एक थे। उनकी जिंदगी हमें एक और सबक देती है, टैलेंट इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस टैलेंट को संभालने के लिए डिसिप्लिन और बैलेंस भी जरूरी है। जॉर्ज बेस्ट एक जीनियस, एक सुपरस्टार, एक कंट्रोवर्शियल फिगर और फुटबॉल की तारीख का वो नाम जिसे दुनिया आज भी मोहब्बत याद करती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
1: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
0: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
2: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दो हवाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज की अपडेट खास करके गेमर्स के लिए है, तो गेमर्स जरा ध्यान दें, और वो लोग जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो गेमिंग करते हैं, मेरे भी आसपास लोग हैं जो मुझे देखते हैं और कहते हैं यही है हमारे घर का गेमर। तो अगर आप अपने घर के गेमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है आज की ये खबर। आई एम प्रीटी श्योर यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन इट, लेकिन फिर भी बता दूं, हैंड हेल्ड पीसी गेमिंग में बूम आई है। लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपना गेमिंग कंसोल, अपना पीसी, व्हाटएवर। अभी इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उनमें से जो मेन है ऑफकोर्स स्टीम डेक और आसुस रोग। ये एसुस का रोग और स्टीम डेक मार्केट में है, दोनों के दोनों अपने हेफ्टी प्राइस के साथ हैं, बट दे काइंड ऑफ जस्टिफाइड। अगर आप देखेंगे हैंडहेल्ड गेमिंग पीसीज मैच्योर हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस आ चुकी है, सिलिकॉन प्लेटफॉर्म्स अब कैपेबल हैं कि आपको ट्रिपल ए गेम्स, जो हाई बजट गेमिंग गेम्स हैं, वो भी आप इजिली प्ले कर पाते हैं। अगर मैं एसुस की बात करूँ, रोग LI, वो लिटरली रीडिफाइन करता है पोर्टेबल पीसी को। आप अपने साथ आप पीसी लेके चल रहे हैं, बड़ी बात है, आपके पॉकेट में है। और क्या चाहिए आपको, 80 वॉट बैटरी, AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर, 24 GB रैम, और ऊपर से थर्मल आर्किटेक्चर है ताकि आपका जो गैजेट है वो इतना हीटअप ना हो और हैंड हेल्ड के हिसाब से बढ़िया चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी विंडोज भाई बढ़िया चल रही हैं और कस्टम हैंडहेल्ड ओवरलेज भी हैं। तो आप अगर एक एक्सबॉक्स प्लेयर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे

0: पीसी बिल्ड कराना है और आप घर में ज्यादा वक्त बिताते हैं तब इट इज जस्टिफाइड. आप घर पे बनाइए पीसी, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू वांट समथिंग जो आप आप टीवी ना डिस्टर्ब करें किसी का, आप कोने में बैठ के खेल सकें, तो अब थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइसेस आर स्टेज्ड एट वन पॉइंट, बढ़ नहीं रहे. तो एक्सबॉक्स गेम पास, एपिक गेम्स, ये सारे के सारे जो है आपको इजीली खेलने को मिलते हैं. और अगर आप स्टीम डेक की तरफ चले जाते हैं तो आई थिंक अभी 2000 के ऊपर ही है, उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं. वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, डिस्प्ले भी है, कस्टमाइजेबल टीडीपी लिमिट्स भी है, और डेस्कटॉप लेविंग लेवल की गेमिंग भी आपको मिल रही है, वो भी पोर्टेबल फॉर्म में. तो और आपको क्या चाहिए? मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं प्लेस्टेशन पे हूँ और मैं पीएस का पोर्टल यूज करता हूँ जो कि हैंडहेल्ड है, मैं उससे थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फीचर्स होने चाहिए कतर में भी, वो अभी सिर्फ यूएस और एक दो कंट्रीज में दिए, आई थिंक दो ही कंट्रीज में दिए हैं, वो यहाँ पर भी होने चाहिए, जो कि है क्लाउड गेमिंग, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो अगर क्लाउड गेमिंग के लिए मुझे 1500 रियाल ऊपर पे करने पड़े तो आई वोंट डू इट. तो आई थिंक सोनी नीड्स टू वर्क ऑन इट. इस रेस में सोनी अभी पीछे चल रहा है और स्टीम डेक डेफिनेटली आगे आ चुका है. स्टीम डेक ने जो एक चीज बढ़िया करी है वो है अपने हैंड हेल्ड पीसी के साथ. एसुस भी है मार्केट में, दोनों के बीच में बिल्कुल टक्कर का कॉम्पिटिशन है. स्टीम डेक अभी भी एक लेवल ऊपर ही है, हालांकि स्टीम डेक मार्केट में उतरा अपने गेमिंग कंसोल के साथ भी. पर ब्रो, गेमिंग कंसोल वर्थ 8000 कतरी रियाल्स, आई एम सॉरी, इतना तो कोई खर्च नहीं कर रहा है. अगर उसको स्टीम डेक का चाहिए कि गेमिंग कंसोल मिले, तो 8000 रियाल तो नॉर्मल इंसान नहीं खर्च करने वाला. उससे बढ़िया अगर उसे खर्च करना होगा तो वो लिटरली एक पीसी घर में बना लेगा और बनवा भी सकता है, विच एवर वे, बट दैट्स द ट्रूथ. और ये समझने की जरूरत है स्टीम डेक को, आप सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं एक कंसोल में, ये बेचने का तरीका नहीं है. बिकॉज हर कोई जो है इसे इग्नोर करके चला जाएगा और इससे बढ़िया पीसी ही बना लेगा. 8000 में एक बढ़िया पीसी बनाने की जगह मैं क्यों कोई कंसोल लूंगा? सो दैट इज हाउ इट इज. आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन. अगर आप एक गेमर है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप एक पीसी गेमर हैं या एक कंसोल प्लेयर हैं, और आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट. क्या आपका मन है हैंडहेल्ड की तरफ जाने का या नहीं? मैं, मेरा इसमें 50-50 है भाई. आई एम नॉट श्योर कि मैं हैंडहेल्ड के लिए भी तैयार हूं भी कि नहीं. 50% आई एम देयर, स्टिल रीचिंग. तो अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा FM 107 Qatar पे. ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं.
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
4: दिल से देसी.
5: स्कैम अलर्ट.
6: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हैं. और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. क्यों? क्योंकि ये स्कैम आपके साथ तब होता है जब आपके सामने स्कैमर आ जाता है, आपसे बातें करता है, आपके घर पे काम करता है. क्या है ये दोस्तों? ये स्कैम है हाउस क्लीनिंग का स्कैम. घर की सफाई और मेंटेनेंस हर फैमिली की जरूरत होती है, खासकर फेस्टिवल के सीजन में या वीकेंड्स पर, जब लोगों के पास खुद सफाई करने का वक्त नहीं होता, वो कुछ आराम करना चाहते हैं, या फिर वो अपने घर किसी की दावत करना चाहते हैं और फैलावा बहुत ज्यादा हो जाता है. ऐसे में लोग हाउस क्लीनिंग की हेल्प लेते हैं. फ्रॉडस्टर्स ने अब इस सेक्टर में भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया है. ये फेक हाउस क्लीनिंग कंपनीज और फेक क्लीनिंग एजेंट्स बनकर आते हैं और आम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं. वो प्रोफेशनल दिखने के लिए फेक फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, और जहां वो घर की डीप क्लीनिंग है ना, वॉशिंग और मैट्रेस का साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कहते हैं और

प्राइसेस एकदम लो कर देते हैं और ऐसा ऑफर लगता है कि यार इससे तो कम कहीं और मिलेगा नहीं। जब कोई क्लाइंट इन फेक क्लीनिंग सर्विसेज को हायर करता है तो ये स्कैमर्स उनके घर आते हैं और वो कई बार आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस बहुत ज्यादा गंदा है, फला सामान जो है बहुत गंदा है, ये सोफा बहुत गंदा है, इतने ही अमाउंट में ये सामान जो है मैं घर से बाहर ले जाऊंगा, हम अपने स्टोर ले जाएंगे, हम अपने सफाई करने वाली जगह पे ले जाएंगे, अपनी लोकेशन पे, अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहां पर क्लीन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। वो आपका सामान उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एडवांस में 50% पेमेंट कर दीजिए। ये आपके घर आते हैं और यू नो दो चार दिन सफाई भी करते हैं, कई बार ये कहते हैं कि आप हमें बार बार बुला सकते हैं, ये थोड़ा अमाउंट लेते हैं और फिर ये चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये हाउस क्लीनिंग करने वाले लोग आपके पास आते हैं तो ये आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं इस तरह से कि आप जो है 10 रुपए पर आर के हिसाब से हमें दे सकते हैं और हम डेली आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे, या 10 कतरी रियाल 20 कतरी रियाल भी आप दे सकते हैं और हम आपके घर 3 से 4 घंटा रुकेंगे, काम करेंगे, आपको जो भी काम करवाना है हम वो करेंगे। 10 कतरी रियाल पर आवर या 20 कतरी रियाल या फिर यू नो आपके मुल्क में भी अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि सिर्फ 50 रुपए 1 घंटे का लेंगे, तो ये बहुत सस्ता लगता है। तो आपको लगता है कि क्यों ना डेली ही किसी मेड को मैं रख लूं, तो 1-2 दिन ये आपके यहाँ सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है यार डेली भी रख सकते हैं, 1 दिन का खर्चा 100 है तो क्यों ना हफ्ते में हम यू नो 5 दिन के लिए उनको रख लें। ये आपको कोशिश करते हैं कि फंसा लें और आप एज अ मेड इनको अपने पास रख लें। जब आपको ये लगता है कि इनको रख लेना चाहिए, आप इनको रखते हैं और फिर लगातार ये 5 से 7 दिन आपका काम करते हैं। एंड देन होता ये है कि आपसे 1 दिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 महीने के लिए इनको रखा है और हफ्ते में 5 दिन आना है आपको, इन्होंने 5 से 10 दिन काम किया और ये फिर 1 महीने का अमाउंट मांग लेते हैं। 1 महीने का अमाउंट जहां आपने इनको दिया, या फिर 1 महीना नहीं 20 दिन का अमाउंट आपने दे दिया, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 10 दिन काम किया इसने, 10 दिन का अमाउंट तो इसका बनता है, चलो 10 दिन एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं और जब ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा इसका 1 महीने का, तो हम हिसाब जो है

0: आकर आपको ठग रहे हैं। तो दोस्तों यही तरीका है इनसे बचने का कि सबसे पहले वेरीफाई करें इनकी QID अपने साथ रखें और फोटो उस QID की क्लिक करके वापस इनको QID दे दें, या फिर और डिटेल्स इनकी रखें, इनके मोबाइल नंबर को चेक करें, इनके घर के एड्रेस को चेक करें और देखें कि क्या ये लेजिट है या नहीं, क्या ये लोग असल में किसी तरह के मेड सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या नहीं। क्योंकि कतर में अगर आपको एज अ मेड काम करना है तो ये जरूरी है कि आप किसी कंपनी से जुड़े रहे या फिर आप किसी फैमिली के अंडर एज अ स्पॉन्सर आए हो। तो ये कुछ तरीके हैं पहचानने के, ऐसे लोगों को जानने के, ऐसे लोगों को कि आपके साथ किसी तरह का स्कैम ना हो सके। उम्मीद है कि इस तरह के स्कैम के बारे में आपको तफसील से समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूं एक और फाइनेंशियल टर्म की, और ये टर्म है बैलेंस शीट। जी हाँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है तो वो है बैलेंस शीट। अक्सर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि किसी स्पेसिफिक डेट पर कंपनी के पास क्या है एसेट्स, कंपनी पर क्या कर्ज है लायबिलिटीज, और असल में ओनर्स का कितना हिस्सा बनता है इक्विटी। ये बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन का स्नैपशॉट है। अब समझते हैं कि बैलेंस शीट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों का एनुअल प्रॉफिट 500,000 कतर रियाल है, दोनों का रेवेन्यू भी सेम है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि पहली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स है, कम डेट है, जबकि दूसरी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन्स है, कम कैश है। अब इन्वेस्टर किस कंपनी को प्रेफर करेगा? अक्सर पहली कंपनी, यही कहा जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, बैलेंस शीट भी देखते हैं। अब बैलेंस शीट के भी कंपोनेंट्स हैं और इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज जो है वो कंपनी की ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स होती हैं, यानी जितना पैसा कंपनी को दूसरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड डेट है, सप्लायर्स पेमेंट है, टैक्सेस पेबल है, सैलरीज पेबल है, ये सारी चीजें सिंपल वर्ड्स में लायबिलिटीज हैं। यानी लायबिलिटीज वो अमाउंट्स हैं जो कंपनी पर वाजिब होते हैं, यानी उन्हें अदा करना होता है। और एसेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई कैश है, इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है। अब बात करते हैं ओनर्स इक्विटी की। ये कंपनी के मालिक का असल हिस्सा होता है, यानी अगर कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं और सारे डेट्स अदा कर दिए जाएं तो जो पैसा बच जाए उसे ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो आपने सुना होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये फॉर्मूला ही बैलेंस शीट की बुनियाद है। देखिए हर बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पर बैलेंस होती है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। तो बस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को भी कैटेगराइज किया गया है। करंट एसेट जिसमें मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सब करंट एसेट्स हैं। वहीं नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, व्हीकल्स है। वहीं पर कुछ करंट लायबिलिटीज होती है जो एक साल के अंदर पे करनी होती है, जैसे यूटिलिटी बिल्स है, सैलरीज है, सप्लायर पेमेंट्स है। वहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती हैं जो साल से ज्यादा पीरियड में रिपे होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वगैरह। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखकर कई इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हासिल करता है। क्या कंपनी के पास कैश है? क्या डेट बहुत ज्यादा है? क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है? क्या कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है? क्या कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल कर सकती है? और ये सब

इंफॉर्मेशन मिलती कहां से है? बैलेंस शीट से. तो अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो बैलेंस शीट आपको बता रही है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपके डेट्स कितने हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्सपेंशन का पोटेंशियल कितना है. दोस्तों सोचिए, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो आपके पास क्या है? एक घर शायद 1 मिलियन का, सेविंग्स शायद 100,000 का त्रियाल, कार शायद 100,000 का त्रियाल, तो आपका टोटल एसेट हुआ 1.2 मिलियन का त्रियाल, है ना? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती है. बहुत से लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है लेकिन उस पर डेट इतना ज्यादा होता है कि फाइनेंशियल रिस्क में होता है. तो बस जाते जाते ये कहूंगी कि बैलेंस शीट बिजनेस का आईना है. ये नहीं बताती कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है, बल्कि ये बताती है कि कंपनी के पास कमाने की कितनी कुव्वत है. स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट से पहले बैलेंस शीट समझते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस से पैदा होती है. चलिए यहाँ पर मैं आपसे लूंगी इस टॉपिक पे इजाजत. कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को, एक और नए टर्म को एक्सप्लोर करेंगे. तब तक के लिए मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और

0: झलक है आज 15 तारीख, ऐसा लग रहा है सिर्फ पहला हफ्ता चल रहा है.
1: पता तो नहीं चला,
0: कुछ जल्दी गुजर गया,
1: जल्दी गुजर गया.
0: और पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है, अब जब शो से अलग होंगे ना अगले हफ्ते, तो ये स्लो डाउन हो जाएगा, नहीं गुजरेगा अक्टूबर. हाँ ये है.
1: हाँ, सारी तरफ मुझे भेजना पड़ेगी. देखो ये सोच के दिल मेरा घबरा रहा है.
0: मुझे ऐसा लग रहा है
1: काम बढ़िया, काम बढ़िया.
0: देखो बहुत ही कोई बदतमीजी वाली बात है. मतलब इंसान थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल देता है, सफा तो, मैं तो मिस करूंगी. हाँ, तो सफा
1: मिस करूंगी ना. मतलब एक हफ्ते मुझे प्रेप भरना, रोजाना भरना पड़ेगी.
0: काम बढ़ जाएगा.
1: हाँ काम बढ़ जाएगा.
0: माविश पैशन से करो
1: काम. सच बोलती हूँ मैं,
0: नौकरी नहीं लगनी चाहिए.
1: वो नौकरी नहीं लग रही,
0: पैशन लगना चाहिए.
1: लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, तो अभी वो जो है ना वो अकेले पे आ जाएगी जिम्मेदारी, तो ये चक्कर हो जाएगा.
0: माविश देखिए, मैं आपको जन लगकर दम पत्थर जम बनवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप हर चीज
1: यार मैं पहले ही हूँ. ये पहली तो आसानी मिली थी कि
0: किसी चीज का तो क्रेडिट लेने दो.
1: रिलैक्स
0: किसी चीज का तो क्रेडिट लेने
1: दो. अच्छा जी, तो फिर क्या होने वाला है? मिस तो करेंगे यार, मतलब ये तो है
0: ना, मिस करने वाली.
1: हाँ
0: दिल पत्थर रख के बोलना ही पड़ेगा. सच
1: बोलो
0: कि मिस करूंगी मैं आपको.
1: अच्छा सच बोलना पड़े.
0: अच्छा भाई मावेश, देखें भाई आज का हम शो शुरू करते हैं. और आज आपको पता चले भाई, अरे हाँ हमारे लिसनर्स, अरे लिसनर्स भी तो हैं.
1: वो हैं, वो कॉल पे हैं ऑलरेडी. हाँ,
0: अच्छा है. तो भाई आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर. द नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377.
1: और मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107.
0: और भाई आपको ये बताते चलें, याद दिलाते चलें कि इस शो में जो है वो
1: रुको भाई.
0: हाँ, इस शो में जो है वो टॉपिक शॉपिक भी होता है. मतलब ये कि मुद्दे पे बात की जाती है. और आज का मुद्दा पता है क्या चल रहा है? आज का मुद्दा ये चल रहा है कि आप जरा बताएं, सोच समझ के जरा बताइएगा कि शुड वी ऑलवेज फॉलो आवर पैशन. हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज की बात हो रही है. लोग तो कहते हैं हाँ भाई पैशन फॉलो करो. अब यहाँ पर ना वो रणवीर कपूर की कोई मूवी नहीं बन रही, तो रियलिस्टिक होकर बात करें. रियलिस्टिक होकर कि भाई देखिए, मूवीज में होता है कि लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं. भाई किसी ने सिंगर बनना था तो वो बन गया, किसी ने पेंटर बनना था तो वो जो है ना पिकासो बन गया. ऐसा है भी कि लोग अगर फॉलो करें तो बन भी जाते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है, अगर रियलिस्टिकली स्टैटिकली आज के दौर में देखा जाए, तो क्या आप अपने पैशन से, पैशन को फॉलो करते करते पैशन फॉलो कर लेना चाहिए?
1: हाँ, मतलब मैंने तो जो पैशन अपना रखा, पहले मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था, लेकिन वो मैंने खुद ही विड्रॉ कर लिया उस चीज से ना, तो वो नहीं हुआ. लेकिन फिर जो दूसरी चीज सोची वो मैं बन गई.
0: सही, माशाल्लाह.
1: और मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचो, जो पैशन अगर आपका हो तो उसके लिए फिर आप हार्डवर्क करो. अगर वो पैशन है पहले तो अच्छा, पहले तो ये ना वो करना पड़ेगा इस चीज को आइडेंटिफाई. कि चीज जो आप समझ रहे हो वो वक्ती तौर पे एक डिजायर है या फिर वो पैशन.
0: हाँ, अच्छा पैशन का पता है क्या हिसाब किताब है? अगर उर्दू में साफ लफ्जों में बोलूं तो पैशन होता है शौक और दिल की आवाज, मतलब जुनून होता है.
1: जुनून होता है.
0: और ये मुझे ऐसा लगता है इसे हर जुनून का ना एक डाउनफॉल भी आता है, प्लेटू होता है हर
1: वो है
0: का.
1: देखो मतलब आप पैशन है, आप हार्डवर्क करो. अगर नहीं होता, इन केस नहीं होता, तो फिर मान जाओ कि नहीं है.
0: अच्छा उन लोगों को क्या करें जो पजल के हर, मतलब वो एक पजल का ऐसा पीस है जो हर जगह फिट हो जाए.
1: हर जगह फिट हो जाए मतलब
0: पजल होती है ना, उसके अपने कुछ कोने होते हैं.
1: फिट कैसे हो जाए, पैशन में कैसे फिट हो जाएगा बंदा?
0: पैशन में नहीं, विदाउट पैशन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं,
1: तो फिर उनको पैशन नहीं होता.
0: हाँ
1: सिंपल सी चीज
0: बात है. कुछ लोग जुनून की हद तक कुछ चीजों के पीछे पागल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर किसी ने बोला है कि भाई मैं जो है ना डॉक्टर बनूंगा, ठीक है. मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, मेडिसिन यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसे बच्चों को देखा जो भाई जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे. लेकिन वो दिन रात ट्यूशंस पढ़ाते थे, अपनी फीस कवर करते थे, जॉब्स करते थे. उनको डॉक्टर बनना था भाई, और वो आज बने बैठे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल.
1: और तुमने क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हारा वो पैशन
0: नहीं था. मेरा पैशन
1: एग्जैक्टली
0: मैंने छोड़ दिया फील्ड.
1: हाँ, तो ये वजह ये है ना कि आपका जो पैशन होगा ना, उसके लिए आप हर तरह से सोचोगे और करोगे. जैसे मैंने अपनी शायद उम्र के शुरू से था डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर एक फैसिनेशन होती है ना, डॉक्टर की इज्जत बड़ी होती है. तो वो एक था, जब भी कोई पूछता था कि आप बड़े बड़े हो के क्या बनोगे, डॉक्टर, यही होता था. लेकिन फिर वो बाय द टाइम समझ में आया कि नहीं, वो ये मेरा पैशन नहीं है. फिर मैंने पहली दफा जब रेडियो सुना, मतलब रेडियो हमारे घर पे चलता था, रेडियो पाकिस्तान चलता था, छोटे थे बिल्कुल, वो क्या वो तलाश गुमशुदा के ऐड आ रहे होते, तो वो फैसिनेट नहीं किया, लेकिन फिर बाद में जब हमने रेडियो सुना, एफएम सुना, तो मुझे हुआ यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से 14 साल की थी उस वक्त, मेरे दिमाग में ये बात बढ़ गई थी कि मैंने रेडियो प्रेजेंटर बनना है, और उसके लिए मैंने बकायदा मेहनत की है, कुछ 3 साल मेहनत की है।
0: आपको याद है मानी असर आते थे?
1: हाँ हाँ,
0: मेरा उनको सुनने के बाद दिमाग ऐसा हुआ था, मैंने कहा भाई मेरे को ये चाहिए लाइफ में।
1: हाँ एग्जैक्टली exactly. तो उसके लिए फिर मैंने मेहनत की है बकायदा, मतलब अपने आप को, मैं बहुत शाय नेचर हूँ, तो मैंने अपने आपको ये किया था यार कम से कम माइक के सामने बोल लूं।
0: हाँ,
1: चलो लोगों के सामने बोलूं ना बोलूं, अभी भी नहीं बोल पाती, लेकिन कम से कम माइक के सामने बोलूं। खैर भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनका पैशन रहा है जिंदगी में कोई। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: भाई सलाम मैडम।
1: जी अली रजा, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं भाई क्या हाल है? हैप्पी वीकेंड।
2: हैप्पी वीकेंड मैडम, वाओ कल वीकेंड।
0: ये देखें ये वाली
1: आपका है कि नहीं, आपका है कि नहीं ये बताएं।
2: मेरा है, है मेरा।
1: ओए होए होए, जबरदस्त जबरदस्त, एक साथ आ गए हम लोग।
2: यस
1: जबरदस्त गुड
0: जी। वैसे जो जैसे उन्होंने कहा ना ओ वाओ कल वीकेंड है, इनकी टोन और मेरी टोन बिल्कुल एक जैसी चल रही है इस वक्त, कि पता ही नहीं चला कि वीकेंड
1: आ गया। पैशन नहीं है ना लाइफ में तुम्हारी कोई?
0: मेरी लाइफ पैशन है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, मुझे सोना है।
1: ओके अली रजा आप बताएं भाई, आपकी लाइफ में है कोई पैशन? है
2: पैशन था मैडम, मजबूरियों में खत्म हो गया।
1: आय हाय मजबूरियां खा गई।
2: मैडम हम आदमी लोग हैं, हमारा कोई पैशन नहीं होता, पैशन
0: नहीं होता, हमें दर्द नहीं होता, हम मरते हैं दर्द नहीं होता। हां ये क्या बात हुई,
2: हम आदमी लोग हैं।
1: आय हाय
2: हम आदमी लोग हैं, हमें मजबूरियां घेर लेती हैं आगे पीछे से।
1: क्या बात है। अच्छा पता है मेरा भी रहा है वैसे ये शौक, पैशन नहीं कहूंगी, पैशन नहीं कहूंगी, लेकिन गिटार बजाने का मुझे शौक था। और अच्छा मेरे नेल्स ना काफी अरसे से छोटे छोटे रहे हैं, तो मैंने जिससे बोला ना उन्होंने कहा आप बजा सकती हैं, आपके अंदर है गिटारिस्ट, आपके नेल्स छोटे हैं, लड़कियों के नहीं होते। तो भाई सीखा कि नहीं सीखा ये बताएं?
2: हमारे अब्बू ने मना कर दिया था, 3-4 साल का था, मम्मी बता देती है, 4 साल के थे, बहुत शौक था गिटार, गिटार का रोता था गिटार के लिए, तो अब्बू ने मना कर दिया। अब्बू ने बोला गवाचिया बनेगा, गवाचिया ये गवाचिया बनेगा ये।
0: मुझे सिंगर बनने का बहुत शौक था, मेरी अम्मा और अब्बा कहते थे क्या ये क्या अब हमारे घर में ये होगा।
1: नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो भाई देखें ये शौक तो हमारे भी थे, मेरा अभी गिटार मैंने अपनी बेटी को पकड़ा दिया है, मेरी बेटी को अब शौक है, अब देखते हैं उसका शौक कहाँ तक जाता है।
2: देखते हैं मैडम, हम लोग अब वैसे माँ बाप नहीं बन सकते ना जैसे थे, लेकिन हमारे माँ बाप ठीक थे, कम से कम अपनी जगह पे नहीं खड़े तो है ना।
0: हाँ, ये आपकी जो बात है ना, ये क्रेडिट ये ताज मैं अम्मा बाई सरे पहनाती हूँ कि आज जहाँ खड़े हैं ना वहाँ उनकी सख्तियों की वजह से कहीं ना कहीं खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी औलाद शायद उतना रफ एंड टफ बन सकेगी जितना हम रफ एंड टफ थे।
1: अच्छा मेरे ऊपर भाई ऐसी कोई सख्तियाँ नहीं हुई, मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मामला अपोजिट है।
2: हमारे पे रही है मैडम, हमें घर संभालना था, हमें माँ बाप बुरे माँ बाप को संभालना
0: था। लड़कों का एक होता है, लड़कों का जो है ना एक कल्चरल एक बना दिया गया है कि लड़कों को रफ एंड टफ होना है, दे आर सपोज्ड लड़का है बस बस ये बस उसकी गलती है क्यों लड़का है। तो चले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चीजों के साथ साथ चीजों को चीजें पैशन आपका रस्ती हो सकता
1: है, तो नहीं होता फिर अब कि बजाई लेते कभी, अब नहीं होता। हाँ अच्छा वैसे ये मैं ये भी सोच रही हूँ 4-5 साल में क्या पता बंदे को के पैशन है, छोटी उम्र थी ना है ना, शौक हो ना आपका।
2: शौक था
1: हाँ।
2: अच्छा ये बताएं, ये रिग्रेट है मुझे कि मैं नहीं कर सका।
0: नहीं नहीं है, एक बात बताएं चलिए ये तो बचपन का था, बचपन का जब होश में आए ना, तो एक टीन एज में किसी चीज का पैशन होता है, जब हम होश में आ जाते हैं उस वक्त कोई चीज ऐसी थी?
2: हाँ था ना,
0: क्या था?
2: दूल्हा बनने का।
1: वो बन गए और वो ऐसे बने हैं कि बस
0: चलो ये तो एक ये एक डिमांड तो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि बड़े कम लोग होते हैं सफा जो कि इतना खुल्लम खुल्ला इजहार कर सकते हैं अपनी वाइफ से मोहब्बत का अली रजा करते हैं भाई अली रजा हमारा हीरो है
0: करना चाहिए भाई करना चाहिए
1: वो तुम कह रही थी ना ये हीरो एक नेम है तो भाई अली रजा हमारा हीरो है ये खुल्लम खुल्ला इजहार मोहब्बत करते हैं अपनी वाइफ से माशाल्लाह ये

0: इतना तो बनता है, बेगम का इतना हक तो
1: बिल्कुल माशाल्लाह
2: उसका बहुत हक बनता है मैडम, बहुत हक बनता है, बहुत हक बनता है,
1: जबरदस्त
0: किताब लिखेंगे भाई, बंदा था एक ऐसा जो बेगम की तारीफ करता था, आए हाय हाय हाय,
1: रियल रियल स्पीशी यही है।
2: कैमरा कुछ छेड़ता भी अभी ना, पहले पहले वो एक गाना था उसका ना, गोविंदा का था वो, मैंने सुना था कहीं से ना, तो कभी कभार जब होता है ना तो मुझसे फरमाइश करती है,
1: अच्छा
2: तो बोलता हूँ तुमने मेरी जिंदगी
0: खराब की है। अच्छा ये एक बड़ा बेसिक सा एक चीज है कि मर्द हजरात को ना, ये शायद इनका बिल्ट इन कुछ ऐसा मामला है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, और अगर एक्सप्रेसिव हो जाए तो साथ वाला टॉन्ट मार देता है, ये तो जोरू का गुलाम है।
1: हाँ
0: ये बहुत गलत, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत चीज है। मैंने जब मैंने सीरत नबी का थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था तो मैंने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि आपका सुलूक आपकी जौजा के साथ कैसा था, तो उसके अंदर इतनी खूबसूरत बातें लिखी हुई थी भाई कि आप हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी इजहार करते थे कि भाई हाँ मेरे बेगम इज माई, आप कह लें कि माई हम कहते हैं बेटर हाफ। उस जमाने में लोगों का ये था, ऐसे ही ताने उस जमाने में देते थे लोग कि भाई ये तो जो है ना आप कैसे, मतलब उस जमाने का तो ट्रेंड ये था ना कि आप बेगम के अलावा जो है ना बाकी सारी औरतों को आप वो करते फिरो, प्रेज करते फिरो, बेगम को ना करो, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन हैरान होकर लोग पलट कर देखते थे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कहते मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर की बेटी से, तो वो एक फॉर्म ऑफ लव था, वो एक अनाउंसमेंट थी, इट वाज वेरी प्लीजिंग, इट वाज वेरी गुड, तो वो होना चाहिए। आज ये कल्चर में आ गया है, इट इज नॉट समथिंग विच इज बिल्ट इन, कल्चर में आ गया हमारे के नहीं,
1: लेकिन ये अच्छी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो भाई आपका दूल्हा बनने का ख्वाब तो पूरा हो गया।
2: मुझे कोई बोले तुम बेगम के जोरू के गुलाम, मैं हूं भाई, मैं हूं,
1: मैं तो हूँ, सही बात है, बाकी ऐसे ही होना चाहिए, जबरदस्त, गुड, वेरी नाइस।
0: चलो जी, और कुछ कहना चाहेंगे पैशन के बारे में?
1: सुनती है या नहीं सुनती है बताएं भाई, वो सुनती है या नहीं सुनती है? सुनती है, ओए होए, जब भी तो मतलब इतना जोर लगा के बोला जा रहा है।
0: सुनती है,
1: गुड।
2: मेरी वालदा की बीमारी के टाइम में बहुत अपनी वालदा से बहुत प्यार करता था, मेरी वालदा की बीमारी के टाइम में बहुत किया उसने, नहीं क्योंकि जब बंदा बीमार होता है ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी कि
0: डिफिकल्टी हो जाती है बहुत,
2: लेकिन वो किया उसने, जहाँ वो मेरे लिए किया उसने, मैं जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ
0: भाई। ये वही वो वाली बात है कि गाड़ी है दो पहियों पे चलने वाली, अलाइनमेंट दोनों की तभी सही रहती है, दोनों पहिए सही रहे एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में रहे तो चलती है जिंदगी आराम से।
2: मेरी गाड़ी इसी पे चलती है।
0: अच्छा,
1: मेरा इंजन वही है।
0: अच्छा, गुड।
1: यहाँ पे आप पहियों की बात करी, यहाँ पे इंजन ही वही चल रहा है भाई।
0: मैं कह रही हूँ नजर ना लगे, अल्लाह ताला नजर से बचाए,
1: अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, हमेशा खुश रखे, हमेशा साथ रखे इंशाल्लाह ताला।
0: चले भाई, एक पैशन तो पूरा हुआ बंदे का, पैशन फॉलो कर सकता है इंसान, करे करे, पैशन की तरफ चलना चाहिए भाई।
1: सही है, चले अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और वीकेंड को खूब अच्छे से इंजॉय कीजिएगा, ठीक है, खूब सारी बातें कीजिएगा बीवी से,
2: अपनी
0: जैसा अपने बारे में गुमान करता है ना वो वैसा ही हो जाता है। भाई ये तो इस उम्र में आ गए, हम सबका एंजॉयमेंट यही है।
1: चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉलर हमारे साथ और हैं, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। अच्छा भाई, अली रजा थे हमारे साथ, और हमारे पास कबीर का मैसेज है। कबीर कह रहा है कि पैशन बिना एम्बिशन बेकार है, बिना एम्बिशन के पैशन इज लाइक अ स्पोर्ट्स कार विदाउट इंजन।
0: कबीर भाई जब बात करते हैं ना तो ठा करके करते हैं,
1: ऐसे ही करते हैं कि लग जाती है। चलें दी, तो इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर, हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह
3: वरकातुहू। खैरियत से हैं
1: जी? जी बिल्कुल खैरियत से हैं।
3: गुड वाली मॉर्निंग,
0: वो आपका हो गया और समझ में अभी आज भी आज मैं समझ गई थी कि भाई आसिफ भाई एक और नया अंदाज लेकर आए आज
4: नहीं नहीं नहीं वो अंदाज नहीं वो कल जो आपने बोल दिया था ना वो दिल पे बात लग गई थी गुस्से में मैं बात करता हूँ
0: सही तो भैया
4: गोली की तरह दिल पे बात लग गई थी मैं बहुत
0: एंग्री मैन बनकर आते हैं
4: दो चार बोतल पानी पी के कुल्ली वुल्ली कर लूं थोड़ा गला वाला
0: साफ
4: हमारी जो मदर टैंग है मतलब बहुत

0: करने में जो है यहाँ पे आके थोड़ी सी खराब हो गई है, मैं तू ये भी शुरू हो गई है ना। हमारे वहाँ ऐसे तो बोल नहीं सकते। पहली चीज
1: आप कहाँ से, कहाँ से आप?
0: लखनऊ।
1: ओहो, लखनऊ वाले। सही, लखनऊ वालों को तो मशहूर होता है ना आदाब मोहब्बत।
2: नहीं नहीं, ये लखनऊ वाले ही हैं जिन्होंने जो है वो बॉलीवुड की मूवीज में उर्दू और पाकिस्तानियों को जो है ना वो बिल्कुल ऐसी वाली खालिस उर्दू पकड़ा दी है कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, हम तो ऐसी उर्दू नहीं बोलते।
0: हम लोग रहने वाले लखनऊ के, लेकिन जो है दादा के टाइम से हम लोग, हमारे वाले साहब वगैरह सब जो है कानपुर में आके रहने लगे।
1: सही सही सही सही,
0: ये है मतलब। तो अभी भी मतलब हमारे खानदान के लोग जो है बहुत सारे है, कितने दूर
1: तो वाकई ऐसा वाला रख रखाव होता है जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं लखनऊ का, या जैसे सुना है हमने।
0: मतलब क्या
1: जैसे? मतलब जैसे बहुत ही अदब के साथ बात, अदाब अदाब कर रहे हो सब लोग।
0: नहीं, आदाब आदाब तो कोई करता है, ठीक है। और मसला ये भी है ना कि अब जब जब लड़के बड़े हो जाते हैं, पहले का टाइम और था, आपका टाइम और है, तो बहुत फर्क है। किसी टाइम पे होता होगा ऐसा, अब तो आपस में बात करते हैं, अबे तबे से बात होती है, अमा यार कहाँ थे अब तक आप। हाँ, ये है कि जी जनाब से बात होती है।
1: अच्छा, जनाब होता है। सही, तो मेरे ख्याल है ये बॉलीवुड ले रहा है लखनऊ से आदाब,
2: वही तो कह रही हूं,
1: और सर पे टोपी, आंखों में सुरमा, वो जो पाकिस्तानी दिखाना होता है तो ये बना देते हैं। वो हम हैरान हो जाते हैं कि हमारी यहाँ तो ये जनाब जनाब होती नहीं है, कौन सा पाकिस्तान है भाई।
2: मतलब हमारे यहाँ जनाब पता है वो कब बोलते हैं लोगों को और दोस्तों को, जब उनकी बेइज्जती करनी होती है, और जब हमें मतलब
0: हमें जनाब आप कहाँ थे अब तक, आपका तो इंतजार कर रहे थे।
2: हम दोस्तों से कुछ और ही जबान में मुखातिब होते हैं, जो जबान हम यहाँ पे बोल ना सकते हैं अभी रेडियो पर।
0: वो तो अलग ही, वो तो बड़ी अच्छी,
2: बहुत तमीज वाली,
0: अलग लेवल की।
2: हाँ, वो बस वो बहुत ही अलग सा तो लेवल था।
0: पहली चीज, दोस्तों का आज तक नाम ही नहीं लेते हैं।
2: आपने क्या बात कर दी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं कल परसों बैठी हुई सोच रही थी, मेरे दिमाग में ही ना आए नाम दिमाग में। सारे दोस्तों से हम लोग सनी कहते हैं,
1: अच्छा, असली नाम याद है,
2: माशाल्लाह सेटल हैं। तो वो उसकी कॉल आई तो मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसका नाम क्या है भाई, मुझे याद ही ना है इसका नाम क्या है। तो ये तो वाकई में एक हकीकत बात है, दोस्तों को हम दोस्तों के नाम से याद ही नहीं रखते, हमें पता ही नहीं है कौन है।
0: एक बार हमारे ग्रुप में ये हो गया, सबका नाम अनस होगा, मोटा अनस, छोटा अनस, अच्छा, पतला अनस, अनस।
1: तो ये क्यों हुआ, अनस से इतनी मोहब्बत क्यों हुई आपको, अनस से उन्स क्यों हो गया?
0: एक मजाक बन गया था सबके नाम, वो पता नहीं क्या कुछ आया था, सीरियल था क्या था, उसमें नाम अनस था, तो एक तरफ से 5-6 बंदे थे, सबके नाम जो अनस रख दिए थे, मोटा अनस, टेढ़ा अनस, सीधा अनस।
2: ये हम लोग भी ऐसे, वो मुझे याद है एक दोस्त था हमारा, उसको बेचारे को 6-8 महीने प्लास्टर बंधा रहा था ना पांव पे, उसको फ्रैक्चर हुआ था, तो हम लोग कहते हैं लंगड़ा तैगी। ये लंगड़ी तैगी बहुत दोस्तों के साथ। अच्छा, पैशन के बारे में बात कर रहे थे हम, पैशन के बारे में
1: कहां निकल गए।
0: पैशन का मतलब ये, जब तक वो काम में, जब हम उसको वर्क बना लेते हैं ना अपना प्रोफेशनल, तो फिर दिल थोड़ा सा उबने लगता है उस चीज से। मतलब बेजार हो जाता है बंदा, ठीक है। तो पैशन जो है वो एक अलग चीज हो गई, कि मतलब एक शौक है हमें, हमने शौक पूरे कर लिए, किसी भी चीज का शौक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है मैकेनिक बनना था, मैंने काम सीखा, सब कुछ करा, उसके कुछ साल के बाद बाहर गया, वहाँ भी काम किया, फिर बेजार हो गया,
2: बोर हो गए। हाँ, मैंने कहा ना, हर चीज का प्लेटू होता है,
0: मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है। फिर कुछ और, हमें जब दूसरों को देखते ना, तो हमें फिर वो अच्छे लगने लगते हैं, यार ये तो आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें, पैसन जब तक ठीक है, जब तक जो है प्रोफेशनल नहीं होता है वो।
1: सही।
2: अच्छा, ये आपने बड़ी एक सेड बात की है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पैशन जो है ना वो एक एक्टिविटी होता है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो आपको इंगेज रखता है, या मैं कहूँ कि पैशन

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: निगरानी के मौसर निजामों से लेकर डिजिटल सिक्योरिटी के जदीद

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 107 पर यू मैटर विद महविश एंड सफा.
1: और एक बात आपको याद कराते चलें कि अभी अभी हम कॉल्स लेंगे, हम आखिरी मोमेंट पे नहीं ले सकते कॉल. हाँ, तो हमने मतलब जो ना 55 पे फिर लास्ट कॉल उससे पहले पहले लेनी है. तो हमारे साथ कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग बोथ.
1: गुड मॉर्निंग जी अज्जू, क्या हाल है?
2: वेरी गुड.
0: अज्जू भाई चलो आज चलते हैं हम बारबेक्यू पर, क्या कहते हैं? अज्जू बोलेंगे नहीं मैं काम पर हूँ.
2: आई डोंट लाइक बारबेक्यू.
0: लो, मैंने कहा था अज्जू भाई मैंने लाइफ टाइम में किसी को जो है ना पहली दफा इनविटेशन दिया होगा, मेरा इनविटेशन कोई लेना ही नहीं चाहता. अज्जू भाई दिस इज सो सैड.
1: डोंट लाइक.
0: अज्जू भाई मुझे कौन सा बारबेक्यू पसंद है? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी. झूठे मुंह बोल देते हैं जो भाई, कहते हाँ हाँ हम चलेंगे, बाद में फोन करके मना कर देते.
2: मेरा माय पैशन इज नॉट टेकिंग नॉन वेज, बट सी नाउ आई एम अंडर क्रिटिसिज्म.
0: नॉन वेज नहीं अजू भाई, वेज का भी तो बारबेक्यू होता है.
1: पनीर बारबेक्यू.
0: हाँ पनीर बारबेक्यू होता है, डिफरेंट वेजीज आल्सो होते हैं, इट्स वेरी गुड. बिल्कुल भी नहीं.
2: Talking about the passion, इसके अंदर बहुत चीज है. आपको लाइफ में आपका पैशन बैलेंस रखने का, which means the balance person with under comes with the responsibility.
0: अच्छा भाई बहुत गाड़ी गाड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं आज तो.
2: नहीं मेरा मेरा लाइफ में ऐसे एक इंसिडेंट था, इसलिए मेरे को ये सबसे मेरे को आता था. I was working in offshore around 5 years before.
0: Okay.
2: For my passion, working on offshore.
0: Offshore. Okay. That
2: job is in deep sea, so I could miss my family around 30 days or 45 days or something like that. तो मेरा मामला क्या है, फैमिली के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मेरा खुद का फैशन का मामला में मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ.
0: कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. ओके ओके.
2: मेरा माइंड में आई वांट टू वॉक विथ माय पैशन, बट द रियलिटी
0: इज डिफरेंट.
2: मेरा वेरी डिफरेंट, क्योंकि मेरा बेटी के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर रहा हूँ. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ऑलमोस्ट 30-45 days में नहीं ले रहा हूँ.
0: एग्जैक्टली.
2: तो इसका अंदर मेरा बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, मेरा फैमिली एंड मेरा फ्रेंड्स बहुत चीज आया था. 45 days यू आर लीविंग योर फैमिली एंड वर्किंग इन ऑफशोर इन डीप सी, ऐसे बहुत सारा क्रिटिसिज्म का अंदर मैं फंस गया था. तो मैं रियलाइज किया फैशन ओके, बट इट कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी गुड.
0: सही. इफ योर पैशन कम्स अंडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्ब्रेला देन इट्स गुड. ओके.
2: Yeah, exactly. Because everyone having a different passion,
0: yes,
2: right?
0: Yes,
2: mera
0: yes.
2: mindset alag hai, dusre ka mindset alag hai. Lekin aapka passion ka mamla mein aapka responsibility and dusra ko hurt karega to wo bahut bura lagta hai. So passion under comes with responsibility hona chahiye.
0: Sahi. Haan, ye inhone achhi sahi baat kahi hai. कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर्कल के अंदर अंदर आ रहा है आपका पैशन और आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हो तो इट्स अ गुड थिंग. अगर उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ पर तो फिर इट्स समथिंग प्रॉब्लमेटिक.
2: वी आर थिंकिंग दैट टाइम वी आर थिंकिंग ओनली आवर पैशन बट नॉट थिंकिंग द रियल वर्ल्ड सिनेरियो.
0: हाँ जी हाँ जी. स्पेशली व्हेन वी आर एट अ टीन एज ना, जब हम लोग अपने आप को कहते हैं ना वो एक हार्मोनल होता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा होता है हमारे अंदर.
2: टीन एज में आपका लूजिंग बैलेंस इन योर लाइफ इज नो प्रॉब्लम, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ गया तो losing balance in your life it is very difficult. Such a good thing in your passion, keep passion is very good because it helps achieve your goals and jo aapka dil hai wo karne ka wo acha hai, lekin अंडर कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आपको बच्चा कि कितना लोग आपको टाइम स्पेंड करना भी होना चाहिए.
0: अच्छा ये कितनी अमेजिंग बात है कि मेरे ख्याल से माविश ने ये बात हाईलाइट की थी शुरू में कि पैशन जो है ना चेंज होता रहता है इंसान का एज के साथ सिचुएशंस के साथ कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं. द ओनली थिंग कंसिस्टेंट इज चेंज. सो या आई थिंक योर पॉइंट ऑफ व्यू इज आल्सो राइट.
2: एक कॉलर ने बोला ना आप हमारा पास है तो वो पैशन हम लोग को नहीं दिखता है. नहीं है तो उसका ऊपर बहुत
0: काम किया था नहीं है तो उसके पीछे भागते हैं.
2: या एग्जैक्टली
0: सही
2: दैट इज ओके वी डोंट नो द अदर पर्सन मेंटालिटी बट इट्स ओके नो इशू.
0: सही
2: मेरा मामला क्या है पैशन अंडर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटीज ओके.
0: और अगर रिस्पांसिबिलिटी में नहीं आ रहा कुछ समथिंग हटकर है तो छोड़ देंगे. छोड़ दिया था हां मैंने तो छोड़ दिया मैंने प्रैक्टिकली छोड़ दिया. सही
2: देन योर सैक्रिफाइस योर पैशन
0: प्रायोरिटीज मैटर ना. देखिए अब अगर ये कहा जाए कि बेगम और बच्चे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. चलें ठीक है सही. रियलिटी
2: आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप पैशन बनाने का.
0: सही
2: फॉर एग्जांपल मेरा बच्चों को मैं डॉक्टर बनाने के लिए मेरा पैशन है और इंजीनियर बनाने के लिए पैशन है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक पैशन आता है.
0: सही
2: आपको ऑलरेडी एक जॉब मिल गया अच्छा जॉब है लेकिन उसका प्रमोशन के लिए आप एक पैशन टारगेट करेगा वो ठीक है इट कम्स विद अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके पास नहीं है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है उसका पीछे आप भाग रहे तो वो वेस्ट टाइम वेस्ट
0: वो बेवकूफी है फिर सेल्फिशनेस है. सही चलें जी
2: ये मैं बात करना था.
0: सही अजू भाई वेरी गुड पॉइंट ये आपने बात बिल्कुल सही कही है.
1: सही हो गया. चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया अजू. थैंक यू जी. थैंक यू अल्लाह हाफिज़. अच्छा जी तो इसके साथ ही कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ फिर एक कॉल है झटपट लेनी है हमने. और ये शहजाद सलीम का है कि कैसे हैं आप लोग व्हाट इज़ द टॉपिक. टॉपिक तो हमने बहुत दफ़ा रिपीट कर दिया. मुबीन बुखारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मुझे तुम्हें दोनों को. इसके साथ ही सच कहूँ तो मेरा कोई पैशन था ही नहीं और पता भी नहीं था कि क्या ही पैशन होता है. जब से होश संभाला है बस यही फिक्र थी घर में फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करूँ यही सोचते हुए छोटी सी उम्र यानी ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड मैं नौकरी पर लग गया. बहुत छोटी सैलरी पर शायद छोटी उम्र कोई पैशन होता होगा बट ना जाने वो कहीं दब के रह गया और अकाउंटेंट भी ऐसे ही बन गया. एक दिन जब मैं 12th में था मेरे मामू आके अम्मी को बोले ये बहुत इंटेलिजेंट है इसको अकाउंट्स पढ़ाओ और अकाउंटेंट बनाओ वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो थे तो अभी नहीं है अल्लाह उनकी मगफरत करें आमीन. और तो उनके कहने पर सब हो गया और अभी यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी तक नहीं पता है कि पैशन क्या होता है बस जो चल रहा है चलते रहो गो विद द फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह. मोहम्मद यूसुफ खान इन्होंने खैर खैरियत भी पूछी थी हमें हैप्पी वीकेंड भी बोला था तो ये था इनका. इसके साथ ही जी मेरे पास मैसेज है ये मोहम्मद शहजाद का और मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि इतना कुछ बोल दूँ वाइफ के लिए तो पता नहीं क्या हो गया होता. ये अली रजा भी बोल रहे थे शुरू में इन्होंने मैसेज किया था. और रियाज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जिंदगी के हर मोड़ पर सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं. दूसरा हमने रिलीजन और कल्चर को मिक्स किया है हाँ जो आपका फैशन है पैशन है मेरा ख्याल है और ना हो पाए तो उस चीज़ को फैशन बनाओ और जो आपके पास है. तो अल्लाह भी फरमाते हैं कुरान में कि जो तुम चाहते हो वो अक्सर नहीं होता क्योंकि आगे जाकर उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी होती है तो अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है. बिल्कुल ऐसे ही भाई सही कह रहे हैं आप. ये रियाज अहमद का मैसेज था. और इसके साथ ही जी मैं कुछ नहीं बोलूँगा नसीम अच्छा है ना बोलें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. और ये मैसेज है हमारे पास अहमद मुस्तफ़ा खान का बहुत बहुत शुक्रिया. चले हम कॉल ले लेते हैं जल्दी से. हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
3: हैप्पी वीकेंड.
0: देखिए ये जो आपने कहा ना हैप्पी वीकेंड
1: एक और तरह का पैशन होता है. मोहम्मद अशफाक ने कहा है कि महावर शाह अपने पूरे शो में 52 टाइम्स कहा है काउंटिंग करने का. जी जी बोलिए.
3: और ये वक्त के साथ वाकई बदलते रहते हैं सही कह रहे हैं. बाकी वो जो मेरे दोस्त ने अकाउंटेंट्स वाले ने कहा ना यकीन करें बड़े मजे की स्टोरी थी. हम लोगों क्या कुछ स्टोरी है या अलमी है हमारे पैशन ना इन चीजों में ही दब जाते हैं. हम
0: मौका ही नहीं मिलता पैशन ढूंढने का.
3: ख्वाहिशात या सिचुएशन में हालात को हल करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं हमारे पैशन क्या थे. और ये बड़ा होना भी आसान नहीं है या कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर ना वो हो कि हमने कुछ बदलना है.

0: लेकिन बच्चे जो है ना, बेटी और बेटा अभी तक जो भी बाहर गए हैं, दे आर स्ट्रगलिंग इन हार्ड जोन. आई लाइक इट. मुझे खुद भी घूमना फिरना, नई जगहों में जाना, आउटडोर एक्टिविटी पसंद है. बल्कि एक मुख्तसर बताऊं, ऐसे ही मेरा अच्छा खासा यंग दोस्त, ऑलमोस्ट 10 मोर देन 10 ईयर्स, यहाँ ना जैसे कंप्यूटर में और बड़ा उसमें एक क्रिएटिव बड़ा काम करता है. तो ऐसे ही बैठे बैठे बात हो रही थी, तो यार मेरे हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं, तो उसने जो मुझे एक्टिविटीज बताई सिर्फ इस वजह से कि उसको बहुत घंटे बैठना ही पड़ता है, खाना पीना ये वो नहीं है, ई गेटिंग ऐसी ऐसी उसने चीज़ें बताई, मैं डर गया. मैंने कहा यार यू आर लुक लाइक बॉय, मैंने इतनी एज नहीं, अराउंड 40 या कुछ, जो उसने बता दी है. कहते हैं कि बस ये आप जो चलते फिरते घूमते फिरते हैं ना नेचर में, ये ब्लेसिंग है, ये बैठना बीमारी है. शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी जगह पर बैठे हैं, ये कर रहे हैं, कि आपका काम भी ऐसा हो आप मूव करते रहें. अल्लाह ताला ने हमें बनाई है, जो एक्सरसाइज क्या है, फिजियोथेरापियाँ और चीज़ें क्या होती हैं, कि आपको मोबिलाइज करती हैं, यू हैव टू मूव आपकी बॉडी, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा रेडिकल या आपके लिए बीमारियां बनाने शुरू कर देती है. तो पैशन हो, हेल्दी हो,
1: सही हो गया. जाएं, चलें बस हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा हो गया टाइम बिल्कुल जाने का. अल्लाह हाफिज. चलें दी, इसी के साथ भाई हमें लेनी इजाज़त. आप सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी वीकेंड हम लोगों की तरफ से. इंशाल्लाह ताला आपसे संडे को मुलाकात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकेले अकेले होगी. तो सफा की किस वक्त मुलाकात होने वाली है? 1:30 को सफा मिलेगी और मैं आपको 10 बजे ही यहाँ पे मिलूंगी. तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे संडे को.
2: इंशाल्लाह सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.
1: अल्लाह हाफिज, बाय बाय.

असल इब्तिदा में सोच रहे थे कि मैं गुफ्तगू कैसे करूंगा, सामीन तो सुन नहीं सकते, तो जवाब ये मिला कि हमारे पास जो है ना इशारे के जबान में बात करने वाले, तर्जुमा करने वाले मौजूद हैं। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए, यहाँ सामीन की नजरें तो मुकर्रर पर कम होंगी और उसके बराबर यानी जो मुतरजम मौजूद हैं उनके इशारों की तरफ ज्यादा है, चूंकि वो इशारे इशारे की जबान ही समझते हैं ना। तो मुकर्रर एक जुमला बोलता है, मुतरजम उसे इशारों में मुंतकिल करता है, कुरान की आयत पढ़ी जाती है, मुतरजम उसका मफहूम इशारों में पहुंच जाता है। अब मुकर्रर वो ये कहता है कि मैंने ये चीज महसूस की कि जब बाज आयत की तिलावत होती और उनका मफहूम इशारों के जरिए मुंतकिल किया जाता तो कुछ आंखें नम होने लगती हैं, और कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि ये तो मेरी तिलावत तो नहीं सुन रहे हैं, फिर ये कैफियत क्यों है। सम्मिलिक्राम कुरान दरअसल हमें वो इंसान के शुऊर और दिल तक पहुंचने की बात करता है, यानी इशारों की जबान से हो, कोई दूसरा उसे पढ़कर या कोई तर्जुमे से माना समझकर, हिदायत का दरवाजा सिर्फ आवाज से नहीं। कुरान पूछता है, अफला तदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर उनके ताले लगे हुए हैं। एक दूसरी जगह आया है, इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन अव अल्क़ा अस्समअ वहुवा शहीद, इसमें नसीहत उस शख्स के लिए है जिसके पास जिंदा व मुतवज्जह दिल हो या जो पूरी हाजिरी के साथ सुनने की तरफ मुतवज्जह हो। सबिक्रम कुरान की सौती तासीर के हवाले से एक बहुत ही उम्दा वाकया है, एक नौजवान अमरीकी नौजवान खातून के हवाले से। वो तो अरबी जबान तो नहीं जानती थी, तो उसने इस्लाम कबूल करने की अपनी दास्तान सुनाते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में उसके एक मुसलमान जानने वाले ने उससे मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। उसने बताया कि मुसलमान भी मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत तज़ीम करते हैं, बल्कि कुरान में उनके नाम से पूरी सूरत है, सूरह मरियम। इस तरह बताया उसे तो हैरत हुई और उसने पूछा कि वाकई मुसलमानों के कुरान में यानी मैरी के नाम से पूरी सूरत है। अब उसे सूरह मरियम की तिलावत की रिकॉर्डिंग दी गई, वो घर जाती है, कमरे में बैठती है और रिकॉर्डिंग चलाती है, और जैसा कि हमने बताया कि वो अरबी का एक लफ्ज़ भी नहीं समझती, तो वो तिलावत सुनते हुए रोने लगती है, दोबारा चलाती है, फिर आंखों से आंसू बहते हैं। इतने देर में उसकी माँ कमरे में आ जाती है, बेटी को रोते देखकर पूछती है क्या हुआ। बेटी उसे बताती है कि मुसलमानों की किताब कुरान की एक सूरत है, इसमें अमेरिक के बारे में। माँ भी अरबी नहीं जानती, वो बेटी के पास बैठ जाती है और रिकॉर्डिंग फिर चलती है। माँ भी मुतासर, दोनों खवातीन दोनों अरबी से नावाकिफ, लेकिन सूरह मरियम की तिलावत सुनकर मुतासर हो रहे हैं। तो सामीन कराम, उदबा का वाकया सुना हमने, समाज से महरूम जो सामीन थे, माजूर अफराद थे, उनका वाकया भी, अमरीकी खातून और उसकी वालदा का वाकया भी, ये सब अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन सब के बाद अब एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल है कि हम कहाँ हैं। हमारे पास कुरान बरसों से है, बाज लोगों को अरबी भी आती है थोड़ी बहुत, हम सूरह फातिहा शायद हजारों मर्तबा पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी मर्तबा हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है एक दिन अचानक हम रुके और महसूस करें कि जिस आयत को जबान बरसों से जानती थी आज दिल पहली मर्तबा उसके सामने बैठा है। तो यहाँ दरअसल सवाल बहुत ही गहरा है कि क्या कुरान मेरे अंदर कोई माना पैदा कर रहा है, क्या इंसान के साथ मेरे रवैये को इसने बेहतर किया है, क्या कुरान ने मुसीबत में मेरे सामने ऐसा जाविया खोला जो पहले नजर नहीं आ रहा था, यानी अगर जवाब में हाँ है तो वो मेरी जिंदगी में कुरान दाखिल हो रहा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब करदा एक कौल है, दरअसल आयत करीमा से मुताल्लिक है, सूरतुल हदीद की आयत रकम 16, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। इस रिवायत सही मुस्लिम में इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि हमारे इस्लाम लाने और इस आयत के जरिए अल्लाह की तरफ से इताब के दरमियान 4 साल ही गुजरे थे। तो इस आयत के जरिए अल्लाह की तरफ से यानी इस्लाम लाने और इस आयत के जरिए अल्लाह की तरफ से इताब के दरमियान 4 साल, ठीक है। अब आयत के तर्जुमे को समझ लीजिए कि इस्लाम लाने के बाद 4 सालों में ही इस आयत, 4 सालों के दौरान इस आयत के जरिए मुसलमानों को क्या खिताब किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, अहले ईमान को क्या कहा जा रहा है। आयत का तर्जुमा ये है कि क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और नाजिल शुदा हक के सामने झुक जाए, खुशोखुजू की कैफियत तारी हो। यहाँ खिताब लिल्लज़ीन आमनू से है कि गोया ईमान के सफर में भी एक लम्हा ऐसा आता है जब कुरान इंसान से पूछता है

0: तुम मुझे मानते हो, मगर क्या तुमने मुझे अपने अंदर उतरने की जगह भी दी है? और इस तरह हमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वो जुमला याद आता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, काना खुलुकुहुल कुरान। ये कुरान से ताल्लुक इंतहाई बुलंद तस्वीर है। और इस तरह कभी इंसान कुरान पढ़ता है और उसे कभी ऐसा मकाम आता है जहां उसे महसूस होता है कि गोया कुरान मुझे पढ़ रहा है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: एक ही कुरान है, एक ही आयत है, मगर कभी वो किसी इंसान के अंदर पूरी दुनिया हिला देती है और कभी वही अल्फाज हमारी जबान से गुजर जाते हैं मगर जिंदगी अपनी जगह कायम रहती है। फर्क कहाँ पैदा होता है? शायद इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। चूंकि हम कुरान के असर की बात तो करते हैं, मगर कभी ये भी सोचा है कि जिस किताब को हम हाथ में लिए बैठे हैं वो है किसका कलाम? कुरान की अजमत को चले हम एक कुरानी मंजर को देखते हैं। कुरान की अजमत को समझने के लिए तसव्वुर कीजिए हम जमीन को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ अपने शहर के चंद दरख्त नहीं, पूरी दुनिया के जंगलात, पहाड़ों पर फैले हुए दरख्त, वादियां, बागात, दूर दराज खित्तों के सब सिलसिले, कुरान हमें एक ऐसी तमसील के सामने खड़ा करता है इसे जहन मुकम्मल तौर पर गिन भी नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है, इरशाद खुदावंदी है, वलौ अन्नमा फिल अर्ज मिन शजर

कसम है सितारे की जब वो गिरे तुम्हारे साथ ही न भटके हैं और न राह से बहके हैं और वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, ये तो वही है जो उनकी तरफ भेजी जाती है।

0: क्या तुमने लात और उज्जा को देखा? और तीसरी मनात को, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां? ये तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम हुई। अब कुरान किसी एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी पर गुफ्तगु नहीं कर रहा, वो उन माबूदों के नाम ले रहा है जिन्हें सामीन जानते हैं और फिर उनके तसव्वुर के अंदर मौजूद तजाद को उन्हीं के सामने खोल रहा है। तो यहाँ कुरान के इस्तदलाल भी है, खिताब भी, सवाल भी, पर एक ऐसा आईना भी जिसमें इंसान अपने ही अकीदे की साख्त देखने लगता है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

तो क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं, गफलत में पड़े हो? तसव्वुर कीजिए, आदमी मजलिस में बैठा कुरान सुन रहा है और अचानक उसे महसूस होता है कि कुरान अब किसी तीसरे शख्स के बारे में नहीं बोल रहा, वो मुझे मुखातब कर रहा है। रसूल अकरम, ये कुरान की एक गैर मामूली खसूसियत है। कभी हम समझते हैं कि हम एक किस्सा पढ़ रहे हैं, फिर चंद आयात बाद मालूम होता है कि किस्सा हमारे लिए आईना बन गया। हम समझते हैं गुफ्तगू किसी पिछली कौम की है, मगर अचानक सवाल हमारे जमीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर आखिरी हुक्म, फसजुदू लिल्लाहि वअबुदू, बस अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं। सही रिवायात के मुताबिक वहां मौजूद मुशरिकीन की बड़ी तादाद भी सजदे में गिर जाती है। तो सामने कराम, यहां बात यह है कि कुरान के साथ रहते हुए जिस्म सजदे में चले गए, उसे सिर्फ इस अदबी माने में रखिए। इस सजदे को ईमान कबूल करने के

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम सब की सेहत से है. क्या आपने कभी नज़ला, जुकाम, गल की खराबी या बुखार होने पर खुद ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ली है या घर में पहले से मौजूद किसी एंटीबायोटिक को दोबारा इस्तेमाल किया है? अगर ऐसा है तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए, हमारे लिए बहुत अहम है. एंटीबायोटिक्स हैं क्या? सबसे अहम बात तो ये है, ये ऐसी अद्वियात हैं जो बास बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं. ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने या उनकी जो अफजाइश है उसे रोकने में मदद देती हैं. लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता. नज़ला, आम जुकाम और फ्लू जैसी बहुत सी बीमारियाँ वायरस की वजह से होती हैं. एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, इसलिए आम नज़ला जुकाम में एंटीबायोटिक्स अमूमन लेना फ़ायदेमंद नहीं होता. ये फैसला कि किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं, उसकी जो अलामत हैं, मुआयने हैं और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है. एंटीबायोटिक का जो गलत इस्तेमाल है, हम क्यों कहते हैं कि नहीं करना या वो ख़तरनाक हो सकता है? जब हम ज़रूरत के बगैर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया में वक्त के साथ साथ ऐसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जिनकी वजह से उन पर उस दवा का असर बहुत कम हो जाता है. ऐसी एंटीमाइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस या जरासीम में जो दवाओं के खिलाफ मुसाहमत इसको कहते हैं. नतीजा ये हो सकता है कि फ्यूचर में किसी इन्फेक्शन के इलाज के लिए जो आम मेडिसिन है वो मुअसर ना रहे, ज्यादा पेचीदा इलाज की जरूरत पड़े या बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाए. ये मसला सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, मुजाहमत रखने वाले जरासीम दूसरों तक भी मुंतकिल हो सकते हैं. अब बात यह है कि हमें क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए. पहली गलती तो ये है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाए. दूसरी जो गलती है वो ये है कि किसी दूसरे शख्स की दवा इस्तेमाल की जाए, मुमकिन है कि उस शख्स की बीमारी, उम्र और उसकी जो कंडीशन है या बीमारी है, दवा उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो, आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो. तीसरी गलत ये है कि बीमारी की जो बची हुई अद्वियात हैं नई बीमारी में इस्तेमाल कर ली जाएँ. हर मरतबा एक जैसी अलामत की वजह से एक जैसी अद्वियात नहीं होती. और जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये है कि मेडिसिन की खुराक या वक्त खुद से ही तब्दील किया जाए या फिर कंसल्टेशन के बगैर इलाज रोक दिया जाए. मेडिसिन की मुद्दत और तरीका इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक होना चाहिए और अगर कोई मुज़र असरात हों या जो तबीयत है बेहतर होने के बावजूद मेडिसिन के बारे में सवाल हो तो फिर अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए. जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हों तो बहुत सी बातों को हमें अपने सामने रखना है कि हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, दवा के साथ दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पढ़िए, फार्मेसिस्ट से पूछिए कि उसे खाने से पहले क्या लेना है, मतलब खाने से उसे पहले जो मेडिसिन है लेनी है या उसके बाद लेनी है. अगर आपको किसी भी मेडिसिन से एलर्जी है, आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं या पहले से दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को पूछिए. एंटीबायोटिक्स के बाद जो मुज़र असरात हैं उनमें जो वॉमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है. और अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो और ये कि जिस्म पर जो फैलता हुआ कुछ भी जो रैश है वो हो या कोई और गैर मामूली अलामत जाहिर हो तो फिर आप तिबी मशवरा ज़रूर कीजिए.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ,

0: ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से

0: Wake up.
1: Hey, yehi kahunga.
0: Wake up.
2: Suniye Wake Up with RJ Sarwar Mirza from Sunday to Thursday subah 6 baje se only on FM 107 Dil Se Desi.
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।
5: FM 107 presents Tech Update.
6: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज की अपडेट खास करके गेमर्स के लिए है, तो गेमर्स जरा ध्यान दें, और वो लोग जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो गेमिंग करते हैं, मेरे भी आसपास लोग हैं जो मुझे देखते हैं और कहते हैं यही है हमारे घर का गेमर। तो अगर आप अपने घर के गेमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है आज की ये खबर। आई एम प्रीटी श्योर यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन इट, लेकिन फिर भी बता दूं, हैंडहेल्ड पीसी गेमिंग में बूम आई है। लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपना गेमिंग कंसोल, अपना पीसी, व्हाटएवर। अभी इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उनमें से जो मेन है ऑफ कोर्स स्टीम डेक और Asus ROG। ये Asus का ROG और स्टीम डेक मार्केट में है, दोनों के दोनों अपने हेफ्टी प्राइस के साथ हैं, बट दे काइंड ऑफ जस्टिफाइड। अगर आप देखेंगे हैंडहेल्ड गेमिंग पीसीज मैच्योर हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस आ चुकी है, सिलिकॉन प्लेटफॉर्म्स अब कैपेबल हैं कि आपको ट्रिपल ए गेम्स, जो हाई बजट गेमिंग गेम्स हैं, वो भी आप इजिली प्ले कर पाते हैं। अगर मैं Asus की बात करूँ, ROG Ally, वो लिटरली रिडिफाइन करता है पोर्टेबल पीसी को। अपने साथ आप पीसी लेके चल रहे हैं, बड़ी बात है, आपके पॉकेट में है, और क्या चाहिए आपको। 80 वॉट बैटरी, AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर, 24 GB रैम, और ऊपर से थर्मल आर्किटेक्चर है ताकि आपका जो गैजेट है वो इतना हीटअप ना हो, और हैंडहेल्ड के हिसाब से बढ़िया चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी विंडोज भाई बढ़िया चल रही हैं, और कस्टम हैंडहेल्ड ओवरलेज भी हैं। तो आप अगर एक एक्सबॉक्स प्लेयर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक पीसी बिल्ड कराना है और आप घर में ज्यादा वक्त बिताते हैं, तब इट इज जस्टिफाइड, आप घर पे बनाइए पीसी, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू वांट समथिंग जो आप टीवी ना डिस्टर्ब करें किसी का, आपको नहीं बैठ के खेल सकें, तो अब थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइसेस आर स्टेज्ड एट वन पॉइंट, बढ़ नहीं रहे। तो एक्सबॉक्स गेम पास, एपिक गेम्स, ये सारे के सारे जो है आपको इजीली खेलने को मिलते हैं। और अगर आप स्टीम डेक की तरफ चले जाते हैं तो आई थिंक अभी 2000 के ऊपर ही है, उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, डिस्प्ले भी है, कस्टमाइजेबल TDP लिमिट्स भी है, और डेस्कटॉप लेवल की गेमिंग भी आपको मिल रही है, वो भी पोर्टेबल फॉर्म में। तो और आपको क्या चाहिए। मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं प्लेस्टेशन पे हूँ और मैं PS का पोर्टल यूज करता हूँ जो कि हैंडहेल्ड है, मैं उससे थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फीचर्स होने चाहिए कतर में भी, वो अभी सिर्फ US और एक दो कंट्रीज में दिए, आई थिंक दो ही कंट्रीज में दिए हैं, वो यहाँ पर भी होने चाहिए, जो कि है क्लाउड गेमिंग, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्लाउड गेमिंग के लिए मुझे 1500 रियाल ऊपर पे करने पड़े तो आई वोंट डू इट। तो आई थिंक सोनी नीड्स टू वर्क ऑन इट। इस रेस में सोनी अभी पीछे चल रहा है, और स्टीम डेक डेफिनेटली आगे आ चुका है।

0: स्टीम डेक ने जो एक चीज बढ़िया करी है वो है अपने हैंड हेल्ड पीसी के साथ। एसोस भी है मार्केट में, दोनों के बीच में बिल्कुल टक्कर का कंपटीशन है। स्टीम डेक अभी भी एक लेवल ऊपर ही है, हालांकि स्टीम डेक मार्केट में उतरा अपने गेमिंग कंसोल के साथ भी, पर ब्रो गेमिंग कंसोल वर्थ 8,000 कतरे रियाल्स, आई एम सॉरी, इतना तो कोई खर्च नहीं कर रहा है। अगर उसको स्टीम डेक का चाहिए कि गेमिंग कंसोल मिले तो 8,000 रियाल तो नॉर्मल इंसान नहीं खर्च करने वाला, उससे बढ़िया अगर उसे खर्च करना होगा तो वो लिटरली एक पीसी घर में बना लेगा और बनवा भी सकता है विच एवर वे, बट दैट्स द ट्रूथ। और ये समझने की जरूरत है स्टीम डेक को, आप सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं एक कंसोल में, ये बेचने का तरीका नहीं है, बिकॉज हर कोई जो है इसे इग्नोर करके चला जाएगा और इससे बढ़िया पीसी ही बना लेगा। 8,000 में एक बढ़िया पीसी बनाने की जगह मैं क्यों कोई कंसोल लूंगा? सो दैट इज हाउ इट इज। आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन, अगर आप एक गेमर है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप एक पीसी गेमर हैं या एक कंसोल प्लेयर हैं, और आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या आपका मन है हैंडहेल्ड की तरफ जाने का या नहीं है? मैं, मेरा इसमें 50-50 है भाई। I'm not sure कि मैं हैंडहेल्ड के लिए भी तैयार हूं भी कि नहीं। 50% I'm there, still reaching। तो अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा FM 107 Qatar, FM 107 Qatar पे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, and stay tuned for more tech update, tech update.
1: मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साथ आज डेटा नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ामों का तहफ्फुज़ भी दाखिली सलामती की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हो चुका है, जबकि बदलती हुई डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। मिलीपुल कतर 2026 की नुमाइश माहिरीन और मुतालिका शोबों के पेशावर अफराद को साइबर सिक्योरिटी से वाबस्ता जदीद हल से वाकिफ होने और उन टेक्नोलॉजीज को करीब से जानने का मौका फराहम करती है जो डिजिटल निज़ामों और बुनियादी डिजिटल ढांचे को मुमकिन खतरात से महफूज बनाने और उनके तहफ्फुज को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद देती हैं। मिलीपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मिलीपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्कैम आपके साथ तब होता है जब आपके सामने स्कैमर आ जाता है, आपसे बातें करता है, आपके घर पे काम करता है। क्या है ये दोस्तों? ये स्कैम है हाउस क्लीनिंग का स्कैम। घर की सफाई और मेंटेनेंस हर फैमिली की जरूरत होती है, खासकर फेस्टिवल के सीजन में या वीकेंड्स पर, जब लोगों के पास खुद सफाई करने का वक्त नहीं होता, वो कुछ आराम करना चाहते हैं या फिर वो अपने घर किसी की दावत करना चाहते हैं और फैलावा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में लोग हाउस क्लीनिंग की हेल्प लेते हैं। फ्रॉस्टर्स ने अब इस सेक्टर में भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। ये फेक हाउस क्लीनिंग कंपनीज और फेक क्लीनिंग एजेंट्स बनकर आते हैं और आम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो प्रोफेशनल दिखने के लिए फेक फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, और जहां वो घर की डीप क्लीनिंग है ना, वॉशिंग और मैट्रेस का साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कहते हैं और प्राइसेस एकदम लो कर देते हैं, और ऐसा ऑफर लगता है कि यार इससे तो कम कहीं और मिलेगा नहीं। जब कोई क्लाइंट इन फेक क्लीनिंग सर्विसेज को हायर करता है तो ये स्कैमर्स उनके घर आते हैं और वो कई बार आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस बहुत ज्यादा गंदा है, फला सामान जो है बहुत गंदा है, ये सोफा बहुत गंदा है, इतने ही अमाउंट में ये सामान जो है मैं घर से बाहर ले जाऊंगा, हम अपने स्टोर ले जाएंगे, हम अपने सफाई करने वाली जगह पे ले जाएंगे, अपनी लोकेशन पे, अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहां पर क्लीन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। वो आपका सामान उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एडवांस में 50% पेमेंट कर दीजिए। ये आपके घर आते हैं और यू नो दो चार दिन सफाई भी करते हैं, कई बार ये कहते हैं कि आप हमें बार बार बुला सकते हैं, ये थोड़ा अमाउंट लेते हैं और फिर ये चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये हाउस क्लीनिंग करने वाले लोग आपके पास आते हैं तो ये आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं इस तरह से कि आप जो है 10 रुपए पर आर के हिसाब से हमें दे सकते हैं और हम डेली आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे, या 10 कतरी रियाल 20 कतरी रियाल भी आप दे सकते हैं और हम आपके घर 3 से 4 घंटा रुकेंगे, काम करेंगे, आपको जो भी काम करवाना है हम वो करेंगे। 10 कतरी रियाल पर आवर या 20 कतरी रियाल, या फिर यू नो आपके मुल्क में भी अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि सिर्फ 50 रुपए 1 घंटे का लेंगे, तो ये बहुत सस्ता लगता है। तो आपको लगता है कि क्यों ना डेली ही किसी मेड को मैं रख लूं, तो 1-2 दिन ये आपके यहाँ सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है यार डेली भी रख सकते हैं, 1 दिन का खर्चा 100 है तो क्यों ना हफ्ते में हम यू नो 5 दिन के लिए उनको रख ले। ये आपको कोशिश करते हैं कि फंसा लें और आप एज अ मेड इनको अपने पास रख लें। जब आपको ये लगता है कि इनको रख लेना चाहिए, आप इनको रखते हैं और फिर लगातार ये 5 से 7 दिन आपके काम करते हैं। एंड देन होता ये है कि आपसे 1 दिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 महीने के लिए इनको रखा है और हफ्ते में 5 दिन आना है आपको, इन्होंने 5 से 10 दिन काम किया और ये फिर 1 महीने का अमाउंट मांग लेते हैं। 1 महीने का अमाउंट जहां आपने इनको दिया, या फिर 1 महीना नहीं 20 दिन का अमाउंट आपने दे दिया, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 10 दिन काम किया इसने, 10 दिन का अमाउंट तो इसका बनता है, चलो 10 दिन एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं और जब ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा इसका 1 महीने का, तो हम हिसाब जो है वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं 10 दिन का या 20 दिन का, ये गायब हो जाते हैं। और ये इस तरह का स्कैम है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये स्कैम है। आपको लगता है ये कोई ऐसा ही एक शख्स था जिसको मैं अब कॉल कर रहा हूं या कर रही हूं, वो अब कॉल उठा नहीं रहा है, अब ये मुझे पैसा देना नहीं चाहता, और 10 दिन की बात है, 10 दिन के हिसाब से इसका 100 रियाल होता है, 70 रियाल होता है, 120 रियाल होता है, 200 रियाल होता है, और ये लेकर गायब हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है इस तरह के लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आपके सामने आकर आपको ठग रहे हैं। तो दोस्तों, यही तरीका है इनसे बचने का कि सबसे पहले वेरीफाई करें, इनकी QID अपने साथ रखें और फोटो उस QID की क्लिक करके वापस इनको QID दे दें, या फिर और डिटेल्स इनकी रखें, इनके मोबाइल नंबर को चेक करें, इनके घर के एड्रेस को चेक करें और देखें कि क्या ये लेजिट है या नहीं, क्या ये लोग असल में किसी तरह के

0: मेड सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि कतर में अगर आपको एज अ मेड काम करना है तो ये जरूरी है कि आप किसी कंपनी से जुड़े रहे या फिर आप किसी फैमिली के अंडर एज अ स्पॉन्सर आए हो। तो ये कुछ तरीके हैं पहचानने के, ऐसे लोगों को जानने के, ऐसे लोगों को कि आपके साथ किसी तरह का स्कैम ना हो सके। उम्मीद है कि इस तरह के स्कैम के बारे में आपको तफसील से समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

की छड़ी से कंट्रोल करता था। एक ऐसा खिलाड़ी जो डिफेंडर के सामने आता, एक झटका देता और अगले ही लम्हे पूरा स्टेडियम अपनी सीट से उठ खड़ा हो जाता। या दोस्तों, बात हो रही है जॉर्ज बेस्ट की। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। किसी ने उन्हें फुटबॉल का जीनियस कहा, किसी ने सुपरस्टार, मगर जॉर्ज बेस्ट सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे। वो फुटबॉल की वो कहानी थे जिसमें टैलेंट भी था, शोहरत भी, दौलत भी और फिर एक ऐसी जिंदगी भी जो हमें बताती है कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना और वहां कायम रहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बेलफास्ट की गलियों से मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोशन स्टेडियम का सफर, गोल्स, ड्रिबलिंग, यूरोपियन ग्लोरी, जॉर्ज बेस्ट ने फुटबॉल में वो सब कुछ हासिल किया जिसका एक खिलाड़ी ख्वाब देखता है। लेकिन फिर सवाल ये है, जब दुनिया आपको जीनियस कहे तो क्या जीनियस होना ही काफी होता है? पर जॉर्ज बेस्ट की कहानी एक फुटबॉलिंग जीनियस की कहानी जो मैदान पर हर डिफेंडर को शिकस्त दे सकता था, लेकिन जिंदगी के कुछ इम्तिहान उनके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुए। या दोस्तों, जॉर्ज बेस्ट की बात करूं और उनकी पैदाइश की बात करूं तो पता चलता है कि 22 मई 1946 को नॉर्दर्न आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में हुआ था। बचपन से ही उनमें फुटबॉल का जुनून था। उनकी जिंदगी बदलने वाला मौका उस वक्त आया जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्काउट बॉब बिशप ने उनकी सलाहियत देखी और मशहूर मैनेजर सर मैट बस्बी को पैगाम भेजा कि आई थिंक आई हैव फाउंड यू अ जीनियस, ये मैसेज था। और वाकई कुछ ही अरसे बाद फुटबॉल की दुनिया ने एक नए जीनियस को उभरते देखा। जॉर्ज बेस्ट ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपना सीनियर डेब्यू 1963 में किया। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल के एक नौजवान खिलाड़ी थे, लेकिन बहुत जल्द उनकी ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल ने फैंस को दीवाना बना दिया। वो डिफेंडर्स को जिस आसानी से चक्कर देते, ऐसा लगता था जैसे फुटबॉल उनके पैरों से बंधी हुई थी। 1960 के आखिर में जॉर्ज बेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी पहचान बन चुके थे। बॉबी चार्ल्टन और डेनिस लॉ के साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की मशहूर अटैकिंग लाइन को दुनिया के बेहतरीन कॉम्बिनेशंस में शामिल कर दिया। इन तीनों को फुटबॉल फैंस अक्सर यूनाइटेड का होली ट्रिनिटी कहते थे। 1968 जॉर्ज बेस्ट के करियर का शायद सबसे यादगार साल था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपियन कप जीता और वेम्बली के फाइनल में बेनफिका को 1-4 से शिकस्त दी। बेस्ट ने उस फाइनल में एक अहम गोल स्कोर किया और इसी साल उन्हें यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर यानी बैलन डी'ओर से भी नवाजा गया। लेकिन बेस्ट की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी में शोहरत और पर्सनल स्ट्रगल्स भी साथ साथ चलती रहीं। फुटबॉल के मैदान पर वो एक सुपरस्टार थे, लेकिन मैदान से बाहर उनकी जिंदगी धीरे धीरे मुश्किलात का शिकार होती गई। शोहरत, पैसा और मीडिया की तवज्जो ने उनकी जिंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जॉर्ज बेस्ट ने 1974 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ क्लब्स के लिए फुटबॉल खेली, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कभी वापस नहीं आ सकी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल्डन ईयर्स में नजर आती थी। इंटरनेशनल फुटबॉल में नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम को वो सबसे बड़ी कामयाबियां, जो लोग अक्सर सोचते होंगे अरे जॉर्ज बेस्ट है तो वाई देर इज नो सक्सेस, वो नहीं मिल सके। बेस्ट को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी नहीं मिला। और यहां पर मारूफ ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले भी कहते हैं कि ही हैज मिस्ड द जीनियस इन अ वर्ल्ड कप, द बेस्ट जीनियस फुटबॉलर हु हैज नेवर प्लेड अ फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज नन अदर देन जॉर्ज बेस्ट। शायद इसी वजह से उनका इंटरनेशनल करियर उनकी क्लब फुटबॉल की लेगेसी के मुकाबले में हमेशा कम नुमाया रहा। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट जॉर्ज बेस्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, नोबडी टॉक्स अबाउट कि उनका अपने मुल्क के साथ यानी नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ उनका परफॉर्मेंस, यानी क्या क्या मैचेस वो खेले, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि भाई छोड़िए आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बिकॉज जॉर्ज बेस्ट वॉज नोन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे

मैराथन का ये 15वां एडिशन है अगले साल 15 जनवरी को मुनाकिद होगा, जिसमें तकरीबन 25,000 पार्टिसिपेंट्स दे आर सपोज टू टेक पार्ट, स्केड्यूल टू टेक पार्ट, ये ऑर्गेनाइजर्स ने बताया है कि मुतवक है कि 25,000 रेसर्स विल टेक पार्ट और हर साल तादाद बढ़ती जा रहा है विच मीन्स दोहा मैराथन इज वन ऑफ द टॉप मैराथन इवेंट्स इन दिस रीजन, यानी इस खित्ते में दोहा मैराथन को अब एक उस मकाम तक पहुंचाने में आई वुड से स्टेट ऑफ कतर और कतर के जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, कतर ओलंपिक कमेटी हैं, उन्होंने मजीद मेहनत करने के बाद आज 15th एडिशन होने जा रहा है ऑफ दोहा मैराथन। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर और बाहर से भी लोग आते हैं, प्रोफेशनल मैराथनर्स आते हैं और इस रीजन में और इस कतर से जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग मुकीम हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, वो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, यानी बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऐसे कैटेगरीज हैं जिस पे आप लोग शिरकत कर सकते हैं। और फॉर द टोटल अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दोहा मैराथन के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। वहीं एक और रेस की बात करूं दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशंस, ठीक है, ये QSAF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर स्पोर्ट्स को दे प्रमोट एंड ये सब कुछ स्टेट ऑफ कतर के अम्ब्रेला में है। एंड इस फेडरेशन ने फ्रेंच फुटबॉल क्लब यानी पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG उनके टाउन से 30 अक्टूबर याद रखिएगा 30 अक्टूबर को लोसेल इंटरनेशनल सर्किट में वी रन दोहा, ये रेस का एक टाइटल है और ये इनेकाद करेगी कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन। इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें तकरीबन 2000 अफराद की शिरकत मुतवक है एंड इट्स अ गुड इवेंट। बच्चों को डालिए, बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोगों से ये गुजारिश है कि बच्चों को इस तरह की इवेंट्स में ज़रूर एंड ज़रूर शिरकत करवाइए, बिकॉज इट एनहांसेस द पर्सनालिटी ऑफ योर चाइल्ड। रेस में 3 मुख्तलिफ डिस्टेंसेस रखे गए हैं, जिनमें से बच्चों के लिए 1 किलोमीटर और बालिग अफराद के लिए 5 और 10 किलोमीटर की रेसें शामिल। और सिर्फ ये नहीं, आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, नौजवान इनफरादी रनर्स और कॉर्पोरेट टीम्स की शिरकत भी एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड इसलिए है कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रन अप एंड अ मेजर रेस दैट इज़ गोइंग टू हैपन एट लोसेल इंटरनेशनल सर्किट पर। और यहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि एज अ पेरेंट अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे भी उतना ही इनकरेज होते हैं जितना कि आप। So get ready for this We Run Doha race on 30th October at the Lusail International Circuit. So दोस्तों ये तो थोड़ा बहुत जो अपडेट्स आप लोगों को मुझे शेयर करना था ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि बास्केटबॉल इज ऑल्सो ऑन अल गराफा स्पोर्ट्स क्लब में आज कतर बास्केटबॉल लीग जो 2 मैचेस हैं वो उसके बारे में आपको बता दूं। अल अहली का मुकाबला होने जा रहा है कतर स्पोर्ट्स क्लब से और अल वकरा का सामना होने जा रहा है अल गराफा से। तौफिक साहब आपका जो मैसेज आया एकदम शो से पहले, बड़ा ही शानदार तरीके से आपने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप वकरा से हैं और आप वकरा क्लब जो है आज कतर बास्केटबॉल लीग में अल गराफा का सामना करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा बहुत अपडेट्स आप लोगों से मैंने शेयर किया है, क्रिकेट के बारे में बताऊंगा लेकिन ब्रेक लूंगा। ब्रेक से पहले जाने से पहले आज का जो सवाल है और हमारे जो FM 107 के जो लिसनर्स हैं और स्पेशली जो स्पोर्ट्स के बड़े ही फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप लोग जल्द अज जल्द आप लोग टाइप करें। आज जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो सवाल मेरा क्विज था, वो है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट कप्तान कौन है। सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि आप लोग कभी कभार होता है कि इमोशनल हो कि आज कहीं ना टेस्ट कप्तान दिख दें, सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि 1952 आप लोगों को मैंने लीड दे दिया, 1952 यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा और उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था, आपको बताना है 666-666-22-22-107 पर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो। और मैं अभी लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोबारा इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का FM 107 के लिसनर्स। और यही है बेसिकली द फल्क्रम ऑफ द स्पोर्टिंग फॉर्मामेंट ऑफ FM 107 रेडियो, यानी आप लोग हैं बैकबोन। और FM 107 के लिसनर्स अगर ना हो, स्पोर्ट्स ना फॉलो करें तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से आप लोग तो बहुत ही तेज तरीन हैं और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप फटाफट जवाब दे देते हैं। क्रिकेट के सवाल पूछूं तो आप लोग एकदम ऑन द फ्रंट फुट शॉट एंड स्ट्रेट टू द बाउंड्री। जी हाँ दोस्तों, सवाल ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फर्स्ट एवर कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान को लीड किया था इन टेस्ट क्रिकेट, उस जमाने में ओडीआई क्रिकेट नहीं था दोस्तों, तो 1952 की बात हो रही है जब पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था अगेंस्ट इंडिया, दे मेड देयर डेब्यू इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, यानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम टेस्ट क्रिकेट में उतरना यानी मैदान पर उतरना एक कप्तान कि लीडरशिप में कयादत में पाकिस्तान टीम ने अगेंस्ट इंडिया दे प्लेड। एंड उस कप्तान का नाम आपको बताना है दोस्तों, मैंने आपको बड़ा ही तफसील से बता दिया, पूरा पिक्चर दे दिया आप लोगों को। पाकिस्तान फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन नाम क्या है, नाम क्या है आप बताइएगा 666-22-107 पर। जिन्होंने भी रेडियो ट्यून इन किया है आप सुन रहे हैं FM 107 की जानेब, इट्स अ गोल एंड इट्स अ गोल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप लोगों के जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इससे लग रहा है कि आप लोग वाकई अब तो मैं पिछले 5-6 आउट से कि पिछले 2 महीने के बाद मैं इस बात पर अब यकीन करता हूं कि यस, कतर में मौजूद जितने भी मुकीम हैं आप लोग, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल जहां से भी हैं आप लोग क्रिकेट लवर्स हैं, फुटबॉल आप लोग पसंद करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वही है ना कि देसी जो खेल है, जो क्रिकेट नंबर वन स्पोर्ट है, कुछ भी कह लीजिए, हॉकी इज देयर इन पाकिस्तान, हॉकी इज देयर इन बांग्लादेश, इन इंडिया, इन श्रीलंका, नेपाल, लेकिन क्रिकेट का वो जुनून, क्रिकेट का वो, क्रिकेट के लिए वो जज्बा आज भी हमें कतर में देखने को मिलता है। एंड पिछले हफ्ते एक साहब का कॉल आया था एंड उनका एक इनोवेटिव क्रिकेट टूर्नामेंट जो मुझे उन्होंने बताया कि एंड दैट इज़ फॉर अबव 50 यानी 50 साल के ज़्यादा लोगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एंड मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। एक मैच मैं जाकर देखा भी एंड बिलीव करिए, यकीन जानिए, और सारे प्रोफेशनल्स लगे मुझे, जिस तरह के शॉट्स लेना फ्रंट फुट पे बैक फुट पे, जिस तरह के हुक शॉट्स ले रहे थे, 10 ओवर का गेम था T10, वो ऑब्वियस बात है कि 50 साल के बाद यू नो आपके एनर्जी लेवल रिफ्लेक्सेस थोड़ा कम हो जाते, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सेस कम होने का ही नहीं था। और मैंने कई ऐसे बल्लेबाज देखे और बॉलर्स देखे जो हाई स्पिरिटेड एंड उस तरह के बॉल कर रहे थे, उस तरह की डिलीवरी फेंक रहे थे जिससे ये लग रहा था कि वाकई ये लोग प्रोफेशनल रह चुके हैं कई जमाना पहले। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है एंड यू नो अगर कतर में देखा जाए इन दोहा में कि इन लोगों के लिए भी क्रिकेट है। सो आप लोगों के पास क्रिकेट नॉलेज भरपूर है मैं मानता हूं और कभी मुझे मौका मिलेगा तो एक एक को मैं मेडल जरूर दूंगा। एनीवे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला कैप्टन कौन था, आपको सिर्फ नाम बताना है। और आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के, जो आज के जो थोड़ा बहुत टॉप न्यूज़ है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि कल दोनों मैचेस खेले गए, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, एंड दोनों ही हार गए दोस्तों। और इसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए हारना तो चलिए 3-0 का एक वो था, टारगेट था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी हैड वन द सीरीज, दो मैचेस में दो ही मैच मुसलसल जीतने के बाद पाकिस्तान T20 सीरीज अपने जेब में कर तो लिया था, लेकिन वो होता नहीं है कि एक यू नो सटीक रैप अप करना, एक परफेक्ट रैप अप करना ऑफ द सीरीज की 3-0 से। मैंने वाइट वॉश या ब्राउन वॉश कुछ भी कह लें, क्रिकेटिंग टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, श्रीलंका को हराना था लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया एंड श्रीलंका डिड रियली रियली वेल टू बीट पाकिस्तान एंड 8 विकेट से पाकिस्तान को हराने के बाद ये सीरीज, हालांकि श्रीलंका लॉस्ट बट एक वो होता ना एक कंसोलेशन टाइप है जो कि श्रीलंका को मिला। वहीं इंडिया के लिए पता नहीं, वेस्ट इंडीज इज बिकमिंग अ वेरी टफ टीम एंड एक चीज बता दूं कि पिछले आई थिंक 24 सालों में वेस्ट इंडीज ने 3 मैचेस जीते हैं ये वेस्ट इंडीज़ के एक रिकॉर्ड रहा है इंडिया के मैदान में। पहले तो वेस्ट इंडीज़ मतलब जब भी जहां जाते थे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम, चाहे पाकिस्तान जाए चाहे इंडिया जाए, वो तो बोल बोल के यानी कह कह के हराते थे, चलो भाई आपको अगले मैच में हम हराएंगे। लेकिन ये दौर ख़त्म हो गया था एंड 24 साल में पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया में इस तरह के जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाने में नाकामयाब थे। अभी they have shown a little courage, little extraordinary efforts to beat India aur is series ko dekhiye 2-2 ki barabari par kar diya unhone chhodna nahi hai aur shy hope means aasha yani ummeed unhone ek unbeaten century score kiya jiske badalat India ko 24 run se West Indies ne hara diya aur ye ab series ka faisla kaun muqabla hone ja raha hai and usme wahi hai ki jo jeeta wahi sikandar। Thoda dekh lete hain ki ye match kab hai, aap logon ko thoda bata dun India versus West Indies ka agla match kab hone ja raha hai। और एक बार थोड़ा सा स्कोर कार्ड पे भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। इंडिया की तरफ से सैमसन 56 रन, वेल नॉट बैड, और तिलक वर्मा 43 रन, और मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इन्होंने कोशिश की कि भाई कुछ जो बेंच पर जो बैठे जो जो बल्लेबाज हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको मौका दिया है। एंड वहीं वेस्ट इंडीज़ 102 रन ऑफ शाई होप, कप्तान विकेट कीपर वाकई 50 गेंदों पर 102 रन, एंड इसी के बलबूते पे वेस्ट इंडीज़ के पास जो टारगेट रहा है 247 एंड 20 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर, इसी में वेस्ट इंडीज़ हैड बीटन इंडिया। और रदरफोर्ड ने 49 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद अब लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कुछ आएंगे, भाई अब गौतम गंभीर के लिए क्या फ्यूचर है आप लोग बताइए, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मिसिंग फ्रॉम दिस इंडियन टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आप लोगों से कहूं कि या इंडिया इज नॉट बीइंग मेंटेनिंग देयर काइंड ऑफ फॉर्म, जिस तरह से फॉर्म को मेंटेन करना होता है, टी ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियन है और उसी तरह से आपको खेलना चाहिए, लेकिन आप हारे जा रहे हैं और अब ये मैच जो है हारने के बाद दिस सीरीज हैज बीन टाइड। सो नेक्स्ट मैच थोड़ा देखते हैं, नेक्स्ट मैच कब है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 एंड इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का अगला मैच कब है पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। 17 अक्टूबर को है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 4:30 दोहा टाइम में, और ये मैच जो है मतलब फैसला कौन मैच होने जा रहा है, एंड यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी दे विल विन द सीरीज। अब बढ़ते हैं एक टेनिस न्यूज पर दोस्तों। सबालेंका का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अरीना सबालेंका वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे कि इंडियन टीम के साथ, कंसिस्टेंसी नाम का कोई चीज ही नहीं नजर आ रही इनके। एंड दे आई मीन अगर देखा जाए सबालेंका फिर हार गई, एंड हारने के बाद अब वो उनको ये जो हुआ है कि 4 मरतबा ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और सबालेंका का खिताबी इंतजार मजीद बढ़ गया है। पिछले मार्च में उन्होंने आखिरी बार इंडियन वेल्स और मायामी के खिताब जीतकर सनशाइन डबल मुकम्मल किया था, उसके बाद से मार्च से लेकर अक्टूबर तक शी डिडंट विन एनीथिंग इन विंबलडन, और विंबलडन के बाद फ्रेंच ओपन के बाद यूएस ओपन, कहीं पर भी कुछ उन्हें जीत के नामो निशान यानी टाइटल जीत नहीं पाई वो, और इसी वजह से अभी भी जो सबका जो क्वेश्चन मार्क है सबका, इन्होंने ये कहा कि भाई अब ये इनको हुआ क्या है सबालेंका को, व्हाई शी इज़ नॉट विनिंग एनी मोर टाइटल, और मार्च के बाद शी हैजंट वॉन एनीथिंग बिग टाइटल, तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। एंड आने वाले टाइम में पता चलेगा कि व्हाट इज़ रियली हैपनिंग विथ अरीना सबालेंका। चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल के जवाब पर और देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या दिया है, लिखा है आप लोगों ने। एंड यप, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन यही था, जी हाँ क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया था, पाकिस्तान का फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन, और सलाम इनका नाम बताइए साकी कौन है भाई साहब, अपना पूरा लिखिए। आप लोगों का ये जो नाम होता है टाइटल्स हैं ये बड़ा ही होता है। एनीवे सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, सही जवाब। आई रियली अप्रिशिएट खादिर अब्दुल हादी साहब अभी लिख रहे हैं, एंड बहुत अच्छा लगा आपने ये मैसेज अपने किया है। अब्दुल हाफिज़ कारदार ये है पाकिस्तान टीम के फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन, जिन्होंने पाकिस्तान को लीड किया था अगेंस्ट इंडिया इन 1952। अब्दुल हाफिज़ कादर साहब अगर मैं बताऊं कि फाउंडेशन ईयर्स यानी बुनियादी तौर पर अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने खड़ा किया था उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी पाकिस्तान वाज वेरी न्यू आईसीसी टेस्ट टीम के तौर पर जब उनको स्टेटस मिला था तो 1952 में इंडिया का दौरा करते हुए पाकिस्तान की टीम हालांकि सीरीज दे लॉस्ट बट वो जो बुनियादी दौर था वो एक बुनियादी टाइम था जहां पे अब्दुल हाफिज कारदार साहब अपने ही यू नो बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी अपने ही यू नो क्रिकेट कैलिबर से क्रिकेट नॉलेज से पाकिस्तान के जितने भी उस टाइम यंग खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत ही मुतासिर किया था. इनफैक्ट आने वाले टाइम में आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से मजबूत होते गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से स्ट्रांग होते गई तो वहाँ पर अब्दुल हाफिज़ कारदार साहब का एक कंट्रीब्यूशन मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसको हम एक्नॉलेज अगर नहीं करें तो गलत है एक्नॉलेज करते हैं आज भी. अच्छा एक बात और भी आप लोगों को बता दूं यहाँ पे अब्दुल हाफिज़ कारदार साहब जब क्रिकेट छोड़ चुके थे जब वो रिटायर्ड हो गए थे रिटायरमेंट के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे एंड एज अ कोच एज अ मैनेजर एज अ सेलेक्टर इस तरह का भी उन्होंने अपना जितना भी रोल्स रहा है उनको उन्होंने निभाया है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ आप ये सुनिएगा एंड ये आप लोगों के लिए एक एनेक्डोट है. मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि द मैन हु लेड पाकिस्तान In their first ever test series, he in fact discovered एक बल्लेबाज को एक स्टार बल्लेबाज जो बाद में स्टार बना और आज भी हम रेफरल पॉइंट पे उनका नाम लेते हैं कि बल्लेबाजी करनी है तो इस बल्लेबाज की तरह बैटिंग करो. कराची के हैं बता सकते हैं आप उनका नाम. चलिए एक और क्विज हो जाएगा अभी मैं ही बता देता हूँ. अब्दुल हाफिज कारदार साहब ने डिस्कवर किया था जावेद मियांदाद को. जावेद मियांदाद वो बल्लेबाज जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी थी और रीढ़ की हड्डी आप समझ रहे हैं कि बैकबोन उनको तोड़ा नहीं जा सकता था. एंड पाकिस्तान के लिए जावेद मियांदाद जब टेस्ट डेब्यू किया था ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड अब्दुल हाफिज कारदार साहब इन्हें इस एक नौजवान जावेद मियांदाद को देखा था कैद आजम ट्रॉफी में. उन्होंने कहा था कि इस लड़के में दम है टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड बहुत ही यंग एज में जावेद मियांदाद को टीम में डाला गया एंड जावेद मियांदाद ही बिकेम जावेद मियांदाद एंड जावेद मियांदाद की बैटिंग जावेद मियांदाद की वो एरोगेंस जावेद मियांदाद की वो मैं कहूँगा उनका जो फलसफा था एक तरह से देखा जाए कि भाई मैं आप जो भी बॉलर हैं मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता आप गेंद डालिए मैं मारूंगा आई मीन स्ट्रोक आई विल प्ले दो स्ट्रोक्स जो मेरे बैग में है वो स्ट्रोक्स मैं खेलूंगा और आखिरी गेंद तक मैं झुकूंगा नहीं. और यही लेसन जावेद मियांदाद आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर नौजवान क्रिकेटर्स को सिखाया था कि अनटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड यू कैन नॉट से दैट आई हैव लॉस्ट एंड दिस फिलोसॉफी वाज मेंटेन्ड राइट थ्रू आउट. पाकिस्तान टीम के जब उनको कप्तानी दिया गया था इन द अर्ली लेट 70s में तब भी जावेद मियांदाद यंग थे लेकिन उन्होंने सही से उन्होंने निभाया था उन्होंने संभाला था एंड उसके बाद भी जब कप्तानी उनके पास दिया गया तो जावेद मियांदाद रियली अप्रिशिएटेड द काइंड ऑफ एफर्ट दिस यंग प्लेयर्स डिड क्योंकि अब्दुल हाफिज कारदार साहब जिन्होंने पाकिस्तान को पहली मर्तबा लीड किया था इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री उन्होंने डिस्कवर किया था जावेद मियांदाद को. तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये इट्स अ गोल प्रोग्राम का शो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं. अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी और आप लोगों के जितने भी जवाब आए तब उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कीप लिसनिंग टू FM 107 भूलिएगा मत. स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ एंड दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, देसी।
1: दोस्तों सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नाजिया आपके साथ और एक घंटा आपका और मेरा साथ रहने वाला है इसी शो में जिसका नाम एनर्जी आर। वैसे आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी और ज़्यादा एलिवेट हो गई है फॉर द सॉलिड रीज़न दैट यू नो कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। तो बस जब आप छुट्टी पे जा रहे होते हैं ना तो आपका एक लेवल जो एनर्जी का, एक्साइटमेंट का है, अलग ही होता है। बहुत सारे लोग बिजी भी होते हैं, बहुत सारे लोग उस तरह से एक्साइटेड भी नहीं फील कर रहे होते, इतना हैप्पी भी नहीं फील कर रहे होते, बट आपके दिल में वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो बस आज कुछ ऐसे ही है। और आपका क्या हाल चाल है वो आप मुझे बताइए 6662107 पर। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 6433477। आज क्योंकि वेकेशन है, मतलब मैं अपने मूड में हूँ, आप अपने अलग ही वाले जोन में होंगे, आई नो दैट। लेकिन हाँ, बाय द वे आपका हमारा जोन मैच भी करता है, पता है क्यों? क्योंकि कुछ ना ही तो कम से कम वीकेंड की वाइब तो मैच कर ही रही है। आप लोग भी प्लानिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या हो सकता है कि अभी प्लानिंग मोड में हूँ, और मेरी तो खैर अलग प्लानिंग चली रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मुसीबत, मेरा मतलब जो मेरी टेंशन बनती है, वो उसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए तो उस पर बात की जाए। और वो जो है वो है सामान। देखिए, मैं आज आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि आप जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्या आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ आप जो है वो सामान भर भर के ले जाना पसंद करते हैं? हर चीज़ आपको लगती है अरे ये तो ज़रूरत की है, ये तो मेरे बहुत काम की होने वाली है, और वहाँ जाके शायद उस पर आपकी निगाह भी नहीं जाती। या फिर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि भाई रिलैक्स जाओ। आई मीन टू से कि जो सामान यू बिलीव इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, तो उस तरह से उसे ट्रीट करते हैं एंड हैंस आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना पसंद नहीं करते। तो बस आप मुझे बताइएगा, फिर मैं भी आपको बताऊँगी कि मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। सवाल आज का बहुत ही सिंपल सा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आप मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्या उस कैटेगरी को जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाना आपको पसंद है? जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारा भर के सामान, एवरीथिंग, यू नो, जितना जितना आपको मिला है सामान उससे भी आप कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़ा और एक्स्ट्रा चला जाए ऐसे वैसे होके। या फिर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो बस हल्का फुल्का सामान, अपना रिलैक्स मोड में आराम से जाते हैं, वहाँ जाएंगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके देखेंगे, हम इतना हेडेक लेके यहाँ से नहीं चलेंगे। तो बस यही आज हम पूछ रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ 6662107 पर या फिर आप मुझे कॉल कीजिए 4434377 पर। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिफ अंसारी जी, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक।
1: खैर मुबारक।
3: मतलब अब तो टाइम नहीं कट रहा होगा ना?
1: हाँ नहीं, अब बस बेचैनी,
3: एक घंटा जो है पूरा दिन लग रहा होगा।
1: हाँ ये तो होता है वो तो, लेकिन फिर भी क्या ना, जब आप जा रहे होते हैं आपके पास 100 काम होते हैं, वो आपके जहन में वो भी चल रहे होते हैं, द मोमेंट यू सेट इन अ प्लेन फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, भाई आप निकल लिए।
3: मैं जो हूँ इसलिए छुट्टी, जिस दिन मुझे जाना होता है फ्लाइट पर मैं ड्यूटी जरूर करता रहता हूँ टेंशन फ्री होके।
1: ड्यूटी करते रहते हैं और फिर सारा काम आपके घर वाले कर रहे होते हैं, फैमिली मेंबर्स?
3: नहीं, यहाँ पे फैमिली मेंबर क्यों करेंगे, मैं मुझे बैचलर आदमी अकेला रहना है। अच्छा। तो क्या है सिस्टम, ये रहता है ना कि अपना जो है ड्यूटी करते रहो, बाकी जो है धीरे धीरे 6 महीने पहले से प्लानिंग चलती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सामान बटोरना पैकिंग हो जाती है, छुट्टी में धीरे वीकली

0: ऑफ में पैकिंग हो गई, उसके बाद जो है अपना ड्यूटी करते रहो, 2-3 बजे अगर रात का फ्लाइट है 2-3 बजे छोड़ दो, फिर वो नहीं होता ना, मतलब टाइम कटता नहीं है, अगर जैसे 2-4 दिन पहले से सोचने लगो इस चीज को तो फिर टाइम नहीं कटता है।
1: हाँ, फिर तो थोड़ा सा ये होता है कि जितनी जल्दी हो बस, लेकिन खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है।
0: मैं मेरी शादी थी 2 महीने पहले मैंने टिकट मार करवा दिया था अपना 15 में,
1: फिर अब तो वो
0: देख देख के उसको टाइम नहीं कट रहा था। 29 दिसंबर को मुझे जाना था, 29 जनवरी को मेरी शादी थी,
1: पूरा मंथ था तकरीबन। लेकिन हाँ, जाहिर है नहीं करता भाई, नहीं करता,
0: टाइम नहीं करता है घर जाते जाते। और उससे ज्यादा सबसे बड़ा ये होता है कि एयरपोर्ट से निकल गए, फ्लाइट में बैठ गए, बैठने के बाद बस ये होता है ये फ्लाइट मेरे घर के ऊपर उतर जाए।
1: हाँ, ये लगता है वाकई यहाँ से पहुँचना ना किसी भी कंट्री आसान है, फिर वहाँ से अपनी सिटी तक पहुँचना हो अलग चैलेंज।
0: लखनऊ से कानपुर 90 किलोमीटर है, वो किसी तरह से जो है वो कटना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है।
1: जी जी जी
0: हाँ, हमारे यहाँ से लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है ना, तो क्योंकि वाया होके जाना पड़ता है, मुंबई जाए या ओमान जाए या दुबई जाए और फिर या दिल्ली जो डायरेक्ट है यहाँ से फ्लाइट। लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर 1 घंटा कहीं ना कहीं जो है ले ओवर कर रुकना है, फिर उसके बाद वहां से फिर वहां जाना है, बड़ा दिक्कत हो जाती है, 8-10 घंटे का सफर हो जाता है।
1: हाँ, ये तो है, अच्छा खासा वो रहता है। अच्छा ये बताइए, आप जब जाते हैं वेकेशंस पे तो आप क्या बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आप वो शख्स हैं जो कम सामान कैरी करते हैं? भाई
0: मैं क्या करता हूँ, मैं 6 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा सामान लेना, मतलब अपने लिए नहीं, अपनी शॉपिंग मुझे इंडिया में करनी है।
1: अच्छा, फिर और लोगों के लिए, सबके लिए,
0: बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, घर वालों के लिए। तो और क्या, मेरा क्या सिस्टम होता है, मैं खाली जाता हूँ यहाँ से, मैं कार्गो पे डाल देता हूँ, जितना सामान लिया कार्गो डाल दिया, उसके बाद 20-25 किलो सामान लेके अपना निकल।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया भाई, वाकई कोई झंझट ही नहीं लेके जाने का, और ना कोई हेडेक ना इतनी चीजें, आराम से जाओ, सारा कार्गो कर दो और आराम से रिलैक्स, हल्का फुल्का सामान लेके निकल गए।
0: हल्का फुल्का सामान लेके रिलैक्स होके जाने का जो है मेरा यही रीजन है। 2 महीने पहले मैं, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले यहाँ से डाल देता हूँ और डालने के बाद सुकून से जो है बैठा रहता हूँ, आराम से जाने के टाइम पे अपना, कुछ आफत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो मेन सामान होता है
1: जी जी,
0: जो उस पीरियड में होता है, क्या आप सामान जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रहे हो, करते करते कुछ ना कुछ भूल जाता है इंसान।
1: ये तो है, लिख लेना चाहिए,
0: जो सामान चला गया वो ठीक है,
1: ठीक है, नाइस।
0: बहुत ज्यादा तो नहीं ले जाना चाहिए वैसे भी, लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो ले जाना पड़ता है। वो एक के अभी भाई जा रहा है, उसके लिए भाई कजन है मेरा, वो भी जा रहा है 15 तारीख में, नवम्बर में। अब बच्चों की लिस्ट आ गई है, पापा ये भेज देना, अब्बू ये भेज देना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, एक कैब ले लिया बच्चों के लिए थोड़ा बहुत, फिर भी मैं कहा यार उसको वो भी जा रहा है रिजाइन करके, तो अभी उसको भी, उसका भी सामान होगा, तो फिर भी नहीं कुछ तो कम से कम 3-3.5 किलो सामान हो गया धीरे धीरे।
1: बताइए, वही है कि सामान पीछा नहीं छोड़ता, हालांकि हम सब ये कह रहे होते हैं, हम सब क्लेम करते हैं कि हमें उतना सामान कैरी करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी सामान जाता है।
0: नहीं, बंदा क्या है, जब घर जाता है तो वो सोचता है सारी चीजें लेके, अगर उसका बस चले, अगर फ्लाइट में फ्री हो तो वो 200 किलो सामान लेके जाएगा।
1: सही काम आपने, आराम से, अगर इतनी लिबर्टी मिल जाए ना कि आप 500 ले जा सकते हैं, देखिएगा लोग फुल जाएंगे, उसमें भी चीजें करेंगे कि हम 600 हो रहा है हमारा, 575 हो गया।
0: किसी को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ घर में, अब भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजियां हैं।
1: ऐसे नहीं होता कि जैसे सामान उतना नहीं ले गए, कुछ चीजें ले गए जो यहाँ की हैं, खजूर हैं, चॉकलेट्स हैं, या थोड़ा बहुत कुछ इतर वगैरह या परफ्यूम्स वगैरह, बाकी आप पैसे दे दो। मुझे आज भी लगता है कि अगर आप किसी को पैसे देते हो तो वो गिफ्ट से कहीं ज्यादा उसकी अहमियत है। अभी भी हमारी कंट्रीज में लोग जो ना खुश होते हैं, पैसे मिल गए हम अपने हिसाब से खरीद लें,
0: ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़े तो मान जाए, बड़े समझ सकते हैं इस चीज को, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। मैं अभी 2022 में लास्ट टाइम गया था, मेरा बैग घर पे था, मैं ऊपर अपने रूम में था, बच्चों ने सब खोल खाल के अपना हिस्सा बांट कर लिया था। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है।
1: ये तो बहुत अच्छा है कि चलिए बच्चे माशाल्लाह एक्साइटेड। हाँ, बच्चों के लिए तो लगता भी है कुछ ना कुछ।
0: सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं जो घर में, अब दो भतीजे हैं, एक भतीजी है और दो भांजे, एक भांजी है, दो भांजी और लखनऊ में रहती हैं। मेरी चार बेटियां माशाल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो काफी सामान आपका ना चाहके भी हो ही जाता है।
0: अभी अभी चार हो गई है, पहले तो दो ही थी लास्ट टाइम पे जब गया था, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ,
1: एक एक चीज भी रखो तो भी अच्छा खासा सामान हो ही था। हाँ, तो मतलब इसमें कोई आप एम्बेरस फील मत कीजिए, गिल्ट में मत आइए कि आप ज्यादा सामान कैरी करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा सामान कैरी करती हूँ, ये बात अलग है। मेरे घर वाले मुझे सुना रहे होते हैं कि अगर आप दो हफ्ते के लिए जा रही हैं फिर भी आपका इतना सारा सामान कैसे है। तो बस यही मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ।
0: जिसको जितना ज्यादा घर वालों के लिए एक्साइटेड इतना होता है वो, क्या मतलब अगर उसका बस चले तो अपना दिल निकाल के रख दे कि मैं परदेश से आया हूँ, ये मेरा दिल है, ये रखो।
1: लेकिन वही है,
0: सबके साथ है, कोई मेरे साथ नहीं, सबके साथ में।
1: हाँ, नहीं नहीं, सच कहा आपने, बिल्कुल ये लगता है कि चलो ले लें सामान जितना जो जिसके लिए छोटा छोटा जो भी करो, और वो होते होते भी बहुत हो जाता है।
0: फिर भी अगर आप एक एक केजी भी सामान लेते हो तब भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी यहाँ से सस्ता सामान इंडिया के अंदर है, उससे अच्छा सामान है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से ले जाने का एक अलग ही बात होती है। उनको पैसे दो वो समझ में नहीं आएंगे। 10,000 का सामान उन्हें दिला दो, यहाँ से वो 200 का सामान उन्हें ले जाके दे दो, खुश हो जाएंगे,
1: खुश हो जाएंगे।
0: लेकिन वो हाँ 10,000 का सामान वहाँ दिला दो वो खुश नहीं होंगे। ये भी
1: हर तरह के लोग हैं, ये बात तो है, हर तरह के लोग हैं और हर तरीके से जो है वो। चलिए अच्छी बात यह है कि फैमिली वाले खुश हो जाते हैं, चाहे पैसे से हो या आपके सामान से। जी संडे नहीं, संडे नहीं हूँ मैं, अब इंशाल्लाह जी सफा जी होंगी और मैं इंशाल्लाह फर्स्ट नवंबर, इंशाल्लाह
0: फर्स्ट नवंबर, चले ठीक है
1: इंशाल्लाह।
0: 3 नवंबर को मेरा बर्थडे
1: है। अरे वाह, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ये बात हुई।
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, जी जी जरूर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, सो आज बस जर्नी अपनी सेट हो ही रही है, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी वाली सेटिंग आपके साथ भी हो ही जाए, पूछ लें सामान के बारे में, क्योंकि मुझे तो बहुत सुनने को मिलता है। मुझे तो हर सामान ऐसा लगता है कि हाय ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो मैं 100% यूज़ करने वाली हूँ। होता है वहाँ जाके शायद उतना यूज़ नहीं करती, बट पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे अलर्ट्स आते रहते हैं। तो कोई इलाज है इसका या मुझे अपना इलाज करना ही पड़ेगा। चलिए एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
2: मैं कैसे हूँ? ठीक ठाक, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ, मैं मुदस्सर बात कर रहा हूँ।
1: मुदस्सर जी, ओहो कैसा रहा अभी तक आपका दिन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा है, तो प्लान भी है शाम को जाने का। सही,
1: अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है काफी माशाल्लाह।
2: मिर्जा साहब नहीं है कि उसको दावत दे दे कि आ जाओ बारबेक्यू करना।
1: अरे मिर्जा साहब ने सारी दावतें ले रखी हैं और आज देखिएगा कितनी वसूली करने वाले हैं। आज नहीं
2: तो
1: मिलते हैं,
2: आज ही नहीं हो गया उसके साथ सबसे।
1: अब आप बताएं क्या करें, एक हफ्ता पहले से उनको जो है वो उनको दावत देना शुरू करें तो आपको 2 हफ्ते बाद मिल जाएंगे। उनकी इतनी पेंडिंग दावत है, कह रहे मैं बड़ा बिजी हूँ, आज ही मेरी बात हुई। मैंने कहा अरे सर्वे क्या कहाँ लगे हुए हैं, कह रहे मैं बड़ा बिजी हूँ। बोली मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा किस चीज में? देख रहा हूँ आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपका एक पेट है मतलब कहाँ खाएंगे आप बताइए। मगर ही इज लाइक कि नहीं मैं जगह जगह जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है,
2: हर जगह पे जाता है ना वो, थोड़ा थोड़ा खाता है ना।
1: एक दिन में 10 घर में इनविटेशन रहते हैं, तो 10 घर खा के सर वगैरह अब मैं फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
2: वैसे सरवर भाई कमाल का है, बहुत
1: धमाल के हैं भाई, बहुत धमाल करते हैं।
2: उसके साथ बैठोगे बोर नहीं हो जाओगे?
1: मैं तो आई थिंक आई विल बी टंग टाइट, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए. मैं कुछ नहीं बोलूंगी नसीम जी के, मैं चुप रहूंगा. वही वाली बात, वही लाइन में बोलूं, मैं चुप रहूंगी क्योंकि क्या बोलूं. हाँ, आज का टॉपिक ये है कि अगर आप छुट्टियों पे जाते हैं तो आप क्या बहुत ज्यादा सामान लेकर जाना पसंद करते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर कम सामान लेकर जाना आपको अच्छा लगता है?
2: अच्छा, हम तो जब वेकेशन पे जाते हैं ना, तो इतना ज्यादा सामान होता है कि हम टेंशन में रहते हैं कि सामान का भी क्या करना है.
1: तो ज्यादा सामान होता है आपके पास?
2: सामान भी से ज्यादा होता है, हमारा इधर फैमिली बहुत ज्यादा है.
1: अच्छा, ऐसे नहीं लगता कि पैसे ही दे दूं मैं वहाँ पे, सब लोगों को अपने हिसाब से जो चाहेंगे खरीद लेंगे और मेरा भी हेडेक थोड़ा कम हो जाएगा?
2: तो बच्चे भी है अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, लेकिन हमारे घर का रिवाज ऐसा है ना, रिवाज तो नहीं है लेकिन हम लोग दिल से लेते हैं. मेरा मामू का बेटे का छोटे छोटे बेटे है, मैं उसके लिए भी शॉपिंग करता हूँ.
1: अच्छा,
2: अपने बेटों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपने भांजों के लिए, वो तो लाजिम लेना है. तो मैं उसके लिए भी लेता हूँ. जो मेरे अभी खाला का घर में हमारे घर से दूर है थोड़ा, उसके पोते हो गए हैं, मैं उसके लिए भी शॉपिंग करता हूँ. एक रिवाज नहीं है, मोहब्बत
1: है,
2: खुशी है, इस वजह से हम लेते हैं. लेकिन फैमिली भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो सामान जब मैं फर्स्ट टाइम ये कतर से मैं जा रहा था ₹4,000
1: फिर वो लोग भी कुछ आपको देते हैं जब आप आ रहे होते हैं यहाँ पर?
2: ध्यान तो इधर होते हैं, वो लोग सेंटा है, सामान बेचता है हमारे लिए भी.
1: अच्छा,
2: वो लोग भी बेचता है हमारे लिए. लेकिन
1: चलिए, आपका भी ख्याल रख रहे हैं क्योंकि आप इतना ख्याल रख रहे हैं, तो आपका भी ख्याल होना चाहिए लोगों का.
2: हमारा भी ख्याल रखते हैं, जितना भी मुसाफिर भाई है ना, ये सभी कोई भी नहीं है कि इधर से वो शॉपिंग करते हैं, जब वो इधर रहता उसके लिए कोई भी नहीं लेके आता है, वो उसके लिए भी सामान बेचता है, हर मुसाफिर के लिए ऐसा होता है.
1: सही.
2: लेकिन होना भी चाहिए, जब आप तुम घर जाओगे ना, कुछ लेना चाहिए.
1: कुछ ना कुछ आप कह रहे हैं लेके जाना ही चाहिए, ऐसे खाली नहीं, थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए. लेकिन इतना भी ना हो सामान की वाकई आपको हेडेक हो, आपकी परेशानी हो, चलो यहाँ से तो आप ले गए, फिर आप अपनी सिटी जा रहे हो, पांच लोग आपको लेने भी आए हैं, फिर सामान भी इतना है, वो भी एक पूरा पंगा हो जाता है रखना.
2: पंगा तो होता है, लेकिन फिर दो तीन गाड़ी का वो मैनेजमेंट करेंगे ना जो तुम्हारी आएगा.
1: ये सही है, दो तीन गाड़ी से लोग आए, ये तो ठीक है.
2: 2014 का बात कर रहा हूँ, 2014 की जब मेरी सिस्टर पाकिस्तान आ रही थी एयरपोर्ट, मैं पिकअप करने के लिए आ गया था. मेरी सिस्टर इधर ही है, तो उसके साथ तीन बच्चे थे, एक होता सामान इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा
1: इसका मतलब जो लोग कहते हैं ना कि जो फीमेल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा सामान कैरी करने का शौक होता है, वो बहुत सामान ले लेके चलती है. नहीं, देखिए आप सब लोग खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हम भी बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, हमारी मजबूरी है जो भी है, बट जाते हैं, हम भी लेकर जाते हैं. यही बस मैं सुनना चाह रही थी कि मेरे जितने मेल लिसनर्स हैं वो ये कहें कि भाई हम भी लेके जाते हैं इतना सामान.
2: आप कल जा रहे हो ना?
1: हाँ, इंशाल्लाह. जी जी जी, जी सामान तो आप समझ ही सकते हैं. बस
2: मैं कह रहा हूँ कि हर अपनी मर्जी से सामान लेता है.
1: ये तो है अपनी मर्जी.
2: मैक्सिमम 100 में 2% लोग कहते हो कि वो शॉपिंग नहीं करता है, ये ज्यादा लोग पाकिस्तान या पैसा भेजता है वहाँ पे लेता है. यहाँ पे हम तो पे जब जाते तो खुद चीजें के हमको फोन भी आता है कि आप इधर हमको ये चीज भिजवाना है, ये चीज भिजवाना है.
1: हाँ, ये तो है. फरमाइश भी होती है और फिर जब जाता है आदमी तो ये सोचता है एकदम खाली क्या ही जाए, एकदम जाते ही तो पैसे भी नहीं बांटना शुरू कर देगा, है ना, तो बस कुछ ना कुछ लेते करते अब ठीक ठाक सामान हो जाता है। तो ये आप कह रहे हैं कि भाई मजबूरी है लेके जाना, इसलिए जरूरी है लेके जाना, तो बस यही है। जी जी मतलब सामान लेके जाना भी तो खुशी का इजहार करना है कि ख्याल हम करते हैं आपका, आपका आपके बारे में सोचते हैं, आप हमारे लिए स्पेशल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो पैसे से अहमियत नहीं होती, महंगा भी कोई गिफ्ट दे रहा होता है, कोई कम मतलब उतना महंगा नहीं देता है, बट आपको याद रखा उस बंदे ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कहीं से आ रहा है कोई, आपको याद रख रहा है।
2: मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं शॉपिंग करता हूँ, जितना भी मुसाफिर भाई है ना,
1: हाँ जी,
2: जिसके जिसका फैमिली नहीं है, जब वो भी अपनी कंट्री में जाता है ना,
1: हाँ,
2: वो कुछ लेके अपने घर लेके जाता है।
1: बिल्कुल लेके जाना चाहिए और लोगों को खुश भी करना चाहिए और आपको भी अच्छा लगता है। बहुत ही जबरदस्त बात मुदस्सर जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो वापस से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, और यहाँ पर एक कॉल मुझे सऊदी अरेबिया से आ रही है, पता नहीं, चलिए देखते हैं हम उसे भी कनेक्ट करेंगे, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: जी मेरा नाम रियाज है।
1: रियाज जी कैसे हैं आप, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम खैरियत से हूँ। और आप मुझे बताएंगे जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो क्या आप ज्यादा सामान ले लेके जाते हैं या फिर आप हल्का फुल्के अंदाज में, भैया अपना कम सामान लेके जाओ, जिसको जहाँ पैसे दे के दिलाता रहूँगा गिफ्ट, मैं नहीं लेके जाऊँगा बहुत सारी चीज़ें, ऐसा सोच के जाते हैं या लेके जाते हैं?
3: अच्छा, ये बात हर जगह की ना, अपना एक रिवाज तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो आदत जो पड़ जाती है ना,
1: हाँ
3: हाँ, तो उसी हिसाब से फिर आदमी का पीछा भी नहीं छूटता।
1: हाँ, ये सही
3: है,
1: हाँ, आदत पड़ जाती
3: है। जो प्रधानमंत्री अभी जो बात कर रहे थे सामान का, तो फिर वो करना पड़ता है,
1: निभाना पड़ता है, फिर लोग उम्मीद लगा लेते हैं ना हमसे। हाँ,
3: बिल्कुल बिल्कुल। और पहले के टाइम, पहले का टाइम अलग था, आपका टाइम अलग है। पहले उस टाइम पे हर एक चीज रेयर थी और बहुत सी चीजें यहाँ से लेके जाने में खुशी होती थी सबको, क्योंकि वो ऐसी बहुत सी चीजें होती थी जो वहाँ नहीं मिलती थी, थोड़े कीमती होती थी, या जैसे हमारे जो अरब से खासकर जब से कोई आता था तो जो वो चप्पल पहनता था ना, वो सफेद वाला थोड़ा, वो उसकी एक निशानी थी। तो वो चीज है ना, वो चीज टाइम के साथ अब टाइम बदल गया है। अब
1: ये है की
3: ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, जो अच्छे अच्छी से अच्छा जगह में नहीं मिलता है, अच्छी से अच्छा फेमस में नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हर चीज हर जगह अवेलेबल
3: अलग था अब। और दूसरा ये है कि अगर आपको सफर का मजा लेना है तो आपको हमेशा अपना बैग कम रखना चाहिए, सामान कम रखना चाहिए। ये मैंने पढ़ा था एक जगह, तो मेरा तो
1: अरे क्यों बोला आपने ये वाली बात, जब आप खुद एग्री कर रहे हो कि सामान देखो देखो, ज्यादातर लोग यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं।
3: मैं नहीं लेके जाता,
1: है
3: नहीं लेके जाता,
1: कसम खाइए आप नहीं लेके जाते, कसम खाइए
3: सही में।
1: अच्छा, तो फिर मतलब वहीं पे सबको सब दिला रहे हैं।
3: उसके एक रीजन है।
1: अच्छा,
3: एक रीजन है
1: क्या?
3: एक रीजन ये है कि आप सिर्फ मतलब सामान दे के आप मतलब उसके बाद खत्म नहीं होती है।
1: फिर
3: हमारे यहाँ क्या होता है कि उसके बाद आप जब एक दो दिन गुजारो आराम से, तो फिर जो रिश्तेदार वगैरह है उनके यहाँ जाना पड़ता है,
1: सही,
3: और वो करना पड़ता है, तो उसमें भी आप फिर खाली हाथ नहीं बैठ सकते। आपको पैसा देना होता है या बच्चों को पैसा देना होता है, तो मेरा ये मानना है कि मतलब इससे अच्छा है कि आदमी पैसा दे दे कि भाई आपकी जो जरूरत है या जरूरियात है, आप जो खरीदना चाहते हैं अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपने लिए ले लो। और इधर से लेके जाने कुछ चीजें, कुछ चीजों को ले जाने में भी थोड़ी दिक्कत भी होती है, जैसे कि अभी अगर आप शूज लेके जाते हो तो क्या पता वो किसी को पसंद आए ना आए, या छोटा पड़ जाए पड़ जाए, बहुत एक अलग मौत है। तो ये चीज है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा, तो मैं इसे मैंने

0: ये नहीं है, ज्यादा कम हो गया, वो भी नहीं है,
1: ज्यादातर समझदार लोग यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं
0: जी, वो लोग खुश भी हो गए कि यार मतलब जो जो चीज हमको लेनी है या
1: हम अपने हिसाब से पसंद से ले लेंगे,
0: अपने हिसाब से ले लेंगे बस वही है। अभी वो पहला जमाना था कि लोग इधर से भर भर के क्रीम है और मेरे को मुझे थोड़ा सा अपनी बात यहाँ हुई है कि मुझे एक बार घर में कहा गया था कि प्लास साहब जो है वो इतना इतना दर्जन लेके आ जाओ अपने साथ, अगर आ रहे हो
1: क्लास
0: तो लेके आ जाओ। तो मैंने घर में बोला कि क्यों आप लोग साबुन उधर नहीं मिलता है जहाँ नहीं
1: साबुन, अच्छा शौकिया
0: तो कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ डिमांड ऐसी आती है कि आदमी परेशान हो जाते हैं यार, ये छोटी छोटी चीजों लेके जाना, सामान भारी हो जाता है, वेट ज्यादा हो जाता है, इधर आदमी अपने जाने का टाइम में उसको एक अलग परेशानी हो जाती है। तो ये चीज है, हाँ ये चीज है ना, लेकिन मेरा मेन पॉइंट ये है कि पहले का जमाना अलग था, अब अलग है, अब इतना सामान और ये जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक चीज अच्छी क्वालिटी में हर जगह आपको मिलती है, हमारे गांव में गली गली ऐसे मार्केट है, इतने मार्केट है, इतने इतना सब कुछ मिलता है कि इधर उतना नहीं मिलेगा जितना उधर मिलता है, हर एक चीज मिलता है, तो क्या जरूरत है अपने अपने सर पे उतना बोझने
1: लेके जाने
0: की। मैं खुद मेरा खुद ये मानना है मतलब
1: बहुत ही सही, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे घर में भी जिनका यही मानना है कि अननेसेसरी सामान यहाँ से वहाँ ढोने की जरूरत नहीं है, आप पैसे दे दीजिए वो अपने पसंद से ले लेगा, आदमी भी खुश, आपका भी हेडेक कम। तो खैर चलिए,
0: और बच्चों के लिए लाजिम, बच्चों के लिए लाजिम जितना
1: कुछ ले जाओ
0: बच्चों के लिए ले जाया करें,
1: बाकी
0: और जो मतलब पेचेवर है और समझदार है उनको बोलिए कि आप अपना हिसाब से करें, हम तो
1: अरे शौक भी तो कोई चीज है, अब ठीक है सब लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा भी है, बट आपने अपने शौक से किसी के लिए कुछ लिया एंड यू नो कि बस मैं अपने शौक से आपके लिए लाया।
0: मेरी बहन की शादी हो रही थी
1: जी,
0: तो मैं जब उससे काफी टाइम पहले गया था, लेकिन आ गया था तो मैं वैसे भी सामान का शौक नहीं रखता लेके जाने का, तो मैंने घर में बात की तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा आयरन होता है या थर्मास होता है या जो या
1: वो आप ले गए सर
0: वगैरह, ये चीजें ऐसी चीजें होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए उसके काम आएगी।
1: सही, जो कुछ एक आध चीज आप कहते हैं जरूरत की है वो तो ले जाओ, अदरवाइज जो है सामान कम रखिए एंड देयर यू कैन गिव मनी टू लोग अपने हिसाब से।
0: कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा कार्टन लेके भर देते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके जाते जो जरूरत है जो हाँ वही है कि आप
1: उस हिसाब से लेके जाए। चलिए बहुत ही अच्छी बात,
0: माँ के लिए और बड़े बहन के लिए एक घड़ी भी लेके गया था अच्छा वाला, तो ये है कि मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लिए कुछ नहीं है,
1: कुछ थोड़ा बहुत ले जाइए,
0: लेकिन हाँ मेरा मतलब ये है कि मतलब ज्यादा बर्डन अपने आप में ना डालो और वो जितना
1: हाँ मतलब बहुत हेडेक ना हो, क्योंकि अब आप सामान खरीदने के लिए भी टाइम निकालेंगे, फिर पैक करेंगे, फिर रखेंगे, फिर उठाएंगे, समेटेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई, तो आपके एफर्ट्स भी लग रहे हैं, आपकी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ अगर आप मिनिमाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये आपका कहना। चलिए बहुत ही अच्छी एडवाइस आपने मुझे दी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और अब इंशाल्लाह
0: आपका सफर आसान करे और अच्छी से जाइए, अच्छी से फिर वापस आ जाइए इंशाल्लाह,
1: इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह,
0: 1 नवंबर से इंशाल्लाह फिर होंगे ना,
1: 1 नवंबर से जी इंशाल्लाह, 1 नवंबर से होंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है जी, ओके अल्लाह
0: हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज, शुक्रिया दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेना जरूरी है, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे फर्दर आपकी राय क्या क्या है वो आप मुझे दे सकते हैं, यहाँ पर मैं ही हूँ जिसको आपको सारी भरपूर राय देनी है, सोच के रखिए, आप मुझे बताइए अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कीजिए। सवाल ये है कि अगर आप वेकेशंस पे जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या ज़्यादा सामान कैरी करते हैं और यू प्रेफर कि बहुत ही कम सामान, जितना ज़रूरत का है जस्ट दैट, तो बताइए सोचकर। और फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: दोहा की सरजमीन से मलिकुल कतर नुमाइश दाखिली सलामती और तहफ्फुज के शोबे में एक मुमताज बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म के तौर पर मुसलसल अपना मौसर किरदार अदा कर रही है, जहां मुतालिका इदारे, माहिरीन और खुसूसी कंपनियां एक ही छत तले जमा होकर जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, नए तसव्वुरात और मुअस्सर हिफाजती हल दुनिया के सामने पेश करते हैं। साल 2026 का ये एडिशन इस सफर में एक खास संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि मलिकुल कतर अपने क्याम के 30 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। तीन दिहाइयों पर मुहित ऐसा सफर जो सलामती के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ता रहा और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में तहफ्फुज़ और सलामती के नए तकाजों से हम आहंग होता गया। मलिकुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मलिकुल कतर 2026 की इंतजामिया आप सबके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
1: FM 107 टाइम चेक। दोस्तों टाइम फॉर द टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 2:03।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर विद आरजे नाजिया, सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, मैं हूं नाजिया आपके साथ। 2:04 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक में और यहां पर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। आज बात हो रही है कि ज़्यादा सामान या कम सामान, ये जो सामान लेकर आप चलते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, आपके लिए लाइबिलिटी है या आपको लगता है वाह ये तो मेरा एसेट की तरह काम करता है, तो बस आज हमें यही बताना। और हाँ, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि बस बैठे बैठे यूं ही कि कभी आप यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो किसी ने बड़ी फिजूल सी फरमाइश आपको की, जैसे एक भाई बता के गए सूप की, ऐसी कोई और फिजूल सी फरमाइश बहुत ही अजीब सी जिस पर आपको हंसी भी आई और फिर मज़ा हम सबको भी आया, तो वो भी आप शेयर कीजिए। फिलहाल एक और कॉलर मेरे साथ। हेलो
3: जनाब, साडा भी सामान ले जाओ।
1: ऑलरेडी इतना सामान है मेरे पास, अब मैं क्या ही बताऊँ, सामान सामान सामान, कई बार जीना हराम, वही वाली बात है।
3: चलिए मैडम, मैं दुआ करता हूँ आपकी जिंदगी इसी तरह सामान से मालोमाल रहे।
1: हाय थैंक यू जी, आपकी भी, आपकी भी। अगर सामान हम सबको खुशियाँ दे रही है, हालांकि वो पता नहीं कितना देती है, लेकिन चलिए भरा रहे तो सुकून तो रहता है शायद लोगों को, सामान भरा है हमारे पास।
3: बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था।
1: अच्छा,
3: जब तक मैं बैचलर था।
1: ओके,
3: यकीन मानिए मैडम जी, आज भी मेरे घर पे 10 कंबल पड़े हैं जो मैं यहाँ से लेके गया हूँ।
1: ओहो, जो यूज में ही नहीं आ रहे
3: हैं। नहीं नहीं, यूज में आ रहे हैं मैडम।
1: अच्छा, यूज में आ रहे हैं, फिर तो सही है। चलो मैं डर गई, मैंने कहा जाके बस यूं ही स्टॉक करते गए आप, करते गए, कोई यूज ही नहीं कर रहा है। कंबल ले जाने का मुझे लगता पहले सबको बड़ा शौक था ना, जितनी बार जा रहे कंबल लेके जा रहे, एक सेट कंबल,
3: बैटरीज, थर्मस, हाँ। ये चीज तो मेरे ख्याल से ये तो परमानेंट ही है मैडम।
1: और घड़ियां, ये तो कुछ चीजें होती थी, ये तो एक निशानी थी कि विदेश से कोई आया है तो कंबल ना लाए, घड़ी ना लाए।
3: जी एक एयरलाइन चलती थी, मैं उसका नाम नहीं लेता, हाँ, उसके पीछे टी आता है इंडिया की, 40+7 उस टाइम थोड़ा बहुत और भी वो अलाउ कर देते थे, 4-5 किलो अगर एक्स्ट्रा होता था। मैडम यकीन मारिए, जब भी यहाँ से जाना ना, तो बैग की वो कंडीशन होती थी भी, जब तक दो बंदे पकड़ के उसकी जिप को बैग की बंद ना करें तब तक मैडम मजा नहीं आता था।
1: वाकई इतना बैग भरा हुआ होता था सामान से। भाई इसका मतलब आप सब लोग मेरे ही जैसे हैं, मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप ऐसी हैवी गिल्ट में हूँ कि लो मैं ही सामान ज्यादा ले लेके जाने की शौकीन। नहीं देखो सब है, देखिए सब लोग हैं, जितने भी आए, एक को छोड़ के, एक बंदे को छोड़ के सब ने कहा कि देखो सामान लेके जाना ही पड़ता है, खाली हाथ आप नहीं उतर सकते, आपको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते इतने लोग हैं, सामान हो जाता है, फिर आपका अपना भी सामान होगा कुछ ना कुछ, तो बस।
3: मैडम एक्चुअली हम देसी लोगों की रिश्तेदारी में हर किसी को जाना पड़ता है, सही है ना मैडम।
1: मुझे लगा आप कह रहे हैं हम देसी लोगों की पहचान ही यही है कि सामान बहुत सारा लिए चल रहे हैं।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैडम वही है, अगर किसी के घर पे जाना हो तो डेफिनेटली मैडम बंदा हाथ की तरफ देखता ही देखता है, अभी बंदा बाहर से आया कुछ ना कुछ लेके आएगा हमारे,
1: है ना। और कुछ ना लाओ तो कितना बुरा लगता है, मतलब वो सही कहा आपने, लोग देख रहे होते हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये हमसे कुछ कुछ चाह रहे हैं कि हम कुछ दें इन्हें, मतलब आपको शर्म सी लग रही होती है अगर आप सामान ना ले जाएं. अब हर टाइम बंदा देखिए पैसे भी नहीं दे सकता, हर वक्त थोड़ी आपके हर आदमी को पैसे देंगे. कोई आपसे बड़ा है एज में तो आप उसको पैसे तो नहीं ही दोगे ना, आप तो कुछ सामान ही तो दोगे ना, तो सामान तो चलो तो फिर इस तरह से सामान होता चला जाता है. बस यही सुनना था मुझे आप लोगों से कि मेल ही मेल्स जो है वो गवाही आके दें कि हम भी इतना ही सामान लेके जाते हैं, क्योंकि बेचारी फीमेल्स को जबरदस्ती बदनाम कर रखा है लोगों ने.
3: नहीं मैडम, किसने कर रखा है जी? मैंने तो सुना नहीं ऐसा.
1: अच्छा चलिए सही है.
3: नहीं नहीं मैडम, मेरे सर्कल में मैंने नहीं सुना ऐसा. मेरे घर में के रिगार्डिंग मैं बोल सकता हूं जी.
1: अच्छा सही है, फिर तो आप सही चल रहे हैं. सही सर्कल आपने ज्वाइन किया, यही होना चाहिए आपके सर्कल में, सबको आना चाहिए.
3: बिल्कुल मैडम, लगेज हो बैग हो उसके साथ में एक मेकअप किट तो एक्स्ट्रा होती ही होती है, ये बात तो जेन्युइन है मैडम.
1: इतना सामान जा रहा है उसमें बेचारी किट कहाँ, इतनी छोटी सी इतनी सी होती कहीं भी फिट हो गई.
3: हाँ मैडम, पूरे लगेज से सबसे महंगा सामान उस छोटी सी किट में होता है, ये भी पॉइंट है ना.
1: चलिए तो वो तो यूज तो हो ही रही है ना, मैं तो उन चीजों की बात कर रही हूँ जो हम लोग लेके भी जाते हैं, कई बार यूज में भी नहीं आती. अक्सर होता है ना कपड़े ले जाते हैं एक्स्ट्रा कि ये पहनेंगे या वहां पहनेंगे ये करेंगे, बट वो यूज में ही नहीं आते, फिर आप वैसे ही उन्हें वापस लेकर आ रहे हो तो फिर अफसोस होता है कि हाय.
3: नाजिया जी, एक चीज और यहां से लेके गया था.
1: क्या?
3: जो होम थिएटर होता है ना, वो लकड़ी का जो बना हुआ होता है वो थोड़ा सा भारी रहता है प्लास्टिक के कंपैरिजन. तो मैं यहाँ से लेके गया था आज से 10 साल पहले, उसका वजन भी था मेरे ख्याल से 10 किलो से ऊपर होगा, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है. वो मैडम अभी भी घर पे ऐसे ही पड़ा है यूजलेस.
1: देखो, और एक भाई ने कितनी अच्छी बात की, अब तो सारा सामान सारी दुनिया में हर जगह सब कुछ मिल रहा है. पहले तो था कि चलो कुछ चीजें नहीं मिलती थी, अब तो सब चीजें हर जगह मिल ही रही है, फिर हम क्यों इतना सामान ले लेके जा रहे हैं, इधर से उधर ढो रहे हैं. बड़ा सवाल है मैडम.
3: हम देसी लोगों की मजबूरी है मैडम, हम लोगों की रिश्तेदारियां
1: लेके जाते वाले
3: हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से लेके जाना तो नाजिया जी एक बात हो गई, ठीक है,
1: वहाँ से भी डबल.
3: जब हम लोग मैडम इंडिया से आते हैं ना, उस टाइम भी देखिए बिना वजह से बैग फुल,
1: इवन
3: जो साथ में कैरी बैग होते हैं वो भी फुल.
1: ये तो मेरी कभी समझ में नहीं आया कि सामान निकाल दिया, सब दे दिया जिसको देना, उसके बाद वहां से चले तो फिर पूरे फुल चल रहे. ये सामान आता कहाँ से है?
3: हम लोग ना 2022 में आए थे. एक तरफ मेरे ब्रदर की फ्लाइट थी तो एक तरफ हमारी थी, ठीक है मैडम.
1: अच्छा, जी.
3: तो हमारे पास मैडम वेट लिमिट से भी 5 से ज्यादा किलो था. हमारे पास थालियां थी, थालियों का वजन तो आपको पता है बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें अच्छा. कटोरियां भी बनी रहती हैं.
1: वो आप लेकर चल रहे थे? क्यों?
3: हाँ जी, वो लेकर चल रहे थे. वो मैडम कुछ था प्रोग्राम था उसके
1: अच्छा,
3: लिए ली थी.
1: अच्छा, अच्छा.
3: गेस्टों के लिए तो उसमें इजी रहता है. तो मैडम देखिए, वो कंडीशन ऐसी थी भी, उसको निकाल भी नहीं सकते थे और पैसे भी नहीं पे कर सकते थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि आपको पता है 1 किलो का चार्जेस भी मेरे ख्याल से हजारों में ही है. तो बस मैडम क्या किया, वो जब अपना बोर्डिंग पास लिया, वेट वोट अपना उनको करवा के वो ब्रदर को पकड़ा दी थोड़ा टाइम के लिए. बस जब सारा सिस्टम हो गया, वो दोबारा फिर कैरी बैग में ले ली.
1: वाह,
3: परेशान हुए मगर मैडम लेके जरूर आए.
1: ये हम अपनी कामयाबी समझते हैं, पता है, जितना परेशान हो के कोई सामान लेकर आ जाए, कहते हैं देखा हम ले आए.
3: नाजिया जी बस दो बातें और, जब आप डिपार्चर करते हो ना दिल्ली एयरपोर्ट से मैडम,
1: जी जी,
3: तो इमिग्रेशन से पहले ना वहाँ पे आपको मैडम कैरी बैग मिलते हैं, आप अब की बार जरूर लेके आइएगा अगर आपने प्रीवियस टाइम में ना लिए हो. वो इतने मैडम एयर टाइट हो ना, आप अचार भी उसमें डाल देना मैडम, एक तिनका भी बाहर नहीं आएगा, इतने ज्यादा एयर टाइट रहते हैं वो.
1: लो, इतने साल से ट्रैवल करे हमको पता ही नहीं, आज इस बार चेक
3: करना, ट्राई करो. ट्रैवल कर रहे हो तो
1: पक्का मैं आपको बताऊंगी भी फिर आके.
3: हाँ, इमिग्रेशन से पहले ठीक है. दूसरी बात ये मैडम,
1: हाँ बताइए
3: मैडम, जितना मर्जी बंदा सामान ले जाए, जितना मर्जी पैसा खर्च ले, जो अंदर मैडम ड्यूटी फ्री पे शॉपिंग करने का मजा है ना मैडम, उसकी फीलिंग ही अलग होती है.
1: ये लगता है कि ये तो कुछ हमने पता नहीं क्या लिया और इसका हमें जो है वो वेट भी नहीं जा रहा है, हम आराम से कैरी कर, जबकि आराम नहीं है, आराम ही आपका खराब हो रहा है, आप हाथों में पकड़े इधर उधर चल रहे हैं, मगर खुशी भाई अलग ही है. ये बात तो सही,
3: चार्म ही अलग है मैडम,
1: इसका चार्म अलग है. और लोग जरूर जाते हैं टाइम निकाल के कि हम थोड़ा पहले पहुंचे, जिससे वहां जाके शॉपिंग कर लेंगे.
3: ये तो अभी तो मैडम एयरपोर्ट्स पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं. चलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं करता मैडम कॉल, बस मैं लास्ट में यही कहूंगा, आपकी यात्रा मंगलमय और सुखदायी हो.
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा. ओके बाय. सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं, बस कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप जो हैं सिर्फ कॉल्स ले रही हैं, मैसेज नहीं ले रही हैं. तो जल्दी से मैसेज लेते हैं. यूसुफ खान जी का मैसेज है, सलाम काय, गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे. वेलकम कहते हैं एनर्जी आर, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून, हैप्पी वाला वीकेंड, हैप्पी वेकेशन, हैप्पी जर्नी एंड थैंक यू सो मच. आगे कहते हैं खैर से जाएँ, खैर से वापस आएँ, इंशाल्लाह वील मिस यू, आई एम गोना मिस यू टू, थैंक यू सो मच. और आगे कहते हैं कि आई फॉल इन फर्स्ट कैटेगरी, हम लोग सामान लेकर जाते हैं जितनी ज़रूरत होती है, यानी जितना वेट होता है एयरलाइंस की तरफ से ले जाते हैं. फैमिली है तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेना होता है. अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना सामान के गए हों. ये बात तो सच है, सामान कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही पड़ता है, ये तो बात है. अच्छा यहाँ पर हमें सलाम कहते हैं उमेर ख़ान आफरीदी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपने लिखी हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का. गुड आफ्टरनून कहते हैं और मुवीन बुखारी जी हैं, थैंक यू आपके मैसेज का. और हमें यहाँ पर मैसेज है, क्या हाल चाल है नाजिया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से, हालाँकि इन्होंने अपना नाम मुझे नहीं बताया, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, कुछ डैशिंग से पिक्चर तो लगा रखे इन्होंने. अच्छा इसके साथ है मैसेज मुझे यहाँ पर, इनका नाम हुसैन है और ये गुड आफ्टरनून कहते हैं, कहते हैं मैम आपको मिस करेंगे. चलिए मैं भी आप सबको मिस करूँगी, स्टूडियो मिस करूँगी, या ऑफ कोर्स. सलाम कहते हैं, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून एंड साथ में नाइस शो, हैप्पी जर्नी. मुमताज़ अहमद जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ओहो कोई तो एयरपोर्ट पहुंच चुका है, शेख इरफान अल कासमी जी, और कहते हैं मैं दुआसन का लग रहा है दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ, और वहाँ से ये हमको मैसेज कर रहे हैं क्या? अच्छा पता नहीं, थोड़ा क्लियर कीजिए या मेरे समझने में कुछ गड़बड़ हुई है क्या. अच्छा मैं वापस से इसको समझती हूँ. अच्छा सामी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच. और इसके साथ मोहम्मद जी का मैसेज है और गुड आफ्टरनून कहते हैं, मैडम मैं तो सामान लेकर जाता हूँ. अच्छा आप ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं, यही कहना चाह रहे होंगे. अहमद अजहर जी का मैसेज है, सलाम कैसी हैं? सामान तो लेकर जाना पड़ता है, सामान के बगैर शर्म आती, बिना सामान के शर्म आती. भाई ये बात भी आपने सही कही, लोग देख रहे होते हैं ना, जो अभी कहा गाबा जी ने, उनकी निगाहें होती हैं कि शायद ये कुछ लेकर आएंगे, अंदर से कुछ लाए होंगे हमारे लिए, तो बड़ा एम्बैरेसिंग सा तो हो ही जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी लेके जाना ही पड़ता है. एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो
4: जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके?
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: जबरदस्त, बहुत ठीक है. और अब आई थिंक यू आर अलोन फॉर लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज जो आपके साथ होते थे वो शायद मॉर्निंग में आना शुरू हो गए.
1: हाँ जी वो मॉर्निंग में आ रहे हैं और आज अब मैं आज लास्ट है अभी मेरा फिलहाल, क्योंकि मैं 2 weeks के लिए छुट्टी पर हूँ, तो इंशाल्लाह 1st of November अब मेरी मुलाकात होगी. आपका नाम नहीं पूछ पाए, आपका नाम?
4: मेरा नाम रेहान,
1: रेहान. अच्छा रेहान आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ज्यादा सामान लेकर ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर कम?
4: इसमें एक्चुअली पहले तो शायद मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चन की जो ना ये दो डिफरेंट पहलू है. एक जो आपने बात की के सामान ज्यादा लेके जाना या कम लेके जाना, आई थिंक वो पर्सनल सामान की बात होती है, बिकॉज गिफ्ट तो एक अलग चीज हो जाते हैं. मोस्टली शायद जो लोग आपको रिप्लाई कर रहे थे उनका फोकस था कि हर के लिए गिफ्ट लेके जाना पड़ता है. अब मेरे हिसाब से गिफ्ट लेके जाना जो है वो अपना सामान ज्यादा या कम में नहीं आता. देखिए अगर आप वेकेशन पे किसी जा रहे हैं तो वहां तो गिफ्ट नहीं लेके जाएंगे, तो आई गेस शायद जो सवाल या जिसमें जो है जो सिंसे नाजुक के बारे में क्रिब होती है वो बेसिकली दूसरे पॉइंट पे ज्यादा होती है कि आप जिस आपने फिक्र किया कि जी ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, वो जरूरत ही नहीं होती उसको यूज करने की. जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो आई हैव 3 kids, तीनों बेटे हैं, तो माशाल्लाह अब जब खतरा होता है तो बेसिकली शुरू में आपका एक बैग या 1.5 bags होता होगा हम 4 का, और 3.5 bags होंगे हमारे घर की वाहिद खातून के. तो वो ज्यादा, बिकॉज आप
3: मेरे ख्याल में प्रॉब्लम उसमें है, जिसको शहीद आपके भी घर वाले कहते होंगे, सामान बहुत फेंकी जाती है, वो आपके पर्सनल सामान की बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद द गिफ्ट, वो गिफ्ट की तो कहानी हो रहा है वो तो
1: आपने देखिए आपका पर्सनल सामान भी हमने अपना रखा हो, फिर और लोगों को देने का भी रखा, तो ओवर पैकिंग हो ही जाती है।
3: नहीं देखिए उस पे तो सामान आएगा ही आएगा, तो प्रॉब्लम जो आता है वो पर्सनल सामान का इशू है कि आपने मतलब जिस तरह भी आप जा रही हैं, अगर पाकिस्तान को या आई डोंट नो इंडिया, अगर पाकिस्तान चाहिए तो ये शादी का सीजन है, तो अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एक फंक्शन पे पहन लिया वो किसी दूसरे फंक्शन पे दोबारा पहना नहीं जा सकता, जबकि मैं भी पिछले 15 साल से सूट पहन रहा हूँ तो किसी ने मुझे शादी से नहीं निकाला, नेवर एवर कि भाई ये तुमने 2 साल पहले भी सूट पहना था निकलो, ऐसा होता नहीं है, आपको भी नहीं निकालेंगे।
1: अरे खुद को तो एम्बैरेसिंग सा लगेगा ना कि हम यही पहन रहे हैं, लोग कहेंगे लीजिए एक ही से कपड़े आप रिपीट करती रहती हैं हर शादी में।
3: एम्बैरेसिंग तो नहीं है ये कहीं से,
1: खुद को थोड़ा सा लगता है कि हम एक ही सा पहने जा रहे हैं।
3: तो क्या ऐसा ऐसा नहीं होता कि आप जितने लेके जाती हैं उनमें से शायद 30% को कैटिना किए हो,
1: सही है? हाँ ये बात तो फैक्ट है।
3: वहाँ पे प्रॉब्लम गिफ्ट लेके जाने के लिए नहीं है, वो तो हो सकता है किसी के रिलेटिव कम है किसी के ज्यादा है, तो वो तो एक रहता जीत, पैसे देना इज नॉट, पैसे देना जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता गिफ्ट देने का, बिकॉज गिफ्ट जो है वो एक शो करते हैं कि अगले बंदे ने हमें याद रखा अपने सारे टाइम पे, दे वर थिंकिंग अबाउट मी, और आपने एक एफर्ट दी, ठीक है, तो वो एफर्ट के नंबर है। पैसे देना इज आई बिलीव के वो डिफरेंट कहानी हो जाती है। हाँ अनलेस कि ऐसा है कि मैं अपनी बहन के लिए जब भी कुछ लेता हूँ तो वो उसको इतना पसंद नहीं आता, तो वो कैटेगरी की शुरू कर देती है, अबे के माफ करें मुझे पैसे दे दें मैं उसमें बहुत खुश हूँ, ना मेहनत करें कि आप मेरे लिए पिछले कि वो मुझे नहीं पसंद आती, तो वो एक बट अपनी आसानी के लिए अगर मैं सोचे पैसे दूं तो आई बिलीव कि वो गिफ्ट का जो एसेंस है वो जाया।
1: हाँ ये तो है, आप अपने शौक से किसी के लिए कुछ ले जाते हैं, मुझे लगता है बहुत अहमियत है, आपने याद रखा उसे, और पैसे देना इज लाइक
3: रिमेंबर देम, वो एक रहता है। बट अगर मैं एक महीने की छुट्टियां जो है वो 3 जीन्स और 4 टी-शर्ट्स और 2 शर्ट्स में गुजारा हो सकता है, जो कि मुश्किल से एक बैग के कॉर्नर में आ जाती हैं, और विजावी 18 सूट, तो वहां पे प्रॉब्लम है कि सामान ज्यादा फेंके जा रहे हैं, जबकि पता है कि उन 18 सूट में से 6 पहनने हैं और बाकी 12 वहां से खरीदने हैं, तो जो वापसी पे आपके आपका सामान बढ़ता है वो इस वजह से बढ़ता है।
1: हाँ नहीं समझ में नहीं आता सामान कैसे इतना बढ़ गया, मैं खुद नहीं समझ पाते।
3: आप लेके गए थे उनमें से 12 आपने पहने नहीं, वो आपने वहां से खरीदे, तो ये भी वापस लेके आने हैं और वो एक्स्ट्रा 12 भी लेके आने हैं, क्योंकि जो लेके जाते थे यू फेल्ट के ये तो इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और वहां जाके पता नहीं।
1: हर सामान ऐसा लगता है कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए होगा, वहां जाके उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं क्यों कम हो जाती है। खैर ये बात तो
3: वहां जाके क्या खरीदना होता है, खादी हो गया या कुछ भी ब्रांड,
1: तो चलिए आपने इसको अलग ही टॉपिक को एक अलग एंगल दिया, और आपने बताया कि कुछ लोग इमोशनली पैकिंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो वाइजली पैकिंग करते हैं, तो आप तो वाइजली पैकिंग की बात कर रहे हैं, हम लोगों के इमोशंस भी जुड़ जाते हैं बीइंग अ फीमेल, तो वो एक हल्का सा क्वेश्चन था, एक हल्का सा टच।
3: इमोशंस जरूर जुड़ने चाहिए, मैंने आपको इसलिए कहा गिफ्ट लेके जाना जरूर, वो एक बहुत डिफरेंट चीज है, वो देखिए जो अपने यूज लेके जा रहे हैं वो फिर यूज भी तो करें, जब उसके से मेजोरिटी यूज नहीं होती और उसकी रिप्लेसमेंट वहां से ले ली जाती है, तो फिर तो आप उसका सामान ही भर रहे हैं, वजन ढो रहे हैं आप।
1: बस एक ये रहता ना कि अगर वहां पे जरूरत पड़ी तो फिर हमारे पास नहीं होगा एकदम से, तो फिर इस सोच के चलते ना, इस घबराहट के चलते लोग एक्स्ट्रा रख लेते हैं।
3: कभी ऐसा हुआ नहीं?
1: हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ये तो सच का।
3: कभी ऐसा हुआ कि आप जो कपड़े लेके गई थी उनमें से ओ वो कम पड़ गए और वहां से भी ना ले?
1: नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ,
3: ऐसा ही हुआ था कि लेके सब कुछ उसमें से बहुत कुछ रहता था, इवन देन वहां से डिजाइन चेंज हो चुका है, नई
1: सिलेक्शन आ चुकी है। सही कहा आपने, एक एक बात सही बोल रहे, आपका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है, एक एक बात आपने सही बोली, और यही होता है शायद हम लोग बहुत इम्पल्सिव होके चीज़ें रखना शुरू, इमोशनल होके चीज़ें रखना शुरू, या तुरंत पाने की एंग्जाइटी हो जाती है कि रख लो, बट आपने बिल्कुल सच बात कही कि नहीं ज़रूरत पड़ती और कभी कमी नहीं हुई, जैसा आपने कहा कि अगर आप रिपीट भी कर रहे हैं ना कपड़े, कोई आपको शादी से बाहर नहीं निकाल रहा है, कोई याद भी नहीं रखता, दैट्स ट्रू, बहुत ही अच्छी जेन्युइन सच्ची बात
3: है। वो
4: उसके लिए आई थिंक अगेन कोई मायना करे, बट फॉर लेडीज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो दुल्हा दुल्हा भी नहीं भाई, सिर्फ दुल्हन है. तो सेंटर ऑफ अटेंशन दुल्हन है, आप जो मर्जी पहन के आ जाए तो दुल्हन पे लोग फोकस कर दें, आप पे नहीं करना. तो वो भी कर लें जब आप खुद दुल्हन बनेंगे,
1: बस तभी फोकस होगा. हाँ ये तो सच कहा आपने. आप बाकी बैठिए,
4: प्यार नहीं रहेगा ज्यादा जो है उसी के बारे में, उसी के कपड़ों के बारे में और मेकअप के बारे में ज्यादा बात होगी. बट इवन आप इवेंट हो तो फिर भी मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी हिसाब से पैकिंग की जाए तो वो हमेशा बेहतर रहती है. इसीलिए जो एयरलाइन है वो ज्यादा फिर उसपे कमाते हैं, बिकॉज अब सामान ऐसा है वो आप छोड़ के भी नहीं जाते.
1: वही है उसके हमारे इमोशंस का सौदा, दैट्स ट्रू. और आपने कहा ना प्रैक्टिकल हो के थोड़ा सोचना चाहिए और फिर उस हिसाब से पैकिंग करनी चाहिए, दैट्स ट्रू. क्योंकि वो आपके ऊपर वाकई एक बर्डन है, दैट्स लाइक इवेंचुअली वो एक लाइबिलिटी हो जाती है. एंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर लाइक ट्रैवलिंग अलोन तो आपको पूरा हेडेक होता है. डिस्पाइट ऑफ दैट वी टेंड टू कीप सो मच ऑफ थिंग्स, पता नहीं क्यों क्या, लेकिन चलिए दैट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड, थैंक यू सो मच. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो हूँ इसे अप्लाई करूँ जितना कर सकती हूँ. बट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, तो यहाँ पर किसी ने मुझे लिटरली मिरर दिखाया, वो बातें बोली जो मैं मतलब अब बस मैं क्या बोलूँ. चलिए एक और कॉलर के साथ यहाँ जुड़ जाते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कौन है मेरे साथ? नमान जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से. आप बताइए आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आज मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो क्या ज़्यादा सामान कैरी करना पसंद करते हैं या फिर हल्का सामान, कम सामान कैरी करते हैं, फ्री एकदम जाते हैं?
4: डिपेंड तो ये करता है कि आप जा कितने टाइम बाद.
1: ये बहुत सही बात है. हाँ, मान लीजिए आप 2 साल बाद जा रहे हैं, फिर ज्यादा सामान होगा?
4: ऑब्वियसली बात है ज्यादा सामान होगा भी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो चीजें परचेज करके जाएं जो आपको यहाँ पर मतलब थोड़ी सी डिफरेंट भी है और ओरिजिनल भी है. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओरिजिनल के नाम पे कॉफी बिकती है, ओरिजिनल नहीं मिल पाती. तो यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज भी दिखने को मिलती है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली हमें देखने को मिलती हैं. कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सामान तो ऑब्वियसली बात है बच्चे हैं और लोग हैं, लाजमी सी बात है अगर हम बाहर से जा रहे होते हैं और बंदे को ये क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ तो लेकर आएगा ही हमारे.
1: हाँ,
4: कोई एक चॉकलेट हो या कोई एक टीवी नहीं की एक कोई चीज होगा.
1: बिल्कुल, ये तो उम्मीद सबकी होती है.
4: कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ऐसा सामान हो जो वहां पर देखने को कम मिलता हो या ना मिलता हो. सार्वजनिक चीजों कुछ ऐसी चीज लेके जाएं जो लगे कि हाँ कुछ बाहर से तो आए.
1: कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, ये बात तो है. सच है,
4: आपने हमसे तो पूछ लिया, हमसे तो पूछ लिया कि आप लोग ज्यादा सामान, आप बताएं आप ज्यादा सामान लेके जाती
1: हैं. अपने आप को ही तो मैं डिफेंड करा रही हूँ इतनी देर से. मेरी भरपूर कोशिश, मेरा सामान बहुत होता है और मुझे मेरे घर वाले बहुत सुनाते हैं, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं. और ये भी कहते हैं अरे औरतों का तो ये है ही, ये तो लेकर ही

0: इतना चलती है तो फीमेल्स तो लेकर ही इतना ले। इसे मैंने कहा मैं डिबंक करूंगी आज।
1: फीमेल्स तो बोल ही नहीं सकते ना, वो तो सामान कम, अच्छा जितना भी सामान ले जाए तो कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली जो है वो मैं लास्ट से सेकंड लास्ट मंथ के अंदर उम्रे पे गया था ना, मैं यहाँ कटक से गया था।
0: अच्छा,
1: मेरी फैमिली पाकिस्तान से आई थी।
0: अच्छा माशाल्लाह।
1: तो हम लोग टोटल जो है वो 11 लोग थे ना, बच्चे मिला के सारे लोग, बच्चे और बड़े मिला के, तो वो लोग 13 बैग लेकर आए थे, 13 बैग।
0: ओह माशाल्लाह, फिर तो मैं बहुत
1: पीछे हूँ। मैं उनसे ये कह रहा था, मैंने कहा इतने बैग सबके अलग अलग, ये तो कम है,
0: ये तो 24 होते, ये तो हमने बहुत समझदारी से पैकिंग
1: किया। तो हाँ, मैंने कहा अगर ये कम है तो आई एम सॉरी, मैंने गलत बोला।
0: बाकी फिर ज्यादा कितने होते हैं, लेकिन चलिए भाई 13 तो आ गई ज्यादा।
1: मैं यहाँ से जब, हाँ बहुत बैग थे, मैं जब यहाँ से गया हूँ तो, और वापसी के अंदर जब हम आ रहे थे, वो लोग पाकिस्तान की फ्लाइट थी, मेरी कतरी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने जो है वो जब एयरपोर्ट के ऊपर हमें चढ़ा दी थी, मदीना एयरपोर्ट से हमने फ्लाई किया, तो जब मैं उनके पास इमिग्रेशन के, उन लोगों का फर्स्ट टाइम ट्रेवल था, मैं ऑलरेडी 7 अदर कंट्रीज में कर चुका था, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सामान ज्यादा है, लिटरली सामान का वजन ज्यादा हो चुका था। मैंने कहा आप लोग लेकर जितना आए थे उससे भी बढ़ा दिया।
0: हो ही जाता है, आपने सही कहा, ये बात है सोचने वाली।
1: की बात ये है कि उसके बाद वो लोग क्या कह रहे थे वो सुनने वाली बात। वो ये कह रहे थे कि हमने लिया ही किया।
0: वाह, तालियां हॉल में।
1: तो लेडीज के लिए तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, तो मैंने कहा हाँ आपने कुछ नहीं किया, ये लोग पागल ने पता डाल दिया दोबारा।
0: लेकर ही क्या, नहीं ये तो है, नहीं वाकई वही है। और मैंने भी अब सोचा है कि हम वाकई खुद से सवाल करें, क्या मैं ज़रूरत पैक कर रही हूँ या फिर व्हाट इफ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, व्हाट इफ हम पैक कर रहे होते हैं कि ये नहीं हो तो क्या होगा, ये सोच जो है ना इसको थोड़ा सा हमें सबसाइड करना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। बाकी पैकिंग आपने भी सही कहा, हर आदमी की अपनी एक बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल चीज़ है, अपना स्टाइल, अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग पैक करते हैं, ले जाते हैं ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा सामान में कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो कम सामान जो है, फ्रीडम जो है वो इन्जॉय करते हैं, तो ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। बट फिर भी असल मकसद हमारा क्या है, हमारा मकसद यही है, ये मकसद तो नहीं कितने नंबर ऑफ सूट केसेस हम लेकर जा रहे हैं, असल मकसद है हमारा अच्छी यादें, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कीजिए, मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, वाइजली, जैसे भी आप कर सकते हैं, और फिर बस अपना वेकेशन एंजॉय कीजिए। ये
1: मदीने से एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम मदीने की शॉपिंग कर रहे थे ना, घर वाले शॉपिंग कर रहे थे, और उनसे ये कहा था कि देखें, वो कह रहे थे कि हमारा ट्रेवल है मदीने से, कुछ यादें लेके जानी है, ठीक है आप लें, मना नहीं है, मेरा एक कंसर्न होता है, अभी भी कोई चीज आप ऐसी चीज लेके जाएं जो वहां नहीं मिलती।
0: सही कहा,
1: सबसे पहली बात, तो यहाँ से लेके जा रहे हैं आपको, एक तो वहां पर जो चीज नहीं मिलती, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी शॉपिंग करके बैग भर लेंगे ना, तो आप लोग परेशान होंगे।
0: सही, बहुत ही अच्छी एडवाइस, थैंक यू सो मच नौमान जी, थैंक यू आपके मैसेज का, आपके कॉल का। इंशाल्लाह वापस आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा जी,
1: थैंक यू
0: जी, अल्लाह हाफिज। दोस्तों बहुत सारे मैसेज भी रह गए हैं, सलाम कहते हैं मुबशर जी, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर सलाम मुझे कहाँ है, हेलोविन का नाम है मुझे पता नहीं, और आप रौनक खत्म हो जाएगी, ओहो अरमान मलिक जी, वाकई हम भी आपको मिस करेंगे। With this, it's time to say khuda hafiz. अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एंड स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: टेक्नोलॉजी जिस तेजी से तरक्की कर रही है उसी के साथ दाखिली सलामती का दायरा भी मुसलसल वसी हो रहा है। आज तहफ्फुज़ का मफहूम सिर्फ इमारतों, तंसीबात और अहम मराकिस की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि डेटा, नेटवर्क्स और डिजिटल निजामों का तहफ्फुज़ भी सलामती के बुनियादी तकाजों में शामिल हो चुका है। इसी तनाजुर में मेलिपुल कतर 2026 की नुमाइश मुतालिका इदारों और दुनिया की मुमताज कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है जहां जदीद तकनीकी हल पेश किए जाएंगे और साइबर सिक्योरिटी, मस्नुई जहानत और सिक्योरिटी के शोबे में उनके बढ़ते हुए इस्तेमाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर माहिरीन तबादला ख्याल करेंगे। मेलिपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मेलिपुल कतर 2026 की इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।
4: सामईन किराम, कभी इंसान ये समझ बैठता है कि अगर थोड़ी नेकी अच्छी है तो बहुत ज्यादा हर हाल में और अपनी ताकत से बढ़कर करना लाजमन ज्यादा अच्छा होगा। अगर इबादत फजीलत है तो आराम कम से कम कर दिया जाए। अगर दीन से मोहब्बत है तो हर मामले में सख्त तरीन रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर एहतियात अच्छी है तो हर जायज चीज को भी मुश्तबा समझना शुरू कर दिया जाए। लेकिन नबवी तरीका हमें एक निहायत अहम उसूल बताता है कि दीन में इखलास के साथ एतदाल भी जरूरी है। जज्बा हो मगर हदूद के अंदर, एहतियात हो मगर गुलू के बगैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन में गुलू से बचो। गुलू का मतलब है हद से आगे बढ़ जाना। दीन ने जहाँ एक हद मुकर्रर की है अपनी तरफ से उससे आगे निकल जाना। दीन ने जिस चीज को लाजिम नहीं किया उसे अपने या दूसरों के लिए इस अंदाज में लाजिम बना लेना जैसे उसके बगैर दीनदारी मुकम्मल ही ना हो। ये गुलू अकायद में भी हो सकता है, इबादात में भी, रवैयों में भी, लोगों के बारे में फैसलों में भी। इसीलिए ये तंबीह बहुत वसी है, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन में हद से आगे मत बढ़ो। जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ता था, आपकी नमाज मोतदिल होती थी और आपका खुतबा भी मोतदिल होता था। कसदन, कितना खूबसूरत लफ्ज है, यानी मुतवाजन, दरमियानी, मुनासिब, न इतना तवील के लोगों के लिए गैर जरूरी मशक्कत बन जाए और न इतना मुख्तसर के मकसद पूरा न हो, और यही नबवी तवाज़ुन है। गौर कीजिए सामईन किराम, जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ नमाज का जिक्र नहीं किया, फरमाया कि वह खुतबतु हो कसदन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी मोतदिल होता था, यानी बात उतनी हो जितनी दिल तक पहुंचे, जितनी मकसद वाजे करे, जितनी सामीन अपने साथ ले जा सकें। ये उसूल हमारे दर्स, तकरीर, नसीहत और गुफ्तगु सब में मुफीद है। कभी बहुत ज्यादा अल्फाज असल पैगाम को छुपा देते हैं और कभी जरूरत से ज्यादा इख्तिसार असल बात को अधूरा छोड़ देता है। इत्तेदाल ये है कि बात उतनी हो जितनी मुफीद हो। मजीद सामईन किराम, दीन को खुद पर गैर जरूरी तौर पर मुश्किल न बनाइए। कभी इंसान अपने लिए ऐसी पाबंदियां बना लेता है जो अल्लाह ने उस पर नहीं लगाई। हर मामले में सबसे मुश्किल रास्ता तलाश करना, हर रुख्सत को कम दर्जे की दीनदारी समझना, ये सोचना कि जितना मुश्किल उतना ज्यादा दीनी, ये उसूल दुरुस्त नहीं। مشقت اگر اللہ کی مقرر کردہ عبادت کے راستے میں آئے تو صبر اجر کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مشقت خود مقصد نہیں، ہم عبادت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں صرف مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ غلو فی الدین کا مسئلہ کبھی کبھار صرف اپنے دائرے تک محدود نہیں رہتا، کبھی بندہ اپنی سختی دوسروں پر بھی لازم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہ کرتا ہوں تمہیں بھی کرنا چاہیے، میرا طریقہ اختیار نہیں کیا تو تم کم دیندار ہو، تو یہاں مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی وہ لازم ہے، جو نفلی ہے اسے نفلی ہی رہنے دیجئے۔ اگر ایک شخص کہے کہ نماز بالکل نہ پڑھو اور دوسرا کہے پانچ نمازیں پڑھو، تو درمیانی راستہ ڈھائی نمازیں نہیں ہوگا۔ اعتدال کا معیار لوگوں کی دو انتہاؤں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں، اعتدال کا معیار شریعت ہے۔ جہاں شریعت سختی چاہتی ہے وہاں مضبوطی، جہاں آسانی دیتی ہے وہاں آسانی، جہاں فرض ہے وہاں پابندی، جہاں رخصت ہے وہاں رخصت کو بھی اللہ کی عطا سمجھنا۔

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दो हवाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज की अपडेट खास करके गेमर्स के लिए है, तो गेमर्स जरा ध्यान दें, और वो लोग जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो गेमिंग करते हैं, मेरे भी आसपास लोग हैं जो मुझे देखते हैं और कहते हैं यही है हमारे घर का गेमर। तो अगर आप अपने घर के गेमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है आज की ये खबर। आई एम प्रीटी श्योर यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन इट, लेकिन फिर भी बता दूं, हैंडहेल्ड पीसी गेमिंग में बूम आई है। लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपना गेमिंग कंसोल, अपना पीसी, व्हाटएवर। अभी इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उनमें से जो मेन है ऑफ कोर्स स्टीम डेक और Asus ROG। ये Asus का ROG और स्टीम डेक मार्केट में है, दोनों के दोनों अपने हेफ्टी प्राइस के साथ हैं, बट दे काइंड ऑफ जस्टिफाइड। अगर आप देखेंगे हैंडहेल्ड गेमिंग पीसीज मैच्योर हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस आ चुकी है, सिलिकॉन प्लेटफॉर्म्स अब कैपेबल हैं कि आपको ट्रिपल ए गेम्स, जो हाई बजट गेमिंग गेम्स हैं, वो भी आप इजिली प्ले कर पाते हैं। अगर मैं Asus की बात करूँ, ROG Ally, वो लिटरली रीडिफाइन करता है पोर्टेबल पीसी को। अपने साथ आप पीसी लेके चल रहे हैं, बड़ी बात है, आपके पॉकेट में है, और क्या चाहिए आपको, 80 वॉट बैटरी, AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर, 24 GB रैम, और ऊपर से थर्मल आर्किटेक्चर है ताकि आपका जो जो जो गैजेट है वो इतना हीटअप ना हो और हैंडहेल्ड के हिसाब से बढ़िया चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी विंडोज भाई बढ़िया चल रही हैं और कस्टम हैंडहेल्ड ओवरलेज भी हैं। तो आप अगर एक एक्सबॉक्स प्लेयर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक पीसी बिल्ड कराना है और आप घर में ज्यादा वक्त बिताते हैं, तब इट इज जस्टिफाइड, आप घर पे बनाइए पीसी, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू वांट समथिंग जो आप टीवी ना डिस्टर्ब करें किसी का, आप कोने में बैठ के खेल सकें, तो अब थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइसेस आर स्टेज्ड एट वन पॉइंट, बढ़ नहीं रहे। तो एक्सबॉक्स गेम पास, एपिक गेम्स, ये सारे के सारे जो है आपको इजीली खेलने को मिलते हैं। और अगर आप स्टीम डेक की तरफ चले जाते हैं तो आई थिंक अभी 2000 के ऊपर ही है, उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, डिस्प्ले भी है, कस्टमाइजेबल TDP लिमिट्स भी है, और डेस्कटॉप लेवल की गेमिंग भी आपको मिल रही है, वो भी पोर्टेबल फॉर्म में। तो और आपको क्या चाहिए। मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं प्लेस्टेशन पे हूँ और मैं PS का पोर्टल यूज करता हूँ जो कि हैंडहेल्ड है, मैं उससे थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फीचर्स होने चाहिए कतर में भी, वो अभी सिर्फ US और एक दो कंट्रीज में दिए, आई थिंक दो ही कंट्रीज में दिए हैं, वो यहाँ पर भी होने चाहिए, जो कि है क्लाउड गेमिंग, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्लाउड गेमिंग के लिए मुझे 1500 रियाल ऊपर पे करने पड़े तो आई वोंट डू इट। तो आई थिंक सोनी नीड्स टू वर्क ऑन इट। इस रेस में सोनी अभी पीछे चल रहा है और स्टीम डेक डेफिनेटली आगे आ चुका है। स्टीम डेक ने जो एक चीज बढ़िया करी है वो है अपने हैंडहेल्ड पीसी के साथ। Asus भी है मार्केट में, दोनों के बीच में बिल्कुल टक्कर का कॉम्पिटिशन है। स्टीम डेक अभी भी एक लेवल ऊपर ही है, हालांकि स्टीम डेक मार्केट में उतरा अपने गेमिंग कंसोल के साथ भी, पर ब्रो गेमिंग कंसोल वर्थ 8000 कतरी रियाल्स, आई एम सॉरी, इतना तो कोई खर्च नहीं कर रहा है। अगर उसको स्टीम डेक का चाहिए कि गेमिंग कंसोल मिले, तो 8000 रियाल तो नॉर्मल इंसान नहीं खर्च करने वाला। उससे बढ़िया अगर उसे खर्च करना होगा तो वो लिटरली एक पीसी घर में बना लेगा और बनवा भी सकता है, विच एवर वे, बट दैट्स द ट्रूथ। और ये समझने की जरूरत है स्टीम डेक को, आप सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं एक कंसोल में, ये बेचने का तरीका नहीं है, बिकॉज हर कोई जो है इसे इग्नोर करके चला जाएगा और इससे बढ़िया पीसी ही बना लेगा। 8000 में एक बढ़िया पीसी बनाने की जगह मैं क्यों कोई कंसोल लूंगा। सो दैट इज हाउ इट इज। आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन, अगर आप एक गेमर है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप एक पीसी गेमर हैं या एक कंसोल प्लेयर हैं, और आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। क्या आपका मन है हैंडहेल्ड की तरफ जाने का या नहीं है? मैं, मेरा इसमें 50-50 है भाई। आई एम नॉट श्योर कि मैं हैंडहेल्ड के लिए भी तैयार हूं भी कि नहीं। 50% आई एम देयर, स्टिल रीचिंग। तो अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा FM 107 कतर, FM 107 कतर पे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107 दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107

उन पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो

वो अपने घर किसी की दावत करना चाहते हैं और फैलावा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में लोग हाउस क्लीनिंग की हेल्प लेते हैं। फ्रॉस्टर्स ने अब इस सेक्टर में भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। ये फेक हाउस क्लीनिंग कंपनीज और फेक क्लीनिंग एजेंट्स बनकर आते हैं और आम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो प्रोफेशनल दिखने के लिए फेक फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, और जहां वो घर की डीप क्लीनिंग है ना, वॉशिंग और मैट्रेस का साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कहते हैं और प्राइसेस एकदम लो कर देते हैं, और ऐसा ऑफर लगता है कि यार इससे तो कम कहीं और मिलेगा नहीं। जब कोई क्लाइंट इन फेक क्लीनिंग सर्विसेज को हायर करता है तो ये स्कैमर्स उनके घर आते हैं और वो कई बार आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस बहुत ज्यादा गंदा है, फला सामान जो है बहुत गंदा है, ये सोफा बहुत गंदा है, इतने ही अमाउंट में ये सामान जो है मैं घर से बाहर ले जाऊंगा, हम अपने स्टोर ले जाएंगे, हम अपने सफाई करने वाली जगह पे ले जाएंगे, अपनी लोकेशन पे, अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहां पर क्लीन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। वो आपका सामान उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एडवांस में 50% पेमेंट कर दीजिए। ये आपके घर आते हैं और दो चार दिन सफाई भी करते हैं, कई बार ये कहते हैं कि आप हमें बार बार बुला सकते हैं, ये थोड़ा अमाउंट लेते हैं और फिर ये चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये हाउस क्लीनिंग करने वाले लोग आपके पास आते हैं तो ये आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं इस तरह से कि आप जो है 10 रुपए पर आर के हिसाब से हमें दे सकते हैं और हम डेली आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे, या 10 कतरी रियाल 20 कतरी रियाल भी आप दे सकते हैं और हम आपके घर 3 से 4 घंटा रुकेंगे, काम करेंगे, आपको जो भी काम करवाना है हम वो करेंगे। 10 कतरी रियाल पर आवर या 20 कतरी रियाल, या फिर आपके मुल्क में भी अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि सिर्फ 50 रुपए 1 घंटे का लेंगे, तो ये बहुत सस्ता लगता है। तो आपको लगता है कि क्यों ना डेली ही किसी मेड को मैं रख लूँ, तो 1-2 दिन ये आपके यहाँ सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है यार डेली भी रख सकते हैं, 1 दिन का खर्चा 100 है तो क्यों ना हफ्ते में हम 5 दिन के लिए उनको रख लें। ये आपको कोशिश करते हैं कि फंसा लें और आप एज अ मेड इनको अपने पास रख लें। जब आपको ये लगता है कि इनको रख लेना चाहिए, आप इनको रखते हैं और फिर लगातार ये 5 से 7 दिन आपका काम करते हैं। एंड देन होता ये है कि आपसे 1 दिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 महीने के लिए इनको रखा है और हफ्ते में 5 दिन आना है आपको, इन्होंने 5 से 10 दिन काम किया और ये फिर 1 महीने का अमाउंट मांग लेते हैं। 1 महीने का अमाउंट जहां आपने इनको दिया, या फिर 1 महीना नहीं 20 दिन का अमाउंट आपने दे दिया, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 10 दिन काम किया इसने, 10 दिन का अमाउंट तो इसका बनता है, चलो 10 दिन एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं और जब ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा इसका 1 महीने का, तो हम हिसाब जो है वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं 10 दिन का या 20 दिन का, ये गायब हो जाते हैं। और ये इस तरह का स्कैम है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये स्कैम है। आपको लगता है ये कोई ऐसा ही एक शख्स था जिसको मैं अब कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अब कॉल उठा नहीं रहा है, अब ये मुझे पैसा देना नहीं चाहता, और 10 दिन की बात है, 10 दिन के हिसाब से इसका 100 रियाल होता है, 70 रियाल होता है, 120 रियाल होता है, 200 रियाल होता है, और ये लेकर गायब हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है इस तरह के लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आपके सामने आकर आपको ठग रहे हैं। तो दोस्तों, यही तरीका है इनसे बचने का कि सबसे पहले वेरीफाई करें, इनकी QID अपने साथ रखें और फोटो उस QID की क्लिक करके वापस इनको QID दे दें, या फिर और डिटेल्स इनकी रखें, इनके मोबाइल नंबर को चेक करें, इनके घर के एड्रेस को चेक करें और देखें कि क्या ये लेजिट है या नहीं, क्या ये लोग असल में किसी तरह के मेड सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या नहीं। क्योंकि कतर में अगर आपको एज अ मेड काम करना है तो ये जरूरी है कि आप किसी कंपनी से जुड़े रहें या फिर आप किसी फैमिली के अंडर एज अ स्पॉन्सर आए हो। तो ये कुछ तरीके हैं पहचानने के, ऐसे लोगों को जानने के, ऐसे लोगों को कि आपके साथ किसी तरह का स्कैम ना हो सके। उम्मीद है कि इस तरह के स्कैम के बारे में आपको तफसील से समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: यार जब दो इंसान लड़ते हैं ना तो बाकी लोग देखते हैं, ये मजा आता है लोगों को, पता नहीं ये मजा मुझे क्यों धीरे धीरे आने लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे मैं हूं फजील और इस वक्त हम एक डिबेट टेबल में बैठे हैं जहां पर हम दो स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं और एक ऐसा सवाल जिस पर दोनों अपनी अपनी बात अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे और हम फिर देखते हैं कि कौन सही बात कहता है, कौन गलत बात कहता है कि भाई टेक्नोलॉजी क्या हमें लेजी बना रही है या स्मार्ट बना रही है। आने वाले वक्त में तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ श्रेया और जोएल हैं और इन दोनों ने अपने अपने पॉइंट अभी तक रखे हैं और अब मैं इन दोनों को दो दो मिनट दूंगा जिसपे ये अपने आप से बात करके अपने आप से सोच कर बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बना रही है या लेजी बना रही है। सबसे पहले श्रेया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास दो मिनट है और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी तारीफ करनी है कर लीजिए, ठीक है?
1: ठीक है,
0: आपका टाइम शुरू होता है अब।
1: तो टेक्नोलॉजी तो हमें स्मार्ट बना लेता है क्योंकि मैं तो पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करती हूँ।
0: ओके,
1: चैट जीपीटी है और फिर यूट्यूब पर बहुत से पढ़ाई करने के लिए वीडियोस होते हैं। तो मैं टेंथ में हूँ ना, तो टेंथ बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना, तो टेक्नोलॉजी ही मेरी टीचर है।
0: अरे वाह।
1: और फिर टेक्नोलॉजी अन्य सारे चीजों में भी मदद कर लेती है, जैसे हेल्थ में मदद कर लेती है, हार्ट बीट मेजर कर लेता है।
0: परफेक्ट।
1: और फिर मैं इस समर में ना पानी हमें
0: कितना इंटेक
1: ट्रैक करना चाहिए तो मैं भी वो कर लेती हूँ।
0: परफेक्ट।
1: हमें 4 लीटर पीना चाहिए और बहुत सारे एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी के, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं, मुझे सारे फायदे लगते हैं।
0: परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों अब वक्त है जोएल का। जोएल भी कुछ कहना चाहेंगी अगेंस्ट में कि टेक्नोलॉजी क्या उन्हें लेजी बना रही है या कैसे उन्हें लेजी बना रही है। जी जोएल, आपका वक्त शुरू होता है अब।
2: टेक्नोलॉजी मुझे तो बहुत लेजी बनाती है, ऊपर से मैं पहले से ही लेजी हूँ, तो इट जस्ट एड्स अप ऑन माय लेजीनेस। तो टेक्नोलॉजी मुझे इसलिए लेजी बना रही है क्योंकि देखो,

0: honestly, if you want to do something, और जब आपको कोई काम दिल से करना होता है, technology ऐसे बन के आता है कि भाई नहीं, तू रहने दे, मैं ही कर देता हूँ. और फिर मेरा मन वापस बदल ही जाता है, भाई यार तू ही कर ले, सही बात है. It's like amazing, someone having someone to do my work. And फिर मेरा dependence वापस technology पर चला जाता है.
1: For example?
0: Example, देखो, in school there are some times where you're very sleepy, tumhe kuch padhna nahi hota, aur fir aur koi teacher hai na aati hai, aur she is having this really important topic, are ye to pakka boards mein aayega, tum log abhi padh lo, aur then tumhara man, like aapka man kar raha hai ki nahi yaar bas sona hai, to obviously aap yehi sochoge yaar mera bhai ChatGPT ghar pe baitha hai, main to so jati hu aaram se yahan pe. और फिर हम घर जाते हैं, फिर उसी को की पॉइंट्स करके वगैरह पढ़ लेते हैं. और फिर वही बात यूट्यूब लेक्चर्स की, जब हम लोग क्लास में होते हैं, मैम इक्वेशन देती है सॉल्व करने को, तो हम नहीं करते, हम बोलेंगे अरे हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, वो सॉल्व करके दे देंगे हमारे हाथ में, तो हम लोग वही करते हैं.
1: तो अगर जैसे मैथ के टीचर ने सॉल्व किया हो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन, तो उसकी तस्वीर खींचती है आप, या फिर आप उसे सॉल्व करके, या फिर या आप उसे कॉपी में पूरा लिखती हैं? तस्वीर खींच के आसान हो जाता है ना कि चलो इसे इजीली मैं पढ़ लूंगी अब.
0: हाँ
1: ये भी एक तरीका है. ओके, तो दोस्तों ये दोनों ने अपनी अपनी बात कही है. आपकी क्या राय है, टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बना रहा है या लेजी बना रहा है? आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662210 पे. तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक दोनों की, दो दो मिनट की डिबेट के बाद वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में कि आज के जमाने के एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे FM 107 पे, दिल से दिल से.

0: हाँ जी, अभी भी इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल शो, जहां पर हम एक ऐसी बात पर डिबेट कर रहे हैं जो जिस पे आप राजी भी हो रहे हैं, नहीं भी राजी हो रहे हैं, आप स्मार्ट भी बन रहे हैं, लेजी भी बन रहे हैं। तो हमने सोचा आपके दो अलग चेहरे को हम यहाँ पर बैठा दें। एज अ स्टूडेंट दो लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनका नाम है श्रेया और जोयल, और इन दोनों ने कैसे ये लेजी होगा इस पर बात करी, और कैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना है इस पर श्रेया ने काफी रोशनी डाली। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। क्या होता है कि यार एग्जाम्स का डर जो है वो हमेशा हमें रहता है, और आज तक मुझे सपने आते हैं कि मैं कहीं एग्जाम्स में बैठा हूँ, मैंने एग्जाम देना है और उसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कोई सवाल मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा है, या मैं एग्जाम्स के लिए लेट हो गया हूँ, ये भी मेरे सपने आए हैं और ये नाइटमेयर अक्सर आते रहते हैं। अब तो मैं कमाई करने लगा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, लेकिन बावजूद उसके 10 साल पहले वाले ये थॉट, ये सपने आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्जाम्स जो है वो एक अलग डर जो है बच्चों में पैदा करते हैं। जोयल, आपसे पूछेंगे कि क्या ये एग्जाम्स का डर आप पे भी है, या मजा आता है कि यार एग्जाम्स आ रहे हैं मैं तो फर्स्ट आती हूँ?
1: नहीं, ऑनेस्टली डर है बट नहीं भी है, क्योंकि देखो जब आपको डर होता है तो आप उसी टाइम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लोगे, और जो कि टेक्नोलॉजी है तो आके स्कूल से आराम से सोते हैं, यार चैट जीपीटी निकाल लेगा, लेसन की समरी निकाल लेगा, पापा से प्रिंट मंगा के पढ़ लेंगे, अपन आराम से पास हो जाएंगे, और हमें क्या, हमें तो पास ही होना है, कौन सा फर्स्ट आना है।
0: तो अच्छा, आपकी हाईएस्ट रैंक क्या आई है अभी तक?
1: फर्स्ट।
0: वाह, कौन सा फर्स्ट आना है, और फर्स्ट या तो ये झूठ है या फिर ये बहुत ही ज्यादा सच्ची तो नहीं है। ओके श्रेया, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, आपको क्या लगता है एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
2: होने चाहिए एग्जाम्स,
0: धीरे-धीरे यू नो स्कूल के जो थॉट्स हैं वो बदल रहे हैं, ये थॉट धीरे-धीरे निकल के आ रहा है कि शायद एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, बच्चों को स्किल सिखा दो, उनकी स्किल डेवलप कर दो, उसके बाद एग्जाम्स नहीं होने चाहिए।
2: हाँ शायद, क्योंकि हम का सोशल साइंस के बाद फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, और फिर बच्चे बस चैट जीपीटी ही यूज करने वाले हैं फ्यूचर में।
0: ओके, जोयल आप क्या चाहती हैं, एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए?
1: दुनिया का हर एक बच्चा, इवन दो पेरेंट्स हैं, फिर भी वो लोग चाहेंगे एग्जाम ना हो, क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है कि स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, और आजकल तो नई नई बीमारियां भी आ गई है, डिप्रेशन, एंजाइटी।
0: दोस्तों बात हो गई है एग्जाम्स पे कि एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि एग्जाम्स होने भी चाहिए और कुछ चीजों के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, जैसे जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में खराब है उसमें एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। मेरे मैथ में नहीं होने चाहिए, मेरी मैथ बहुत ज्यादा खराब थी, और इतनी ज्यादा खराब थी हाँ, लेकिन पैसे कितने मिले ये जोड़ना आता है, सैलरी सही है या गलत है ये जोड़ना मुझे आता है, लेकिन उसके अलावा जो मैथ है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा मुझे नहीं आता है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन देता है, और इस टेंशन की वजह से मुझे डर है कि कहीं मुझे ऐसे कोई बीमारी ना हो जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता ये जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन देती हैं, ये टेंशन से बीमारी हो सकती है, इसलिए मैं मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के एग्जाम ना करें, जिसमें बच्चा अच्छा नहीं है वो एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो वही होगा जो मिनिस्ट्री चाहेगी। बाकी एक छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस आएंगे अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी क्या हमें स्मार्ट बनाता है या लेजी बनाता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: ओके तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे, और हमारे स्टूडियो में दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना अपना पार्ट ले चुके हैं कि टेक्नोलॉजी स्मार्ट है या टेक्नोलॉजी लेजी बनाता है। तो जोयल ने तो लेजी वाला पार्ट चुन लिया, शिया ने चुना है स्मार्ट वाला पार्ट। अब आपके पास, दोनों के पास एक मिनट है, अपनी अपनी बात कहनी है, और आपको, क्योंकि अब आपको जीतना है अपने डिबेट में, अपने पार्ट में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, तो दोनों के पास थोड़ा सा बड़ा मुख्तसर सा वक्त है। इन वक्त पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि आप दोनों में से कौन विनर होने वाला है, ठीक है? तो आप दोनों का टाइम शुरू होता है अब।
1: टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल, इट मेक्स अस स्मार्ट। वी यूज मैप्स फॉर फाइंडिंग आवर डेस्टिनेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, देन वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड टू कीप आवर हेल्थ इन चेक। वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर स्टडीज, it makes us smarter, and for me especially technology is very helpful, especially
2: no it doesn't
1: summer.
2: make us smarter, because agar aap technology use kar rahe ho to you become lazy, it reduces your thinking capacity. Mujhe abhi agar sochna hai ki kaun se equation ka kaun sa answer hai to main nahi sochungi, main directly mera phone pocket se aise chheenungi, ya to kisi कोई भी लड़कियों के पास में मैं उससे फोन छीन के बोलूंगी मोबाइल डाटा ऑन करके, मैं तो चेक करने वाली हूँ इसका आंसर है क्या असल में।
0: ओके कूल, आप इसका काउंटर क्या?
1: पर हमें टेक्नोलॉजी सही वक्त पर यूज करना चाहिए। हम दर एक एक सेकंड पर टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे तो उस टाइम पर उसका हमें हानि होता है,
0: नुकसान होता है।
1: हाँ नुकसान होता है।
2: आजकल के जमाने में नुकसान को क्या, like, किसको फर्क पड़ता है नुकसान होने से? It's just about entertainment.
1: But technology, we can't use technology while writing the exams. Why we have to study it beforehand. And I use
0: ये लाइन तो लेकिन जोयल की होनी चाहिए थी कि हम टेक्नोलॉजी एग्जाम्स में थोड़ी यूज कर सकते हैं। ओके okay, लेकिन आप दोनों ने बहुत ही अच्छी अच्छी अपनी बात कही है। मुझे लगता है कि इस बवाल को नहीं बढ़ाना चाहिए दोस्तों, ये दोनों दोस्त हैं, पता चला बाहर जाके ये ना हो कि फजील ने हम दोनों को लड़ा दिया तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपने अपने पार्ट को बेहतरीन निभाया है। जहां जोयल का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी आपको स्मार्ट नहीं बनाती है, लेजी बनाती है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे ही काम में जब हमें सवाल सोचना होता है तो एक्चुअली में सोचना होता है, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सवाल सोचने और क्रिटिकल सवाल सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि श्रेया का कहना है कि हम अपने पढ़ाई के लिए सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें आजकल जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक वक्त था जब हम इमिग्रेशन के लिए आते थे तो पासपोर्ट में काफी टाइम लगता था इमिग्रेशन के लिए, लेकिन आज सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं जब आप अपना QID या पासपोर्ट लेकर जाते हैं और वो स्कैन होता है और सारी डिटेल आपके कंप्यूटर में या वहाँ के कंप्यूटर में आ जाती है। उसके अलावा पढ़ाई के मुतालिक भी श्रेया ने अपनी बात कही कि हम अलग अलग सोर्सेज से अपने पढ़ाई के कंटेंट निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह पे सही हैं। क्या है कि हम लड़ाना नहीं चाहते इसलिए दोनों विनर हैं। और ये था आज का डिबेटेबल शो, जो मुझे बड़ा पसंद आया कि दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और हमारे लिए भी इसमें कुछ सीख है, बच्चों के लिए कुछ सीख है। बहुत बहुत शुक्रिया जोयल और श्रेया आपका यहाँ आने के लिए और अपने पार्ट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। अच्छा जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारा FM 107 का स्टूडियो कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लगा,
1: ब्लू और रेड अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव
0: अट्रैक्टिव। ओके तो टेक्नोलॉजी में, अच्छा क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी की बात करी है, आपने ये देखा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत सारी है, काफी सिस्टम्स ऐसे लगे हुए हैं, कभी इस तरह का सिस्टम देखा है?
2: हाँ देखा है, टेक्नोलॉजी है इसलिए तो आप यहाँ पे आराम से बैठे हैं, वरना आपको कूद कूद के बोलना पड़ेगा।
0: ओके श्रेया और ये दोनों दोस्त बन गए ओके बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आज का शो दोस्तों, अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662217 पे शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही डिबेट होते रहें, कुछ टॉपिक आप शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमें नंबर है 6662217 यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस जगह पे आप हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक है जिस पर डिबेट अगले शो में होना चाहिए। और फिलहाल मुझे यानी कि फजील को, श्रेया को और जोयल को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक इसी शो में. दिल से देसी.
3: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107.
4: दिल से देसी.
5: बड़ी तकरीबात और अहम इज्तिमाआत में सलामती को यकीनी बनाना एक हमा जिहत जिम्मेदारी है, जिसके लिए मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुअस्सर राब्ता और बाहमी तावुन, बड़ी तादाद में मौजूद लोगों की मुअस्सर निगरानी, मुमकिना खतरात पर मुसलसल नजर और ज़रूरत के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल बुनियादी अहमियत रखता है. इसी हवाले से मिलीपुल कतर 2026 की नुमाइश एक ऐसा बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म फराहम करती है, जहां बड़ी तकरीबात और अहम तनसीबात की सलामती से मुतालिक जदीद हिफाजती हल और खुसूसी आलात पेश किए जाएंगे, जबकि माहिरीन को मुख्तलिफ तजुर्बात से आगाह होने और उन जदीद टेक्नोलॉजीज को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा, जो बदलते हुए हालात में सिक्योरिटी और हिफाजत के तकाजों को मुअस्सर अंदाज में पूरा करने में मदद देती हैं. मिलीपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में. मिलीपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है.

0: वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूं एक और फाइनेंशियल टर्म की, और ये टर्म है बैलेंस शीट. जी हाँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है तो वो है बैलेंस शीट. अक्सर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखते हैं. तो और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि किसी स्पेसिफिक डेट पर कंपनी के पास क्या है एसेट्स, कंपनी पर क्या कर्ज है लाइबिलिटीज, और असल में ओनर्स का कितना हिस्सा बनता है इक्विटी. ये बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है. अब समझते हैं कि बैलेंस शीट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों का एनुअल प्रॉफिट 500,000 कतरियाल है, दोनों का रेवेन्यू भी सेम है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि पहली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स है, कम डेट है, जबकि दूसरी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन्स है, कम कैश है. अब इन्वेस्टर किस कंपनी को प्रेफर करेगा? अक्सर पहली कंपनी, यही कहा जाएगा. इसीलिए प्रोफेशनल्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, बैलेंस शीट भी देखते हैं. अब बैलेंस शीट के भी कंपोनेंट्स हैं, और इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी. लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी की ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स होती हैं, यानी जितना पैसा कंपनी को दूसरे को देना है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड डेट है, सप्लायर्स पेमेंट है, टैक्सेस पेबल है, सैलरीज पेबल है, ये सारी चीजें सिंपल वर्ड्स में लाइबिलिटीज हैं. यानी लाइबिलिटीज वो अमाउंट्स हैं जो कंपनी पर वाजिब होते हैं, यानी उन्हें अदा करना होता है. और एसेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई कैश है, इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है. अब बात करते हैं ओनर्स इक्विटी की. ये कंपनी के मालिक का असल हिस्सा होता है, यानी अगर कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाए और सारे डेट्स अदा कर दिए जाए तो जो पैसा बच जाए उसे ओनर्स इक्विटी कहा जाता है. अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो आपने सुना होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये फॉर्मूला ही बैलेंस शीट की बुनियाद है. देखिए, हर बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पर बैलेंस होती है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है. तो बस बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी कैटेगराइज किया गया है. करंट एसेट जिसपे मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सब करंट एसेट्स हैं. वहीं नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, व्हीकल्स है. वहीं पर कुछ करंट लाइबिलिटीज होती है जो एक साल के अंदर पे करनी होती है, जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज हैं, सप्लायर पेमेंट्स हैं. वहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होती हैं जो साल से ज्यादा पीरियड में रिपे होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वगैरह. देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखकर कई इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हासिल करता है. क्या कंपनी के पास कैश है? क्या डेट बहुत ज्यादा है? क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है? क्या कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है? क्या कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल कर सकती है? और ये सब इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? बैलेंस शीट से. तो अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो बैलेंस शीट आपको बता रही है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपके डेट्स कितने हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्सपेंशन का पोटेंशियल कितना है. दोस्तों सोचिए, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो आपके पास क्या है? एक घर शायद 1 मिलियन का, सेविंग्स शायद 100,000 कतरियाल, कार शायद 100,000 कतरियाल, तो आपका टोटल एसेट हुआ 1.2 मिलियन कतरियाल, है ना? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती है. बहुत से लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है लेकिन उस पर डेट इतना ज्यादा होता है कि फाइनेंशियल रिस्क में होता है. तो बस जाते जाते ये कहूंगी कि बैलेंस शीट बिजनेस का आईना है. ये नहीं बताती कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है, बल्कि ये बताती है कि कंपनी के पास कमाने की कितनी कुव्वत है. स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट से पहले बैलेंस शीट समझते हैं. क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस से पैदा होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपसे लूंगी इस टॉपिक पे इजाजत, कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को, एक और नए टर्म को एक्सप्लोर करेंगे। कल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
0: दिल से देसी।

0: गया।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: एक अहम मौका भी फराहम करती है। मेलेपोल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मेलेपोल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
1: FM 107 Time check.
2: Time check. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:02, यानी इट्स टाइम फॉर।
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, हैप्पी वाला वीकेंड। क्या बात है जनाब, कैसे हैं आप? बहुत बड़ा इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपके फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। और सीरियसली आज जब मैं स्टूडियो पे आई ना, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पूरा हफ्ता कैसे गुम हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कल ही की बात हो। मुझे लगा कि आज वेंसडे है, बट सडनली ऑफ कोर्स ऐसा होता है बीच बीच में, बट मुझे लगा कि हाय ये तो वीकेंड आ गया। तो चलो कोई नहीं, वीकेंड आ गया तो हम वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। और आज की जो हमारी द रिक्वेस्ट शो की थीम होगी, वो सिर्फ और सिर्फ होंगे फिल्मी दुनिया के फील गुड सॉन्ग्स। यस, आज बात उन गानों की होगी जो बजते ही दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो गाने जो आपको अपने दोस्तों की याद दिलाते हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए जो पल या खूबसूरत लम्हे आपने गुजारे, वो सब आपके जहन में आते हैं। और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही कुछ गानों को सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सो यस, टेल मी कि आपकी जिंदगी के वो कौन से खूबसूरत गाने हैं, फील गुड सॉन्ग्स हैं, जिन्हें आप लूप पर सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो डू शेयर 6622107 पर, 6622107 पर, या FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और अभी के लिए हम शो की शानदार जानदार शुरुआत करते हैं इन इन इन तालियों के साथ। आहा, जब ये गाना शुरू होता है तो क्लैपिंग होती है, और ये तालियां बजते ही पता चल जाता है कि असरार आ गया है। कौन सा गाना लेके? अफगान जलेबी। लेट्स एंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो भाई द रिक्वेस्ट शो की शुरुआत हुई बड़े बेहतरीन से गाने के साथ अफगान जलेबी, और अब सबसे पहली रिक्वेस्ट की बारी आ रही है। लेकिन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है बताना चाहेंगे कि आज का द रिक्वेस्ट शो फील गुड सॉन्ग्स वाले थीम का है कि कभी किसी गाने में दोस्ती की मस्ती है, कभी सफ़र का मज़ा है, कभी शादी की रौनक है, तो कभी जिंदगी को खुलकर जीने का पैगाम है। तो फिल्मी दुनिया में हर मूड के लिए खूबसूरत गाने हैं, और आज वीकेंड वाइब, वीकेंड का मूड सिर्फ इतना ही है, दैट इज फील गुड सॉन्ग्स। तो वो कौन से गाने हैं जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ा देते हैं? डू शेयर विद अस 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने पैगाम भेजिए, अपने मैसेजेस भेजिए। किसी खास को डेडिकेट करना है तो डू शेयर। और अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट, उफ, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, सैयद अरसलन की रिक्वेस्ट है एंड द सॉन्ग इज क्या बात है, आई रियली लव दिस सॉन्ग। मतलब जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं एकदम से मोहब्बत सी हो रही है इस गाने से। हाँ, सो हिमेश रेशमिया एंड असीस कौर की आवाज़ का ग्रेट कॉम्बिनेशन है, दिस सॉन्ग इज कमिंग अप। तो पूरा हम आगे सुनेंगे, और उसके बाद अशफाक जी की रिक्वेस्ट है एंड वो सुनना चाहते हैं यो हनी सिंह एंड AP डिलन का ये कॉम्बिनेशन। सो आदत आपकी राहों में आएगा, एंड आई शुड टेल यू कि आज की रिक्वेस्ट बड़ी कमाल की होने वाली है। सो बिल्कुल अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, और आप कहीं ना जाएं, बने रहें एफएम 107 पर सुनते हुए द रिक्वेस्ट शो अपनी ए फॉर अमिता के साथ। ठीक है, दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
6: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
7: चले तो कट ही जाएगा सफर,
6: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
8: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ.
9: दो हवाले कबीर के साथ
5: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
10: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. और वीकेंड में जैसे ही मैंने कहा कि थीम है भाई देखो सिर्फ फील गुड गाने, तो क्या कहना, क्या कमाल की लिस्ट आई हुई है. वैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा दिन खराब हो जाता है, कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, थकान हो जाती है, और कभी किसी बात को लेकर ना हम उदास हो जाते हैं, और अचानक कहीं से कोई ऐसा गाना बजता है. कभी कभी हम रेडियो ऑन करते हैं और वो गाना हम सुन लेते हैं जिससे हमारा मूड फ्रेश हो जाता है. हाँ, तो बस वही गाने की बात कर रही है. वो गाना कौन सा है, विच इज दैट फील गुड सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हैं, शेयर कीजिए 666-22107 666-22107 पर. मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, अपने डेडिकेशन एंड अपनी वन लाइन स्टोरी भी बता सकते हैं कि क्यों आपको ये गाना बहुत अजीज है. ठीक है, अभी हम रिक्वेस्ट प्ले करते हैं एंड एम के साहब हैं जो कि सुनना चाहते हैं ये वाला गाना. वैसे जिस तरह से आपके लिए गाना लकी है, उसी तरह से इस गाने के सिंगर के लिए भी ये गाना लकी था, अंकित तिवारी जी. एंड लेट मी टेल यू कि आफ्टर दिस सॉन्ग वो जो कहते हैं ना हिट हुए हैं ये, ओ हो हो क्या कहना. सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा आपकी तरफ आएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि एकदम से हिमेश रेशमिया को लेकर बहुत सारा प्यार उमड़ आया है, काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, और अभी सतीश ने रिक्वेस्ट कर ही दी है. आशिक बनाया आपने मूवी का ये गाना, क्या बात. एक अलग ही वाइब, एक अलग ही क्रेज था जब ये फिल्म रिलीज हुई है कि नहीं. तो चलो ये दोनों ही गाने, पहले गलियां एंड देन आपकी कशिश आपकी राहों में आ रहा है. सो गेट रेडी एंजॉय करने के लिए FM 107 पर दिल से देसी.

0: गुज़श्ता एडिशन में मेलिपुल कतर की नुमाइश में 26 ममालिक से 255 इदारों और कंपनियों ने शिरकत की, जबकि 63 ममालिक से 14,500 अफराद ने नुमाइश का दौरा किया। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ये मेलिपुल कतर की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन था। ये आदाद व शुमार न सिर्फ आलमी सतह पर इस नुमाइश की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करते हैं, बल्कि साल 2026 में बैनुल अक्वामी शिरकत के दायरे में मजीद वसत की जानिब भी इशारा करते हैं, और साथ ही दाखिली सलामती और तहफ्फुज़ से मुतालिक खुसूसी बैनुल अक्वामी तकरीबात की मेज़बानी में दोहा के नुमाया किरदार को भी उजागर करते हैं। मेलिपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मेलिपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Wake up.
1: Suniye Wake Up with RJ Sarwar Mirza from Sunday to Thursday, subah 6 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for Amita के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for Amita के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो A for Amita के साथ only on FM 107 दिल से देसी।
1: Yes, now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for Amita। क्या कहना द रिक्वेस्ट शो पर, कमाल कमाल के गानों की रिक्वेस्ट आई हुई है। वैसे अगर अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस या घर से बाहर निकले हैं या किसी लंबी ड्राइव पर हैं, तो जल्दी से बता दो कि वो कौन सा फील गुड गाना है दैट यू रियली रियली लव और आप उसे लूप पर सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर। और अभी हम उस रिक्वेस्ट को प्ले करने वाले हैं जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 2025 साल की ये मूवी है, इट्स अ रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा सैयारा, ठीक है, और इसका टाइटल ट्रैक हम सभी जानते हैं कि इट वाज अ वायरल सॉन्ग, लेकिन ग्लोबल चार्ट्स पर यानी कि बिलबोर्ड पर ये पहला हिंदी उर्दू गाना था जो नंबर 4 की पोजीशन पर पहुंचा। सो इमेजिन कि इस गाने की ताकत कितनी ज़्यादा है। तो सैयारा, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जो कि आपकी राहों में पूरा पूरा लेकर आने वाली हूँ, तो बिल्कुल मिस ना करें। और उसके बाद रईस खान की रिक्वेस्ट है, और ये गाना ऑलवेज फील गुड सॉन्ग है, राहत फतेह अली खां की आवाज़, नुसरत फतेह अली खां के साथ, एंड द सॉन्ग इज मेरे रश के कमर, आए हाय हाय बादशाहों फिल्म का ये गाना, और इसकी धुन सुनते ही एकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है कि नहीं। सो यस, ये दोनों ही गाने हम आगे एंजॉय करने वाले हैं, और आप भी जल्दी से बताएं कि वो कौन सा फील गुड सॉन्ग है जो कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार कर देता है। शेयर विद अस 6622107 पर, और अभी बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर. आपकी ए फॉर अमिता हाजिर है और आपके पसंद के गाने लिटरली प्ले करने में बड़ा मजा आ रहा है. और आज की थीम है फील गुड सॉन्ग्स, फील गुड फ्लैशबैक्स. जब हम बात करते हैं तो कभी कभी अपनी फैमिली के साथ एक छोटा सा डिनर करना, किसी दोस्त के साथ लंबी ड्राइव पे चले जाना, किसी के लिए वीकेंड की छुट्टी और किसी के लिए बस अपनी फेवरेट चाय के साथ अपना फेवरेट गाना सुनना, बस ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं. और ये और खास हो जाते हैं जब वो गाना हमारे कानों में पड़ जाता है कि नहीं. तो वो कौन सा गाना है जो कि आपकी लाइफ का फील गुड सॉन्ग है एंड यू वॉन्ट टू लिसन टू इट, तो शेयर करिए 6622107 पर. अभी रिक्वेस्ट आई है, ये हमारे लिसनर है फैजल एंड इन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की प्लस एक वॉइस नोट भेजा जिसमें इन्होंने बकायदा इस गाने को गाकर गुनगुनाकर हमें सुनाया है और कहा है कि अमिता प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, आई सो लव इट. आजा नचले फिल्म का ये गाना है और बेहद खूबसूरत गाना है, तो ये पूरा पूरा हम आगे प्ले करने वाले हैं. और उसके बाद अली की रिक्वेस्ट है एंड ये बड़ा धमाकेदार गाना है बिकॉज सुनीति चौहान की आवाज है. चलिए तो ये दोनों ही गाने हम पूरे पूरे इंजॉय करेंगे. और आपका फेवरेट कौन सा गाना है, दैट्स अ फील गुड सॉन्ग जो आप इंजॉय करना चाहते हैं, जरूर शेयर करें 6622107 पर. और आगे क्विज टाइम हम लेकर आएंगे जहां पर फिल्मी नॉलेज आपका चेक करेंगे, तो कहीं ना जाएं, बने रहें एफएम 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप. वक्त की कमी हो रही है या यूं कहें वक्त भागे जा रहा है तो जल्दी से द रिक्वेस्ट शो पर क्विज टाइम कर लेते हैं.
0: क्विज टाइम.
1: तो आइए आपका फिल्मी नॉलेज चेक करते हैं. इस गाने को आपको पहचानना है कि ये गाना कौन सा है.
2: मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली.
1: गैस कीजिए ये गाना कौन सा है. जल्दी से इस गाने का नाम लिखें अपने नाम के साथ, भेजें 666-22107 पर. एंड हो सकता है कि अगर आपने सही बताया तो ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा. और अभी रिक्वेस्ट है मुनीर की, जो कि सुनना चाहते हैं 90s का मैजिक. And the song is really beautiful. बरसात फिल्म का, जहाँ पर बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना ने डेब्यू किया साथ में and फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड्स भी जीते. तो चलिए गाना एंजॉय करते हैं. आप कहीं ना जाए, बने रहे FM 107.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Yes, जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और कैसे लगे आज के आपको हिटेड गाने, तो फील गुड सॉन्ग्स। हाँ, आज रिक्वेस्ट शो के, वेल थोड़ी देर पहले क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाना सुनाया और कहा गाना पहचानो।

कोशिश कर रहे हैं हमारे लिसनर्स, लेकिन बहुत अलग अलग गानों के जवाब आ रहे हैं. तो लेट मी टेल यू कि जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है उनके नाम है कैसर, इरफान, रिजवान एंड इनका नाम क्या है, नूर. इन्होंने हमें सोशल मीडिया पे मैसेज किया. ओके, सो थैंक यू सो मच. और गाना है फर्स्ट क्लास, अरिजीत सिंह की आवाज़, और मूवी का नाम है कलंक. तो ये गाना पूरा पूरा आप इंजॉय करें अपनी वीकेंड वाइब्स के साथ. और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस. तब तक के लिए कहाँ मिलना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए. और जाते जाते ये कहना तो बनता है

0: मामला हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज का टॉपिक है दिल, हमारा सबसे मजबूत मगर सबसे नाजुक हिस्सा है। हम रोज उसके लिए कितना खुश करते हैं, शायद बहुत कम। आज हम जानेंगे कैसे चंद सादा आदतें दिल को मजबूत, सेहतमंद और खुश भी रख सकती हैं। एक 45 ईयर्स एक शख्स नदीम उनका नाम है और वो हमेशा काम में मसरूफ रहते थे, खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं था, एक्सरसाइज बिल्कुल नील। एक दिन मामूली सीने के दर्द से हॉस्पिटल पहुंचे, जहां ये पता चला कि दिल की जो शरियाने हैं वो तंग हो चुकी हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका दिल थक गया है, अगर आज नहीं संभाला तो फिर कल बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए फिर नदीम साहब ने अपनी ज़िंदगी बदली, वॉक शुरू की, बैलेंस डाइट ली और नींद पूरी की, तो चंद माह के बाद उनका दिल बेहतर होता चला गया। तो इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं वो होते हैं और उनकी ख़ास वजह भी होती हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली गिज़ाएँ जब खाते हैं तो मुमकिन है हमारे दिल को अच्छा ना लगे, स्ट्रेस जो है वो भी जो है वो दिल की सेहत को ख़राब करने में हम ये कह सकते हैं कि कुछ नंबर्स में हो सकता है। स्मोकिंग बहुत अहम है, इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना भी दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। और गिज़ाएँ जैसे कि छोटे छोटे मेजर्स अपना कर हम अगर अपनी गिज़ा में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, फ़िश का या एलमंड्स जो हैं वो उसमें शामिल कर लें तो हमारे दिल को पसंद आएगा। इसके अलावा सब्ज़ियाँ हैं, दलिया है, ताज़ा फल हैं, वो ज़रूर शामिल कीजिए। नमक और चीनी कम रखिए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 1,80,00,000 अफराद दिल की बीमारियों से वफात पा जाते हैं, यानी हर 34 सेकंड्स के बाद एक जान ज़ाया हो जाती है। तो इसके लिए करना की यह है कि रोज़ हमें 30 मिनट ब्रेक करनी है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग तर्क कर दीजिए। अपना वजन जो है नॉर्मल रखिए। नींद की तरफ खास तवज्जो देनी है, 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कीजिए। इसके अलावा जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहिए। अब अगर हम सवाल अपने आप से करें, और करना भी ज़रूर चाहिए, कि हम रोज़ाना वॉक करते हैं या नहीं, तो क्या आपने आज दिल के लिए कोई हेल्दी कदम उठाया है या नहीं, ये बहुत अहम है। अब दिल की हिफाजत सिर्फ मेडिसिन से नहीं तर्ज ज़िंदगी से होती है, यानी हम अपना लाइफस्टाइल जो है उसे देखें। और हर खाना, हर एक्टिविटी, हर सांस हमारे दिल पर असर डालती है। और जो अफराद दिल के दोस्त खाना खाते हैं और तनाव कम रखते हैं या स्ट्रेस कम रखते हैं तो उनका दिल हमेशा जवान रहता है। दिल सिर्फ खून नहीं पंप करता, यानी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इसका काम है जो ब्लड को पंप करना, ये एहसास भी संभालता है। इसे मजबूत रखने के लिए मोहब्बत, पुरसकून नींद और सेहतमंद आदतें ज़रूरी हैं। तो दिल के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि यही वक्त है और जो आपको जिंदगी देता है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: दोस्तों, वजारत दाखला ने अवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए तैयार की गई गलत गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके ज़राए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार की गई थी और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में ही हजारों अफराद तक पहुंच जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जोर देकर कहा है कि आवाम हमेशा मुअत्तबर

0: और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: ऐसे यूज करे जैसे एप्पल का फोन यूज करता है, वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। बट तो आने वाले इवेंट में लगता है कि एप्पल जो है अपने एप्पल विजन प्रो को शायद मेंशन करे, और इस बार वो जब मेंशन करेगा तो शायद प्राइस टैग को भी थोड़ा सा लोअर करे। हालांकि मुझे ये प्राइस टैग लोअर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट दे माइट अटैच इट और क्या कहते हैं उसको इंजेक्ट करे बाकी एप्स के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक है एप्पल प्रो विजन, बंटी प्राइस टैग बहुत हाई। आपको क्या कहना है एप्पल विजन प्रो पे, अगर सस्ता हो जाएगा क्या आप लेंगे तो ये बताइएगा। 666-221-07 नंबर है हमारा, और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।
1: सुन रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक।

0: वो इस्तकबाल और हाल चाल थोड़ी थोड़ी राइमिंग कर लेता हूँ मैं। शायरी का कीड़ा जो है मेरे अंदर थोड़ा तो है, कुलबुलाता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। बाकी थर्सडे का दिन है, ये जो कीड़ा है शुक्रवार की रात का मजा लेने का वो अलग ही है। बाकी अभी से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा FM 107 पर। इस बीच सवाल भी होंगे, क्या हाल चाल है आपके, अपने अपने कुछ हाल चाल भी बताओ मेरा भाई। तुमने भी तैयारी कर ली है, तुमने छाते निकाले नहीं निकाले, रेनकोट का इंतजाम कर लो भाई कि क्या पता बारिश हो जाए। मैं उस वैसे कहीं कहीं हुई भी है भाई, कहीं कहीं छाते निकले, रेनकोट खरीदे गए हैं, शहर थोड़ी रुकता है। तो शमाल की तरफ भी कहीं बारिश हुई है, हरारा की तरफ भी बारिश हुई है, बारिश और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हुई है बारिश, माहौल तो है। आज नहीं कल हुआ है, परसों हुआ है। बाकी अपन तो यही प्लानिंग में है कि इधर हो जाए तो हमारा छाता किसी काम का है यार, पैसे खर्च कर देते हैं छाता। छाते से याद आया, पिछले साल जब बारिश हुई थी तो तेज तूफान में मैंने किसी का छाता तोड़ दिया था भाई, उसको देना है, मेरे ऊपर एक छाते की उधारी है। दूंगा दूंगा। अच्छा वो जो छाता टूटा था ना यार, वो रंगीन छाता था, कलरफुल, और जिसका वो छाता था उसको उसी कलर में चाहिए। अब भाई ये डिमांड मैं कैसे पूरी करूं भाई। वो बैगनी कलर का हल्का छाता था, यानी कि बैगनी कलर का हल्के रंग का छाता, और वो सही में इतना हल्का था कि थोड़ी सी तेज हवा चल रही थी, हालांकि थोड़ी तो नहीं थोड़ा तेज चल रही थी, और उसी में मैं उल्टा दौड़ गया उसको लेकर, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उसके बाद से मेरे ऊपर एक उधारी है, और वो उधारी है कि छाता मेरे को ला के दो। बाकी उस कलर का मैंने कहा छाता जब मिलेगा मैं लाकर दे दूंगा, मुझे अभी तक मिला नहीं है। आपको बैगनी कलर का कहीं पर छाता मिले तो मेरे को बताना। बाकी सवाल पर आते हैं, सवाल आज का क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, सवाल जो सुन के मजा आने वाला ना तुम लोग को।
1: मेरे सवाल का जवाब दो,
0: मतलब ऐसा एक कहावत है ना कि बिल गेट्स या एलन मस्क या अंबानी या बड़े लोग जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो जब चलते हैं अगर उनके 10 रुपए 20 रुपए $100 $200 $1,000 गिर जाएं, तो अगर वो उसको उठाएंगे तो जितना उठाएंगे नहीं उसका 10 गुना और उनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो उठाते नहीं। मतलब एक ऐसे मजे की कहावत है। नए बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सी हरकतें हैं यार। लेकिन बेटा 2005 के बाद ये कहानी बहुत चली थी कि बिल गेट्स जैसे अमीर लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, तो अगर उनका पैसा ऐसे क्या है कि 100 रुपए 200 रुपए, और हम ऐसे लोग सोचते थे कि अरे इतना रुपए गिर जाएगा हम उठा लेंगे उनसे पहले। तो एक कहावत है ना कि बिल गेट्स के या बड़े लोगों के जब पैसे गिर जाते हैं तो वो झुक कर उठाने में जितना उनका टाइम झुक कर उठाने में खर्च होता है, अगर वो झुककर उठाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा उनका नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो झुककर उठाते नहीं है। ऐसी कहावत बहुत चली थी बेटा। अभी हमारे लेवल पे आने के बाद, मतलब इतने बड़े होने के बाद पता चला कि कितनी ढक्कन बात थी भाई ये। लेकिन ऐसा है कि वो झुककर पैसे नहीं उठाते थे क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो जाता था, अगर वो उतने टाइम में पैसे उठाएंगे तो उनका और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो 100 रुपए गिरा रहने देते हैं। तो हम बच्चे सोचते थे कि यार अगर उनके बगल चलने का मौका मिल जाता और 100 गिरते रहते तो। फिर कहते मालिक अगर जहां $100 गिर गए $200 गिर जाते हैं मालिक। तो मालिक थोड़ा जब खर्चा और हो जाता तो वही आज का सवाल भी उसी तरीके का कुछ है कि जैसे उनके लिए कहावत है वैसे ही अगर आपके लिए कहावत हो कि अगर आप के जो कुछ पैसे हैं या कोई चीज है गिर जाए तो उसको उठाने में जो टाइम बर्बाद जाएगा उतने में आपका क्या लॉस होगा, वो आज आपको बताना है। ठीक है, समझ गया कि नहीं सवाल। जैसे गिरे हुए पैसे को उठाने के लिए जो टाइम बर्बाद होता है उसमें बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा बिल गेट्स का, वैसे ही अगर आपके पैसे गिर गए और उठाने में जितना टाइम लग रहा है तो आपका लॉस क्या होगा। ये बताना है आपको। नंबर हमारा व्हाट्सएप का 666-22-107। आप अपने काम से रिलेटेड बता सकते हैं भाई साहब कि अगर आप जैसे अगर आप अकाउंटेंट के काम में हैं कि भाई साहब अगर मैं अपने गिरे हुए पैसे उठाने लग गया तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां का जो सौदा है वहां का जो क्रेडिट डेबिट है वो हिल जाएगा भाई साहब। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप घर में वर्किंग है, आप घर से काम कर रहे हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में तो हो ही रहा होगा।

0: अगर आपके पैसे गिर गए उठाने में जितना टाइम बर्बाद होगा तो उतने में आपका क्या लॉस हो जाएगा, है ना, जितना टाइम उठाने में बर्बाद हो रहा है उतने में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या है, ठीक है, क्या नुकसान आपका होगा वो आपको बताना है, नंबर है 6226622107। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले नसीम भाई कह रहे हैं जीरो लॉस क्या बात कर रहे हैं कुछ तो काम करते ही होंगे, घर पे बैठे थोड़ी रहते होंगे, और अगर घर पे भी बैठे यार कुछ तो कमाई करना पड़ता है, कुछ तो आपको बाहर निकलना पड़ता होगा, हाथ पैर मारने पड़ते होंगे, उससे कमाई हो रही है, उससे रेंट दे रहे हैं आप अपने घर का, एसी का, कहरमा का बिल दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो पैसे अगर गिर गए तो जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही बता दो कि क्या नुकसान हो जाएगा। बाकी ये अलग बात है कि आजकल काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो बाद में जब पैसे आएंगे, अभी तो जो पैसे बचे हुए हैं सेविंग में उससे काम चल रहा है, ये अगर बात है तो अलग बात है। मोहम्मद ने बोला है कि उतने में मेरा कमर लॉस हो जाएगा। मालिक जितनी उम्र हो गई है अब तो जिंदगी जी नहीं जा रही, बस पैरासिटामोल ने जिंदा रखा है भाई साहब। क्या मैं मर तो देखिए 5 साल पहले गया था, वो तो भला हो इस मेडिसिन का, वो तो भला हो पैरासिटामोल का, वो तो भला हो इस नए जमाने की मेडिकल साइंस का कि भाई साहब जिंदा है, वरना आत्म तो भाई 5 साल पहले ही मर गई थी। बाकी आपका अपना काम है, ठीक है, कमर का अगर लॉस है तो हो सकता है कमर का कोई काम हो, मेरे को अभी तक पता नहीं है भाई कमर का क्या काम हो रहा है। बाकी और भी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, अरे यार आज तो मजे का दिन है भाई। ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं, जितने पैसे गिरेंगे मैं उसको उठाऊंगा उतना मुझे फायदा हो जाएगा। क्या बात है। एक तो ये भी हो सकता है कि भाई साहब अगर मैंने जो गिरा हुआ पैसा नहीं उठाया उतना ही मुझे लॉस हो जाएगा। ये और जैसे ही पैसा हाथ में आया गिरा हुआ, ए फायदा हो गया,
1: बिली की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, बिली की नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला।
0: और अगर पैसा नहीं उठाया, दिल ही नहीं करता ना कभी, जैसे कमर में दर्द है एक मोहम्मद भाई के, अगर उन्होंने पैसा नहीं उठाया तो नुकसान और दिल।
2: दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा।
0: लेकिन मुझे अंसारी जुल्फिकार साहब का जवाब बहुत पसंद आया, कहते हैं फजील भाई जितने पैसे गिरेंगे मैं उसको उठाऊंगा तो फायदा उतना ही होगा जितना गिरा हुआ है, बस यही काम है। इससे ज्यादा नुकसान है नहीं कुछ। ओके, मदरुद्दीन साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम वजीर भाई, वालेकुम अस्सलाम, पैसे उठाने में जो 2 सेकंड का टाइम कंजम्पशन होता है ना वो नुकसान नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन 2 सेकंड में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो वॉरेन बफे भी नहीं दे सकता। अरे अरे भाई साहब, ये मैसेज के बाद मेरे घुटने घायल हो गए दोस्तों। दिमाग लगाना पड़ रहा है इस मैसेज को पढ़ने के लिए। फिर से पढ़ता हूं, ठीक है, पैसे उठाने में जो 2 सेकंड का टाइम कंजम्पशन होता है ना वो नुकसान नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन 2 सेकंड में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो वॉरेन बफे को भी नहीं, वो वॉरेन बफे भी नहीं दे सकता। कोड़े वाले भैया, अभी तक आपका दिल करता था कि मार दें, कुछ ऐसी गलती मैं करूं कि आप मुझे सूत दें, आज मैं आपसे कह रहा हूं आओ भाई पीठ पे 2-4 कोड़ा रगड़ दो यार।
3: एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, 119 पे इतनी
0: इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ यार, ऐसी बात कर दी है यार मजरुद्दीन साहब ने कि ओ भाई
3: मारो मुझे मारो।
0: कोड़े वाले भाई मारो मुझे। और अगर मुझे नहीं मार सकती तो मजरुद्दीन साहब लोकेशन बताना मेरे को, एक जगह आपको बुलाना है या एक शख्स को भेजना है, बस ये देखो। इतनी गहरी बात कर दी है मेरे पीठ पे, मतलब ऐसा कुलबुला रही कि कोड़े खा लेता कसम से, ये बात ना पढ़नी पड़ती।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
2: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
3: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन, एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: गुज़श्ता एडिशन में मेलिपुल कतर की नुमाइश में 26 ममालिक से 255 इदारों और कंपनियों ने शिरकत की, जबकि 63 ममालिक से 14,500 अफराद ने नुमाइश का दौरा किया। जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक ये मेलिपुल कतर की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन था। ये आदाद और शुमार न सिर्फ आलमी सतह पर इस नुमाइश की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करते हैं, बल्कि साल 2026 में बैनुल अक्वामी शिरकत के दायरे में मजीद वसत की जानिब भी इशारा करते हैं, और साथ ही दाखिली सलामती और तहफ्फुज़ से मुतालिक खुसूसी बैनुल अक्वामी तकरीबात की मेज़बानी में दोहा के नुमाया किरदार को भी उजागर करते हैं। मेलिपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मेलिपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हमारे स्टूडियो की घड़ी में और नए लोगों के लिए जो अभी अभी आए, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए सवाल ये है कि आपको बताना, जैसे कहावत थी एक जमाने में कि अगर बिल गेट्स अपने 10 रुपए गिरे हुए उठाने लग जाएं तो जितना टाइम ज़ाया होगा उतने में वो और ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना, उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पैसे गिर गए तो उठाने में जितना टाइम ज़ाया हो रहा है तो उतने में आपका नुकसान क्या होगा, है ना, आपके गिरे हुए पैसे उठाने में आपका नुकसान क्या होगा, ये आपको बताना है। नंबर है 666-22-107। और एक लाइन तो बहुत ही कर रही है, एक भाई ने मार दिया है, मैं उसे कुछ देर में पढ़ूंगा, दिख जाता है। तो ये दो ऑडियो भेज दिए, मेरे को ऑडियो का तो पता नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि कमर के अलावा कुछ भी नहीं है लॉस करने के लिए। हाँ, इसी से एक जवाब बहुत बढ़िया है। आपका कितना लॉस होगा भाई? मैंने अभी बताया ना, मेरा लॉस यही है, जैसे ही मैं एक मिनट में उठा ही लेता हूँ पैसा गिरा है। इतनी देर कुछ नहीं सुन पाए ना भाई, यही लॉस है। मेरा इतना ही काम ही बोलने का है भाई, जो तुम्हारा काम है उससे अगर आप जोड़ें कि आप वो काम, जैसे कि वो कैब, एक भाई है उनका नाम क्या नाम था यार, मेरे को जाहिद नाम था, तो जाहिद ने कहा कि भाई मैं कैब चलाता हूँ, अगर मैं अपना गिरा हुआ पैसा उठाने लग गया तो एक कस्टमर छूट जाएगा, बस इतना ही काम होना है, और वो कस्टमर खड़ा भी रह सकता है उतनी देर मैंने कहा हाँ ये है कि तुमने अगर उठाने में टाइम लगा दिया तो एक कस्टमर छूट जाएगा, मैक्सिमम तो यही होगा, बाकी इंतज़ार भी कर सकता है आगे। नसीम साहब मेरा तो यही है फिर एक और मैसेज है सिद्दीकी साहब का, कहते हैं नहीं उठाया तो लॉस होगा यही लॉस है कि नहीं उठाया तो लॉस होगा, और काम का क्या है यार, दो सेकंड में हो जाएगा फिर शेख साहब क्या लिखते हैं, भाई हम पैसे को गिरने का मौका नहीं देते।
6: ये भाई ये तो
5: क्या हवाई में पकड़ देते हैं, क्योंकि जब गिरना शुरू होता है ना पैसा, तो हवा में ऐसा दाएं बाएं होके नीचे जाता है ना, वो पहले ही दाएं में पकड़ लेते हैं, बाएं होने का मौका नहीं देते आगे लिखा है पहले गिरने तो दे, पैसे की शामत आ जानी है अगर गिराना, एक्स्ट्रा वो खुद ला के देनी है। अरे वाह भाई वाह, धमकी दे दिया ये पहले ऐसे। देखो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि पैसे से इज्जत से बात करो भाई, धमकी धमकी मत दो, पैसे से जितना प्यार करो उतना आपके पास आएगा, ज़्यादा नफरत दिखाई तो पता चला वो भी दाएं बाएं हो गया तो फिर दाएं बाएं हो जाना है। फिर निंजा भाई का है, ये एप्लीकेशन है क्या है, क्या नाम बोला है पता नहीं, क्या है भाई आपका नाम क्या है, प्रोफाइल पर तो यही लिखा है, कहते हैं हम इतने बिजी नहीं है कि पैसे छोड़े लॉस पैसे ही हैं। अच्छा मतलब अगर पैसा नहीं उठाया तो वही पैसा इतने बिजी भी नहीं है बहुत ही उम्दा। फिर एक और मैसेज है, ये नाम क्या है, नाम लिखा नहीं है, सादत आफरीदी लिखा है, उठाने की जरूरत ही नहीं है, पांव रख दो ऊपर, जब फ्री हो जाओ तो उठा लेना। आए हाय क्या बात है, ओहो क्या बात, ये तो अलग ही दिमाग है। अरे फ्री होने का वक्त ढूंढना चाहिए बिल गेट्स, अमा जाओ यार, तुमने न जाने कितने नुकसान कर दिए अपने इस चक्कर में कि अगर झुकेंगे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अमा पांव रख देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई मेरे अफरीदी भाई ने यार सुना सुना कि नहीं अफरीदी भाई यार, ये देखो बुद्धि होनी चाहिए इंसान को, एक्टिव होना चाहिए, पता है क्या बात कही है, दिल खुश कर दिया मेरा भाई। फिर एक और ये मैसेज है कि इस भाई का, ऑडियो में अजान भाई ने ये ऑडियो भेजी है, अब लेकिन ये ऑडियो तो अभी मैं प्ले नहीं कर सकता, कुछ देर में मैं प्ले करूँगा। और फिर मुबीन भाई ने 2-3-6-10 ऑडियो भेज के आतंक मचा दिया भाई साहब, आतंक का दूसरा नाम मुबीन भाई फिर तौफीक भाई का मैसेज है, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, और फिर बस ठीक है क्या है डर मूवी का कोई गाना कहा है मुबीन भाई ने, मैं देखिए सॉरी लिखना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये प्ले कर दिया तो फिर कोड़े वाले भैया बैठे हुए हैं वो रसीद देंगे। फिर एक और ऑडियो, यार ऑडियो पे ऑडियो मत चिपकाओ मेरा भाई, मैं ऑडियो नहीं पढ़ सकता, मतलब सुना नहीं सकता है ना, तो ये मजबूरी है। बाकी एक और मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरा भाई। फिर शेख साहब ने मैसेज किया है, अभी मैंने सॉलिड वाला, अच्छा पैसे को मतलब प्यार किया है, ओहो वो भी 500 का नोट, मुझे तो कुछ नहीं आया अरे यार शेख साहब वो लोकेशन मांग रहे थे, ये जल्लाद सामने बैठे हुए हैं कोड़े वाले भैया, धार लगा रहे थे ये, आपने देखा है वो धार लगाते हुए, जैसे जो लगाते हैं ना गोश्त काटने से पहले, तो वही धार लगाया है अभी कोड़े पे, तो आपके घर का ये भेज दे मैं बाकी 6:36 यार वो मैसेज मिल नहीं रहा, बहुत तगड़ा मैसेज था, कहाँ चला गया मेरे को, इतने मैसेज में गायब हो जाता है, नहीं मिल गया, लेकिन बहुत मस्त मैसेज किया था उनने, खैर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन बाकी मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं, ये है मैसेज वलीद साहब का, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, अगर मैं, हाँ ये वलीद भाई थे, कि अगर मैं झुका नहीं, पहले तो ये लिखा है कि मैं झुक नहीं सकता, तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या लिख रहा है, फिर इन्होंने लिखा कि मैं झुक नहीं सकता, अगर मैं झुका तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, तो आगे इन्होंने लिखा भाई पेट बहुत ज्यादा है ना मेरा कहते भाई मैं एक बार अगर पैसा गिरा दूं तो मुझे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि पेट बहुत ज्यादा है फिर। अरे यार बेल्ट उतार के भी झुका जा सकता है, कुर्सी पे बैठ के देखो कोशिश कर लो यार, दो पैरों से उठा लो पैसा है ये तो, ये ऑप्शन मतलब अपना सकते हैं आप, ये भी एक ऑप्शन है मेरा भाई, आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, कोशिश तो करो। खैर अपने अपनी मर्जी है, अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कुछ ही देर में अजान का वक्त है, लेकिन एक बात लिखिए उन लोगों के लिए जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क और बड़े लोगों के लिए अफवाहें फैलाई हैं लोगों ने, तो एक खत लिखिए डियर अफवाहें फैलाने वाले, या फिर व्हाटएवर अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं डियर इट्स ओके, रैंडम भी आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, एक अच्छी बातें जो उनके दिल को चीरती हुई निकल जाए, क्योंकि हमारे देश में हमारे मुल्क में हमारे आसपास लोग जो मौजूद है ना वो ऐसी ऐसी अफवाहें करते हैं भाई, मन करता है कि उनके कोड़े ऐसी जगह मारें कि उनको तकलीफ हो बैठते लेटते। तो आपको एक बात ऐसी लिखनी है उन लोगों के लिए जो अफवाहें फैलाते हैं ऐसी कि अरे बिल गेट्स जो है पैसा गिरा हुआ नहीं उठाता है, क्योंकि हम जैसे जब बच्चे होते हैं ना तो हम तो ये सोचते हैं कि बिल गेट्स का कोई काम वाला ही बन जाऊं मैं, बिल गेट्स के घर में कुछ झाड़ू पोछा लगवा ले, चलता हुआ पैसा गिराए और हम उस पैसे को उठा लें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे, एक खत में एक अच्छी सी वाणी अच्छे से लफ्ज जरूर डालिएगा, नंबर 8666221077। फिलहाल अजान का वक्त, दिल से देसी
7: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: भाईजान आज मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ कर लेना कि ऐ मौला बारिश करवा दे और हमें भी रेनकोट पहनने का और छाता इस्तेमाल करने का मौका दे मेरा भाई। दुआ कर लेना मेरा भाई प्लीज। यार छाते का पैसा बर्बाद चला जाएगा यार इस साल अगर बारिश नहीं हुई, उम्मीद पूरी है। खैर इस्तकबाल दोस्तों आप सभी का एफएम 107 पे 6:50 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अफवाहें फैलाने वाले लोगों के लिए जो बात दिल करे लिख दो और बढ़िया बढ़िया बातें लिखो। लेकिन उससे पहले एक मैसेज था जो मैं सुन नहीं पाया था, ऑडियो था। अजान साहब ने कहा है कि मेरी बिल गेट्स से बात हुई है और कहते हैं कि अब वो कैश नहीं रखते। ये बड़ी लेजिट बात कही है इन्होंने, कहा कि अब सारा काम डिजिटल हो गया है तो अब मैं कैश नहीं रखता और पैसे गिरते भी नहीं। अब बहुत अच्छी बात कही अजान साहब, और अभी मेरे पास मैसेज भी आया है बिल गेट्स साहब का, कहते हैं सही कह रहे हैं अजान से मेरी बात हो गई है, कैश वो रखते नहीं है। तो बिल गेट्स ने ये जल्लाद से बात कर लिया, कोड़े वाले से बात कर लिया है। इन्होंने कहा है कि अजान के घर भेज दो इनको, इनकी लोकेशन मंगवा लो अजान की, इनके घर भेज दो, मैं डिजिटल पेमेंट कर दूंगा जल्लाद को और कोड़ा लेकर जाएगा कहना जल्लाद से है। भाई अपनी लोकेशन भेज देना, और ये कोड़े वाले तो बहुत तैयार है। आज सुना है इसने हैवी लिफ्ट जो है वो मारी है, जिम जाता है भाई हमारा कोड़े वाला, ऐसा नहीं समझ लेना उसको, हल्का कोई आदमी नहीं है वो, बहुत भारी आदमी है। बाकी एक मैसेज है मोहम्मद साहब का, कहते हैं वलीद भाई को फलाना वाला लाठी लेके दो, जिससे बूढ़े जो बूढ़े लोग लेते हैं लाठी वाली कचरा जमा करता है उससे पैसे उठाएगा। अच्छा ओके मैं समझ गया, अरे वो जब कूड़ा उठाते हैं ना यहाँ पर, आपने कभी कभार देखा होगा तो वो एक ढक्कन की तरह होता है, बस आप उसको नीचे से ले और फिर एक झाड़ू से उसको अंदर करें और फिर, तो वो कह रहे हैं कि ये वाला जो भी है यार कूड़ा उठाने वाला आइटम, ये वाला आइटम दे दो वलीद भाई को। वलीद भाई देख रहा हो अब तो यार जवाब देना पड़, मैं होता तो ना सहता भाई। वलीद भाई ये तो टॉन्ट है भाई, ये टॉन्ट है, मैं होता तो ना सहता भाई, मेरा तो हो जाता झगड़ा, ये आप है भाई सहली। अभी कुछ लिखेंगे। आशिक इरफान ने क्या कहा है, डियर ब्रदर्स अगर सिक्का नाले में गिर जाए तो जरूर उठा के दान पेटी में डालने का काम आएगा। अच्छा ये एक तरह से इन्होंने खत लिखा है ऐसे लोगों को जो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इस वाली बात में आधी अधूरी बात है, क्या लिखा है आगे आप समझ लें। फिर एक और मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। इमोल इमोल राय है, लिखा है डियर बिल गेट्स --- में जाओ। भाई देखिए आपकी ये जो बात आपने लिखी है बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन मैं अपनी खतरे में नहीं डाल सकता ना नौकरी, तो माफी वाला इमोजी मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके एक और मैसेज है, नाम है इनका जमीर, जमीर भाई ने ऐसी बात कह दिया यार, ये नाम है कि आपने बस ऐसी मजे मजे में प्रोफाइल पे नाम डाल दिया है। लिखा है डियर अफवाहों हट, ये कौन सी बात है। बहुत छोटे लफ्जों में ऐसी बात कह देते हैं कि इंसान को बुरा, अगले आदमी को बुरा लग जाए। फिर एक और मैसेज है, और इनका नाम है मुजीब, कहते हैं भाई बिल गेट्स वाली कहानी में मैं सोचता था कैसे उससे मिलूं, बिल गेट्स से कैसे मिलूं और उससे पैसे मांग लूं। भाई हर बच्चे ने ये सोचा है, और आप तो फिर भी ईमानदारी का सोच रहे हैं। मैंने मालूम है क्या सोचा, मैंने सोचा उसके घर में नौकरी ही मिल जाए, मुझे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी बहुत चली थी कि अगर वो गिरा हुआ पैसा उठाना शुरू कर दिस तो उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, $10 उठाने गया तो $2,000 का नुकसान हो जाएगा, हर सेकंड वो पैसा बनाता है, इतना अमीर आदमी है वो। हम भी इसी चक्कर में फंस गए थे। एक बार मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अब तो बहुत देर कर दी है आपने, बाकी अब मेरे यहाँ से कल्टी मारने का वक्त आ गया क्योंकि आज वीकेंड भी है यार, वीकेंड का मजा लो मेरा भाई। अरिजीत और अरमान की आवाज में बेहतरीन गाना आपके लिए सुना रहा हूँ, आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, गाने का नाम है गहरा हुआ इश्क, गहरा हुआ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी संडे शाम 6:00 एक नए टॉपिक के साथ, देखेंगे कोई बिल गेट्स है क्या उधर। फिलहाल सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: गेम चेंजर सीजन 2। खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं, यह है जज्बा, मेहनत और इरादा जो तारीख बदल देता है। यह गेम चेंजर एक सफर उन स्पोर्ट्स हीरोज के साथ जिन्होंने ना सिर्फ अपना गेम बदला बल्कि दुनिया को नए अंदाज में सोचने पर मजबूर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। बट फर्स्ट टॉप स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। गेम चेंजर सीजन 2। उरीदो दोहा मैराथन का 15वां एडिशन अगले साल 15 जनवरी को मुनाकिद होगा जिसमें तकरीबन 25,000 रेसर्स शिरकत करेंगे और इस कॉम्पिटिशन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के अलावा फैमिली रन और किड्स फन रन में भी हिस्सा ले सकते हैं। कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026-2027 मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और ये इवेंट 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कतर 2026 का मैच शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा और इसमें 48 नेशनल टीमें हिस्सा लेंगी। 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेजबान कतर का सामना इजिप्ट से होगा। गल्फ क्लब चैंपियंस लीग 2026-2027 का तीसरा एडिशन शुरू हो चुका है और इवेंट 30 अप्रैल 2027 तक शेड्यूल है और श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक पाकिस्तान की दौरा करेंगी। ये थे स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और अब शुरू करते हैं हमारा मेन सेगमेंट। कोर्ट पर एक खिलाड़ी खड़ा है और सामने ओपोनेंट और चेयर अंपायर के खिलाफ एक और शिकायत, यू कैन नॉट बी सीरियस, और फिर अगले ही पॉइंट पर एक इम्पॉसिबल वॉली, एक परफेक्ट सर्व और ओपोनेंट के लिए मैच ऑलमोस्ट खत्म। या दोस्तों, ये था जॉन मैकेनरो, टेनिस का वो सुपरस्टार जो रैकेट से पॉइंट्स जीतता था लेकिन अपनी पर्सनालिटी से पूरे स्टेडियम को हिला देता था। यह गेम चेंजर शो और आज की कहानी टेनिस के एक ऐसे लेजेंड की है जो सिर्फ चैंपियन नहीं था बल्कि टेनिस की पर्सनालिटी, कल्चर और एंटरटेनमेंट का एक पूरा चैप्टर था। पूरा नाम अगर ले तो पता चलता है जॉन मैकेनरो नहीं बल्कि जॉन पैट्रिक मैकेनरो जूनियर। 16 फरवरी 1959 को पैदा होने वाले मैकेनरो ने प्रोफेशनल टेनिस में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया जो आज भी नजर आता है। लेफ्ट हैंडेड प्लेयर थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट मेकर, ब्रिलियंट वॉलियर, डबल्स जीनियस और साथ ही कोर्ट पर अपने कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर के लिए मशहूर, यानी हमेशा लड़ाई करते थे, आर्ग्यूमेंट्स पे रहते थे और ना जाने क्या क्या उनके साथ हुआ और ये बहुत फेमस स्टोरी है, आगे जाके आपको पता चलेगा। और मैकेनरो को टेनिस हिस्ट्री में एक बिल्कुल इसी वजह से अलग मकाम हासिल है। देखिए, होता है कि नेगेटिव पर्सनालिटी और पॉजिटिव पर्सनालिटी, यहाँ पे मैकेनरो के अंदर में दोनों ही कॉन्कॉक्शन, पॉजिटिव पर्सनालिटी इन द वे दैट ही वाज अ ब्रिलियंट टेनिस प्लेयर, नेगेटिव इन द सेंस कि ही यूज्ड टू आर्ग्यू विद द चेयर अंपायर, विद द ओपोनेंट प्लेयर, लेकिन ही वॉज पॉपुलर एंड ही इज स्टिल बींग रिकॉल्ड और ही इज स्टिल बिंग यू नो डिस्कशन पे उनके बारे में। हम जब भी टेनिस के बारे में बात करते हैं उस दौर के 70s और 80s के टेनिस के बारे में हम बात करते हैं, जॉन मैकेनरो होना चाहिए। उनकी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट से। एक नौजवान मैकेनरो ने बहुत जल्द ही टेनिस में अपनी एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन और नेचुरल फील फॉर द बॉल का सबूत देना शुरू कर दिया था। उनका गेम टेक्स्ट बुक टेनिस से थोड़ा मुख्तलिफ था। मैकेनरो के स्ट्रोक्स में एक नेचुरल आर्टिस्ट्री थी। वो बॉल को सिर्फ हिट नहीं करते थे, वो उसे प्लेस करना जानते थे। नेट पर उनकी एंटिसिपेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। सर्व के बाद वो फौरन नेट की तरफ मूव करते और फिर एक सॉफ्ट एंगल या शार्पली प्लेस्ड वॉली से ओपोनेंट को हैरान कर देते और फिर उनका लेफ्ट हैंडेड सर्व, उनका सर्व शायद सबसे पावरफुल नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट और डिस्गाइज की वजह से ओपोनेंट के लिए रीड करना मुश्किल होता था। मैकेनरो का राइज 1970 के आखिर में हुआ और 1980 के शुरू में वो वर्ल्ड टेनिस के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हो गए। 1980 में विंबलडन ने उनकी पर्सनालिटी को दुनिया के सामने और भी मजीद प्रोमिनेंट कर दिया। फाइनल में सामने थे बियॉन बॉर्ग, स्वीडिश आइस कूल चैंपियन। एक तरफ बॉर्ग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामनेस, दूसरी तरफ जॉन मैकेनरो का इमोशन और फिर वो लेजेंडरी विंबलडन फाइनल। मैकेनरो ने बॉर्ग को चैलेंज किया और फोर्थ सेट टाई ब्रेक टेनिस हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट्स में शुमार होता है। मैकेनरो ने वो टाई ब्रेक 18-16 से जीता, यानी 16 पॉइंट्स के मुकाबले में 18 पॉइंट से मैकेनरो ने वो सेट अपने नाम किया। लेकिन बॉर्ग ने फिफ्थ सेट जीतकर विंबलडन टाइटल रिटेन कर लिया। टेनिस में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ये जितने भी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर आप पढ़ेंगे, अगर देखेंगे, और अगर ये रैली, अगर ये जॉन मैकेनरो और बियॉन बॉर्ग की ये जो रैली जिसके बारे में अभी जिक्र किया, ये फोर्थ सेट में टाई ब्रेक हुआ था 18-16 पॉइंट, अगर आप वाकई टेनिस पसंद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी, आप यकीन जानिए कि यू विल रियली लव जॉन मैकेनरो। ये राइवलरी सिर्फ टेनिस राइवलरी नहीं थी दोस्तों, ये दो लोग ये दो पर्सनालिटीज का कॉन्ट्रास्ट था, आइस वर्सेस फायर, बर्फ के सामने आग। बॉर्ग रिलेटिवली साइलेंट और कंपोज नजर आते थे, जबकि मैकेनरो अंपायर के डिसीजंस पर ओपनली प्रोटेस्ट करते, क्राउड के सामने इमोशंस एक्सप्रेस करते और अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाते नहीं थे, दिखाते थे, बड़े एक्टर थे। इसी दौर में उनका एक फेमस फ्रेज मुझे याद आ रहा है, यू कैन नॉट बी सीरियस। ये फ्रेज आज भी लोग यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने जर्नलिस्टिक यू नो प्रेजेंटेशन में, यू कैन नॉट बी सीरियस। ये जॉन मैकेनरो का एक बहुत ही मशहूर कहावत है। मैकेनरो की कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी टेनिस अथॉरिटीज के लिए प्रॉब्लम भी बनती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनका एंगर उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को ओवरशैडो नहीं कर सका। 1981 में मैकेनरो ने विंबलडन सिंगल्स टाइटल जीता और इसी साल यूएस ओपन भी अपने नाम किया। फिर 1983 में विंबलडन और यूएस ओपन टाइटल्स दोबारा जीते। 1984 में उनका करियर अपनी पीक पर नजर आया और यहाँ नंबर्स खुद कहानी सुना देते हैं। मैकेनरो ने 1984 सीजन में सिंगल्स में 82 विंस और सिर्फ एंड सिर्फ 3 हार रिकॉर्ड की। ये ओपन एरा का बेस्ट सिंगल सीजन विन परसेंटेज है दोस्तों। सोचिए पूरे सीजन में सिर्फ 3 हार, कभी सोच सकते हैं आप लोग। और उस साल मैकेनरो ने विंबलडन और यूएस ओपन दोनों जीते और एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर और आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का ऑनर भी हासिल किया। लेकिन मैकेनरो सिर्फ सिंगल्स खिलाड़ी नहीं थे। अगर हम ये कहते कि वो सिंगल्स में माहिर थे, उसमें महारत हासिल कर चुके थे, ये गलत होगा। डबल्स में भी वो उतना ही जबरदस्त खिलाड़ी थे जितना कि वो सिंगल्स में। उन्होंने कुल 155 करियर टाइटल्स जीते जिसमें 77 सिंगल्स और 78 डबल्स। मेंस डबल्स में उन्होंने 269 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन पर रहे। यानी जॉन मैकेनरो टेनिस के उन रेयर खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने सिंगल्स और डबल्स दोनों डिसिप्लिन्स में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। उन्होंने कुल 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते, 4 यूएस ओपन और 3 विंबलडन। डबल्स में उनके नाम 9 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स और 1 मिक्स डबल्स मेजर भी है। और एक रिमार्केबल फैक्ट, मैकेनरो ने सिंगल्स और डबल्स दोनों में 70 से ज्यादा करियर टाइटल जीते। मेंस टेनिस में ये अचीवमेंट अपनी जगह मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनकी राइवलरी सिर्फ बियॉन बॉर्ग के साथ नहीं थी, जिमी कॉनर्स के साथ उनकी राइवलरी भी टेनिस फैंस के लिए अनफॉरगेटेबल है। और जिमी कॉनर्स उन्हीं के ही मुल्क थे, अमेरिका के थे, और वो भी इतने ही कमाल के खिलाड़ी थे जितने कि बियॉन बॉर्ग और जॉन मैकेनरो। कॉनर्स एग्रेसिव पावरफुल और इमोशनली चार्ज प्लेयर थे और मैकेनरो क्रिएटिव अनप्रेडिक्टेबल और इसके साथ नेट गेम स्पेशलिस्ट यानी नेट के पास आके जिस तरह के शॉट्स लेने होते हैं उसमें जॉन मैकेनरो को काबू करना हराना थोड़ा डिफिकल्ट था। जब दोनों कोर्ट पर आमने सामने आते तो मैच में सिर्फ पॉइंट्स नहीं होते थे पर्सनालिटी का भी क्लैश होता था ये तो अंडरस्टूड। मैकेनरो ने अमेरिकन डेविस कप टीम के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को 5 डेविस कप टाइटल्स जीतने में कंट्रीब्यूट किया और बाद में टीम के कप्तान भी रहे। लेकिन हर ग्रेट करियर की तरह जॉन मैकेनरो की जर्नी में भी चैलेंजेस आए। मसलन 1980 के एंड तक उनका सिंगल्स डोमिनेंस कम होने लगा, कंपटीशन इंटेंस हो रहा था, टेनिस फिजिकली डिमांडिंग होती जा रही थी और जॉन मैकेनरो की ऑन कोर्ट कंसिस्टेंसी पहले जैसे नहीं रही। 1992 में उन्होंने डबल्स में एक और ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। 1994 में उन्होंने अपना रेगुलर प्रोफेशनल करियर प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जॉन मैकेनरो उन लेजेंड्स में से हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी टेनिस से दूर नहीं हुए। वो सीनियर इवेंट्स और लेजेंड्स कॉम्पिटिशन्स में नजर आए। इनफैक्ट 2006 में उनको एक रिमार्कबल कमबैक करते हुए सबने देखा और सैन होजे डबल्स टाइटल जीता और 47 साल की उम्र में आई मीन वो उनका जो पैशन रहा है टेनिस के लिए वो हमें उस टाइम देखने को मिला से तकरीबन 20 साल पहले 47 के थे जब उन्होंने ये टाइटल भी जीता और आज भी वो टेनिस कमेंट्री की दुनिया में एक दमदार आवाज हैं और कमेंट्री में भी उनका अंदाज बिल्कुल वही है जॉन मैकेनरो वाला, डायरेक्ट इमोशनल कैंडिड और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल। पर्सनैलिटी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि आप जो हैं वो आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे किसी को आप खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जॉन मैकेनरो वाज अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी कि जो वो ऑन कोर्ट में उनका जो कैरेक्टर रहा है, आई मीन गलत है तो गलत है, आई विल आर्ग्यू विद दैट। आई मीन ये नहीं कि सर नीचे करके आप जो हैं महापुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन मैकेनरो वाज नेवर लाइक दैट। तो जॉन मैकेनरो का ये था कि स्ट्रेट ऑन योर फेस, जो गलत है वो गलत है। हाँ अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्रेशन जो है वो सही नहीं होता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जॉन मैकेनरो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट्री बॉक्स में भी हमें उस तरह जॉन मैकेनरो के जो वर्बल वॉलीज मैं कहूँगा यहाँ पे वॉज ट्रेमेंडस। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में वो टेलीविजन एनालिस्ट के तौर पर रेगुलरली नजर आते हैं। 2026 में भी जॉन मैकेनरो टेनिस की दुनिया का एक एक्टिव हिस्सा रहे। आप सुन रहे गेम चेंजर और जॉन मैकेनरो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों है जॉन मैकेनरो अ गेम चेंजर फॉर वर्ल्ड टेनिस। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कमेंट्री बॉक्स में भी जॉन मैकेनरो उतनी एक्टिव है जितने वो टेनिस कोर्ट में थे। अब फ्रेंच ओपन में देखिए, फ्रेंच ओपन के दौरान उन्होंने कमेंट्री की, विंबलडन में भी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा रहे और जुलाई में विंबलडन फाइनल के लिए एक टेलीविजन चैनल पर कमेंट्री ड्यूटीज भी उन्होंने परफॉर्म की। तो द पैशन इज सीन, द पैशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज कमेंट्री। जो वो ऑन कोर्ट में दिखाते थे वही चीज जॉन मैकेनरो को टेनिस कमेंट्री बॉक्स में भी हमें देखने को मिला, सुनने को मिला। और इस साल के 2026 US ओपन में भी उनका टेनिस से कनेक्शन एक नए अंदाज में नजर आया। 25 अगस्त को आर्थर एश स्टेडियम में रॉजर फेडरर की स्पेशल एग्जीबिशन नाइट हुई। रॉजर फेडरर जानते ही होंगे, मॉडर्न टेनिस के एक सुपरस्टार। रॉजर फेडरर ने एंडी रॉडिक के खिलाफ सिंगल्स सेट खेला और फिर डबल्स में जॉन मैकेनरो के साथ टीम बनाकर आंद्रे अगासी और रॉडिक का सामना किया। आंद्रे अगासी, टेनिस अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये नाम जो है, ये सब यू नो वेरी बिग नेम्स, मारूफ खिलाड़ी रह चुके हैं आंद्रे अगासी, रॉडिक और रॉजर फेडरर ऑब्वियसली। तो फेडरर और मैकेनरो की टीम ने वो डबल्स मैच 5 के मुकाबले में 7 से जीता। सोचिए दोस्तों, एक ही कोर्ट पर रॉजर फेडरर, जॉन मैकेनरो, आंद्रे अगासी और रॉडिक, टेनिस की चार डिफरेंट जनरेशंस एक जगह। और मैकेनरो जो कभी विंबलडन और US ओपन में अपनी जनरेशन के चैंपियन से लड़ते थे, अब टेनिस की नई जनरेशंस को देखते हुए कमेंट्री बॉक्स से गेम को एनालाइज कर रहे हैं। इसी साल मैकनरो ने एटीपी के साथ एक इंटरव्यू में नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर जैसे चैंपियंस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो इन खिलाड़ियों की इस क्वालिटी को रेस्पेक्ट करते हैं कि वो लगातार पुश करते रहते हैं। मॉडर्न टेनिस में यही बात हम लोग कहते हैं, इनफैक्ट मॉडर्न टेनिस क्यों, मॉडर्न स्पोर्ट में पुश करनी चाहिए, यानी कि आप रुक जाएं। पुश करने से मुराद ये है कि आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो जॉन मैकनरो रियली रियली ही अप्रिशिएटेड कि आज के जनरेशन के जितने भी खिलाड़ी हैं वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि अपने गेम को उस लेवल पे, यानी एक स्टैटिक पॉइंट पे ना रुककर अपने अंदाज को चेंज करना, गेम पैटर्न को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना वो करते हैं और मुसलसल प्रैक्टिस में रहते हैं। एंड ही रियली ओपन हार्टेडली ही अप्रिशिएटेड ऑल दीज प्लेयर्स जो आज के दौर के सुपरस्टार हैं, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, इन खिलाड़ियों के बारे में आज भी उनके लिए जॉन मैकनरो का जो रेस्पेक्ट रहा है काबिले तारीफ रहा है। इसी साल एक नौजवान अमेरिकन खिलाड़ी सेबास्टियन कॉर्दा ने भी बताया कि जॉन मैकनरो के साथ उनकी एक कन्वर्सेशन ने उन्हें कार्लोस अल्काराज के खिलाफ मायामी ओपन मैच से पहले और बाद में सोचने पर मजबूर किया। कॉर्दा ने अल्काराज को हराकर अपनी करियर की एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री हासिल की। तो सोचिए जरा इम्पोर्टेंस ऑफ जॉन मैकनरो फॉर द न्यू जनरेशन प्लेयर्स, यानी मैकनरो का इन्फ्लुएंस सिर्फ उस जनरेशन तक महदूद नहीं रहा जिसमें वो खुद खेलते थे। आज भी नौजवान खिलाड़ी उनकी एडवाइस सुनते हैं, यू नो दे गिव रिस्पेक्ट। और मैकनरो खुद भी मॉडर्न टेनिस को सिर्फ एक्सपेक्टेटर की तरह नहीं देखते, वो स्केड्यूल, खिलाड़ी का जो भी वर्कलोड है और

को चौंका दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है, एक साल में एक सीजन में ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स जो कि मेंस टेनिस को यू नो गाइड करती हैं, जिनके अम्ब्रेला में ये मेंस टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ATP को भी उन्होंने तनकीद और करते हुए उन्हें कहा था कि जो सिस्टम अभी लागू है मॉडर्न टेनिस में वो सही नहीं है और इससे हो क्या रहा है कि खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, मैचेस पे मैचेस खेलते हुए थक जाते हैं, इंजरी प्रोन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रहे हैं। अब एग्जांपल्स अगर दूँ, मसलन कार्लोस अल्काराज नौजवान खिलाड़ी हैं, यानिक सिनर नौजवान खिलाड़ी हैं आज के मॉडर्न टेनिस में, वो इतने इंजर्ड हो रहे हैं कि एक टूर्नामेंट खेल तो रहे हैं लेकिन अगले टूर्नामेंट में वो बाहर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंजरी। नोवाक जोकोविच जब इन खिलाड़ियों के मुकाबले में थोड़ा सा सीनियर हैं वो, लेकिन वो भी इंजरी की वजह से यू नो वॉकआउट कर लेते हैं। आई मीन दैट इज़ द प्रेशर ऑफ मॉडर्न टेनिस की ले नहीं सकते हैं आप, और इसी बात पर जॉन मैकेनरो ने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन दोस्तों मैकेनरो की लेगेसी को समझने के लिए सिर्फ ट्रॉफीज गिनना काफ़ी नहीं है, उनकी असल लेगेसी उनके स्टाइल में है, उनका सर्व एंड वॉली गेम, उनका सॉफ्ट टच, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील फॉर द बॉल, उनकी डबल्स इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर उनकी पर्सनालिटी। जॉन मैकेनरो ने टेनिस को एक ह्यूमन ड्रामा बना दिया। वो गुस्सा करते थे, वो आर्ग्यू करते थे, वो अंपायर से बहस करते थे, कभी फैंस क्राउड को एंटरटेन करते, कभी अपने ओपोनेंट को प्रेशर में डालते, लेकिन फिर रैकेट हाथ में आता और वही मैकेनरो एक आर्टिस्ट बन जाता, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कोर्ट के छोटे से स्पेस को कैनवस समझता था। जॉन मैकेनरो 1984 का उनका 82-3 रिकॉर्ड आज भी उनके पीक का सबूत है। उनके करियर के 155 टाइटल्स, 77 सिंगल्स और 78 डबल्स उनकी वर्सैलिटी का रिकॉर्ड हैं। और जब हम उनकी 7 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम फतेह के बारे में बात करते हैं, 9 मेंस डबल्स मेजर्स और 1 मिक्स डबल्स मेजर और वर्ल्ड नंबर 1 के 170 हफ्ते तक रहना, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो समझ आता है कि जॉन मैकेनरो सिर्फ एक मारूफ टेनिस खिलाड़ी नहीं थे, वो टेनिस के एक पूरे एरा की आवाज़ थे। एक तरफ बियॉन्ड बॉर्ड का साइलेंस, दूसरी तरफ जिमी कॉनर्स का एग्रेशन और बीच में जॉन मैकेनरो की आर्टिस्ट्री और इमोशन। यही था 1980s का टेनिस और यही था जॉन मैकेनरो। आज 67 साल की उम्र में भी वो टेनिस से जुड़ा हुआ है, कभी कमेंट्री बॉक्स में, कभी लेजेंड्स के साथ कोर्ट पर, कभी मॉडर्न गेम पर अपनी राय देते हुए। 2026 US ओपन के एग्जीबिशन मैच में रॉजर फेडरर के साथ उनका कोर्ट पर वापस आना इस बात की एक खूबसूरत पहलू थी कि कुछ चैंपियंस रिटायरमेंट के बाद भी अपने स्पोर्ट से कभी रिटायर नहीं होते, यानी अलविदा नहीं कहते। जॉन मैकेनरो की कहानी हमें ये बताती है कि स्पोर्ट में ग्रेटनेस सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफीज का नाम नहीं, कभी कभी ग्रेटनेस का मतलब होता है गेम को बदल देना। और जॉन मैकेनरो ने टेनिस को सिर्फ खेला नहीं, उसे परफॉर्म किया। उन्होंने टेनिस को स्किल दी, ड्रामा दिया, इमोशन दिया और एक ऐसी पर्सनालिटी दी जो आज भी फैंस को याद है। कोर्ट पर उनकी आवाज गूंजती थी, यू कैन नॉट बी सीरियस, और शायद टेनिस की दुनिया भी जवाब देती थी जॉन मैकेनरो को सीरियस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो रैकेट हाथ में लेकर कोर्ट पर उतरते थे तो सामने सिर्फ एक ओपोनेंट नहीं होता था, सामने होता था जॉन मैकेनरो का पूरा शो। अच्छा, बात करते हैं कि जॉन मैकेनरो क्यों गेम चेंजर है। आई बिलीव कि सर्व एंड वॉली गेम को आर्ट बनाना मैकेनरो ने पावर के बजाय टच, टाइमिंग, प्लेसमेंट और एंटिसिपेशन के जरिए उन्होंने ये साबित किया कि टेनिस कैन बी फन, टेनिस कैन बी एन आर्ट। और नेट पर उनकी बॉलिंग और कोर्ट अवेयरनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और इसी वजह से वन ऑफ द पॉइंट्स, वन ऑफ द मेजर रीजंस की व्हाई जॉन मैकेनरो
इज अ गेम चेंजर। और साथ साथ ये भी मैं कह सकता हूँ कि सिंगल्स

और डबल्स दोनों में डोमिनेंस, उन्होंने 77 सिंगल्स जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ और 78 डबल्स टाइटल्स, तो टोटल 155 जो कि ओपन एरा का एक रिकॉर्ड है। 70 से ज्यादा सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीतने वाले इकलौते मेन प्लेयर हैं और ये वर्सैटिलिटी उन्हें दूसरे चैंपियन से अलग करती है। और इसके साथ साथ 1984 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन, उनका जो रिकॉर्ड मैंने बताया पहले भी, ये 3 हार और 82 सिंगल्स रिकॉर्ड, उसमें जीत 96.5% विनिंग परसेंटेज, ओपन एरा का बेस्ट सिंगल सीजन। इस सीजन में उन्होंने विंबलडन और यूएस ओपन भी जीता। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल सीजन नहीं बल्कि डोमिनेंस की मिसाल थी। जॉन मैकेनरो ने टेनिस में पर्सनालिटी को रीडिफाइन किया, उनसे पहले भी आउटस्पोकन खिलाड़ी थे लेकिन उन्होंने ऑन

0: फेमस आर्ग्यूमेंट्स और यू कैन नॉट बी सीरियस जैसे मोमेंट्स ने उन्हें एक स्पोर्टिंग सेलिब्रिटी बना दिया था। अच्छा, बियॉन बॉक के साथ जो राइवलरी हमने देखा वो भी यू नो टेनिस कोर्ट को एक थिएटर बना दिया था। बियॉन बॉक और मैकेनरो टोटल डिफरेंट पर्सनालिटीज और उनकी इस राइवलरी ने टेनिस को सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि एक कंपेलिंग ड्रामा बना दिया। ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि व्हाई ही इज अ गेम चेंजर। डबल्स को भी सुपरस्टार प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे कि सिंगल्स में उनका अगर सक्सेस रहा तो डबल्स में भी उतना ही वो महारत उन्होंने हासिल किया और ही वॉज अ ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डबल्स प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस ओपन एरा में। तो ये भी एक रीजन है। डेविस कप में नेशनल इम्पैक्ट रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस आज भी है। आई मीन ही इज एन इन्फ्लुएंसर इन टेनिस। गायब नहीं हुए, कॉमेंट्री, एग्जीबिशन, सीनियर इवेंट्स और यंग प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन के जरिए वो स्पोर्ट का एक्टिव हिस्सा रहे। 2026 में भी उनकी प्रेजेंस मेजर टेनिस इवेंट्स और एग्जीबिशंस में नजर आई। तो इसका मतलब है कि ही इज रिलेटेबल, ही इज रिलेटेड टू मॉडर्न टेनिस एज वेल। रिटायरमेंट कब की बात होगी, उस बात को अगर हम दोहराए तो आज भी हमें लगता है कि यार वाई बियॉन बॉक, जिमी कॉनर्स आज नहीं है, लेकिन जॉन मैकेनरो हैं। बियॉन बॉक पता नहीं कहाँ है, जिमी कॉनर्स भी पता नहीं कहाँ है, लेकिन जॉन मैकेनरो देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, लेकिन लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। कॉमेंट्री बॉक्स में बैठना, टेनिस फैंस को एंटरटेन करना जॉन मैकेनरो ही कर रहे हैं, बियॉन बॉक नहीं है, जिमी कॉनर्स नहीं है। और इन्हीं के साथ के जो कॉन्टेम्पररी प्लेयर्स जिन नो बियॉन बॉक एंड जिमी कॉनर्स वो नहीं है, लेकिन जॉन मैकेनरो है। सो ही इज रिलेटेबल। तो आज भी उनका इन्फ्लुएंस जो है मेजर इम्पैक्ट है ऑन द मॉडर्न टेनिस प्लेयर्स। जैसे कि मैंने बताया कार्लोस अल्काराज, यानिक सेना, ये दोनों नौजवान खिलाड़ी आज के डेट में टॉप प्लेयर्स में से हैं और आज भी जॉन मैकेनरो को सुनते हैं। और गेम चेंजर का असली पॉइंट, जॉन मैकेनरो ने टेनिस का रूल बुक नहीं बदला, लेकिन उन्होंने ये बदला कि टेनिस को कैसे खेला, देखा और महसूस किया जा सकता है। दैट मेक्स जॉन मैकेनरो यूनिक। वो एक चैंपियन थे लेकिन सिर्फ चैंपियन नहीं, वो एक आर्टिस्ट थे लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, वो रेबल थे, बागी थे, लेकिन सिर्फ रेबल नहीं दोस्तों। उन्होंने स्किल प्लस इमोशन प्लस पर्सनालिटी प्लस एंटरटेनमेंट को एक ही टेनिस पैकेज में कंबाइन किया। तो देखा जाए कि अगर मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें तो टेनिस प्लेयर अगर यू नो इट्स डिफिकल्ट टू मैंने तो इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन बहुत टाइम लगता है कि कभी कभार डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है जॉन मैकेनरो को। जॉन मैकेनरो जैसे मैंने बताया इज अ पैकेज। जॉन मैकेनरो वाज समथिंग दैट यू नो आई वुड से थोड़ा सा अगर फुटबॉल से अगर रिलेट करूँ तो डिएगो माराडोना की बात करूँ। कंट्रोवर्शियल थे, आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाते थे, रेफरीज से यू नो बहुत सारे उनके आर्ग्यूमेंट्स फेमस हैं फुटबॉल में, वैसे ही जॉन मैकेनरो थे। लेकिन भाई साहब खेल के मैदान में, टेनिस कोर्ट में जॉन मैकेनरो वाज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। आई मीन समथिंग, ही वाज समथिंग। आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर, देखिए उनके शॉट्स, देखिए जिस तरह के मैंने अभी आप लोगों को डिफाइन किया कि लेफ्ट हैंडेड सर्व एंड वॉली गेम, भाई साहब मान जाएंगे आप भी कि आप अगर टेनिस को पसंद भी नहीं करते हैं आप लोग बैठ के देखेंगे और अगले दिन शायद आप दोहा के किसी टेनिस क्लब में अपना नाम भी लिखवा लेंगे। इसीलिए गेम चेंजर के लिए जॉन मैकेनरो का स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। मैकेनरो ने टेनिस को सिर्फ जीता नहीं, उन्होंने टेनिस को परफॉर्म किया, है ना। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त और गेम चेंजर को आप सुनिएगा, गेम चेंजर को फॉलो करिएगा और हमारे एफ एम 107 के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स रिव्यूज़ एंड अदर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। और मिलते हैं एक और स्पोर्टिंग लेजेंड की कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक याद रखिए, ग्रेट प्लेयर्स रिकॉर्ड्स बनाते हैं लेकिन ट्रू लेजेंड्स अपना एक एरा छोड़ जाते हैं। इसी के साथ गेम चेंजर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गेम चेंजर सीजन 2 जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
1: तो ये जानने के

0: ये सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: निगरानी के मुअस्सर निज़ामों से लेकर डिजिटल सिक्योरिटी के जदीद हल और खतरात से बरवक्त निमटने वाली टेक्नोलॉजीज तक, आज सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात के मुताबिक वसाइल और सहूलियात का दायरा मुसलसल वसी हो रहा है। मिलीपोल कतर 2026 की नुमाइश उसी जदीद दुनिया की एक जाम तस्वीर पेश करती है, जहाँ सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी टेक्नोलॉजीज, जदीद आलात और मुअस्सर हिफाजती हल मुतारिफ कराए जाएंगे। ये नुमाइश शुरका, माहिरीन और मुतालिका शोबों के पेशावर अफराद को ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से करीब से वाकिफ होने का मौका फराहम करती है, जो दाखिली सलामती की बदलती ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ तहफ्फुज़ और हिफाजत के मैदान में होने वाली नई पेशरफ्त से भी हम आहंग हैं। मिलीपोल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मिलीपोल कतर 2026 की इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूं एक और फाइनेंशियल टर्म की, और ये टर्म है बैलेंस शीट। जी हाँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है तो वो है बैलेंस शीट। अक्सर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि किसी स्पेसिफिक डेट पर कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, कंपनी पर क्या कर्ज है, लायबिलिटीज, और असल में ओनर्स का कितना हिस्सा बनता है, इक्विटी। ये बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है। अब समझते हैं कि बैलेंस शीट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों का एनुअल प्रॉफिट 500,000 कतरियाल है, दोनों का रेवेन्यू भी सेम है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि पहली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, कम डेट है, जबकि दूसरी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन्स हैं, कम कैश है। अब इन्वेस्टर किस कंपनी को प्रेफर करेगा? अक्सर पहली कंपनी, यही कहा जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, बैलेंस शीट भी देखते हैं। अब बैलेंस शीट के भी कॉम्पोनेंट्स हैं और इसके तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, ओनर्स, इक्विटी। लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी की ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स होती हैं, यानी जितना पैसा कंपनी को दूसरे को देना है। फॉर एग्जांपल, बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड डेट है, सप्लायर्स पेमेंट है, टैक्सेस पेबल है, सैलरीज पेबल है, ये सारी चीजें सिंपल वर्ड्स में लाइबिलिटीज है। यानी लाइबिलिटीज वो अमाउंट्स है जो कंपनी पर वाजिब होते हैं, यानी उन्हें अदा करना होता है। और एसेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई कैश है, इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है। अब बात करते हैं ओनर्स इक्विटी की। ये कंपनी के मालिक का असल हिस्सा होता है, यानी अगर कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाए और सारे डेट्स अदा कर दिए जाए तो जो पैसा बच जाए उसे ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो आपने सुना होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये फॉर्मूला ही बैलेंस शीट की बुनियाद है। देखिए, हर बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पर बैलेंस होती है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। तो बस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को भी कैटेगराइज किया गया है। करंट एसेट जिसपे मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सब करंट एसेट्स हैं। वहीं नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, व्हीकल्स हैं। वहीं पर कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर पे करनी होती हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स है, सैलरीज है, सप्लायर पेमेंट्स है। वहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती हैं जो साल से ज्यादा पीरियड में रिपे होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वगैरह। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखकर कई इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हासिल करता है। क्या कंपनी के पास कैश है? क्या डेट बहुत ज्यादा है? क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है? क्या कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है? क्या कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल कर सकती है? और ये सब इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? बैलेंस शीट से। तो अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो बैलेंस शीट आपको बता रही है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपके डेट्स कितने हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्सपेंशन का पोटेंशियल कितना है। दोस्तों सोचिए, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो आपके पास क्या है? एक घर शायद 1 मिलियन का, सेविंग्स शायद 100,000 कतरियाल, कार शायद 100,000 कतरियाल, तो आपका टोटल एसेट हुआ 1.2 मिलियन कतरियाल, है ना? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती है। बहुत से लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है लेकिन उस पर डेट इतना ज्यादा होता है कि फाइनेंशियल रिस्क में होता है। तो बस जाते जाते ये कहूंगी कि बैलेंस शीट बिजनेस का आईना है,
ये नहीं बताती कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है बल्कि ये बताती है कि कंपनी के पास कमाने की कितनी कुव्वत है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट से पहले बैलेंस शीट समझते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस से पैदा होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपसे लूंगी इस टॉपिक पे इजाजत, कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को, एक और नए टर्म को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और संतुष्ट।

0: ध्यान दें, और वो लोग जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो गेमिंग करते हैं, मेरे भी आसपास लोग हैं जो मुझे देखते हैं और कहते हैं यही है हमारे घर का गेमर। तो अगर आप अपने घर के गेमर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है आज की ये खबर। आई एम प्रीटी श्योर यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन इट, लेकिन फिर भी बता दूं, हैंड हेल्ड पीसी गेमिंग में बूम आई है। लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं अपना गेमिंग कंसोल, अपना पीसी, व्हाटएवर। अभी इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उनमें से जो मेन है ऑफकोर्स स्टीम डेक और आसुस रोग। ये एसुस का रोग और स्टीम डेक मार्केट में है, दोनों के दोनों अपने हेफ्टी प्राइस के साथ हैं, बट दे काइंड ऑफ जस्टिफाइड। अगर आप देखेंगे हैंडहेल्ड गेमिंग पीसीज मैच्योर हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस आ चुकी है, सिलिकॉन प्लेटफॉर्म्स अब कैपेबल हैं कि आपको ट्रिपल ए गेम्स, जो हाई बजट गेमिंग गेम्स हैं, वो भी आप इजिली प्ले कर पाते हैं। अगर मैं एसुस की बात करूं, रोग एलआई, वो लिटरली रीडिफाइन करता है पोर्टेबल पीसी को। अपने साथ आप पीसी लेके चल रहे हैं, बड़ी बात है, आपके पॉकेट में है। और क्या चाहिए आपको, 80 वॉट बैटरी, AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर, 24 GB रैम, और ऊपर से थर्मल आर्किटेक्चर है ताकि आपका जो गैजेट है वो इतना हीटअप ना हो और हैंड हेल्ड के हिसाब से बढ़िया चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी विंडोज भाई बढ़िया चल रही हैं और कस्टम हैंडहेल्ड ओवरलेज भी हैं। तो आप अगर एक एक्सबॉक्स प्लेयर हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक पीसी बिल्ड कराना है और आप घर में ज्यादा वक्त बिताते हैं, तब इट इज जस्टिफाइड, आप घर पे बनाइए पीसी, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू वांट समथिंग जो आप टीवी ना डिस्टर्ब करें किसी का, आपको नहीं बैठ के खेल सके, तो अब थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइसेस आर स्टेज्ड एट वन पॉइंट, बढ़ नहीं रहे। तो एक्सबॉक्स गेम पास, एपिक गेम्स, ये सारे के सारे जो है आपको इजीली खेलने को मिलते हैं। और अगर आप स्टीम डेक की तरफ चले जाते तो आई थिंक अभी 2000 के ऊपर ही है, उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी है, डिस्प्ले भी है, कस्टमाइजेबल TDP लिमिट्स भी है, और डेस्कटॉप लेवल की गेमिंग भी आपको मिल रही है, वो भी पोर्टेबल फॉर्म में। तो और आपको क्या चाहिए? मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैं प्लेस्टेशन पे हूँ और मैं PS का पोर्टल यूज़ करता हूँ जो कि हैंडहेल्ड है, मैं उससे थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फीचर्स होने चाहिए कतर में भी, वो अभी सिर्फ US और एक दो कंट्रीज में दिए, आई थिंक दो ही कंट्रीज में दिए हैं, वो यहाँ पर भी होने चाहिए, जो कि है क्लाउड गेमिंग, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्लाउड गेमिंग के लिए मुझे 1500 रियाल ऊपर पे करने पड़े तो आई वोंट डू इट। तो आई थिंक सोनी नीड्स टू वर्क ऑन इट। इस रेस में सोनी अभी पीछे चल रहा है और स्टीम डेक डेफिनेटली आगे आ चुका है। स्टीम डेक ने जो एक चीज बढ़िया करी है वो है अपने हैंड हेल्ड पीसी के साथ। एसुस भी है मार्केट में, दोनों के बीच में बिल्कुल टक्कर का कॉम्पिटिशन है, स्टीम डेक अभी भी एक लेवल ऊपर ही है। हालांकि स्टीम डेक मार्केट में उतरा अपने गेमिंग कंसोल के साथ भी, पर ब्रो गेमिंग कंसोल वर्थ 8000 कतरी रियाल्स, आई एम सॉरी, इतना तो कोई खर्च नहीं कर रहा है। अगर उसको स्टीम डेक का चाहिए कि गेमिंग कंसोल मिले, तो 8000 रियाल तो नॉर्मल इंसान नहीं खर्च करने वाला। उससे बढ़िया अगर उसे खर्च करना होगा तो वो लिटरली एक पीसी घर में बना लेगा और बनवा भी सकता है, विच एवर वे, बट दैट्स द ट्रूथ। और ये समझने की जरूरत है स्टीम डेक को, आप सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं एक कंसोल में, ये बेचने का तरीका नहीं है, बिकॉज हर कोई जो है इसे इग्नोर करके चला जाएगा और इससे बढ़िया पीसी ही बना लेगा। 8000 में एक बढ़िया पीसी बनाने की जगह मैं क्यों कोई कंसोल लूंगा? सो दैट इज हाउ इट इज। आई डोंट नो आपको क्या ओपिनियन, अगर आप एक गेमर है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप एक पीसी गेमर हैं या एक कंसोल प्लेयर हैं, और आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या आपका मन है हैंडहेल्ड की तरफ जाने का या नहीं है? मेरा इसमें 50-50 है भाई, आई एम नॉट श्योर कि मैं हैंडहेल्ड के लिए भी तैयार हूं भी कि नहीं, 50% आई एम देयर स्टिल रीचिंग। तो अपनी जो राय है जरूर दीजिएगा FM 107 कतर, FM 107 कतर पे, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट, टेक अपडेट।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI लॉक्ड पर, एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन

0: आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: मिली फोम कतर नुमाइश की मेजबानी इस अमर की अक्कासी करती है कि दोहा दाखिली सलामती और तहफ्फुज़ से मुतालिक खुसूसी बैनुल अक्वामी तकरीबात के एक अहम मरकज के तौर पर अपनी नुमाया शनाख्त बना चुका है। साल 2026 की ये नुमाइश मुतालिका इदारों, आलमी कंपनियों और माहिरीन को एक ही छत तले यकजा करेगी, जहां जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराने के साथ साथ मुख्तलिफ तजुर्बात और महारतों का तबादला होगा, जबकि तेजी से तरक्की करते तकनीकी निजामों और उनके नित नए इस्तेमाल के तनाजुर में सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और बदलते तकाजों पर भी माहिरीन तबादला ख्याल करेंगे। मिलीपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मिलीपुल कतर 2026 की इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: one hit music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने कलम, कभी इंसान ये समझ बैठता है कि अगर थोड़ी नेकी अच्छी है तो बहुत ज्यादा हर हाल में और अपनी ताकत से बढ़कर करना लाजमन ज्यादा अच्छा होगा। अगर इबादत फजीलत है तो आराम कम से कम कर दिया जाए, अगर दीन से मोहब्बत है तो हर मामले में सख्त तरीन रास्ता इख्तियार किया जाए, अगर एहतियात अच्छी है तो हर जायज चीज को भी मुश्तबा समझना शुरू कर दिया जाए। लेकिन नबवी तरीका हमें एक निहायत अहम उसूल बताता है कि दीन में इखलास के साथ एतदाल भी जरूरी है। जज्बा हो मगर हदूद के अंदर, एहतियात हो मगर गुलू के बगैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन में गुलू से बचो। गुलू का मतलब है हद से आगे बढ़ जाना। दीन ने जहाँ एक हद मुकर्रर की है अपनी तरफ से उससे आगे निकल जाना। दीन ने जिस चीज को लाजिम नहीं किया उसे अपने या दूसरों के लिए इस अंदाज में लाजिम बना लेना जैसे उसके बगैर दीनदारी मुकम्मल ही ना हो। ये गुलू अकायद में भी हो सकता है, इबादात में भी, रवैयों में भी, लोगों के बारे में फैसलों में भी। इसीलिए ये तंबीह बहुत वसी है, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन में हद से आगे मत बढ़ो। जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ता था, आपकी नमाज मोतदिल होती थी और आपका खुतबा भी मोतदिल होता था। कसदन, कितना खूबसूरत लफ्ज है।

अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज हम एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्कैम आपके साथ तब होता है जब आपके सामने स्कैमर आ जाता है, आपसे बातें करता है, आपके घर पे काम करता है। क्या है ये दोस्तों? ये स्कैम है हाउस क्लीनिंग का स्कैम। घर की सफाई और मेंटेनेंस हर फैमिली की जरूरत होती है, खासकर फेस्टिवल के सीजन में या वीकेंड्स पर, जब लोगों के पास खुद सफाई करने का वक्त नहीं होता, वो कुछ आराम करना चाहते हैं या फिर वो अपने घर किसी की दावत करना चाहते हैं और फैलावा बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में लोग हाउस क्लीनिंग की हेल्प लेते हैं। फ्रॉस्टर्स ने अब इस सेक्टर में भी लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। ये फेक हाउस क्लीनिंग कंपनीज और फेक क्लीनिंग एजेंट्स बनकर आते हैं और आम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो प्रोफेशनल दिखने के लिए फेक फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, और जहां वो घर की डीप क्लीनिंग है ना, वॉशिंग और मैट्रेस का साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कहते हैं और प्राइसेस एकदम लो कर देते हैं, और ऐसा ऑफर लगता है कि यार इससे तो कम कहीं और मिलेगा नहीं। जब कोई क्लाइंट इन फेक क्लीनिंग सर्विसेज को हायर करता है तो ये स्कैमर्स उनके घर आते हैं और वो कई बार आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो मैट्रेस है ना, ये मैट्रेस बहुत ज्यादा गंदा है, फला सामान जो है बहुत गंदा है, ये सोफा बहुत गंदा है, इतने ही अमाउंट में ये सामान जो है मैं घर से बाहर ले जाऊंगा, हम अपने स्टोर ले जाएंगे, हम अपने सफाई करने वाली जगह पे ले जाएंगे, अपनी लोकेशन पे, अपनी फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहां पर क्लीन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। वो आपका सामान उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एडवांस में 50% पेमेंट कर दीजिए। ये आपके घर आते हैं और दो चार दिन सफाई भी करते हैं, कई बार ये कहते हैं कि आप हमें बार बार बुला सकते हैं, ये थोड़ा अमाउंट लेते हैं और फिर ये चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये हाउस क्लीनिंग करने वाले लोग आपके पास आते हैं तो ये आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं इस तरह से कि आप जो है 10 रुपए पर आर के हिसाब से हमें दे सकते हैं और हम डेली आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे, या 10 कतरी रियाल 20 कतरी रियाल भी आप दे सकते हैं और हम आपके घर 3 से 4 घंटा रुकेंगे, काम करेंगे, आपको जो भी काम करवाना है हम वो करेंगे। 10 कतरी रियाल पर आवर या 20 कतरी रियाल, या फिर आपके मुल्क में भी अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि सिर्फ 50 रुपए 1 घंटे का लेंगे, तो ये बहुत सस्ता लगता है। तो आपको लगता है कि क्यों ना डेली ही किसी मेड को मैं रख लूँ, तो 1-2 दिन ये आपके यहाँ सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है यार डेली भी रख सकते हैं, 1 दिन का खर्चा 100 है, तो क्यों ना हफ्ते में हम 5 दिन के लिए उनको रख लें। ये आपको कोशिश करते हैं कि फंसा लें और आप एज अ मेड इनको अपने पास रख लें। जब आपको ये लगता है कि इनको रख लेना चाहिए, आप इनको रखते हैं और फिर लगातार ये 5 से 7 दिन आपका काम करते हैं। एंड देन होता ये है कि आपसे 1 दिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 महीने के लिए इनको रखा है और हफ्ते में 5 दिन आना है आपको, इन्होंने 5 से 10 दिन काम किया और ये फिर 1 महीने का अमाउंट मांग लेते हैं। 1 महीने का अमाउंट जहां आपने इनको दिया, या फिर 1 महीना नहीं 20 दिन का अमाउंट आपने दे दिया, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि 10 दिन काम किया इसने, 10 दिन का अमाउंट तो इसका बनता है, चलो 10 दिन एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं और जब ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा इसका 1 महीने का, तो हम हिसाब जो है वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं 10 दिन का या 20 दिन का, ये गायब हो जाते हैं। और ये इस तरह का स्कैम है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये स्कैम है। आपको लगता है ये कोई ऐसा ही एक शख्स था जिसको मैं अब कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अब कॉल उठा नहीं रहा है, अब ये मुझे पैसा देना नहीं चाहता, और 10 दिन की बात है, 10 दिन के हिसाब से इसका 100 रियाल होता है, 70 रियाल होता है, 120 रियाल होता है, 200 रियाल होता है, और ये लेकर गायब हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है इस तरह के लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आपके सामने आकर आपको ठग रहे हैं। तो दोस्तों, यही तरीका है इनसे बचने का कि सबसे पहले वेरीफाई करें, इनकी QID अपने साथ रखें और फोटो उस QID की क्लिक करके वापस इनको QID दे दें, या फिर और डिटेल्स इनकी रखें, इनके मोबाइल नंबर को चेक करें, इनके घर के एड्रेस को चेक करें और देखें कि क्या ये लेजिट है या नहीं, क्या ये लोग असल में किसी तरह के मेड सर्विस से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं या नहीं। क्योंकि कतर में अगर आपको एज अ मेड काम करना है तो ये जरूरी है कि आप किसी कंपनी से जुड़े रहें या फिर आप किसी फैमिली के अंडर एज अ स्पॉन्सर आए हो। तो ये कुछ तरीके हैं पहचानने के, ऐसे लोगों को जानने के।

0: दूर है ये नया स्क्रिप्ट जीतू जोस की ओरिजिनल मलयालम सीरीज से पूरी तरह से अलग और इंडिपेंडेंट है। इस अनाउंसमेंट ने फैंस के दिमाग में सस्पेंस को डबल कर दिया कि अब कोई भी स्टोरी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर आप मल हैं, आप सो के हैं, आपने मूवी देखी है लेकिन आप फिर से देखना है तो आपके लिए एक नई स्क्रिप्ट के साथ आएगी चीजें। और अगर हम बात करें मूड की या ओवरऑल वाइब की तो यार ये पूरी तरह स्लीक और डार्क टोन पर मूवी चलती है।
1: मैं आदमी नहीं शनि हूं, जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना समझो उसको खराब टाइम शुरू।
0: फिल्म का माहौल व्यूवर्स के दिमाग में एक हैवी सेंस ऑफ ड्रेड और कांस्टेंट एंजाइटी क्रिएट करता है। जब आप स्क्रीन पर चल रही चीजों को देखते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल एग्जॉशन और दिमागी थकावट का एहसास होता है। डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि फिल्म का हर एक मूडी टेंशन से भरा हो। कहानी में एक ऐसी फैमिली को दिखाया गया है जो लगातार लॉ और पुलिस से भाग रही है और अपने पुराने गुनाहों के बोझ के तले दबी हुई है। ये इमोशनल बैगेज पूरी फिल्म में कैरेक्टर्स के चेहरे पर साफ दिखता है और इससे पता चलता है कि मूवी में एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है।
1: इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीट के लेके जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।
0: फिल्म बड़ी खूबसूरती से एक क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में शूट की भी गई है और फिर थोड़ा एनवायरनमेंट बिल्ड भी किया गया है जहां लगता है कि चारों तरफ दीवारें हैं और बचने का कोई भी रास्ता है नहीं। ऐसा लगता है कि अब फंसे लेकिन लास्ट में जो सीन होता है, जो मजा है इस मूवी का, वो आपको यू नो झंझोर देगा, मजा आ जाएगा। ऑडियंस को हर पल ये डर सताता है कि रामकर फैमिली या एक छोटी सी गलती उनकी इस फ्रेजाइल पीस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे।
1: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है। अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।
0: वेल, इस मूवी के स्टार रेटिंग की बात करें तो यार मेरा तो दिल है 5 में से 5 देने का, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पर मूवी उतनी ग्रिप नहीं कर पाती और रेटिंग खो देती है। रिव्यूअर्स ने फाइनल चैप्टर को एक बहुत ही बैलेंस्ड और जबरदस्त मूवी बताई, जो कहते हैं कि यार 5 में से इसे 3.5 रेटिंग में, और मुझे है कि कुछ चीजों को अगर यू नो इग्नोर करते तो 5 में से 5 दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि होती नहीं है ना ये मूवी में चीजें इग्नोर, तो इसलिए 5 में से 3.5। ये रेटिंग इस बात का क्लियर सबूत है कि फिल्म एक वर्दी और हाईली एंगेजिंग फिनाले डिलीवर करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। फिल्म का जो शार्प राइटिंग डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो मूवी की कोर आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देता है। और देखने वालों के मुताबिक, ऑडियंस के मुताबिक, फिल्म का सबसे बड़ा एसेट इसका इंटेलेक्चुअल प्ले ऑफ है जो फ्रेंचाइजी के लेजेंडरी लेगेसी को पूरी इज्जत देता है। ये फिल्म ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलती है और उन्हें मजबूर करती है कि वो हर ट्विस्ट को एंजॉय करे।
2: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा।
0: वेल, अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। डायरेक्टर का विजन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टर की क्या रही, और फिर यू नो सिनेमाटोग्राफ और साउंड पर भी हम जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बिहाइंड द सीन में फन फैक्ट्स आउट द प्रोडक्शन बात करें तो बहुत ही हैरत अंगेज और शॉकिंग प्रोडक्शन सीक्रेट सामने आए हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट कास्टिंग के दौरान आया जब बॉलीवुड के जो लाजवाब एक्टर हैं अक्षय खन्ना को इस मूवी में नेगेटिव कॉप के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था। वो शूटिंग शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार थे पर अचानक फिल्मिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर लिया। इस बड़े झटके के बाद प्रोडक्शन टीम ने स्विफ्टली आराम से एक्शन किया और फिर जबरदस्त जयदीप अहलावत को लाया गया, यानी कि इसमें अकॉर्डिंग टू द मूवी इसमें जो नेगेटिव रोल में है, मतलब ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द मूवी, लेकिन वो सही काम कर रहे हैं। जयदीप अहलावत जो है वो कॉप के रोल में है, और प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब एक शख्स को देख लेते हैं ना किसी को काम करते हुए, तो फिर आप दूसरे शख्स को देखना नहीं चाहते हैं उसके रोल में।
3: इंसान जबान से तो झूठ बोल लेता है पर दिल सब सच बता देता है।
1: क्या मैं SP क्राइम ब्रांच हूं? हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल।
0: लाजवाब काम उन्होंने किया। जयदीप अहलावत ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। ये कास्टिंग डिसीजन और रॉ बैकएंड प्लानिंग ही फिल्म की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई।

0: डायरेक्टर के विजन और कॉन्सेप्ट के एनालिसिस को भी जरा करीब से समझते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर अभिषेक पाठक है, जिनका विजन इस इंस्टॉलमेंट को लेकर बहुत ही शार्प, डायरेक्ट, एक्सपेरिमेंटल था। उनका मेन टारगेट था कि वो मलयालम फ्रेंचाइजी जो है ना, और फिर जो ये बॉलीवुड में आई है, इसके बीच कनेक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि यार वो भी सेम स्क्रिप्ट के साथ आई और ये फिर हिंदी में आ गई सेम स्क्रिप्ट के साथ। उन्होंने वो जो जोड़ था ना उसको तोड़ दिया। वो इस थ्रिलर को एक बिल्कुल अलग और यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं, जो पूरी तरह से हिंदी हर्टलैंड की मिट्टी और एटमॉस्फेयर में रूटेड हो। उन्होंने कहानी को लोकल टच करने के लिए काफी मेहनत भी करी है। अभिषेक पाठक का सबसे बड़ा फोकस मैन्युफैक्चर्ड हाइपर रियलिटी के कॉन्सेप्ट पर था। वो स्क्रीन पर ये एक्सप्लोर करना चाहते थे कि किस तरह एक झूठा या एक फैब्रिकेटेड कहानी इंसानी साइकोलॉजी और दिमाग में असली सच की जगह ले सकती है। उनका ये साइकोलॉजिकल एंगल नैरेटिव को बहुत ही डीपली क्रेडिबल, सेंसिबल और ग्राउंडेड बनाता है। देखने वालों ने जब इस मूवी को देखा है तो उन्होंने तारीफ दबा के करी और कहा है कि यार इंसानी दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि मूवी में इस कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना वो लाजवाब है। उनका डायरेक्शन गजब का है, जिस तरह से उन्होंने ट्विस्ट फोकस ना करके इंसानी दिमाग के डार्क कॉर्नर्स को टच किया है डायरेक्टर ने, जो अभिषेक पाठक है, वो गजब का लाजवाब। अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन, इस मूवी को मेनली गोवा के सीनिक और खूबसूरत जगह पे शूट गया है। और उसके अलावा गोवा इस फिल्म में सिर्फ एक नॉर्मल बैकड्रॉप या शूटिंग लोकेशन की तरह काम नहीं करता, बल्कि वो खुद एक साइलेंट, मूडी और एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर बनकर उभरता है। अब ये तो यार देखो, डायरेक्टर और साथ ही साथ जो सिनेमाटोग्राफर है ना, उसकी कला है कि कैसे एंगल पे कहाँ पर कितने शेड को इस्तेमाल करना है, कहाँ डार्क शेड इस्तेमाल करना है, ये सारा ना ये तो सिर्फ सिनेमाटोग्राफर का काम है। और सिनेमाटोग्राफर वो इज्जत मिलनी चाहिए। सुधीर के चौधरी ने इस लोकेशन को कमाल से इस्तेमाल किया है। उन्होंने डीप ग्रेज और डार्क शेडोज के जरिए गोवा के उन हिस्सों को कैप्चर किया है जो कैरेक्टर्स के इंटरनल पैनिक और कॉन्स्टेंट फियर को स्क्रीन पर लाइव प्रोजेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में ये फिल्म टॉप नॉच परफॉर्म करती है। फ्रेंचाइजी के मेन लीड हैं अजय देवगन, वो विजय के किरदार में एक नए और वियर लेयर को ऐड किया है उन्होंने। वो इस बार काफ़ी बूढ़े, थके हुए और परिवार की हिफाजत के बोझ से एकदम दबे हुए शख्स बने हैं।
1: फैमिली के लिए आदमी खुद को हर कदम पर तोड़ता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई उसकी फैमिली को धमकी ना दे, वरना घसीटना तो दूर की बात। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो साधारण आदमी क्या से क्या बन सकता है, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, किसी भी वर्दी में खड़ा हो।
0: अजय देवगन ने अपनी स्टोन कोल्ड आईज के जरिए जो थका है, जो दिमागी तनाव दिखाया है, जन प्रेशर दिखाया है, वो गजब आया। दूसरी जय राजवीर का काम किया है, उनके रोल में गजब के लगे हैं। लग रहा है कि यार ये तो बहुत करीब है यार, अजय देवगन को पकड़ पूरी को पकड़ देगा। और जिस इंटेंस से उन्होंने काम किया, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका ढंग है, जो उनका रॉ, खास चीज जो जयदीप की आई है, जो रॉ नेचर है ना मूवी में, क्या कहूं
2: मैं, आदमी नहीं निशानी हूं जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका टाइम शुरू।
0: And now let's talk about the cinematography. टेक्निकल फ्रंट्स पर सिनेमाटोग्राफी और साउंड का डिपार्टमेंट इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। फेमस सिनेमाटोग्राफर सुधीर के चौधरी ने इस थ्रिलर को करने के लिए कमाल विजुअल लैंग्वेज का यूज किया। उन्होंने डीप ग्रेज, डार्क शेडोज का इस्तेमाल करा, जैसे कि मैंने पहले बताया। विजुअल मैजिक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अमर मोहिले ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड स्कोर डिजाइन किया।

उनका BGM फिल्म के सस्पेंस और ड्रामा को बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राइव करता है। साउंड डिजाइन में शार्प साइलेंस यानी कि बिल्कुल खामोशी का बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से यूज किया गया। ये अचानक आने वाले साइलेंस हर एक टेंस रेवलेशन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के इम्पैक्ट को डबल और ट्रिपल कर देता था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्पॉइलर फ्री प्लॉट। इस मूवी का असल में प्लॉट क्या है फजीन, ये बताओ। सारी बातें हो गई दोस्तों, इस कहानी का प्लॉट ऐसा है कि आपका मूड खराब नहीं हुआ। पहले पार्ट की हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन कोल्ड होने यानी कि ठंडी बस्ती में चले जाने के कुछ साल बाद, जब विजय की फैमिली अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक कुछ नए और शॉकिंग एविडेंस

0: सरफेस हो जाते हैं। ये नए सबूत इतने खतरनाक हैं जो उनकी सेफ्टी और फ्रेजाइल पीस को पूरी तरह से शटर करने के लिए काफी है। पुलिस को एक नया रास्ता मिल गया, नया एंगल मिल गया और फैमिली फिर से फंस जाती है। विजय को एक बार फिर से साइकोलॉजिकल बैटल फील्ड में जबरदस्ती उतरना पड़ता है। अपने फैमिली की एब्सोल्यूट फ्रीडम और उनकी जान बचाना, ये विजय का काम है। अपने पूरे सिनेमेटिक इंटेलेक्ट और दिमागी चालाकी को मोबिलाइज करना पड़ता है विजय को। इस बार सामना किसी आम पुलिस से नहीं है, लेकिन एक रूथलेस और बेहद चालाक नए क्राइम ब्रांच ऑफिसर से है जो विजय के हर मूव पर नजर रखता है। विजय को एक ऐसा प्लान बनाना पड़ता है जो ना सिर्फ नया हो बल्कि लॉ के हर दांव को फेल भी कर दे। परफॉर्मेंस अजय देवगन की गजब की थी। जयदीप ने तो क्या ही नेगेटिव एनर्जी डाली है। जयदीप ने इस तरह से अजय के सामने एक दीवार बनकर खड़े रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पकड़ जाएगा। फीमेल कास्ट में लेजेंडरी एक्ट्रेस तबू ने मीरा के कैरेक्टर में एक प्रोफाउंड और डिवास्टेटिंग सेंस ऑफ ग्रीफ पोर्ट्रे किया। उनकी आंखों में एक माँ का होपलेस दुख और बदले की आग साफ झलकती है। वहीं दूसरी तरफ श्रिया ने विजय की वाइफ के रूप में एक ऐसी माँ का रोल शार्पली प्ले किया जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एब्सोल्यूट लिमिट्स को पुश कर देती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स के बारे में, क्योंकि मूवी के बारे में अगर क्रिटिक्स ने कुछ कहा नहीं तो फिर कैसे आप मान लेंगे कि मूवी अच्छी। क्रिटिक्स का कहना, क्रिटिक्स का बोलना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन कई बड़े बड़े जिन्हें पेपर हैं, अखबार हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस फिल्म को इंटेलेक्चुअल तो कहा है, उस एस्पेक्ट से ये भी कहा कि ये शार्प राइटिंग के साथ साथ इस मूवी की जो ग्रिपिंग है वो गजब की। मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो अजय देवगन और जयदीप अहलावत के बीच दिखाई गई स्पेक्टेकुलर और थ्रिलिंग फेस ऑफ की है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने ये जरूर नोट किया है कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो पेस्ड है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते थे, डायरेक्टर स्टोरी को बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लेते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस छोटी सी कमी के बावजूद सारे जो क्रिटिक्स हैं इस बात पर पूरी तरह से म्यूचुअली एग्री करते हैं कि फिल्म ने फाइनल 30 मिनट्स एक कंप्लीट मास्टरपीस तैयार की है और लास्ट का आधा घंटा इतना स्टेलर, इतना जबरदस्त, इतना टाइट और इमोशनली रेजोनेंट कंक्लूजन डिलीवर करता है जो ऑडियंस को हैरान कर देता है। तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास वक्त है आज के दिन या कल के दिन तो जाइए दृश्यम द कंक्लूजन फिनाले देखने जरूर जाइए। ये मूवी साइकोलॉजिकल टेंशन और चूहे बिल्ली की रेस में कौन जीतता है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नई मूवी के बारे में बात करते हुए, जहां पर आपको नई मूवी के बारे में डायरेक्टर का विजन, फन फैक्ट और दुनिया की चीजें यही इसी शो में मिलेगी जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा, Qatar's most heard radio station, FM 107, दिल से देसी।

0: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
1: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
0: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
2: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 विद आरजे नाजिया, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादले ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 to 11 तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साथ आज डेटा नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ामों का तहफ़्फ़ुज़ भी दाखिली सलामती की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हो चुका है, जबकि बदलती हुई

0: डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मिलीपुल कतर 2026 की नुमाइश माहिरीन और मुतालिका शोबों के पेशावर अफराद को साइबर सिक्योरिटी से वाबस्ता जदीद हल से वाकिफ होने और उन टेक्नोलॉजीज को करीब से जानने का मौका फराहम करती है जो डिजिटल निज़ामों और बुनियादी डिजिटल ढांचे को मुमकिन खतरात से महफूज बनाने और उनके तहफ्फुज को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद देती हैं। मिलीपुल कतर 2026 20 से 22 अक्टूबर तक दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। मिलीपुल कतर 2026 के इंतजामिया आप सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू एफएम 107 दिल से देसी।
3: Maximum music, maximum fun.
4: On FM 107, Dil Se Desi.

0: और माहौल बनाना, यानी पहले हैबिट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही जदीद तालीम और तरबियत की बहुत सी तहकीकात भी कहती हैं कि बच्चे को पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सिर्फ पनिशमेंट की नहीं। सबने कलाम इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत को नहीं मारा, कभी किसी बच्चे पर जुल्म नहीं किया। उनकी पूरी ज़िंदगी रहमत, शफ़क़त और हिकमत की मिसाल है। इसीलिए मुसलमान वालदेन के लिए असल नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी है। सामने कराम, आज बहुत से वालदेन कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने बचपन से उनके साथ ताल्लुक बनाया? क्या हमने सिर्फ हुक्म दिया या दोस्ती भी की? क्या हमने सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे दिया और बिठा दिया ऐसे घंटों पर घंटे? क्या हमने सिर्फ स्कूल भेजा या घर को भी तरबियत गाह बनाने की कोशिश की? तो सामने कराम, बात वही है जिस पर हम प्रोग्राम के शुरू से कह रहे हैं कि इंसान की शख्सियत एक दिन में नहीं बनती और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। माँ की सेहत, वालदेन के इंतखाब, घर का माहौल, मोहब्बत, अखलाक, इबादत, गुफ्तगु, मुसलसल तरबियत, ये सब मिलकर एक सालेह इंसान तैयार करते हैं। तो सामने कराम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल ईमान वाली, बाखलाक और बाएतमाद हो, तो हमें सिर्फ उनके मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं, उनकी तरबियत की प्लानिंग भी करनी होगी। अल्लाह ताला हमें अपने औलाद की बेहतरीन इस्लामी तरबियत करने, उन्हें इल्म, अखलाक और ईमान की दौलत से मालामाल होने और हमारे घरों को सुकून, रहमत और बरकत का मरकज़ बनाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अरब सामने कराम, प्रोग्राम के खिताई मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं और आज हमने ये बात समझने की कोशिश की कि इंसान की शख्सियत कैसे बनती है। पैदाइश, ख़ानदान, वालदेन, माहौल, तरबियत, आदतें और सोहबत, ये सब इंसान पर असर डालते हैं। सामने कराम, आपकी खिदमत में सिर्फ एक आखिरी सवाल छोड़ कर जाते हैं, वो ये कि अगर बच्चे की तरबियत करनी हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाए? इस्लाम तो कहता है कि सबसे पहले इंसान के दिल के हवाले से चौकस रहो, ख्याल रखो, फिर उसकी ज़िंदगी खुद बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में एक हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि वो कैरेक्टर बिल्ड करते थे, यानी कि सिर्फ मालूमात दे दिए। मसलन, बच्चे को सिर्फ ये ना सिखाओ कि खाना कैसे खाना है, बल्कि उसे ये भी सिखाओ कि अगर आखिरी लुकमा बाकी रह जाए तो उसे अपने लिए न छीने बल्कि दूसरे को पेश कर दे। तो देखिए कितने खूबसूरत अखलाक है। इसी तरह आज की दुनिया हमें क्या सिखा रही है? आज की दुनिया हमें ये बता रही है कि पहले मैं, मेरा हक, मेरा फ़ायदा, मेरी कामयाबी। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? पहले तुम। कुरान ने अंसार की तारीफ़ करते हुए फरमाया, वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे खुद ज़रूरतमंद हो। तो यही इशार है, यही इस्लामी तहजीब है। घर में भी अगर एक फल भी बच जाए, एक मीठा रह जाए, एक तोहफा रह जाए, तो बच्चा ज़रूर ये सीखे कि पहले भाई को देना है मुझे, पहले बहन को देना है, पहले मेहमान को देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में अजीम किरदार बनाती हैं। सामने कराम, हर ख्वाहिश पूरी करना भी ज़रूरी नहीं, हर चीज़ दिल चाहे तो फ़ौरन मिल जाए, ये भी तरबियत नहीं। इस्लाम तो हमें इस तरह बताता है, कभी इंतज़ार करना, कभी सब्र करना, कभी अपने ख्वाहिश को रोक लेना, ये नफ्स की तरबियत है। इसी को उलमा ने मुजाहदत-उन-नफ्स कहा है। एक तरफ आज की कल्चर हमें ये बताती है कि जो दिल चाहे फ़ौरन ले लो, दूसरी तरफ इस्लाम कहता है कि पहले सोचो फिर फैसला करो। सामने कराम, एक और खूबसूरत इस्लामी तरबियत ये भी है कि इंसान हर बात फ़ौरन न कह दे, बोलने से पहले सोचे, अमल करने से पहले गौर करे, फैसला करने से पहले मशवरा करे। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक कमेंट सिर्फ चंद सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि तदब्बुर करो, गौर करो, फिर बोलो। सामने कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शख्सियात तैयार की जो अपने कामयाबियों पर तकब्बुर नहीं करती थी। आज हम बच्चों से कहते हैं कि सबको बताओ तुमने क्या हासिल किया। इस्लाम कहता है कि अमल करो, शुक्र करो, लेकिन लोगों के सामने अपनी बड़ाई बयान करते न फिरो। एक बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सबसे खुशनसीब वो बच्चा है जिसे बचपन ही में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल दी जाए। क्यों? क्योंकि जब वो बालिग होगा तो दीन उस पर बोझ नहीं लगेगा, नमाज उसकी आदत होगी, सच बोलना उसकी तबीयत होगी, हया उसकी शख्सियत होगी कुरान उसका साथी होगा और नेकी उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। सामने किराम, एक बहुत अहम हकीकत यह है कि इंसान अकेला नहीं जीता, वो जिसके साथ रहता है वैसा बनता जाता है। इसीलिए अरबी में कहा जाता है कि मुझे ये मत बताओ कि वो कौन है, मुझे ये बताओ कि उसके दोस्त कौन हैं। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है,
1: यानी इंसान को अखलाक, ज़बान, निगाह और किरदार को भी बदलना चाहिए। इसी तरह हज, उम्रा, सदका, हुस्न अखलाक, अमानत, दियानत, ये सब तकवा के मज़ाहिर हैं। सबरी कराम, आखिर में एक नहायत अहम नसीहत कि अगर आपके वालदेन जिंदा हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उनकी खिदमत को मामूली न समझें। ये जन्नत के दरवाज़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और 3 मरतबा फरमाया आमीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने आमीन क्यों कहा? फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हलाक हो वह शख्स जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाया फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। मैंने इस दुआ पर आमीन कही। सोचिए, दुआ करने वाले जिब्रील हैं और आमीन कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बढ़कर वालिदैन की खिदमत की अहमियत और क्या हो सकती है? तो तकवा का ये कमली मुजाहरा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। आज के दौर में हम वालिदैन के साथ बदसलूकी के ऐसे ऐसे वाकया सुनते हैं कि दिल कांप उठता है। वालिदैन की सबसे बड़ी नाफरमानी सिर्फ सख्त लहजा इख्तियार करना नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों को तोड़ देना भी। किसी बाप की सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि उसका बेटा सिर्फ दौलतमंद बन जाए बल्कि ये है कि वो अल्लाह वाला, बाकिरदार और सालेह इंसान बने। इसी तरह किसी माँ की सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि उसकी औलाद बड़े हदों तक पहुँच जाए बल्कि ये है कि वो अल्लाह की इताअत करने वाली बन जाए। इसलिए अगर कोई नौजवान बुरी सोबत इख्तियार कर ले, हराम रास्तों पर चल पड़े, वालिदैन को रुलाए, तो ये सिर्फ उसका ज़ाती नुकसान नहीं बल्कि वालिदैन के दिल पर सबसे बड़ा ज़ख़म है। इस्तिकामत, सालेह किरदार और नेक ज़िंदगी ही वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खिदमत और सबसे बड़ा तोहफा है। ये सोशल सर्कल, रोल मॉडल्स, ये सब इंसान की शख्सियत बनाते हैं। आज नौजवान किसकी नकल कर रहे हैं? किसी फिल्म स्टार की, किसी फुटबॉल प्लेयर की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की? कपड़े वैसे, बाल वैसे, बात करने का अंदाज वैसा, चलने का अंदाज वैसा, हत्ता के हंसने का अंदाज भी वैसा। ये इंसानी फितरत है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी नकल करता है। पर सवाल ये है कि अगर नकल ही करनी है तो फिर सबसे बेहतरीन नमूना कौन है? अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर किसी की नकल करनी है तो उस इंसान की करो जिसकी तारीफ अल्लाह ने की है, जिसकी सीरत क़यामत तक इंसानियत के लिए मिसाल है। सामने किराम, एक हकीकत आपने भी देखी होगी कि शौहर और बीवी कई साल साथ रहें तो एक दूसरे के अंदाज अपना लेते हैं। बच्चे अपने वालदेन के लहजे में बात करने लगते हैं, दोस्त एक दूसरे जैसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहब्बत तकलीद पैदा करती है। इसलिए जब इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो फिर वो भी सलाम वैसे करता है, खाना वैसे खाता है, रहमत वैसे बांटता है, माफ़ वैसे करता है, मुस्कराता भी वैसे। यही है सच्ची मोहब्बत। तो सामने कराम, बात वही है कि हमारे हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी का घर अच्छा था, किसी का माहौल ख़राब था, किसी की तालीम कम थी, किसी के वसाइल महदूद थे, लेकिन उन सबसे बड़ी चीज़ एक है कि इंसान की अपनी कोशिश। जब इंसान इल्म हासिल करता है, अपनी इस्लाह करता है, अपनी आदतें बदलता है, अल्लाह से दुआ करता है और मुसलसल मेहनत करता है तो वह अपनी बहुत सी कमज़ोरियों पर काबू पा लेता है। तारीख ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात से उठकर अजीम किरदार बनाया। किसी के पास वसाइल नहीं थे, किसी के जिस्म में कमज़ोरी थी, किसी का बचपन मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो आज की नशिस्त का खुलासा अगर एक जुमले में अगर हम बताना चाहेंगे तो वो जुमला ये होगा कि इंसान की पैदाइश उसके इख्तियार में नहीं लेकिन उसकी शख्सियत की तामीर उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा घर नेमत है, अच्छे वालिदैन नेमत है, अच्छी सोबत नेमत है, लेकिन सब के बाद भी फैसला आपका है कि आप किसकी पैरवी करेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, किस किरदार को अपनाएंगे
0: और अपनी जिंदगी किस मकसद

0: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक हम सब की सेहत से है। क्या आपने कभी नज़ला, जुकाम, गल की खराबी या बुखार होने पर खुद ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिए हैं या घर में पहले से मौजूद किसी एंटीबायोटिक को दोबारा इस्तेमाल किया है? अगर ऐसा है तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए, हमारे लिए बहुत अहम है। एंटीबायोटिक्स हैं क्या? सबसे अहम बात तो ये है, ये ऐसी अदवियात हैं जो बाज़ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने या उनकी जो अफजाइश है उसे रोकने में मदद देती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। नज़ला, आम जुकाम और फ्लू जैसी बहुत सी बीमारियाँ वायरस की वजह से होती हैं। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, इसलिए आम नज़ला जुकाम में एंटीबायोटिक्स अमूमन लेना फ़ायदेमंद नहीं होता। ये फैसला कि किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं, उसकी जो अलामत हैं, मुआयने हैं और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। एंटीबायोटिक का जो गलत इस्तेमाल है, हम क्यों कहते हैं कि नहीं करना या वो ख़तरनाक हो सकता है? जब हम ज़रूरत के बगैर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया में वक्त के साथ साथ ऐसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जिनकी वजह से उन पर उस दवा का असर बहुत कम हो जाता है। ऐसी एंटीमाइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस या जरासीम में जो दवाओं के खिलाफ मुज़ाहमत इसको कहते हैं। नतीजा ये हो सकता है कि फ्यूचर में किसी इन्फेक्शन के इलाज के लिए जो आम मेडिसिन है वो मुअसर ना रहे, ज्यादा पेचीदा इलाज की जरूरत पड़े या बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाए। ये मसला सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता, मुजाहमत रखने वाले जरासीम दूसरों तक भी मुंतकिल हो सकते हैं। अब बात यह है कि हमें क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती तो ये है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाए। दूसरी जो गलती है वो ये है कि किसी दूसरे शख्स की दवा इस्तेमाल की जाए, मुमकिन है कि उस शख्स की बीमारी, उम्र और उसकी जो कंडीशन है या बीमारी है, दवा उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो, आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तीसरी गलत ये है कि बीमारी की जो बची हुई अद्वियात हैं नई बीमारी में इस्तेमाल कर ली जाए। हर मरतबा एक जैसी अलामात की वजह से एक जैसी अद्वियात नहीं होती। और जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये है कि मेडिसिन की खुराक या वक्त खुद से ही तब्दील किया जाए या फिर कंसल्टेशन के बगैर इलाज रोक दिया जाए। मेडिसिन की मुद्दत और तरीक़े इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक होना चाहिए और अगर कोई मुज़र असरात हों या जो तबीयत है बेहतर होने के बावजूद मेडिसिन के बारे में सवाल हो तो फिर अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए। जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हों तो बहुत सी बातों को हमें अपने सामने रखना है कि हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, दवा के साथ दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पढ़िए, फार्मेसिस्ट से पूछिए कि उसे खाने से पहले क्या लेना है, मतलब खाने से उसे पहले जो मेडिसिन है लेनी है या उसके बाद लेनी है। अगर आपको किसी भी मेडिसिन से एलर्जी है, आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं या पहले से दूसरी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को पूछिए। एंटीबायोटिक्स के बाद जो मुज़र असरात हैं उनमें जो वॉमिटिंग हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो और ये कि जिस्म पर जो फैलता हुआ कुछ भी जो रैश है वो हो या कोई और गैर मामूली अलामत जाहिर हो तो फिर आप तिब्बी मशवरा ज़रूर कीजिए। या फिर सांस लेने में दुश्वारी हो, गले या ज़ुबान की सूजन हो या बेहोशी जैसी अलामत एक एमरजेंसी हैं और फौरन एमरजेंसी से मदद लीजिए। सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करना ही बीमारी से बचाव का तरीका नहीं है, बल्कि अपने हाथों को बाकायदगी से धोना, खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपना, खुराक को महफूज तरीके से तैयार करना और ज़रूरी वैक्सीनेशन जो है वो करवाना बेहद अहम है। अगर आपको बुखार है, गले की शदीद तकलीफ या दूसरी अलामत हैं तो खुद डायग्नोज करने के बजाय ज़रूरत के मुताबिक अपना जो चेकअप है वो करवाइए। याद रखिए, एंटीबायोटिक्स एक कीमती तिब्बी सहूलत है, उसका दुरुस्त इस्तेमाल आज भी मौसर इलाज है और फ्यूचर में भी उसकी अफादियत बरकरार रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। लिसनर्स, एंटीबायोटिक हर बुखार, हर खांसी और हर जुकाम का इलाज नहीं है, उसे सिर्फ दुरुस्त जो तिबी मशवरा है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए। किसी के साथ अपनी जो मेडिसिन है शेयर ना कीजिए और जो बची हुई मेडिसिन है खुद से दोबारा शुरू ना कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मालूमात को दूसरों तक पहुंचाइए और याद रखिए कि योर हेल्थ मैटर्स।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर में खानदानी खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि मोहब्बत, रिश्ते और अपनायत का एक अहम इजहार है। घर के दस्तरखान पर तैयार होने वाली हर डिश अक्सर किसी याद, किसी बुजुर्ग की तालीम या किसी खास मौके से जुड़ी होती है। पुराने वक्त में खाने की तैयारी खानदान का मुश्तरका अमल होती थी। घर के बुजुर्ग फैसला करते थे कि आज क्या पकाया जाए, जबकि खवातीन और घर के दूसरे अफराद तैयारी में हिस्सा लेते। बच्चे भी देखते और आहिस्ता आहिस्ता सीखते कि किस तरह मसाले मिलाए जाते हैं और किस किस्म के खाने किस मौके के लिए मौजूद समझे जाते हैं। कतरी खानदानी दस्तरखान पर चावल, गोश्त, मछली, गंदम, खजूर और सब्जियां अहम अज्जा रहे। मजबूज, हरीज, सुरेद, सालूना जैसी डिशेस घरों और समाजी तकरीबात में मशहूर हैं। इन खानों में मसालों की खुशबू और धीमी आंच पर पकाने का तरीका खानदानी पकवान को एक खास पहचान देता है। मजबूज अक्सर खानदानी तौर पर मिल बैठकर तैयार किया जाता है। चावल, गोश्त या मछली और खुशबूदार मसाले मिलकर एक ऐसी डिश बनाते हैं जो एक बड़े प्लेटर में पेश की जा सकती है। कुछ घरों में इसके साथ दकूस और सलाद भी रखे जाते हैं। जब लोग सब एक ही प्लेटर के गिर्द जमा होते हैं तो खाना एक समाजी तजुर्बा बन जाता है। हरीज सादगी की खूबसूरत मिसाल है। गंदम और गोश्त को लंबी मुद्दत तक पकाकर नरम और यकसा बनाया जाता है। अक्सर इस पर घी डाला जाता है। ये खास तौर पर रमजान और दूसरे मौके से भी जुड़ी हुई डिश है। इसकी तैयारी सब्र और तवज्जो चाहती है। इसी वजह से ये पुरानी घरेलू महारत को याद दिलाती है। सुरीत भी खानदानी खाने की एक अहम मिसाल है। इसमें रोटी को गोश्त या सब्जियों के रसीले शोरबे के साथ पेश किया जाता है। रोटी शोरबा जज्ब कर लेती है और इसी से नरम, लजीज और गजाइत से भरपूर डिश तैयार होती है। ये खाना सादगी, सहूलत और घर के गर्म दस्तरखान की याद दिलाता है। खानदानी खानों का एक दिलचस्प पहलू ये है कि एक ही डिश हर घर में थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। किसी घर में मसाले की खुशबू ज्यादा नुमाया होती है तो किसी में खजूर, नारियल या मेवे की मिठास। ये फर्क कमी नहीं होती बल्कि हर खानदान की अपनी पहचान होती है। कतरी घरों में हफ्ते के दिन खानदानी मुलाकात के लिए खास हो सकते हैं, जैसे जुमे का लंच या किसी रिश्तेदार की दावत पर अफराद दूर दूर से आके एक साथ खाना खाते हैं। बड़े एक दूसरे का हाल पूछते हैं और बच्चों के लिए बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारना रिश्तों की समझ हासिल करने का मौका बनता है। दस्तरखान लगाना भी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। मेहमान के सामने खाना खुलकर पेश किया जाता है ताकि वो अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक ले सके। खाली प्याले को दोबारा कहवे से भरना या मेहमान को मजीद खाने की पेशकश करना इज्जत और तवज्जो का इजहार समझा जाता है। कतरी खानों में एक और खूबसूरत रिवायत खाना पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ तकसीम करना है। किसी घर में खास डिश बने तो इसका हिस्सा दूसरों तक पहुंच सकता है। इस अमल से बच्चे भी सीखते हैं कि नेमत की कदर सिर्फ खुद इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। आज की मसरूफ जिंदगी में खाने के तरीके जरूर बदले हैं। कुछ लोग घरों में कम वक्त मिलने की वजह से रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, लेकिन

हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूं एक और फाइनेंशियल टर्म की, और ये टर्म है बैलेंस शीट. जी हाँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अगर कोई एक डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है तो वो है बैलेंस शीट. अक्सर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस ओनर किसी भी कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखते हैं. तो और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि किसी स्पेसिफिक डेट पर कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, कंपनी पर क्या कर्ज है, लाइबिलिटीज, और असल में ओनर्स का कितना हिस्सा बनता है, इक्विटी. ये बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है. अब समझते हैं कि बैलेंस शीट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. मान लीजिए दो कंपनीज हैं और दोनों का एनुअल प्रॉफिट 500,000 कतरियाल है. दोनों का रेवेन्यू भी सेम है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि पहली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसेट्स है, कम डेट है, जबकि दूसरी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोन्स है, कम कैश है. अब इन्वेस्टर किस कंपनी को प्रेफर करेगा? अक्सर पहली कंपनी, यही कहा जाएगा. इसीलिए प्रोफेशनल्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, बैलेंस शीट भी देखते हैं. अब बैलेंस शीट के भी कंपोनेंट्स हैं, और इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, ओनर्स, इक्विटी. लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी की ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स होती हैं, यानी जितना पैसा कंपनी को दूसरे को देना है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन है, क्रेडिट कार्ड डेट है, सप्लायर्स पेमेंट है, टैक्सेस पेबल है, सैलरीज पेबल है. ये सारी चीजें सिंपल वर्ड्स में लाइबिलिटीज हैं, यानी लाइबिलिटीज वो अमाउंट्स हैं जो कंपनी पर वाजिब होते हैं, यानी उन्हें अदा करना होता है. और एसेट्स तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई कैश है, इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है. अब बात करते हैं ओनर्स इक्विटी की. ये कंपनी के मालिक का असल हिस्सा होता है, यानी अगर कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं और सारे डेट्स अदा कर दिए जाएं तो जो पैसा बच जाए उसे ओनर्स इक्विटी कहा जाता है. अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो आपने सुना होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये फॉर्मूला ही बैलेंस शीट की बुनियाद है. देखिए, हर बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पर बैलेंस होती है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है. तो बस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को भी कैटेगराइज किया गया है. करंट एसेट जिस पे मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कैश, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये सब करंट एसेट्स हैं. वहीं नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, व्हीकल्स हैं. वहीं पर कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर पे करनी होती हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज हैं, सप्लायर पेमेंट्स हैं. वहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती हैं जो साल से ज्यादा पीरियड में रिपे होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स वगैरह. देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखकर कई इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हासिल करता है. क्या कंपनी के पास कैश है? क्या डेट बहुत ज्यादा है? क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है? क्या कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है? क्या कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल कर सकती है? और ये सब इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? बैलेंस शीट से. तो अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो बैलेंस शीट आपको बता रही है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, आपके डेट्स कितने हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, एक्सपेंशन का पोटेंशियल कितना है. दोस्तों सोचिए, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट अगर बनाई जाए तो आपके पास क्या है? एक घर शायद 1 मिलियन का, सेविंग्स शायद 100,000 कतरियाल, कार शायद 100,000 कतरियाल, तो आपका टोटल एसेट हुआ 1.2 मिलियन कतरियाल, है ना? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट कैलकुलेट की जाती है. बहुत से लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है लेकिन उस पर डेट इतना ज्यादा होता है कि फाइनेंशियल रिस्क में होता है. तो बस जाते जाते ये कहूंगी कि बैलेंस शीट बिजनेस का आईना है. ये नहीं बताती कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है, बल्कि ये बताती है कि कंपनी के पास कमाने की कितनी कुव्वत है. स्मार्ट इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट से पहले बैलेंस शीट समझते हैं.
क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस से पैदा होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपसे लूंगी इस टॉपिक पे इजाजत, कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को, एक और नए टर्म को एक्सप्लोर करेंगे। कल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
4: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।